नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगाती दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते हैं,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो ऐसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल कहते हैं, गोपाल तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थीं। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर को है, मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है,
2: टिकट
1: नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उस

0: तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है,
1: उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया, उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया।
0: नीब करौरी बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौरी बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौरी बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
2: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए, मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
7: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को तस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामूली से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि

0: 7 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस्ड कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिन और सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट Good News Today.
1: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आ। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचेस में कप्तानी करने का बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, तेल की बौछार के बीच कंधों पर सवार होकर लट्ठे पर चढ़े पहलवान, दिखा रोमांचक मुकाबला। गया जी में पितृपक्ष मेले की तैयारियां शुरू, देवघाट पर माता सीता के पिंडदान की मिथिला पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान वंश की बंपर कमाई, 30 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार, 2 करोड़ में बनी है फिल्म। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
7: और मेरे पागलो, तुम्हें एक बार भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, जगत तुम्हें फीका लगेगा, फीका लगेगा। हम कल सुबह मानस रतन डॉक्टर श्रीनाथ जी को जब सुन रहे थे, हमारी आंखें भर आई। मानस रतन डॉक्टर श्रीनाथ जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। एक रामायण है, उसका नाम है कृतिवास। क्या नाम? शायद बांग्ला में है, शायद कृतिवास नाम की। रामायण में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि राम जी जब राम सेतु के किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, राम सेतु बन गया, लंका जाना था। लंका जाने के पहले भगवान राम ने सोचा क्या किया जाए, भगवान शंकर की स्थापना की जाए। क्या की जाए? भगवान शंकर की स्थापना, रामेश्वरम। रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना की जाए ऐसा सोचा। आहा, अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा कि आप भगवान शंकर की स्थापना क्यों कराना चाहते? तो भगवान राम ने कहा कि रामर शंकर जी का पुजारी, और कहीं ऐसा ना हो कि रामर भक्ति करके शंकर जी को प्रसन्न करके अपनी तरफ मिला ले शंकर जी को, तो हमारे विरोध में शंकर जी खड़े, तो युद्ध हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर शंकर जी रामर की तरफ से लड़ेंगे तो लड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो राम जी बोले पहले ही इनको सेटल कर लो। चुनाव में ऐसा होता है कि भाई यदि तुम हमें वोट नहीं देना चाहते तो कम से कम उसको मत देना। अच्छा वोट दो भले ही किसी को, पर सपोर्ट मत देना खुल के। यही राम जी ने उपाय किया, शंकर जी की स्थापना कर ले, पहले ही सेटल कर ले, पता लगे कि वहां लंका जाए, रावण की तरफ से शंकर जी लड़े, हो गया युद्ध। तो भगवान राम जी ने लिंग थाप विधिपत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा, शंकर जी के समान हमें कोई दूसरा प्रिय नहीं है, स्थापना करने के लिए विचार किया। तो जामवंत जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, राम जी बैठे हुए थे, वहीं पर सब वानर भालू बैठे थे, सुग्रीव जी भी बैठे थे। राम जी बोले एक बात बताओ, सामग्री तो आने वाली है लिंग लिंग लेने के लिए, भगवान शिवलिंग लेने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए हुए, पर पूजन कौन करेगा, पूजन कौन करेगा, ये विचार कर ही रहे थे। तब तक जामवंत जी ने कहा इस समय में सबसे योग्य आचार्य, सबसे बढ़िया आचार्य कोई है, रावण। राम जी बोले ये शिवलिंग की स्थापना, भोलेनाथ की स्थापना किसके लिए हो रही, बोले रावण को हराने के लिए। अब बोले आचार्य कौन है, बोले रावण। बोले क्या रावण मानेगा, बोले ट्राई कर लेते, ट्राई करने में क्या दिक्कत, ना माने वो बात अलग है, ट्राई करने में क्या दिक्कत, एक बार उपाय करते हैं। लक्ष्मण जी गए, कृतिवास रामायण में वर्णन, लक्ष्मण जी रावण के पास गए, हे दशग्रीव दशानन आचार्य महापंडित रावण, हम श्री रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण है, दशरथ नंदन है। रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा, कौन, हम लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी है श्री राम जी, उनके छोटे भाई अनुज। अच्छा बताओ किस लिए आए हो, रावण ने पूछा किस लिए आए हो, लक्ष्मण जी बोले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रभु श्री रघुनंदन रघुकुल तिलक श्री राम जी उस किनारे पर रामेश्वरम स्थान पर, वहां पर उस किनारे पर समुद्र के किनारे भगवान शंकर की एक लिंग विधिवत रूप में, शिव लिंग के रूप में पूजा करना चाहते, स्थापना करना चाहते, आप आचार्य बन करके चलिए और उस पूजन को संपन्न करवाइए। रावण ने कहा पंडित पुरोहित ले जाते हो, लेने आए हो कि आचार्य, लक्ष्मण जी बोले आचार्य। तो रावण ने कहा कि एक बात बताओ, ये शंकर जी की स्थापना किसके लिए हो रही। अब लक्ष्मण जी क्या बोले, बोले एक युद्ध होना है उसके विजय के लिए हो रही। रावण बोला इस युद्ध किससे है, लक्ष्मण जी की शब्द शैली सुनना, बोले आतताई आतंकी दशग्रीव रावण से। तो धीरे से एक राक्षस बोला ये कौन है जो सामने बैठे हैं, ये कौन है जिनके सामने ऐसा बोल रहे। लक्ष्मण जी बोले ये तो आचार्य महापंडित रावण है। ये तो आचार्य महापंडित रावण है, ये वो नहीं है, ये आचार्य महापंडित रावण है। रावण का दिमाग खुल गया, सही कह रहा है। लक्ष्मण जाओ हमारे जजमान से कह देना आचार्य जी आ रहे। लक्ष्मण जी बोले जय हो। रावण बोला लक्ष्मण जी से एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री है सब। लक्ष्मण जी बोले सब है। क्या क्या, शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए। अच्छा पूजन की सामग्री, सब देवता लगे हुए हैं। अच्छा हमारा यजमान विवाहित है कि अविवाहित। लक्ष्मण जी बोले शादी तो हुई थी। रावण बोला फिर, बोले घरवाली चली गई। कहां, बोले चोरी हो गई। चोरी हो गई, कहां गई। शब्द सहेली सुनना, आचार्य लक्ष्मण कहते हैं जीवाचार लक्ष्मण, ये जीवाचार लक्ष्मण है, वो आचार्य रावण है, ये जीवाचार लक्ष्मण जी, जीवाचार जीवाचार लक्ष्मण आचार्य पंडित रावण से कह रहे। क्या कह रहे, बोले लंका का आतताई आतंकी राजा हमारे ज्येष्ठ भ्राता की भार्या माता जानकी जी को चोरी करके ले गए। तो वही राक्षस बगल में फेंकड़ा था, बोले जे कौन। लक्ष्मण जी बोले, बोले जे तो आचार्य जी, ये तो आचार्य जी है, आचार्य जी। अब रावण की सप्त शैली सुनना, आचार्य पंडित रावण क्या कह रहा। आचार्य पंडित रावण कहता, हे लक्ष्मण, जाके हमारे यजमान से कह दो तैयारी पूरी करें, जो सामग्री यज्ञ में पूर्ण ना हो उस यज्ञ की सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। कथा कहती है कृतिवास रामायण, लक्ष्मण जी वापस आए, राम जी ने पूछा क्या हुआ, लक्ष्मण जी बोले काम बन गया, आचार तैयार है। उस जमाने में षट शास्त्र चतुर्वेद का ज्ञाता तो वही था, बोले काम बन गया, बोले वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। इधर शिवलिंग आने का इंतजार हो रहा, उधर रावण पुष्पक विमान से आया, स्वागत के लिए स्वयं राम जी गए। कृतिवास रामायण में ऐसा लिखा है, स्वयं राम जी पुष्पक विमान से, पहले ही मुलाकात हो रही युद्ध के पहले, स्वयं राम जी पुष्पक विमान के पास गए, दंडवत प्रणाम कर रहे रावण को, क्यों, आचार्य आया है। और रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा जरा देखना, यशस्वी भवा विजयी भवा, आचार्य है, ये आचार का गुण है, यशस्वी भवा विजयी भवा। लक्ष्मण राम जी ने प्रणाम किया, बानरों ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, इधर शिवलिंग की विधिवत स्थापना हुई, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में रावण से भगवान श्री राम ने कहा, महापंडित आचार्य रावण से भगवान श्री राम ने कहा, हे आचार्य हम आपको दक्षिणा क्या दें। रावण बोला तुम दोगे ही क्या, वनवासी हो, कुछ है तुम में जो दोगे। घर से वैसे ही निकल आए, तीन जन आए थे दो बचे, अब क्या दोगे, अब ऐसे भी हमको क्या दोगे। आचार्य कोई साधारण थोड़ी है, तुम्हारे यहां तो एक कनक भवन है, हमारे यहां तो लंका ही सोने की, तुम्हारे यहां तो एक ही महल सोने का, इधर तो पूरी लंका ही सोने की, आचार्य को दोगे क्या। भगवान श्री राम जी बोले, हे आचार्य शास्त्र नीति कहती, वेद नीति कहती, अनुष्ठान नीति कहती कि आचार्य को अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो यजमान को फल नहीं मिलता। एक बात बताओ, ये शिवलिंग की स्थापना तुमने की क्यों। राम जी बोले, लंका के राजा को हराने के लिए। रावण बोला बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, अगर ऐसी बात है अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा तो अब हम और तो राम कुछ हम पाना नहीं चाहते, पर यदि तुम देना चाहते तो हे रघुनंदन राम हम तुमसे यही मांगना चाहते, आज जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमको देखते ही तुम्हारी माधुर्यमय मूर्ति के विग्रह को देखकर, तुम्हारे लावण्यमय स्वरूप को देखकर, तुम्हारी अलकावली घुंघराली लटे लटकों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी सौम्यता को देखकर, तुम्हारे नीलांबर स्वरूप को देखकर, तुम्हारे धवल देह को देखकर, तुम्हारी जटाओं को देखकर, तुम्हारे कंधे पर पड़े हुए तीर तरकस को देखकर, हे रघुनंदन राम हमको शत्रुता का भाव खत्म हो रहा, राम दक्षिणा में देना ही है तो हमें यही दक्षिणा में दो कि जब तुम लंका में आओ तो तुमसे शत्रुता का भाव खत्म ना हो, वो बना रहे, ये हमको चाहिए। भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए, धन्य है आचार्य पंडित रावण, धन्य है धन्य है। हमारे प्रभु राम इतने सौम्यमय है, इतने सरल है, इतने प्यारे हैं, मेरे प्रिय जनों एक बार इनको तुम देख लोगे जगत तुम्हें अपने आप फीका लगेगा, जगत अच्छा नहीं लगेगा, रघुनाथ जी ही केवल अच्छे लगेंगे। नील सरोरव, नील सरोरव नील मणि, नील नील धर श्याम, भगवान इतने अद्भुत हैं, इनको एक बार देख लोगे तो वही गीत गाओगे, ये दिल तुम

और सच भी यही है, जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता, जिसका परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता, जिसका केवल भगवान के प्रति ही नहीं, हमारे संत महात्मा तो कहते किसी भी महापुरुष के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, संत के प्रति, परमात्मा के प्रति जब समर्पण हो जाता तो सच यही है। जैसे हम अपनी ही मन की बात कहें, हमको दो जगह से ज्यादा अच्छा, एक यहाँ आए तो गुरु की सानिध्यता, एक बागेश्वर धाम। मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता, कहीं चाहे जहां घूमे आए बार बार मन में आता वहीं चले जाएं, अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है मेरे पागलो। ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना और भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा। वस्तुएं जीने के लिए रखोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैरागी हो जाओगे, वस्तुएं जीने के लिए रखोगे लेकिन उनमें आनंद नहीं आएगा, आनंद तो भगवान के भजन में ही किसमें आएगा, बोलो बोलो बोलो बोलो, भगवान के भजन में ही आनंद आएगा। पूरे भारत के हम संपन्न व्यक्तियों से यही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें जो भी मिला भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो, सेवा करो। देखा नहीं तुमने बागेश्वर परिवार यहां लंगर चलवा रहा, देखा कितना अद्भुत कार्य चल रहा, अभी रास्ते में आ रहे थे, कोई भंडारा चल रहा, कोई लंगर करा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। इसलिए मेरे पागलो, धन को साधन बनाओ धर्म का, और धन को साधन बनाकर ऐसे मत जियो के हम मालिक हैं, मालिक तो परमात्मा है, भगवान के अलावा कोई मालिक नहीं, इस जगत का एक ही मालिक है परमात्मा। और हम लोगों का तो ठीक है, आना जाना है, जितने दिन का जीवन है बहुत मस्ती के साथ जियो। हाँ, तुम यदि भक्त हो तो हम वैष्णवों को कहेंगे भगवान एक दिन में नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिलता, एक दिन में नहीं मिलता पर एक दिन जरूर मिलता। इसलिए मेरे पागल, अभिमान में भर कर नहीं, भगवान के भाव में भर करके जियो, भक्ति में भर करके जियो, भगवान की भक्ति में भर करके जियोगे। हम इतना, अब आप पहाड़ी पर्वत के बीचों में यहाँ के जीवनों जीवन शैली देखो कितनी विचित्र है, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, गांव है, उनके मकान है, छह महीना यहाँ रहते, छह महीने पांडुकेश्वर चले जाते, फिर भी जीते हैं। और इन महात्माओं को देखो, कुछ भी नहीं है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही, और तुम लोग क्या क्या नहीं है, और ऐसे बैठे जैसे पिटके बैठे हो। ये देखो महात्मा क्या चश्मा लगा है, आनंद है फकीरी का, बम भोले, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र। अब बताओ, इन पे खुद की झोपड़ी नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे, और तुम महलों में रह के भी टेंशन में, बताओ तुम पागल हो कि ये पागल, कौन पागल है? ये फाइनल है कि तुम पागल हो। हाँ, सब कुछ होते हुए भी टेंशन में हो, इधर देखो कुछ ना होते हुए भी हाँ फकीरी में जी रहे। कबीर दास का बड़ा प्यारा गीत, कबीर कहते बाबा कबीर की बात,

0: शिव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है।

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, तेल की बौछार के बीच कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान, दिखा रोमांचक मुकाबला। गया जी में पितृपक्ष मेले की तैयारियां शुरू हुई, देवघाट पर माता सीता के पिंडदान की मिथिला पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश की बम्पर कमाई, 30 दिन में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार, 2 करोड़ में बनी है फिल्म।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रनों पर सिमटी, टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक, टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत, 6 पॉइंट के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके, दीप्ति शर्मा को मिली 2 सफलता।

0: हरमनप्रीत कौर टी20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कैप्टन बनी। 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच होगा। गणेश आगमन में अब सिर्फ 8 दिन बाकी। मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मठ पिंपल गांव में मूर्तियों पर रंग बिरंगी और फिनिशिंग का काम तेज है। अब अगली पीढ़ी संभाल रही है 3 पीढ़ियों से चला आ रहा परिवार का कारोबार। इस बार राधा कृष्ण भोलेनाथ और मयूर आसन जैसे नए डिजाइन तैयार किए गए हैं। इनमें भोलेनाथ पैटर्न की मूर्तियां भक्तों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं। जालना में छोटे से लेकर 13.5 फीट तक की गणेश मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियों की कीमत करीब 4,000 से शुरू होकर 50,000 रुपए तक है। दाम बढ़ने के बावजूद बप्पा की मूर्तियों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब तक करीब 95% मूर्तियां बुक हो चुकी हैं। आगरमालवा में गणेश चतुर्थी की तैयारी तेज। कारीगर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे। गणेश प्रतिमाओं की सफाई और टचिंग के बाद रंग रोगन किया जा रहा है। मुकुट हार और कपड़ों को भी आकर्षक रंगों से सजाया जा रहा है। इस बार शेषनाग और डमरू गणेश की मांग ज्यादा है। भगवान शिव के साथ गणेश की प्रतिमाएं भी लोगों को पसंद आ रही हैं। आगरमालवा में 2 इंच से लेकर 10-12 फीट तक की प्रतिमाएं बन रही हैं। इनकी सप्लाई आसपास के जिलों के साथ राजस्थान तक हो रही है। गणेश प्रतिमाओं में दिख रही है अलग अलग झलक। कहीं गणेश जी रथ पर सवार हैं तो कहीं शेर के साथ नजर आ रहे हैं। वृंदावन में अनोखा लठ मेला आयोजित। पहलवानों ने दिखाया दमखम। 50 फीट ऊंचे चिकने लठे पर चढ़ने पर रोमांचक मुकाबला। लठे पर चढ़े पहलवान तेल की बौछार से बढ़ी चुनौती। पहलवानों के जौहर देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान। तेल मिश्रित पानी की बौछार से पहलवानों को रोकते रहे सेवक। करीब 40 मिनट तक चला लठे पर चढ़ने का रोमांच। कड़ी मशक्कत के बाद मचान तक पहुंचे पहलवान। ठाकुर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। नंदोत्सव में दिखी करीब 2.5 साल पुरानी परंपरा। गोकुल में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। नंद के घर आनंद भयो के जयकारों से गलियां गूंज उठी। नंद भवन से बालकृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई। गलियों में भक्तों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। नंदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे। बैंड बाजों और भजनों के बीच पूरा गोकुल कृष्णमय नजर आया। बाल श्री कृष्ण का डोला गोकुल की गलियों से होता हुआ नंद चौक पहुंचा। यहां भजन कीर्तन और जयकारों के बीच उत्सव का रंग और चढ़ गया। गोकुल में नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं पर छींची और उपहार लुटाए गए तो वहीं मिठाई और खिलौने पाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखा। भुवनेश्वर में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। मंदिर में लड्डू गोपाल को पालने में बिठाकर झुलाया गया। जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है नंदोत्सव। गौरांग सेवा फाउंडेशन की ओर से नंदोत्सव का भव्य आयोजन। भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ नंदोत्सव। श्रील प्रभुपाद का मनाया गया 130वां प्राकट्य दिवस। व्यास पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु हरी कथा में प्रभुपाद की महिमा का बखान किया गया। महाभिषेक से निखरी श्रील प्रभुपाद की प्रतिमा गूंजा हरे कृष्ण महामंत्र का जय घोष। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखी श्रद्धालु। कलाकारों ने भजन कीर्तन की शानदार प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। गोविंदाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में गोविंदा रे गोपाला के जयकारों से गूंजी माया नगरी। दादर में महिला गोविंदा पथक ने 50 फीट ऊंची दही हांडी 5 मिनट में फोड़ी। मुंबई और ठाणे में इस बार दही हांडी प्रतियोगिताओं में भारी भरकम इनाम घोषित किए गए। गोविंदा पथकों को 51 लाख से 81 लाख रुपए तक का मिला इनाम। गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर आसमान छूती। मटकी फोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने अपनी पसंदीदा टोली का बढ़ाया जोश। मुंबई के मागठाणे में दही हांडी पथकों ने 9 मानव पिरामिड तक बनाया, जबकि दही हांडी 10 मानव पिरामिड की ऊंचाई पर बनाई गई है। ठाणे में दही हांडी का जोश चरम पर पहुंचा, 200 से ज्यादा गोविंदा टोलियां पहुंची, ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने की जोरदार तैयारी की गई। ठाणे की दही हांडी सिर्फ गोविंदाओं ही नहीं सितारों के लिए भी खास है, गोविंदा सुनील शेट्टी संजय दत्त ने लूटी महफिल। दही हांडी अब सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं, महिला गोविंदा टीमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए हेलमेट हार्नेस और बीमा जैसे इंतजामों पर जोर है। ठाणे में स्वामी प्रतिष्ठान के दही हांडी पर इस बार 71 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पंच पखाड़ी और हीरा नंदानी में गोविंदा पथक दिख रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। ठाणे में दही हांडी की परंपरा कई दशकों पुरानी है, 2008 में ठाणे के वर्तक नगर में देश का पहला 9-स्तरीय मानव पिरामिड भी बना था। गया जी में पितृपक्ष मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लाखों श्रद्धालु यहां पिंडदान करने पहुंचेंगे। गया जी की दीवारों पर अब धर्म और इतिहास की तस्वीरें नजर आएंगी, प्रशासन पेंट द सिटी अभियान से शहर को खास अंदाज में सजा रहा है। देवघाट और विष्णुपाद मंदिर इलाके में मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही है, इन तस्वीरों में पिंडदान से जुड़ी धार्मिक कहानियां दिखाई जा रही हैं। देवघाट की दीवार पर माता सीता के पिंडदान की तस्वीर बनाई गई है, पेंटिंग के अक्षयवट को साक्षी बनाकर सीता की कथा दिखाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की तारीफ की, इन खूबसूरत तस्वीरों से श्रद्धालुओं को गया में खास धार्मिक माहौल मिलेगा। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, गया जी में आयोजित पासिंग आउट परेड में दिखा जवानों का जोश। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की दूसरी पासिंग आउट परेड, 35 महिला अफसर भी शामिल। पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपल्स आर्मी के अधिकारी शामिल हुए, समारोह के दौरान सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति की धुनों और सैन्य मार्च की शानदार प्रस्तुतियां दी। ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को दिए गए मेडल, परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर ने किया सम्मानित। अफसर कैडेट्स ने पेश किया शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का शानदार नजारा, दर्शकों ने दिखा रोमांच। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीर साझा की, बैरबी सेरांग रेल लाइन का दिखा भव्य ड्रोन नजारा। कुतुब मीनार से ऊंचा बना है रेल पुल, 114 मीटर है ऊंचाई पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक वीडियो सामने आई। पुंछ के मेंढर सेक्टर में आर्मी स्कूल के रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया, सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब, युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंजाकोट सरकारी उच्च विद्यालय जला रहा शिक्षा की ज्योत, सीमावर्ती छात्रों के लिए आशा की नई किरण। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी छात्र हिस्सा ले रहे हैं, खास बात यह है कि बच्चियों की तादाद ज्यादा है। चंडीगढ़ में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एंटी ड्रग कैंपेन में हिस्सा लिया, युवाओं से की नशा मुक्त होने की अपील। सुखना लेक के पास आयोजित किया गया वॉकथॉन, हजारों युवाओं ने निकाली यात्रा। राज्यपाल ने कहा गुरुओं की भूमि के लोग हर बुराई से लड़ना जानते हैं, मौके पर कॉमनवेल्थ गोल्ड विजेता खिलाड़ी यश कीरत भी मौजूद रही। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग हुई, आज भी तेज बारिश की संभावना। भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया, यूपी बिहार के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की भी संभावना। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 30 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट पर बनी है फिल्म हनुमान अंश, फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना ज्यादा कमाई की, थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री की गई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री हनुमान अंश की टीम को बधाई दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका देखने को मिला, फिल्म ने 2 ही दिन में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री की, ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी मिर्जापुर द मूवी, धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 में हैं टॉप 3 फिल्में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड के टीजर आउट हुआ, रावण कुमार, मलाइका वसुपाल, अनुष्का लोहार मुख्य भूमिका में, फिल्म 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। आनंद देवरकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, ट्रेलर में दिखी कॉलेज लाइफ, दोस्ती और रोमांस की झलक, 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से तैयार की गई द्वारका प्रोजेक्ट, समुद्र के भीतर मौजूद रहस्यमयी द्वारका नगरी बनेगी कहानी की अहम हिस्सा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल पूरा हुआ, डॉक्टर के किरदार में दिखेंगे रजनीकांत, स्टाइलिश डॉक्टर लुक ने बढ़ाया फिल्म का बज। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओने कदिन पोर की एंट्री, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा जीएनटी स्पेशल सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात कर रहे हैं शनि देव के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति शनि को कैसे प्रसन्न करेगा। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने की तीन विधियां हैं। अपने आचरण से यानी व्यवहार से, रत्न धारण करने से और मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्न में जलीय रत्न या वायु तत्व के रत्न धारण करने से शनि की कृपा मिलती है। शनि देव के लिए मंत्र जप करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शनि की समस्याएं जीवन में आती हैं और समस्या के हिसाब से शनि देव के अलग अलग मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और इसके साथ आप मंत्रों का जप करें तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। देखिए, हर स्थिति में शनि देव के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंत्र जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है? अगर कुंडली में शनि के कारण दुर्घटनाओं के योग हों या प्राण संकट के योग हों तो शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, कदम कदम पर संघर्ष बढ़ रहा हो, तब शनि देव के मंत्र का जप करना चाहिए। आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो आपका है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है तब भी शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि ढैया और साढ़े साती का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। देखिए, शनिदेव को विशेष स्थितियों में आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से, कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप की विधि क्या है? देखिए, ऐसा कभी मत समझिए कि केवल पुरुष शनि देव का मंत्र पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शनिदेव के मंत्रों का जप बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करें या पूर्व की तरफ चेहरा करके भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्र जपने का सही समय संध्या काल को होगा, सूर्यास्त के बाद अगर आप शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, या अगर तांत्रिक मंत्र है, विशेष पूजा है, विशेष अनुष्ठान है, तो आप मध्य रात्रि में भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन रक्त चंदन की माला से शनिदेव के मंत्र का जप किया जा सकता है। अपने घर में भूल कर भी शनिदेव का चित्र मत लगाइए, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनिदेव को याद करके ही मंत्र का जप करिएगा। और शनिदेव का मंत्र जपने जा रहे हैं तो मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद कर लीजिएगा, तब मंत्र का जप करिएगा, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप न करे, ऐसा अत्यंत विशेष स्थितियों में किया जाता है, सामान्य स्थिति में ऐसा न करें। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी नीला वस्त्र पहनकर शनि के मंत्र का जप किया जाए। अब आपको बताते हैं शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाएगा। पहला है शनिदेव का वैदिक मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप रोज शाम को कर सकता है 108 बार। ऐसा करने से शनि कभी भी नाराज नहीं होते और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती। दूसरा है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, नकारात्मक है, तब इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब शनिदेव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीडाम हरतु मे शनि, मंदचारः प्रसन्नात्मा पीडाम हरतु मे शनि। साढ़े साती और ढैया के समय जब आपका कष्ट बढ़ रहा हो, जब आपकी पीड़ा बढ़ रही हो, तब इस मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। शनि अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस मंत्र का जप रोज शाम को करें। अगर लगातार 108 दिन तक करें आपको बहुत लाभ होगा। अगर शनि की मारक दशा हो तो शनि देव के लिए कम से कम 51,000 मंत्र का जप करवाइए और वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा, ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। 51,000 इस मंत्र का जप अगर आप करवाएं, शनि की मारक स्थिति से आप बच जाएंगे। शनि देव की ऐसी मूर्ति का दर्शन या पूजन ना करें जिस मूर्ति में उनकी आंखें हों, अन्यथा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको इसकी वजह से समस्या हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से चीजें गायब होने लगती हैं, कभी कपड़ा गायब हो गया, कभी पैसा गायब हो गया, कभी बर्तन गायब हो गए और समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे गायब हो रही हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक छोटे से काले कपड़े में 1-2 रुपए के 2-3 सिक्के डालकर बांध करके पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए और 1 महीने बाद सिक्कों को दान कर दीजिएगा, दूसरे सिक्के बांधकर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जला के प्रार्थना करिए और अगर दोनों समय पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर 2-2 मिनट ही सही, 5-5 मिनट ही सही प्रार्थना या उपासना करें तो घर की तरंगें शुभ होंगी और घर से चीजों का गायब होना रुक जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचेस में कप्तानी करने का बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, तेल की बौछार के बीच कंधों पर सवार होकर लट्ठे पर चढ़े पहलवान, दिखा रोमांचक मुकाबला। गया जी में पितृपक्ष मेले की तैयारियां शुरू। देवघाट पर माता सीता के पिंडदान की मिथिला पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान वंश की बंपर कमाई 30 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। 2 करोड़ में बनी है फिल्म।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस खास शो में हम पंडित जी से जानेंगे कि शनि के ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं और इन मंत्रों को जाप करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में।

0: दर्शन या पूजन न करें जिस मूर्ति में उनकी आंखें हों, अन्यथा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको इसकी वजह से समस्या हो सकती है।
1: और चलिए अब सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे 6 सितंबर 2026 यानी रविवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:29 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शनि को प्रसन्न करने के उपाय क्या कुछ होते हैं।
0: जी, हम आज बात कर रहे हैं शनि देव के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति शनि को कैसे प्रसन्न करेगा। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं। अपने आचरण से यानी व्यवहार से, रत्न धारण करने से और मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्न में जलीय रत्न या वायु तत्व के रत्न धारण करने से शनि की कृपा मिलती है। शनि देव के लिए मंत्र जप करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनि देव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शनि की समस्याएं जीवन में आती हैं और समस्या के हिसाब से शनि देव के अलग अलग मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और इसके साथ आप मंत्रों का जप करें तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, करियर की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि के लिए मंत्र जाप करना सबसे ज्यादा अच्छा कब होता है।
0: देखिए, हर स्थिति में शनि देव के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंत्र जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर कुंडली में शनि के कारण दुर्घटनाओं के योग हों या प्राण संकट के योग हों तो शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, कदम कदम पर संघर्ष बढ़ रहा हो, तब शनि देव के मंत्र का जप करना चाहिए। आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो आपका है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तब भी शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि ढैया और 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े।
1: और चलिए अब जान लेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न कविता वाधवानी जी ने हमें लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 नवंबर 2002, 10:48 रात को, रायपुर छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के करियर की स्थिति कैसी रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, और कुछ समय पहले इन्होंने एक उपाय सुना था, एक कटोरी में लौंग रखी हुई है तो अब उसका क्या करना चाहिए। कविता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और धनु राशि की, महादशा सूर्य की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सामान्य करियर इनका अभी भी शुरू हो सकता है नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन बहुत अच्छा करियर, मनचाही सफलता मई 2027 के बाद मिलेगी। 2027 के अंत तक इनको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करवाएं और इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। जो लौंग कटोरी में रखी थी, एक महीना बीत जाने के बाद उस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और दोबारा अपनी मनोकामना के लिए अगले एक महीने तक लौंग कटोरी में डालकर रख सकती हैं।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका होगा?
0: जी,

0: सागर जी ने हमें दिल्ली से लिखा है, अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 27 दिसंबर 1995, 11:18 सवेरे, नई दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी को मातृत्व सुख कब मिलेगा, मेरी बेटी माता कब बन पाएगी, कब संतान होगी। प्रेम सागर जी, आपकी पुत्री की कुंडली है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी बेटी के कंसीव होने का समय फिलहाल दिखाई दे रहा है और ये समय जून 2027 तक चलेगा। आपकी बेटी की कुंडली में थोड़ी हार्मोन्स की समस्या दिखाई दे रही है जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। आपकी बेटी को 2027 में संतान की प्राप्ति होगी, 2027 में इनको संतान का सुख मिल पाएगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ेंगी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः।
1: तो शनि के मंत्र के बारे में हमने जान लिया, पंडित जी से ये जान लेंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप की विधि क्या होती है, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए।
0: देखिए,

0: इसके लिए आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप की विधि क्या है? देखिए, ऐसा कभी मत समझिए कि केवल पुरुष शनिदेव का मंत्र पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शनिदेव के मंत्रों का जप बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करें या पूर्व की तरफ चेहरा करके भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्र जपने का सही समय संध्या काल को होगा, सूर्यास्त के बाद। अगर आप शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। या अगर तांत्रिक मंत्र है, विशेष पूजा है, विशेष अनुष्ठान है, तो आप मध्य रात्रि में भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन, रक्त चंदन की माला से शनिदेव के मंत्र का जप किया जा सकता है। अपने घर में भूल कर भी शनिदेव का चित्र मत लगाइए, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनिदेव को याद करके ही मंत्र का जप करिएगा। और शनिदेव का मंत्र जपने जा रहे हैं तो मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद कर लीजिएगा, तब मंत्र का जप करिएगा, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप न करे, ऐसा अत्यंत विशेष स्थितियों में किया जाता है। सामान्य स्थिति में ऐसा न करें। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी नीला वस्त्र पहनकर शनि के मंत्र का जप किया जाए।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है,

0: और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जान लेंगे कि शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाना चाहिए।
0: अब आपको बताते हैं शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाएगा। पहला है शनिदेव का वैदिक मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप रोज शाम को कर सकता है 108 बार। ऐसा करने से शनि कभी भी नाराज नहीं होते और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती। दूसरा है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतर दशा है, नकारात्मक है, तब इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब शनि देव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। साढ़े साती और ढैया के समय जब आपका कष्ट बढ़ रहा हो, जब आपकी पीड़ा बढ़ रही हो, तब इस मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। शनि अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस मंत्र का जप रोज शाम को करें। अगर लगातार 108 दिन तक करें आपको बहुत लाभ होगा। अगर शनि की मारक दशा हो तो शनि देव के लिए कम से कम 51,000 मंत्र का जप करवाइए और वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। 51,000 इस मंत्र का जप अगर आप करवाएं

0: मारक स्थिति से आप बच जाएंगे।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्या में आपके सुधार होगा। धन आसानी से मिल पाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ

0: बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्या से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आपके तीसरे सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आप तीसरा प्रश्न आज किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न राहुल नामदेव ने हमें लिखा है, सिवनी मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 9 अप्रैल 1991 का जन्म है, 2 बजे मध्य रात्रि में सिवनी मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कैसा होगा, मेरी इच्छा से होगा या नहीं होगा, विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह के योग बनते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी कामना पूरी होगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी, आज चौथा प्रश्न किसका रहेगा?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न आलोक राज ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। 23 अगस्त 1991 का जन्म है, 5:05 शाम को, छपरा बिहार। ये कह रहे हैं कि मैंने BCA किया है, अब आगे मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं कर पा रहा हूं, कोडिंग मेरे लिए कठिन है, तो मैं क्या करूं। आलोक, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, कोडिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं इस वजह से दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएं या सरल कोडिंग करना सीख लें, तो इन क्षेत्रों में अच्छा करियर बना सकते हैं। और आपके करियर का बहुत अच्छा समय अगस्त 2027 के बाद शुरू हो रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन लोगों की ओर जिनका जन्मदिन 6 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 6 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में इस साल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि धन की स्थिति ठीक रहेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है? देखिए, माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता का धन और उनकी प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे ही उनके कर्म भी मिलते हैं। इसीलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने कर्म ठीक रखने चाहिए।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से ये जान लेने का कि 6 सितंबर 2026 का यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, प्रार्थना करिए, घर में सुख शांति आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में और पंडित जी से अब जानने का वक्त हो चला है आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस धातु का, किस मेटल का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कर्क। आपको चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक रहेंगे।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पंडित जी से आज के महा उपाय के बारे में।
0: जी, बहुत बार ऐसा होता है कि घर से चीजें गायब होने लगती हैं, कभी कपड़ा गायब हो गया, कभी पैसा गायब हो गया, कभी बर्तन गायब हो गए और समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे गायब हो रही हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक छोटे से काले कपड़े में 1 रुपए 2 रुपए के 2-3 सिक्के डालकर बांध करके पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए और 1 महीने बाद सिक्कों को दान कर दीजिएगा, दूसरे सिक्के बांध कर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जला के प्रार्थना करिए और अगर दोनों समय पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर 2-2 मिनट ही सही, 5-5 मिनट ही सही प्रार्थना या उपासना करें तो घर की तरंगें शुभ होंगी और घर से चीजों का गायब होना रुक जाएगा।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चाइना के पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाना कभी बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। कहीं खड़ी चट्टाने, कहीं फिसलन भरे रास्ते और कई घंटे की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन अब इसी सफर को आसान बना दिया है एक अनोखी स्काई स्कूल बस ने। यूनान प्रांत की गहरी घाटी में बने ये विशाल एलिवेटर बच्चों को मिनटों में पहाड़ों की चोटी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे एक लिफ्ट ने सिर्फ बच्चों का सफर नहीं बदला बल्कि पूरे गाँव की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है।
2: ये कोई आम लिफ्ट नहीं बल्कि पहाड़ के सीने को चीरती स्काई स्कूल बस है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में निझुए नदी की गहरी घाटी से पहाड़ की चोटी तक जाने वाली ये दो एलिवेटर बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता आसान कर रही हैं। जहां पहले स्कूल पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, अब यही सफर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
3: It turns what used to take hours into a journey of less than a minute, and it saves us so much energy so we can focus and calm down to study.
2: 268 और 288 मीटर ऊंचे ये एलिवेटर घाटी में बसे निझुए गांव को पहाड़ की चोटी पर बने ग्वांगशाई प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हैं। 500 मीटर से ज्यादा का ऊंचा अंतर जिसे पार करने के लिए बच्चों को कभी खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, कीचड़, खाई और फिसलन, हर कदम जोखिम भरा था।
4: The old trail was really hard to walk. There was mud and moss, so it was very slippery. Now with the elevator, we save about 3 hours on the journey.
2: लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचने की नहीं है। 2022 में घाटी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। एलिवेटर और केबल कार ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा तो पर्यटन से कमाई के नए मौके भी खुले। 36 साल के चेन ग्वांगपिंग शहर से लौटे और अब यहां होम स्टे चला रहे हैं।
5: Back then, we mainly grew a little ginger, and at most, we could make 5,000 to 6,000 yuan a year. Now, we can earn at least 300,000 to 400,000 yuan in gross income a year. Life has really changed dramatically.
2: इन लिफ्ट ने बच्चों के लिए रास्ता छोटा किया, तो पर्यटन ने गांव की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। स्थानीय प्रशासन अब खाली पड़े घरों और संसाधनों को गेस्ट हाउस में बदलने पर जोर दे रहे हैं।
6: We want to make the best possible use of idle resources and vacant houses, turning villagers' homes into goose houses and these untapped resources into a major source of income for local residents.
2: निजुआ गांव में पहाड़ वही हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों की जिंदगी बदल रही है। जहां कभी स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल चढ़ाई थी, आज वही रास्ता स्काई स्कूल बस से मिनटों का सफर है। और यही बदलता सफर बता रहा है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रास्ते नहीं बनाता, लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: न स्टीयरिंग व्हील, न पैडल और न ड्राइवर, फिर भी सड़क पर दौड़ती हुई कार। दरअसल टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला ने अपने उस साइबर कैब की राइड शुरू कर दी है जिसे कंपनी ड्राइवरलेस भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बता रही है। 2 लोगों के बैठने की जगह वाली ये कार सिर्फ दिखने में ही अनोखी नहीं है बल्कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत भी नहीं है। कार नहीं, टेस्ला के मुताबिक ये ड्राइवरलेस भविष्य की झलक है। गोल्डन रंग की ये 2 सीटर साइबर कैब ऑस्टिन की सड़कों पर उतर चुकी है और सबसे खास बात, इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, पैडल नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, यात्री बैठता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर कार बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है। कैमरा कार के अंदर जाता है जहां सामने ड्राइवर की जगह नहीं बल्कि सिर्फ 2 यात्रियों के लिए जगह है। यानी टेस्ला की सोच साफ है, कार को चलाने के लिए इंसान नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए और इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग यात्रियों ने किया। दिव्यांग यात्री भी साइबर कैब में बैठा, यानी टेस्ला जिस भविष्य की तस्वीर दिखा रही है उसमें सफर सिर्फ ड्राइविंग से आजादी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी का नया रास्ता हो सकता है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्टिन की सड़कों पर जैसे जैसे साइबर कैब दौड़ी लोगों की निगाहें भी इस पर टिक गईं। कोई सड़क किनारे खड़ा होकर इसे देख रहा है तो कोई इसकी राइड का इंतजार कर रहा है। भविष्य की कार अब सिर्फ शोकेस में नहीं सड़क पर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने ऑस्टिन में ड्राइवरलेस राइड का प्रयोग किया है। कंपनी पहले से ऑटोनॉमस मॉडल वाई के साथ सीमित रोबो टैक्सी सर्विस चला रही है। कुछ गाड़ियों में इंसानी सेफ्टी मॉनिटर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर कैब टेस्ला की उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। कंपनी चाहती है कि आने वाले वक्त में यही बिना स्टेयरिंग और पेडल वाली साइबर कैब एक बड़े ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी नेटवर्क की पहचान बने। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार है सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन साइबर कैब को लेकर जांच कर रही है क्योंकि सड़क पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कार सिर्फ इनोवेशन नहीं सेफ्टी की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। टेस्ला के लिए ये सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं, ये उसके भविष्य की परीक्षा है क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस चाइना समेत दुनिया भर की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और ऐसे में ड्राइवरलेस कारों का सपना टेस्ला की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। कल तक कार चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी था, आज टेस्ला कह रही है कल कार को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। ऑस्टिन की सड़क पर दौड़ती ये साइबर कैब दरअसल सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक ऐसे भविष्य का ट्रायल है जहां इंसान कार नहीं चलाएगा, कार इंसान को चलाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये भविष्य सुरक्षित भी है? क्योंकि ऑस्टिन की सड़कें अब इस सवाल का जवाब देने वाली टेस्ट लैब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे, नीचे सदियों पुराना शहर और सूर्योदय के साथ शुरू हुआ एक ऐसा नजारा जिसने पूरे हार्डे क्रालोव को आसमान को पूरी तरह से मजबूर कर दिया देखने पर। चेक रिपब्लिक के इस मिडिवल शहर में एक साथ दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने उड़ान भरी तो आसमान का रंग बदल गया। मौका था बलून स्काई फिएस्टा का, जहां इस बार चार देशों के 51 गुब्बारे पहुंचे। देखिए कैसे आग की छोटी सी लपट ने इन विशाल गुब्बारे को आसमान छूने की ताकत दे दी। एक छोटी सी आग और देखते ही देखते कपड़े का ये विशाल गुब्बारा हवा से भरकर आसमान छूने के लिए तैयार। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण और जमीन से ऊपर उठते रंगों का एक पूरा कारवां। नीचे खड़ी भीड़ की निगाहें आसमान पर और फिर एक एक कर बलून ने जमीन छोड़नी शुरू की। हार्डे क्रालोवे के ऐतिहासिक शहर के ऊपर दर्जनों रंगीन गुब्बारे ऐसे तैरने लगे मानो आसमान ने खुद रंगों का त्योहार मना लिया हो। ऊपर से नजारा और भी शानदार, एक हॉट एयर बलून से दूसरे हॉट एयर बलून तक हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग। लेकिन इस खूबसूरत उड़ान के पीछे सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि सालों पुरानी बलूनिंग की परंपरा भी है।
7: Tady na této tý akci jsem už po druhý, on je to taky druhý ročník a mám to rád tady v Hradci, protože naše společnost tady požádala před 20 lety balonový nebe první a já jsem rád, že přišli pokračovatelé, kteří v tom pokračují a vlastně to název balonové nebe je stejné, jako jsme měli my tenkrát před těma 20 lety. A mně se tady v Hradci líbí, Hrad je nádherné město a je tady spoustu úžasných pilotů a balonářů, s kterými se rád potkávám.
1: कुछ देर पहले तक यही बलून जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग इन्हें फैलाते हैं, हवा भरते हैं, बर्नर आग उगलता है और फिर ये विशाल गुब्बारे धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगते हैं। इस साल चारों देशों से आए 51 बलून इस इंटरनेशनल फिएस्टा का हिस्सा हैं। फेस्टिवल का ये 8वां साल है और इस बार इसकी वापसी हुई है पुराने नाम के साथ बलून स्काई, जिसकी इस इलाके में बलूनिंग की कहानी करीब दो दशक पुरानी है।
8: Letu balonové fiesty 8. ročníku ve východních Čechách. Podruhé startujeme z Hradce Králové pod novým názvem Balonové nebe. Dneska startuje 51 balónů ze 4 zemí. Jedná se o mezinárodní fiestu, největší v České republice v tomto roce. A startujeme z Hradce Králové, čekáme, že poletíme čistě na východ. Budeme přistávat se západem slunce někde v oblasti Třebechovic pod Hradcem.
1: Hava ke saath udte ye balloon शहर से दूर निकलते जाते हैं। नीचे मिडिवल हार्डेक क्रालोवो और ऊपर खुला आसमान। हर बलून अपनी अलग दिशा में, लेकिन मंजिल एक, आसमान। और जब बलून जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचता है तो सूर्योदय का नजारा कुछ ऐसा होता है जो जमीन पर खड़े होकर शायद कभी महसूस नहीं किया जा सकता। नीचे पूरा शहर, ऊपर सूरज और बीच में खामोशी में तैरता एक बलून। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, उस एहसास का नाम है जब इंसान कुछ देर के लिए जमीन की दुनिया पीछे छोड़ देता है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर, बस हवा, आसमान और रंगों से भरे ये विशाल हॉट एयर बलून। हार्डे क्रोलोवे में आज आसमान सिर्फ नीला नहीं था, वो रंगीन था, रोमांचक था और पूरी तरह ऊपर और ऊपर आसमान की ओर था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार सिल्वर स्क्रीन पर, बाबा का दिव्य अवतार, हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा, धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: नेपाल में कुदरत का करिश्मा, 10 दिन बाद मलबे से सुरक्षित निकाली गई महिला, टनल से भी एक चीनी नागरिक का किया गया रेस्क्यू। गया स्थित OTA में 253 कैडेट्स बने सेना के अधिकारी, सेरेमनी में सजे कंधों पर सितारे, शपथ लेकर शुरू किया सैन्य सफर। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, तेल की बौछार के बीच कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान का रोमांचक मुकाबला। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचेस में कप्तानी करने का बनाया रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही।
2: सूरत में आज फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का आयोजन, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिट इंडिया संडे साइक्लोथॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया प्रेरित, नशा मुक्त युवा विकसित भारत रखी गई कार्यक्रम की थीम। साइक्लोथॉन से पहले जूम्बा डांस का किया गया आयोजन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम में हुए शामिल। फिट इंडिया सांडीज ऑन साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित, स्मृति चिन्ह के साथ दिया गया सर्टिफिकेट। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम से पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बड़ी संख्या में लोग रैली में हिस्सा ले रहे हैं। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में विशाल मैराथन रेस का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रेवाड़ी मैराथन के लिए भव्य तरीके से सजाया गया रूट, 91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन शुरू होने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को शपथ दिलाई, नशा मुक्ति के दूसरे अपराधों को लेकर भी सावधान रहने की अपील की। मैराथन रेस शुरू होने से पहले प्रतिभागियों पर बरसाए गए फूल, वंदे मातरम के जयकारों के साथ शुरू हुई दौड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 81 किलोमीटर की प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रनों पर सिमटी, टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक, टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत, 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके, दीप्ति शर्मा को मिली 2 सफलताएं। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कैप्टन बनी, 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच होगा। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, पहलवानों ने दिखाया दमखम, 50 फीट ऊंचे चिकने लठे पर चढ़ने का रोमांचक मुकाबला। लठे पर चढ़े पहलवान, तेल की बौछार से बढ़ी चुनौती, पहलवानों के जौहर देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान, तेल मिश्रित पानी की बौछार से पहलवानों को रोकते रहे सेवक। करीब 40 मिनट तक चला लठे पर चढ़ने का रोमांच, कड़ी मशक्कत के बाद मचान तक पहुंचे पहलवान। ठाकुर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, नंदोत्सव में दिखी करीब 2.25 साल पुरानी परंपरा। गोकुल में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली, नंद के घर आनंद भयो के जयकारों से गलियां गूंज उठी। नंद भवन से बाल श्री कृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई। गलियों में भक्तों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। नंदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे। बैंड बाजों और भजनों के बीच पूरा गोकुल कृष्णमय नजर आया। बाल कृष्ण का डोला गोकुल की गलियों से होता हुआ नंद चौक पहुंचा। यहां भजन कीर्तन और जयकारों के बीच उत्सव का रंग और चढ़ गया। गोकुल में नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं पर चीची और उपहार लुटाए गए। मिठाई और खिलौने पाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखा। भुवनेश्वर में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। मंदिर में लड्डू गोपाल को पालने में बिठाकर झुलाया गया। जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है नंदोत्सव। गौरांग सेवा फाउंडेशन की ओर से नंदोत्सव का भव्य आयोजन। भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ नंदोत्सव। श्रील प्रभुपाद का मनाया गया 130वां प्राकट्य दिवस। व्यास पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु हरि कथा में प्रभुपाद की महिमा का बखान किया गया। महाभिषेक से निखरी श्रील प्रभुपाद की प्रतिमा गूंजा। हरे कृष्ण महामंत्र का जय घोष। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखी श्रद्धालु। कलाकारों ने भजन कीर्तन की शानदार प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। गोविंदाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में गोविंदा रे गोपाला के जयकारों से गूंजी माया नगरी। दादर में महिला गोविंदा पथक ने 50 फीट ऊंची दही हांडी 5 मिनट में फोड़ी। मुंबई और ठाणे में इस बार दही हांडी प्रतियोगिताओं में भारी भरकम इनाम घोषित किए गए। गोविंदा पथकों को 51 लाख से 81 लाख रुपए तक का मिला इनाम। गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर आसमान छूती मटकी फोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने अपनी पसंदीदा टोली का बढ़ाया जोश। मुंबई के मागठाणे में दही हांडी पथकों ने 9 मानव पिरामिड तक बनाया, जबकि दही हांडी 10 मानव पिरामिड की ऊंचाई पर बनाई गई है। ठाणे में दही हांडी का जोश चरम पर पहुंचा। 200 से ज्यादा गोविंदा टोलियां पहुंची। ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने की जोरदार तैयारी की गई। ठाणे की दही हांडी सिर्फ गोविंदाओं ही नहीं सितारों के लिए भी खास है। गोविंदा सुनील शेट्टी संजय दत्त ने लूटी महफिल। दही हांडी अब सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं, महिला गोविंदा टीमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए हेलमेट हार्नेस और बीमा जैसे इंतजामों पर जोर है। ठाणे में स्वामी प्रतिष्ठान के दही हांडी पर इस बार 71 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पंच पखाड़ी और हीरा नंदानी में गोविंदा पथक दिख रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। ठाणे में दही हांडी की परंपरा कई दशकों पुरानी है। 2008 में ठाणे के वर्तक नगर में देश का पहला 9-स्तरीय मानव पिरामिड भी बना था। गया जी में पितृपक्ष मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लाखों श्रद्धालु यहां पिंडदान करने पहुंचेंगे। गया जी की दीवारों पर अब धर्म और इतिहास की तस्वीरें नजर आएंगी। प्रशासन पेंट द सिटी अभियान से शहर को खास अंदाज में सजा रहा है। देवघाट और विष्णुपाद मंदिर इलाके में मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही है। इन तस्वीरों में पिंडदान से जुड़ी धार्मिक कहानियां दिखाई जा रही हैं। देवघाट की दीवार पर माता सीता के पिंडदान की तस्वीर बनाई गई है। पेंटिंग के अक्षयवट को साक्षी बनाकर सीता की कथा दिखाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की तारीफ की। इन खूबसूरत तस्वीरों से श्रद्धालुओं को गया में खास धार्मिक माहौल मिलेगा। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी। गया जी में आयोजित पासिंग आउट परेड में दिखा जवानों का जोश। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की दूसरी पासिंग आउट परेड। 35 महिला अब सभी शामिल। पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपल्स आर्मी के अधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान सिंफनी बैंड ने देशभक्ति की धुनों और सैन्य मार्च की शानदार प्रस्तुतियां दी। ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को दिए गए मेडल। परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर ने किया सम्मानित। अफसर कैडेट्स ने पेश किया शक्ति साहस और युद्ध कौशल का शानदार नजारा। दर्शकों ने दिखा रोमांच। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीर साझा की। बैरबी सेरांग रेल लाइन का दिखा भव्य ड्रोन नजारा। कुतुब मीनार से ऊंचा बना है रेल पुल, 114 मीटर है ऊंचाई पुल और सुरंग से गुजरती ट्रेन की मनमोहक वीडियो सामने आई। पुंछ के मेंढर सेक्टर में आर्मी स्कूल के रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया, सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा स्किल हब, युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंजाकोट सरकारी उच्च विद्यालय जला रहा शिक्षा की ज्योत, सीमावर्ती छात्रों के लिए आशा की नई किरण। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी छात्र हिस्सा ले रहे हैं, खास बात यह है कि बच्चियों की तादाद ज्यादा है। चंडीगढ़ में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एंटी ड्रग कैंपेन में हिस्सा लिया, युवाओं से की नशा मुक्त होने की अपील। सुखना लेक के पास आयोजित किया गया वॉकथॉन, हजारों युवाओं ने निकाली यात्रा। राज्यपाल ने कहा गुरुओं की भूमि के लोग हर बुराई से लड़ना जानते हैं, मौके पर कॉमनवेल्थ गोल्ड विजेता खिलाड़ी यश कीरत भी मौजूद रही। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग हुई, आज भी तेज बारिश की संभावना। भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया, यूपी बिहार के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की भी संभावना। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 30 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट पर बनी है फिल्म हनुमान अंश, फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना ज्यादा कमाई की, थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री की गई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री हनुमान अंश की टीम को बधाई दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका देखने को मिला, फिल्म ने 2 ही दिन में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री की, ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी मिर्जापुर द मूवी, धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 में हैं टॉप 3 फिल्में। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड के टीजर आउट हुआ, रावण कुमार, मलाइका वसुपाल, अनुष्का लोहार मुख्य भूमिका में, फिल्म 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। आनंद देवरकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, ट्रेलर में दिखी कॉलेज लाइफ, दोस्ती और रोमांस की झलक, 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से तैयार की गई द्वारका प्रोजेक्ट, समुद्र के भीतर मौजूद रहस्यमय द्वारका नगरी बनेगी कहानी की अहम हिस्सा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल पूरा हुआ, डॉक्टर के किरदार में दिखेंगे रजनीकांत, स्टाइलिश डॉक्टर लुक ने बढ़ाया फिल्म का बज। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओने कदिन पोर की एंट्री, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। चाइना में भव्य मिड ऑटम गाला फेस्टिवल की तैयारी हुई तेज, हुआइन में गाला फेस्टिवल की शूटिंग शुरू हुई। झील के किनारे सजा शानदार मंच, पानी पर तैरेगा 80 मीटर का स्टेज, दिखेगा पूरा चांद का खूबसूरत नजारा। 18 मीटर का विशाल चांद तैयार किया गया, मंच पर घूमता हुआ नजर आएगा, चीनी संस्कृति की दिखेगी झलक। फ्लोटिंग स्टेज बनेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र, झील पर होंगी खास प्रस्तुतियां, ओपेरा और मॉडर्न पॉप का दिखेगा संगम। क्लासिक धुनों का भी दिखेगा नया अंदाज, मिलन और खुशी का संदेश देगा गाला, 25 सितंबर को दुनिया देखेगी भव्य उत्सव। नेपाल में आई आपदा के बाद से राहत बचाव का काम जारी, आपदा के 10 दिनों के बाद भी बचाई जा रही है लोगों की जान। लू हाई ताओ सुरंग में फंसे एक चीनी नागरिक की बचाई गई जान, डॉक्टर्स ने हाल जाना। नेपाल में तबाही के 10 दिन बाद 64 साल की महिला मलबे से मिली जिंदा, नुवाकोट में चंडिका श्रेष्ठ को उनके दबे हुए घर से किया गया रेस्क्यू। आरा मिटला बड़ा रेल हादसा, रेल पटरी पर दौड़ती महानंदा एक्सप्रेस के उतरे पहिए, सभी यात्री सुरक्षित। रेल के पहिए पटरी से उतरने के कारण 2.5 घंटे तक अपलाइन रही प्रभावित, तो वहीं तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। हुबेई में बने यांजी यांगची ब्रिज का 5 रातों तक चला लोड टेस्ट सफल रहा, अब पुल के जल्द ट्रैफिक के लिए खुलने की उम्मीद। 40-40 टन वजन वाले 180 ट्रकों को पुल के दोनों डेक पर खड़ा किया गया, यानी पुल पर कुल 7,200 टन का दबाव डाला गया। टेस्ट में पुल पर डाला गया कुल वजन 18 पूरी तरह से भरे बोइंग 747 विमानों के बराबर था। इस टेस्ट में पुल की मजबूती जांची गई। यांजी ब्रिज का मुख्य स्पैन 1,860 मीटर है, जो नदी के ऊपर बिना बीज के सहारे के बना है, और इसे दुनिया का पहला 4-मेन केबल सस्पेंशन ब्रिज बताया गया है। इस पुल में 2 अलग-अलग डेक बनाए गए हैं, ऊपर एक्सप्रेसवे चलेगा जबकि नीचे शहरी एक्सप्रेसवे से शहर का ट्रैफिक गुजरेगा। चाइना में बनाई गई बुजुर्गों को गिरने से होने वाली चोटों से बचाने के लिए एंटी फॉल एयरबैग जैकेट, बीजिंग में केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपो चाइना 2026 में प्रदर्शित। इस जैकेट में शरीर की गतिविधियां और मुद्राओं को ट्रैक करने के लिए लगे हैं 2 सेंसर, जो 0.15 सेकंड में एयरबैग खोल देता है, जिससे गिरने पर कुशन जैसा बचाव मिलता है। ब्राजील में ओजी ऑसबर्न प्रिंस ऑफ डार्कनेस भूल भुलैया लॉन्च हुई, यूनिवर्सल स्टूडियोज के हैलोवीन हॉरर नाइट्स अनुभव का हिस्सा है ये भूल भुलैया। भूल भुलैया के अलावा यहां टेरर ट्राम राइड और स्टंट शो द पर्ज डेंजर्स वाटर्स भी आकर्षण का केंद्र, 1 नवंबर तक चलेगा ये भूल भुलैया। वेनेजुएला में लोगों ने पिज्जा बनाने के हुनर का प्रदर्शन किया, जीतने वाले को वर्ल्ड पिज्जा चैंपियनशिप 2027 में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा इटली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार, हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा, धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
4: मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता, कई चाहे जहां घूमे आए, बार बार मन में आता वहीं चले जाएं, अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है, मेरे पागलो ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा।
5: टैलेंट किसी बड़े स्टेज का मोहताज नहीं होता, असली हुनर तो गांव की गलियों में भी खिलता है। इन बच्चों के जबरदस्त एनर्जी और चेहरे की प्यारी सी मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। गाने की धुन पर सभी बच्चे एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं, हर स्टेप में गजब का तालमेल है। तो वहीं बच्चों का अंदाज और एटीट्यूड भी कमाल का है, लोग इस डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीछे आ गया। ये कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स का शानदार कमाल है। बच्चों ने साझा लोड और फोर्स के बैलेंस को कुछ इस अंदाज में समझाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। जिस तरह से बच्चों ने अपने शरीर का संतुलन बनाया वो वाकई कमाल है। वीडियो देखकर लग रहा है कि इन बच्चों ने फिजिक्स की क्लास सिर्फ सुनी नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह समझा भी है। पढ़ाई को इस तरह प्रैक्टिकल अंदाज में समझाना काफी दिलचस्प है। अन्याय देखकर गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन इस चिड़िया की नाराजगी देखकर शायद आपको गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आएगी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: नेपाल में कुदरत का करिश्मा, 10 दिनों के बाद मलबे से सुरक्षित निकाली गई महिला, टनल से भी एक चीनी नागरिक का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। आगर मालवा में गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियों को दिया जा रहा है रंग, शेषनाग गणेश और डमरू गणेश की सबसे ज्यादा मांग, 2 इंच से 12 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचेस में कप्तानी करने का बनाया रिकॉर्ड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगाती दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था।

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो, हनुमान चालीसा करते हैं।
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते हैं,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो ऐसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल कहते हैं, गोपाल तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर कोई मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ

0: मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता। कई चाहे जहां घूमे आए, बार बार मन में आता वहीं चले जाएं। अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है मेरे पागलो। ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल में कुदरत का करिश्मा, 10 दिन बाद मलबे से सुरक्षित निकाली गई महिला, टनल से भी एक चीनी नागरिक का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक की गई, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। वृंदावन में अनोखा लठ मेला, तेल की बौछार के बीच कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान, दिखा रोमांचक मुकाबला। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत कौर ने 150 T20 मैचों में कप्तानी करने का बनाया रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:29 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि देव के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति शनि को कैसे प्रसन्न करेगा। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं। अपने आचरण से यानी व्यवहार से, रत्न धारण करने से और मंत्र का जप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्न में जलीय रत्न या वायु तत्व के रत्न धारण करने से शनि की कृपा मिलती है। शनि देव के लिए मंत्र जप करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनि देव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शनि की समस्याएं जीवन में आती हैं और समस्या के हिसाब से शनि देव के अलग अलग मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और इसके साथ आप मंत्रों का जप करें तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, करियर की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, हर स्थिति में शनि देव के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंत्र जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है? अगर कुंडली में शनि के कारण दुर्घटनाओं के योग हों या प्राण संकट के योग हों तो शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, कदम कदम पर संघर्ष बढ़ रहा हो, तब शनि देव के मंत्र का जप करना चाहिए। आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद आप को आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो आपका है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है तब भी शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि ढैया और साढ़े साती का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, कारोबार में आपको लाभ होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, शनि देव को विशेष स्थितियों में आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप की विधि क्या है? देखिए, ऐसा कभी मत समझिए कि केवल पुरुष शनिदेव का मंत्र पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शनिदेव के मंत्रों का जप बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करें, या पूर्व की तरफ चेहरा करके भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्र जपने का सही समय संध्या काल को होगा, सूर्यास्त के बाद अगर आप शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। या अगर तांत्रिक मंत्र है, विशेष पूजा है, विशेष अनुष्ठान है, तो आप मध्य रात्रि में भी शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन, रक्त चंदन की माला से शनिदेव के मंत्र का जप किया जा सकता है। अपने घर में भूल कर भी शनिदेव का चित्र मत लगाइए, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनिदेव को याद करके ही मंत्र का जप करिएगा। और शनिदेव का मंत्र जपने जा रहे हैं तो मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद कर लीजिएगा, तब मंत्र का जप करिएगा, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप न करे, ऐसा अत्यंत विशेष स्थितियों में किया जाता है, सामान्य स्थिति में ऐसा ना करें। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी नीला वस्त्र पहनकर शनि के मंत्र का जप किया जाए। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर की समस्या में आपके सुधार होगा, धन आसानी से मिल पाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, वाद विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्या से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं शनि देव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाएगा। पहला है शनि देव का वैदिक मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप रोज शाम को कर सकता है 108 बार। ऐसा करने से शनि कभी भी नाराज नहीं होते और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती। दूसरा है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, नकारात्मक है, तब इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब शनि देव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर तुमे शनि। साढ़े साती और ढैया के समय जब आपका कष्ट बढ़ रहा हो, जब आपकी पीड़ा बढ़ रही हो, तब इस मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। शनि अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस मंत्र का जप रोज शाम को करें। अगर लगातार 108 दिन तक करें आपको बहुत लाभ होगा। अगर शनि की मारक दशा हो तो शनि देव के लिए कम से कम 51,000 मंत्र का जप करवाइए और वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। 51,000 इस मंत्र का जप अगर आप करवाएं, शनि की मारक स्थिति से आप बच जाएंगे। शनि देव की ऐसी मूर्ति का दर्शन या पूजन ना करें जिस मूर्ति में उनकी आंखें हों, अन्यथा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको इसकी वजह से समस्या हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से चीजें गायब होने लगती हैं। कभी कपड़ा गायब हो गया, कभी पैसा गायब हो गया, कभी बर्तन गायब हो गए और समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे गायब हो रही हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक छोटे से काले कपड़े में 1 रुपए 2 रुपए के 2-3 सिक्के डालकर बांध करके पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए और एक महीने बाद सिक्कों को दान कर दीजिएगा, दूसरे सिक्के बांध कर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जला के प्रार्थना करिए, और अगर दोनों समय पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर दो दो मिनट ही सही, पांच पांच मिनट ही सही प्रार्थना या उपासना करें तो घर की तरंगें शुभ होंगी और घर से चीजों का गायब होना रुक जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता, कहीं चाहे जहां घूमे आए, बार बार मन में आता वहीं चले जाएं। अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है। मेरे पागलो, ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

शायद बांग्ला में है, शायद। कृतिवास नाम की रामायण में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि राम जी जब राम सेतु के किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, राम सेतु बन गया, लंका जाना था। लंका जाने के पहले भगवान राम ने सोचा क्या किया जाए, भगवान शंकर की स्थापना की जाए। क्या की जाए? भगवान शंकर की स्थापना, रामेश्वरम। रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना की जाए ऐसा सोचा। आहा, अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा कि आप भगवान शंकर की स्थापना क्यों कराना चाहते? तो भगवान राम ने कहा कि राम और शंकर जी का पुजारी है, और कहीं ऐसा ना हो कि राम और भक्ति करके शंकर जी को प्रसन्न करके अपनी तरफ मिला ले शंकर जी को, तो हमारे विरोध में शंकर जी खड़े हो, तो युद्ध हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर शंकर जी रामर की तरफ से लड़ेंगे तो लड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो राम जी बोले पहले ही इनको सेटल कर लो। चुनाव में ऐसा होता है कि भाई यदि तुम हमें वोट नहीं देना चाहते तो कम से कम उसको मत देना। अच्छा, वोट दो भले ही किसी को, पर सपोर्ट मत देना खुल के। यही राम जी ने उपाय किया, शंकर जी की स्थापना कर लें, पहले ही सेटल कर लें, पता लगे कि वहां लंका जाए, रावण की तरफ से शंकर जी लड़ रहे, हो गया युद्ध। तो भगवान राम जी ने लिंग थाप विधिपत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा, शंकर जी के समान हमें कोई दूसरा प्रिय नहीं है, स्थापना करने के लिए विचार किया। तो जामवंत जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, राम जी बैठे हुए थे, वहीं पर सब वानर भालू बैठे थे, सुग्रीव जी भी बैठे थे। राम जी बोले एक बात बताओ, सामग्री तो आने वाली है लिंग लेने के लिए, भगवान शिवलिंग लेने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए हुए, पर पूजन कौन करेगा, पूजन कौन करेगा? ये विचार कर ही रहे थे तब तक जामवंत जी ने कहा, इस समय में सबसे योग्य आचार, सबसे बढ़िया आचार्य कोई है, रामर है। राम जी बोले ये शिवलिंग की स्थापना, भोलेनाथ की स्थापना किसके लिए हो रही? बोले रामर को हराने के लिए। अब बोले आचार्य कौन है? बोले रामर। बोले क्या रामर मानेगा? बोले ट्राई कर लेते, ट्राई करने में क्या दिक्कत, ना माने वो बात अलग है, ट्राई करने में क्या दिक्कत, एक बार उपाय करते हैं। लक्ष्मण जी गए, कृतिवास रामायण में वर्णन, लक्ष्मण जी रावण के पास गए, हे दशग्रीव दशानन आचार्य महापंडित रावण, हम श्री रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण है, दशरथ नंदन है। रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा, कौन? हम लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी है श्री राम जी, उनके छोटे भाई अनुज। अच्छा बताओ किस लिए आए हो? रावण ने पूछा किस लिए आए हो? लक्ष्मण जी बोले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रभु श्री रघुनंदन रघुकुल तिलक श्री राम जी उस किनारे पर रामेश्वरम स्थान पर, वहां पर उस किनारे पर समुद्र के किनारे भगवान शंकर की एक लिंग विधिवत रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा करना चाहते, स्थापना करना चाहते, आप आचार्य बन करके चलिए और उस पूजन को संपन्न करवाइए। रामर ने कहा पंडित पुरोहित ले जाते हो, लेने आए हो कि आचार्य? लक्ष्मण जी बोले आचार्य। तो रामर ने कहा कि एक बात बताओ, ये शंकर जी की स्थापना किसके लिए हो रही? अब लक्ष्मण जी क्या बोले? बोले एक युद्ध होना है, उसके विजय के लिए हो रही। रामर बोला इस युद्ध किससे है? लक्ष्मण जी की शब्द शैली सुनना, बोले आतताई आतंकी दशग्रीव रामर से। तो धीरे से एक राक्षस बोला ये कौन है जो सामने बैठे हैं, ये कौन है जिनके सामने ऐसा बोल रहे? लक्ष्मण जी बोले ये तो आचार्य महापंडित रावण है। ये तो आचार्य महापंडित रावण है, ये वो नहीं है, ये आचार्य महापंडित रावण है। रावण का दिमाग खुल गया, सही कह रहा है। लक्ष्मण जाओ हमारे जजमान से कह देना आचार्य जी आ रहे। लक्ष्मण जी बोले जय हो। रावण बोला लक्ष्मण जी से एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री है सब? लक्ष्मण जी बोले सब है। क्या क्या? शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए। अच्छा, पूजन की सामग्री सब, देवता लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा यजमान विवाहित है कि अविवाहित?

लक्ष्मण जी बोले शादी तो हुई थी। रावण बोला फिर? बोले घरवाली चली गई। कहां? बोले चोरी हो गई। चोरी हो गई? कहां गई? सप्त सहेली सुनना, आचार्य लक्ष्मण कहते हैं जीवाचार लक्ष्मण, ये जीवाचार लक्ष्मण है, वो आचार्य रावण है, ये जीवाचार लक्ष्मण जी जीवाचार, जीवाचार लक्ष्मण आचार्य पंडित रावण से कह रहे, क्या कह रहे? बोले लंका का आतताई आतंकी राजा हमारे ज्येष्ठ भ्राता की भार्या माता जानकी जी को चोरी करके ले गए। तो वही राक्षस बगल में फेंकड़ा था, बोले जे कौन? लक्ष्मण जी बोले बोले जे तो आचार्य जी, ये तो आचार्य जी है, आचार्य जी। अब रावण की सप्त शैली सुनना, आचार्य पंडित रावण क्या कह रहा? आचार्य पंडित रावण कहता, हे लक्ष्मण जाके हमारे यजमान से कह दो तैयारी पूरी करें, जो सामग्री यज्ञ में पूर्ण ना हो उस यज्ञ की सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। कथा कहती है कृतिवास रामायण, लक्ष्मण जी वापस आए, राम जी ने पूछा क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले काम बन गया, आचार तैयार है। उस जमाने में शास्त्र चतुर्वेद का ज्ञाता तो वही था। बोले काम बन गया? बोले वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर शिवलिंग आने का इंतजार हो रहा, उधर रावण पुष्पक विमान से आया, स्वागत के लिए स्वयं राम जी गए। कृतिवास रामायण में ऐसा लिखा है, स्वयं राम जी पुष्पक विमान से, पहले ही मुलाकात हो रही युद्ध के पहले, स्वयं राम जी पुष्पक विमान के पास गए, दंडवत प्रणाम कर रहे रावण को, क्यों? आचार्य आया है। और रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा जरा देखना, यशस्वी भवा विजयी भवा, आचार है ये, आचार का गुण है, यशस्वी भवा विजयी भवा। लक्ष्मण राम जी ने प्रणाम किया, वानरों ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, इधर शिवलिंग की विधिवत स्थापना हुई, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में रावण से भगवान श्री राम ने कहा, महापंडित आचार्य रावण से भगवान श्री राम ने कहा, हे आचार्य हम आपको दक्षिणा क्या दें? रावण बोला तुम दोगे ही क्या, वनवासी हो, कुछ है तुम पे जो दोगे? घर से वैसे ही निकल आए, तीन जन आए थे, दो बचे, अब क्या दोगे? अब ऐसे भी हमको क्या दोगे? आचार कोई साधारण थोड़ी है, तुम्हारे यहां तो एक कनक भवन है, हमारे यहां तो लंका ही सोने की, तुम्हारे यहां तो एक ही महल सोने का, इधर तो पूरी लंका ही सोने की, आचार को दोगे क्या? भगवान श्री राम जी बोले, हे आचार्य शास्त्र नीति कहती, वेद नीति कहती, अनुष्ठान नीति कहती कि आचार्य को अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो यजमान को फल नहीं मिलता। एक बात बताओ, ये शिवलिंग की स्थापना तुमने की क्यों? राम जी बोले लंका के राजा को हराने के लिए। रावण बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अगर ऐसी बात है अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा तो अब हम, और तो राम कुछ हम पाना नहीं चाहते, पर यदि तुम देना चाहते तो हे रघुनंदन राम हम तुमसे यही मांगना चाहते, आज जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमको देखते ही तुम्हारी माधुर्यमय मूर्ति के विग्रह को देखकर, तुम्हारे लावण्यमय स्वरूप को देखकर, तुम्हारी अलकावली घुंघराली लटे लटकों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी सौम्यता को देखकर, तुम्हारे नीलांबर स्वरूप को देखकर, तुम्हारे धवल देह को देखकर, तुम्हारी जटाओं को देखकर, तुम्हारे कंधे पर पड़े हुए तीर तरकस को देखकर, हे रघुनंदन राम हमको शत्रुता का भाव खत्म हो रहा, राम दक्षिणा में देना ही है तो हमें यही दक्षिणा में दो कि जब तुम लंका में आओ तो तुमसे शत्रुता का भाव खत्म ना हो, वो बना रहे, ये हमको चाहिए। भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए, धन्य है आचार्य पंडित रावण, धन्य है, धन्य है। हमारे प्रभु राम इतने सौम्यमय है, इतने सरल है, इतने प्यारे हैं, मेरे प्रिय जनों एक बार इनको तुम देख लोगे जगत तुम्हें अपने आप फीका लगेगा, जगत अच्छा नहीं लगेगा, रघुनाथ जी ही केवल अच्छे लगेंगे। नील सरोरव, नील सरोरव नील मणि, नील नील धर श्याम, भगवान इतने अद्भुत हैं, इनको एक बार देख लोगे तो वही गीत गाओगे, ये दिल तुम मिले।

0: और सच भी यही है, जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता, जिसका परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता, जिसका केवल भगवान के प्रति ही नहीं, हमारे संत महात्मा तो कहते किसी भी महापुरुष के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, संत के प्रति, परमात्मा के प्रति जब समर्पण हो जाता तो सच यही है। जैसे हम अपनी मन की बात कहें, हमको दो जगह से ज्यादा अच्छा, एक यहाँ आए तो गुरु की सानिध्यता, एक बागेश्वर धाम। मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता, कहीं चाहे जहां घूमे आए बार बार मन में आता वहीं चले जाएं। अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है मेरे पागलो। ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना, भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा। वस्तुएं जीने के लिए रखोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैरागी हो जाओगे, वस्तुएं जीने के लिए रखोगे लेकिन उनमें आनंद नहीं आएगा। आनंद तो भगवान के भजन में ही किसमें आएगा, बोलो बोलो बोलो बोलो, भगवान के भजन में ही आनंद आएगा। पूरे भारत के हम संपन्न व्यक्तियों से यही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें जो भी मिला भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो, सेवा करो। देखा नहीं तुमने बागेश्वर परिवार यहां लंगर चलवा रहा, देखा कितना अद्भुत कार्य चल रहा। अभी रास्ते में आ रहे थे, कोई भंडारा चल रहा, कोई लंगर करा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। इसलिए मेरे पागलो, धन को साधन बनाओ धर्म का, और धन को साधन बनाकर ऐसे मत जियो कि हम मालिक हैं, मालिक तो परमात्मा है, भगवान के अलावा कोई मालिक नहीं। इस जगत का एक ही मालिक है परमात्मा, और हम लोगों का तो ठीक है, आना जाना है, जितने दिन का जीवन है बहुत मस्ती के साथ जियो। हाँ, तुम यदि भक्त हो तो हम वैष्णवों को कहेंगे भगवान एक दिन में नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिलता, एक दिन में नहीं मिलता पर एक दिन जरूर मिलता। इसलिए मेरे पागल, अभिमान में भर कर नहीं, भगवान के भाव में भर करके जियो, भक्ति में भर करके जियो, भगवान की भक्ति में भर करके जियोगे। हम इतना, अब आप पहाड़ी पर्वत के बीचों में यहाँ के जीवनों जीवन शैली देखो कितनी विचित्र है, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, गांव है, उनके मकान है, छह महीना यहाँ रहते, छह महीने पांडुकेश्वर चले जाते, फिर भी जीते हैं। और इन महात्माओं को देखो, कुछ भी नहीं है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही, और तुम लोग क्या क्या नहीं है, और ऐसे बैठे जैसे पिटके बैठे हो। ये देखो महात्मा क्या चश्मा लगा है, आनंद है फकीरी का, बम भोले, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र। अब बताओ, इन पे खुद की झोपड़ी नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे, और तुम महलों में रह के भी टेंशन में, बताओ तुम पागल हो कि ये पागल, कौन पागल है?
1: ये फाइनल है कि तुम पागल हो।
0: हाँ, सब कुछ होते हुए भी टेंशन में हो, इधर देखो कुछ ना होते हुए भी फकीरी में जी रहे। कबीर दास का बड़ा प्यारा गीत, कबीर कहते बाबा कबीर की बाणी,

कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं? और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।

0: करें, कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
0: बिना सहारे के मैं दो कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
1: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
23: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
11: नेपाल में कुदरत का करिश्मा, 10 दिन बाद मलबे से सुरक्षित निकाली गई महिला, टनल से भी एक चीनी नागरिक का किया गया रेस्क्यू। सूरत में गणेश चतुर्थी से पहले अनोखी यात्रा, महादेव पार्वती के साथ भूत पिशाच और नरमुट बने आकर्षण का केंद्र, मुंबई दिल्ली अलीगढ़ की कलाकारों ने दिखाया प्रदर्शन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारी, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली शोभा यात्रा। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी से हो रहा है एहसास। दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर के बाद तेज बारिश के आसार, सुहाने मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक, विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक, विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
0: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय शत प्रतिशत बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण हैं। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
0: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: मौजूदा समय में भारत अपनी MP-ATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
0: MP-ATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब ये है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया, उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम ले।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
0: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
0: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
0: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हामिद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक को उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
3: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं।

0: तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और वस्त्र बांध गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की। तो ये बैटल फील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है। और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
2: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलके ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन द लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम, वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन द लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबार्ट करना पड़े तो ये अबार्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
1: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
3: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए भारत ने NLOS को चुना।
1: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
3: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं, कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर

0: चक्कर में पड़े रहते हैं और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दो तरह की हैं। एक तो छोटी मिसाइलें जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठा कर ले जा सकता है और कंधे से ही लॉन्च कर सकता है। दूसरी होती है बड़ी मिसाइलें जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत देखी, जहां यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल हुआ। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 और साल 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 और 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने अपनी जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 में इसराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 में नार्गो कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से ही स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक LR मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक LR पोर्टेबल है। 2 जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है, दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के 2 मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए। दूसरा है फायर एंड विजर्व, इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगी। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की हवा में रहते हुए सैनिक उसकी दिशा भी बदल सकता है। इस खूबी के चलते उस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे न दिख रहा हो।

0: स्पाई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कंधे पर ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे किसी भी टैंक पर फिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी ताकत इसकी ये है कि इसे ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ही जल्द इंस्टॉल किया जा सकता है। हाल ही में अर्जुन टैंक पर हुए इसके सफल परीक्षण ने इस बात का सबूत भी दिया है।
1: स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। ये इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन की टैंकों के परखचे उड़ाने की ताकत भी रखती है।

0: یہ میزائل کی جو اسپائک کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کو استعمال کر کے اس کی جو نائٹ ویزیبلٹی ہے اور اس کا جو رینج ہے وہ بہت لیتھل ہے, بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے, اور یہ اپنا ٹارگیٹ خود بے خود لوکیٹ کر لیتا ہے. تو آپ مان کے چلو کہ اس کو پارشلی آپ ایف این ایف کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو, فائر اینڈ فرگیٹ, فائر کرو بھول جاؤ, اپنا ٹارگیٹ ڈھونڈ کے نیویگیٹ کر کے وہاں پہنچ کے اس کو دھست کر دے گا.
1: اسپائی کے علاوہ بھارت کے پاس سودیشی ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل بھی ہے. تیسری پیڑھی کی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو کسی بھی موسم میں داغا جا سکتا ہے. انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تھرڈ جنریشن کی ناگ مسائل کو تیار کیا گیا. ناگ پانچ طرح کی ویریئنٹس میں آتی ہے. ناگ مسائل کے الگ الگ ویریئنٹس کی رینج 500 میٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک ہے, جو 828 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی میکسیمم سپیڈ سے حملہ کرنے میں سکشم ہے. ناگ ایسی مسائل ہے جسے زمین یا ہوا کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے. اس کا گائیڈنس سسٹم فائر اینڈ فرگیٹ ہے, جس کا مطلب ہے ایک بار میں ناگ کو فائر کر دیا اور اس کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کے ہی دم لے گی.
2: مسائل مین کے نام سے مشہور پورو راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے 90 کے دشک میں ناگ مسائل کو آکار دینا شروع کیا. ڈی آر ڈی او نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. 90 کے دشک کی شروعات میں ٹیسٹ بھی ہوئے, لیکن آئی آئی آر آدھارت گائیڈنس سسٹم میں دقت کے چلتے ڈیولپمنٹ پھنس گیا. 1997 اور پھر 2000 میں ناگ مسائل نے ٹیسٹ میں قابلیت ثابت کر دی. پھر اگلے کچھ سالوں کے بھیتر اسے اور زیادہ ریفائن کیا گیا.
1: ناگ مسائل کے لیے خاص مسائل کریئر این ایم آئی کا تیار کیا گیا ہے, جسے سارت نام دیا گیا ہے. یہ ایک ٹینک ڈسٹروئر ہے جس میں 12 مسائلیں رکھی جا سکتی ہیں. ناگ مسائل کے 5 الگ الگ ٹائپ پر کام چل رہا ہے. ناگ مسائل کا ایک لینڈ ورژن ہے, دوسرا ماس ماؤنٹن سسٹم, باقی 3 خاص ضرورتوں کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں. تیسری پیڑھی کی ایم پی 80 جی ایم یعنی مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کا ٹرائل 2005 میں شروع ہوا. یہ دکھنے میں ناگ مسائل کی لینڈ ورژن جیسی ہے, لیکن بہت ہلکی ہے, جو قریب 14 کلوگرام ہے. ناگ کے ایم پی 80 جی ایم ورژن کی رینج قریب 2.5 کلومیٹر ہے. یہ ٹینک کے اوپر سے حملہ کرنے میں سکشم ہے, جسے ٹاپ اٹیک کہا جاتا ہے. دراصل ٹینکوں میں چاروں طرف ریئیکٹو آرمر کی پلیٹ لگی ہوتی ہے, جو مسائل حملے کے دوران پھٹ کر اس کے پربھاؤ کو کم کر دیتی ہے. اسی لیے اوپر کی اور ٹینک پر حملہ اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے. اسے داغنے کے بعد اس کے لکشے کو بدلا بھی جا سکتا ہے.
3: جو پاور ٹو ویٹ ریشو ہے اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے آپ نے ویٹ کم کرنا ہے, ٹینک کی ایجیلیٹی کو بڑھانے کے لیے, تاکہ ٹینک فائر کر کے ایک دم وہاں سے ہٹ سکے. تو اس لیے ٹینک کی ویٹ کو کم کرنے کے لیے ٹرٹ کے اوپر آرمر جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے. تو اگر کوئی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کسی طریقے سے اوپر سے آ کے ٹرٹ کے اوپر حملہ کرے گی تو وہ نقصان ٹینک کو زیادہ ہوگا, اس کے بشرطے کہ حل کے اوپر یا فرنٹ میں وہ اٹیک کرے اور اس کو نقصان کم ہوگا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل میں کیپیبلٹی ہو کہ وہ اوپر سے فائر کر کے, یعنی کسی ایسے پلیٹ فارم سے, ایئر سے, ہوائی جہاز سے, کسی ہیلی کاپٹر سے, وہاں سے فائر کر سکے اور ٹینک کے اوپر کے ٹرٹ کے حصے کو نقصان پہنچائے.
1: ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو پہاڑ پر لے جانا ہو یا پھر ریگستان میں, اسے کہیں پر بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے, کہیں پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے لیے کسی نشچت جگہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت کے حساب سے اس کا استعمال ہوگا. ایم پی 80 جی ایم میں اور بھی کئی ہائی ٹیک تکنیکوں کا استعمال کیا گیا ہے. ایم پی 80 جی ایم امیج انفراریڈ رڈار سے لیس ہے, جو رات کے اندھیرے میں دشمن کو ڈھونڈ لیتا ہے. ایم پی 80 جی ایم میں انٹیگریٹ ایوینوکس بھی لگا ہے. اس مسائل کی ادھکتم مارک کشمتا 3 کلومیٹر ہے. قریب 1.25 میٹر لمبائی والی इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होता है, जिससे ये टैंकों के बेहद मजबूत कवच को पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं है।
3: किसी भी टारगेट के इमेजेस को या उसकी इंफ्रारेड को या उसकी हीट सेंसिंग जो है, उसकी जो भी हीट निकलती है उसको किसी तरह से सिग्नेचर्स को ट्रैक किया जाए और उसको ट्रैक करते करते टारगेट को तबाह किया जाए। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंदर टीवी कैमरास या लेजर गाइडेंस ऐसी पैदा की जाती है, ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो टारगेट को ढूंढ के वहां तक जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी होम करेगा, उसकी जो थर्मल इमेजेस हैं, थर्मल इमेजेस मतलब जो उसमें से सिग्नेचर निकलते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए दुश्मन क्या करते हैं या टैंक वाले जो करते हैं उसके पीछे फ्लेयर जो है, आर्टिफिशियल फ्लेयर या ऐसी चीज कर जाते हैं ताकि सिग्नेचर जो है गलत मिले और मिसाइल जो है भटक जाए।
1: स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम है ध्रुवास्त्र, जिसे हेलिना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास्त्र को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद ध्रुवास्त्र मिसाइल तैयार की है। इसने तकरीबन अपने सारे टेस्ट पास भी कर लिए हैं और बहुत ही जल्द इसे भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में कमीशन भी कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर मौसम में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है।
4: दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन टैंक बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ध्रुवास्त्र की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे यह अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा होता है। भारत के पास सैंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास्त्र का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपनी थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीतड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी छोटे छोटे पंख लगे हैं ताकि उड़ान के समय इसे नियंत्रित किया जा सके।
1: भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न हथियारों से लैस करने के लिए लगातार इस पर काम चल रहा है। पांचवी पीढ़ी के कई हथियारों को भारतीय सेना के साथ अटैच करने की बात भी हो रही है और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने नए नए हथियारों को बना भी रहा है। इसी के तहत भारत के पास कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जो दुश्मन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में तबाह कर सकती है।
4: महज 19 सेकंड में 4 किलोमीटर दूर टारगेट को खाक में मिलाने की ताकत है कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। कॉन्कस एम मिसाइल सेकेंड जनरेशन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए काफी है। चीन की
1: सेना हो या फिर पाकिस्तान में पनपते आतंक के मोहरे, ये दुश्मन के लिए अल्टीमेटम है कि अब वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। कांग्रेस एम मिसाइल को BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी से या फिर सतह से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 208 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खाक में मिला सकती है। BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी में 6 सैनिक सवार हो सकते हैं जो टैंक के ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। बीएमपी से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यानी बीएमपी न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोर्टार, रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती हैं, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदान जंग में हर गोलीबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकता है। जरा सोचिए, अगर BMP-2 पर कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तैनाती कर दी जाती है तो ये दुश्मन के खेमे में कितनी बड़ी तबाही मचाएगा।
0: ये कॉन्कर एम जो है वायर गाइडेड मिसाइल है, BMP-2 से फायर किया जा सकता है या ग्राउंड से भी फायर किया जा सकता है, और ये वायर गाइडेड, जैसा मैंने कहा, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल है, मोर देन 80% की एक्यूरेसी है। और आप जैसे जैसे हम ATGM की बात करते हैं, तरह तरह का है, कोई मैन पोर्टेबल है, कोई वायर गाइडेड है, कोई सेल्फ गाइडेड है, तो ये वायर गाइडेड कैटेगरी में आता है। और इसका इसकी जो क्षमता है, ये हमने इस्तेमाल किया है।
1: भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। BMP का इस्तेमाल भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा सकता है। सरहद पार दुश्मन अगर बंकर में छिपकर गुस्ताखी करने की फिराक में हो तो कॉन्कस एम उसे खाक में मिलाने की कुव्वत रखती है, लिहाजा अब आतंक के मोहरों के लिए जान बचाना मुश्किल होगा। BMP इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को नाइट विजन डिवाइस से लैस किया गया है ताकि रात में भी दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। यानी BMP इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को हर वो ताकत सौंपी गई है जो रणभूमि में जीत के लिए गारंटी मानी जाती है। भारतीय सेना के पास 34,000 Milan-2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। इसे भी टैंक ट्राइपॉड कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसके 5 वेरिएंट्स हैं: Milan-1, Milan-2, Milan-2T, Milan-3 और Milan-ER। मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में सिंगल या टैम्ड हीट वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है।
2: क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सास बहु और बेटिया में आज देखिए रिश्तों में खुशियों के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: चाइना के पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाना कभी बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। कहीं खड़ी चट्टाने, कहीं फिसलन भरे रास्ते और कई घंटे की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन अब इसी सफर को आसान बना दिया है एक अनोखी स्काई स्कूल बस ने। यूनान प्रांत की गहरी घाटी में बने ये विशाल एलिवेटर बच्चों को मिनटों में पहाड़ों की चोटी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे एक लिफ्ट ने सिर्फ बच्चों का सफर नहीं बदला बल्कि पूरे गाँव की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है।
7: ये कोई आम लिफ्ट नहीं बल्कि पहाड़ के सीने को चीरती स्काई स्कूल बस है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में निझुए नदी की गहरी घाटी से पहाड़ की चोटी तक जाने वाली ये दो एलिवेटर बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता आसान कर रही हैं। जहां पहले स्कूल पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, अब यही सफर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
8: It turns what used to take hours into a journey of less than a minute, and it saves us so much energy so we can focus and calm down to study.
7: 268 और 288 मीटर ऊंचे ये एलिवेटर घाटी में बसे निझुए गांव को पहाड़ की चोटी पर बने ग्वांगशाई प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हैं। 500 मीटर से ज्यादा का ऊंचा अंतर इसे पार करने के लिए बच्चों को कभी खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। कीचड़, खाई और फिसलन, हर कदम जोखिम भरा था।
9: The old trail was really hard to walk. There was mud and moss, so it was very slippery. Now with the elevator, we save about 3 hours on the journey.
7: लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचने की नहीं है। 2022 में घाटी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। एलिवेटर और केबल कार ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा तो पर्यटन से कमाई के नए मौके भी खुले। 36 साल के चेन ग्वांगपिंग शहर से लौटे और अब यहां होम स्टे चला रहे हैं।
10: Back then, we mainly grew a little ginger, and at most, we could make 5,000 to 6,000 yuan a year. Now, we can earn at least 300,000 to 400,000 yuan in gross income a year. Life has really changed dramatically.
7: इन लिफ्ट ने बच्चों के लिए रास्ता छोटा किया, तो पर्यटन ने गांव की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। स्थानीय प्रशासन अब खाली पड़े घरों और संसाधनों को गेस्ट हाउस में बदलने पर जोर दे रहे हैं।
11: We want to make the best possible use of idle resources and vacant houses, turning villagers' homes into goose houses and these untapped resources into a major source of income for local residents.
7: निजुआ गांव में पहाड़ वही हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों की जिंदगी बदल रही है। जहां कभी स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल चढ़ाई थी, आज वही रास्ता स्काई स्कूल बस से मिनटों का सफर है। और यही बदलता सफर बता रहा है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रास्ते नहीं बनाता, लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: दिल्ली मेट्रो में बच्चों के साथ पीएम ने किया सफर, सेल्फी ली और बच्चों से खूब बातें की, सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, तो वहीं 296 किलोमीटर दूरी पर पैदल यात्रा कर पहुंची। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारी, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा। तमिलनाडु के धनुषकोडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद लेने जा रहे हैं पर्यटक। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर के बाद तेज बारिश के आसार, सुहाने मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा उपाय कर लें, एक ऐसी पूजा कर लें जिससे हमारी जिंदगी ठीक रास्ते पे चलती रहे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सी पूजा कर लें, कौन सा उपाय कर लें कि पूरी जिंदगी बेहतर चलती रहे, ज्यादा मुश्किलें जीवन में ना आए और भाग्य हमारा साथ दे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कि आपको कौन सी एक पूजा जरूर करनी है, और अगर वो एक पूजा आप रेगुलरली करें, थोड़ा ध्यान रखें, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। बड़ा शक्तिशाली और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है ये। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई बड़ा विवाद हो गया है, उसको निपटाना चाहते हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, मुकदमे से विवाद से बाहर आना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने बैठ करके इस मंत्र का एक एक माला जप करिएगा। कितना भी बड़ा विवाद हो, कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, अगर सुबह शाम आप ये मंत्र पढ़ेंगे ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, अगर सुबह शाम ये मंत्र पढ़ें लगातार 3 महीने तक, निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्या से बड़े विवादों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो 3 महीने तक सात्विकता का पालन करेंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार अगर आप एक विशेष तरह की पूजा करें तो आपको लाभ हो सकता है। आखिर लग्न के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, किसी व्यक्ति का जो लग्न है उसके जीवन का केंद्र है। लग्न का मतलब वो व्यक्ति स्वयं, लग्न मतलब आप खुद, राशि मतलब आपका मन। तो किसी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन का केंद्र है और कुंडली के लग्न से ही स्वास्थ्य, सफलता और बाधाएं निर्धारित होती हैं। आपके लग्न से ही ये पता चलता है कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, कितने सफल होंगे और जीवन में बाधाएं कैसी आएंगी। लग्न के अनुसार हर लग्न के जीवन की बाधाएं निश्चित होती हैं कि उस तरह की बाधाएं जरूर आती हैं। तो लग्न के अनुसार पहले बाधाओं को समझना चाहिए और इसके बाद लग्न के अनुसार विशेष पूजा करके बाधाओं को दूर करना चाहिए।
अगर आप अपने लग्न का नेचर जान जाएं, लग्न का टेम्परामेंट जान जाएं, तो एक पूजा करके आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हर लग्न का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग मुश्किलें भी होती हैं। तो आप पहले देखिए कि आपका लग्न क्या है और लग्न के हिसाब से किस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। जिस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, उससे संबंधित अगर पूजा आप लंबे समय तक करें तो आपका भाग्य चमकेगा और बाधाएं जीवन से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल और ये चर लग्न है, यानी मेष लग्न के अंदर स्थिरता नहीं होती, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेष लग्न वालों के जीवन में चीजें अक्सर अस्थिर रहती हैं और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। योग्य होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, मेहनत करते हैं, नई चीजों को खोज निकालते हैं, लेकिन काफी उम्र तक इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अगर किसी का मेष लग्न है, सर दर्द की शिकायत होने की पॉसिबिलिटी काफी है, चोट चपेट लगने की संभावना काफी है और उम्र बढ़ने पर नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम भी इनको पकड़ लेती है। लेकिन मेष लग्न वालों की सबसे बड़ी बाधा है कि इनका जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता। इनको जीवन में स्टेबल होने में, स्थिर होने में वक्त लगता है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मेष लग्न है, आंख मूंद कर बिना सोचे विचारे सूर्य भगवान की पूजा जरूर करिए। इनको रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः या ओम घृढ़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लिए एक पूजा है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सूर्य मंत्र का जप करेंगे। वृषभ लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का लग्न है, स्टेबिलिटी और स्थिरता इनके काम में हमेशा दिखाई देगी। वृष लग्न के जो लोग होते हैं, ये अत्यधिक संघर्ष जीवन में करते हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और अक्सर करियर के
और इमोशंस के, भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनका किसी न किसी मामले में स्ट्रगल चलता रहता है। वृष लग्न का जो सिंबल है वो क्या है? बैल। तो स्वभावतः ये बड़े जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। जिद इनके अंदर काफी ज्यादा होती है और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने जिद की वजह से, अपने उग्र स्वभाव की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। वैवाहिक जीवन में या रिश्तों में 100% कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% समर्पण होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगला भी उतना ही समर्पण दिखाए। इसीलिए वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में इनको संतोष नहीं मिल पाता। वृष लग्न वाले बड़े स्थिर दिमाग के, बड़े मेहनती, बड़े तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनको चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। क्या पूजा करेंगे? वृष लग्न वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इनको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करने से लाभ होगा। इनको रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक इनको जलाते रहना चाहिए। अगर वृष लग्न वाले नियमित रूप से शनि देव की पूजा करें तो इनका स्वभाव थोड़ा माइल्ड होगा और इनके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। मिथुन लग्न स्वभावतः इंटेलिजेंट लग्न है, बुद्धिमान लग्न है। बुद्ध इस लग्न का स्वामी है। वायु तत्व का और द्वि स्वभाव का लग्न है। मिथुन लग्न वाले नॉर्मली 100 में से 80% मामलों में इंटेलिजेंट होते हैं। ये अक्सर जल्दबाजी के और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। हर काम जल्दी करना चाहते हैं और एक साथ कई काम में हाथ डाल देते हैं। उस चक्कर में कोई काम सही नहीं हो पाता और अक्सर निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। कंफ्यूजन और जल्दबाजी इनके जीवन में बनी रहती है। संतान के साथ इनका अटैचमेंट बहुत होता है। मिथुन लग्न वाले संतान का बड़ा मोह रखते हैं और संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं। मोह में संतान को बिगाड़ देते हैं और बाद में चीजें बिगड़ जाती हैं। संतान के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, संतान के मुंह में गड़बड़ियां होती हैं। मिथुन लग्न वाले बुरे नहीं होते, किसी को परेशान नहीं करते, नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में, सबको खुश रखने के चक्कर के मामले में ये अक्सर अकेले रह जाते हैं। इनको लगता है इसको भी संभाल लो,
उसको भी संभाल लो, इसका भी ध्यान दे दो, ये काम भी कर लो। उस चक्कर में बेचारे अकेले रह जाते हैं। मिथुन लग्न वाले हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। अब अगर मिथुन लग्न है तो आपकी मुश्किल क्या है? एक साथ बहुत सारे काम में घुसना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहना और बुद्धि तेज होने के बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देना। क्या करना चाहिए? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर कठिन लगता है, बड़ा लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लें। सुन करके भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कर्क लग्न, चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है। चर लग्न है, जल तत्व का लग्न है। भावनाओं का, इमोशन का, क्रिएटिविटी का और भाग्य का सबसे बड़ा लग्न है कर्क लग्न। लेकिन कर्क लग्न वालों के जीवन में सुकून नहीं होता। चमक सूर्य की तरह जाएंगे लेकिन अंधेरा भी अमावस्या की तरह होगा। कर्क लग्न वालों की सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े लापरवाह भी होते हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं, खासतौर से पेट की समस्याएं इनको परेशान करती हैं और मन की समस्याएं भी इनको काफी परेशान करती हैं। कर्क लग्न वालों की सेहत, आयु और मन की समस्या इनको लगातार परेशान करती है। इनका मेंटल लेवल बड़ा सेंसिटिव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में कोई बात लग गई कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। ऐसा देखा गया है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन 90% मामले में अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में इनके अगर भगवान की कृपा है तो वैचारिक मतभेद रहता है, जिंदगी रोते गाते घिसटती रहती है। और अगर नकारात्मक प्रभाव है तो शादी टूटना निश्चित होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर कर्क लग्न वालों को कष्ट का सामना अक्सर करना पड़ता है। ये जीवन में जब भी निर्णय लेंगे ना, ये बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क लग्न वाले बुद्धिमान नहीं होते, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनोवेटिव बहुत होते हैं और भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा भी होती है इनके ऊपर। लेकिन अक्सर इमोशंस में आके इनसे बड़ी गलतियां होती हैं और भावनात्मक गलतियां करते हैं निर्णय लेने में, जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। ये अक्सर दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की बात नहीं सुनते और इसी चक्कर में कर्क लग्न वाले बुद्धि होने के बावजूद बेवकूफ बनते हैं। तो कर्क लग्न वालों की क्या समस्या है? मुख्य समस्या है इनकी भावनाएं, इनका अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक इमोशनल होना। क्या करना चाहिए? कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दुनिया में संतुलन के दो ही देवता हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा से शिव जी डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप कुछ करें या ना करें, शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय रोज सुबह पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा।
सिंह लग्न, सूर्य इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का अग्नि तत्व का लग्न है, बड़ा ताकतवर, बड़ा शक्तिशाली रॉयल लग्न, राजसी लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जो होते हैं ना, जैसे सूर्य के अंदर भावनाएं नहीं होती, सूर्य का क्या गुण है, रूखा होना, ड्राई होना, क्रूर होना या जिद्दी होना, तो सूर्य का जो बेसिक टेम्परामेंट है ना, वो सिंह लग्न वालों के अंदर होता है। ये बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। और अगर सूर्य इनका प्रबल हो गया ना, सिंह लग्न है, सूर्य अगर प्रबल है तो ये बड़े रूखे, बड़े डोमिनेटिंग और सबके ऊपर शासन करने वाले होंगे। अगर सिंह लग्न है और जल्दी शादी हो गई 24 साल में, 25 साल में, 26 साल में, तो ज्यादातर मामले में दिक्कत आती है, विवाह टूटता है या विवाह में कुछ समय तक अलगाव का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न वाले बड़े शक्तिशाली होते हैं, हर स्थिति परिस्थिति से जूझते हैं, संघर्ष से, मेहनत से नहीं घबराते। और किस्मत भी ऐसी ही मिलती है, जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन सिंह लगन वाले भी कम नहीं होते, नहीं मिलेगी तो भी जूझेंगे और पा करके ही दम लेंगे, अगर सिंह लग्न की प्रबलता ज्यादा है। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो देखिए, एक लाइन में आपकी समस्या है, आपका कठोर स्वभाव और जीवन का संघर्ष। तो क्या करेंगे, नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी है। अगर आपका सिंह लग्न है तो भगवान सूर्य की उपासना करिए, सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाइए और जीवन की समस्याओं में विजय पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सिंह लग्न वालों का जीवन बेहतर होगा, जीवन का अनावश्यक संघर्ष कम हो जाएगा। कन्या लग्न, बुध इस लग्न का स्वामी है, द्वि स्वभाव का लग्न है, पृथ्वी तत्व का लग्न है। कन्या लग्न वाले जो होते हैं ना, वे अनुशासित होते हैं आम तौर पे। अगर कन्या लग्न है तो डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, सफाई होगी और क्लास होगा। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो भी कपड़े बड़े सोच समझ के, बड़े सिस्टम से पहनेंगे, बड़े क्लास का पालन करेंगे। तो ये लोग अनुशासन, सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं और अक्सर इनको जीवन साथी ऐसा मिलता है जो इनका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनुशासन को ना मानने वाला, जीवन में लापरवाही करने वाला। ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और कन्या लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत होता है, मैनेजमेंट इनके ब्लड में होता है, कठिन से कठिन काम को ब्यूटीफुली मैनेज करने का गुण कन्या लग्न वालों में पाया जाता है। लेकिन इनकी मुश्किल क्या है, बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो

किसी को नहीं समझते। ये क्लास के चक्कर में, अपनी योग्यता के चक्कर में दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते और दूसरे इनके काम को कुछ नहीं समझते। इस चक्कर में आप देखेंगे कन्या लग्न वालों के ऑफिस में बॉस के साथ झंझट बहुत होते हैं। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। हालांकि देखिए कितनी बात मानेंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता का सम्मान हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको गौरव मिले, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें, श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और नियमित रूप से सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें या सुने। तो यही एक पूजा, भगवान कृष्ण की केवल एक मात्र पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपका कल्याण होगा। तुला लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और चर यानी मूवमेंट वाला लग्न है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो होते बड़े डिसेंट हैं। तुला लग्न के लोग आम तौर पर झंझटों में पड़ने वाले नहीं होते और आम तौर पर नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं। तुला लग्न के लोग सामान्यतः जल्दबाजी में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। सामान्यतः जल्दबाजी में इनसे बड़ी गलतियां होती हैं क्योंकि इनको लगता है कोई भी काम जितना जल्दी करो उतना अच्छा। हर काम जल्दी करना अच्छा नहीं होता, कुछ काम में थोड़ा समय देना भी बेहतर होता है। दिखावे के चक्कर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनको पॉम्प एंड शो का, दिखावे का बड़ा शौक होता है और इस चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं। और तुला लग्न वालों के सरल स्वभाव की वजह से लोग इनको बेवकूफ बनाते हैं, इनसे पैसे भी लेते हैं, इनकी झूठी तारीफ करके इनको उल्लू बनाते हैं और अक्सर प्रेम के चक्कर में, लगाव में इनको अक्सर असफलता मिलती है, उसमें इनको नुकसान होता है। तुला लग्न वालों की दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, दिखावा, दिखावे की आदत, उस चक्कर में गड़बड़ी होती है और बिना सोचे समझे, बिना विचार किए प्राइमा फेसी, जो प्रथम दृष्टया है, जो जैसा दिख रहा है, बिना सोचे विचारे, बिना जांच पड़ताल किए प्रेम में और रिश्तों में पड़ जाते हैं और 90% इनको असफलता मिलती है। इनके सरल स्वभाव का लोग फायदा उठाते हैं, ये बेचारे दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, दूसरों को बेहतर करने में लगे रहते हैं और लोग इनको बेवकूफ बना के निकलते बनते हैं। हालांकि तुला लग्न वाले भाग्यवान बहुत होते हैं, इसीलिए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद किस्मत इनका साथ देती है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो नियमित रूप से दान करिए। आपको दिखावे के लिए नहीं, आपको दूसरों की सहायता के लिए दान करना है, नियमित रूप से ध्यान करना है और अगर परमात्मा की कृपा से आपका सही समय विवाह हो गया है तो जीवन साथी की बात मानिए, जीवन साथी से डिस्कस करके, सलाह मान करके चलिए तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन की कम हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, मंगल स्वामी है, जल तत्व का लग्न है और स्थिर स्वभाव का लग्न है। जल का एक लग्न कर्क लग्न भी, आपको बताया ना, कर्क लग्न का जो पानी है वो ठंडा है, वृश्चिक लग्न का जो पानी है वो गर्म है, बॉइलिंग वाटर है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों के अंदर छुपी हुई पानी के अंदर गर्मी होती है, पानी को देख के नहीं जान सकते गर्म है कि ठंडा है, टच करना पड़ेगा। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को देख के नहीं जान सकते कि क्या है इनका रहस्य। वृश्चिक लग्न वाले बड़े रिवेंजफुल होते हैं, अगर उनको आपने परेशान नहीं किया तो

जीवन में उनसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर वो नॉर्मल जीवन में चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, वो जीवन में आराम से रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर छेड़ा या परेशान किया तो इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। सही समय का इंतजार करेंगे और सही समय आने पर आपके लिए ऐसी तैसी स्थितियां पैदा कर देंगे। वृश्चिक का जो सिंबल है वो क्या है? बिच्छू। अगर आपने उसे छेड़ा वो डंक मारेगा समय आने पर। वृश्चिक लग्न वाले विद्वान बहुत होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को अगर कोई भूत कोई सनक सवार हो गया तो आप मान करके चलिए कि फिर ये देखेंगे नहीं कि उसके परिणाम क्या हैं। अक्सर वृश्चिक लग्न वालों का अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है, जो इनको सिखाते हैं पढ़ाते हैं। हो सकता है गुरु ने कभी कोई ऐसी बात कह दी जो इनको ईगो को लग गई, इनके मार्गदर्शक ने इनको कुछ ऐसा बता दिया जो इनको कष्ट पहुंचा गया, चुभ गया, तो ये छोड़ करके रास्ता अलग हो जाएंगे और मौका पड़ने पे अपना काम करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं, आमतौर पर जीवन साथी इनको बड़ा अच्छा मिलता है, कोई बड़े उच्च पद की स्त्री, उच्च पद का पुरुष, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से इनकी शादी होती है, ऐसा देखा गया है। या तो वो रहता नहीं, और अगर शादी हो गई तो बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपनी बदला लेने की आदत छोड़नी है, मन में रहस्य नहीं रखना है और ऊपर से मीठे रह के मन में जहर नहीं रखना है। हर जगह राजनीति मत करिए, खुराफातों से बचिए। ईश्वर ने आपको बड़ी योग्यता दी है, क्यों आप दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का? इनको नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वृश्चिक लग्न वाले अगर शिव जी की उपासना करें तो कम से कम जीवन में शांत तरीके से, संयमित तरीके से, बेहतर तरीके से रहेंगे। और शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करें या सुने रोज सुबह तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु लग्न बृहस्पति स्वामी हैं, द्वि स्वभाव का लग्न है और अग्नि तत्व का लग्न है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, लड़ाई करने को तैयार, ये बेसिक फीचर है धनु लग्न का, एग्रेशन होना या लड़ाई करना। इसीलिए आर्मी में, पुलिस में, सेना में, साहस में, करेजियस क्षेत्रों में धनु लग्न वाले काफी होते हैं। धनु लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है और उग्रता की काफी समस्या होती है, एग्रेसिव बहुत होते हैं, और जब ये एग्रेसिव होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्रोध में ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। धनु लग्न वालों की संतान योग्य होती है ऐसा देखा गया है, लेकिन संतान इनको कुछ समझती नहीं, इनका बेटा या बेटी इनसे दूर चला जाता है और संतान की तरफ से इनको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, विचार एक पैसे के नहीं मिलते। धनु लग्न में भी संघर्ष बहुत होता है, आसानी नहीं होती, मेहनत धनु लग्न वालों को भी बहुत करनी होती है, और बहुत बार ये मेहनत करते हैं फायदा कोई और ले जाता है, ऐसा भी धनु लग्न वालों के साथ होता है। लेकिन ये भागते नहीं, हारते नहीं, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और लगातार दिमाग लगा के मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, काफी उम्र बीत जाने के बाद तब इनको सफलता मिलती है। सामान्यतः दिमाग और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन धनु लग्न वालों के पास पाया जाता है। इनकी समस्या है इनका क्रोध, इनकी उग्रता और इनके जीवन का संघर्ष। भगवान सूर्य की अगर ये उपासना करें
तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, थोड़ा टेम्परामेंट शांत होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न, शनि स्वामी है, चर लग्न है और पृथ्वी तत्व का लग्न है। मकर लग्न वाले बड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, कन्या लग्न वालों के जैसे ही परफेक्शन होता है इनके अंदर, और मकर लग्न वाले जिस सब्जेक्ट में होंगे उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मकर लग्न वालों की मुश्किल ये है कि अगर इनको बार बार कोई साहस न दे, कोई हिम्मत न दे, कोई दिलासा न दे, तो बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वालों को अगर ये कहते रहा जाए कि तुम सब कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर ले जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, बार बार इनको बताया जाए तो ये पर्वत भी लांग सकते हैं। लेकिन चूंकि बार बार सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। और मकर वाले बड़े ईमानदार होते हैं अपने रिश्तों के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मामलों में। जिसको अपना मानते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, उसके साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन इनको उतना सपोर्ट वापस नहीं मिलता, इसीलिए पारिवारिक जीवन से रिश्तों के मामले में संतुष्ट नहीं होते। मकर लग्न वालों का स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। मकर लग्न वालों को आमतौर पे बड़ी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या, त्वचा की समस्या, सर दर्द की समस्या, कान नाक गले की समस्या, ये अक्सर मकर वालों को परेशान करती है। मकर वालों को जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो बार बार इनको साहस देता रहे, बार बार इनको इनकी ताकत याद दिलाता रहे, तो मकर लग्न वाले वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर आपका लग्न मकर लग्न है, जीवन में भाग्य को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। यही एक पूजा आपके लिए जरूरी है। नियमित शनि की उपासना करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न, शनि स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, और कभी कभी इतने ज्यादा बुद्धिमान कि वो बुद्धि ज्यादा होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है कुंभ लग्न वालों को। कुंभ लग्न वालों के चूंकि जीवन का केंद्र होता है शनि, इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आप आम तौर पे देखेंगे कि उम्र के 32 साल तक बड़ा संघर्ष करते हैं। 30-32 साल तक कुंभ लग्न वालों का संघर्ष चलता रहता है, खास तौर से करियर के मामले में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बाकी चीजें धीरे धीरे इनको मिलती रहती हैं। करियर को स्टेबल करने में वक्त लगता है। कुंभ लग्न वाले होते इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, एग्रेसिव, बात ना सुनने वाला, बात ना मानने वाला। अगर बुद्धिमान है तो भी उद्दंड और उज्जड होता है। तो कुंभ लग्न वालों को जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन करें क्या। कुंभ लग्न वाले बुद्धिमान बहुत हैं, कुंभ लग्न वाले ताकतवर बहुत हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जिंदगी में जिससे उनको दुनिया याद रखती है, अगर भगवान की कृपा रही तो। लेकिन कुंभ लग्न वाले भीड़ में भी अकेले रहते हैं, ये पक्के तौर पे जानिए कि कुंभ लग्न वाले कितने भी पॉपुलर हों, कितने भी प्रसिद्ध हों, जीवन में अकेलापन रहेगा और कुंभ लग्न वालों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले आपको बताएंगे नहीं,
वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, ये सब छुपा लेते हैं अपनी चीजों को। तो जीवन में अकेलापन और अवसाद इनको बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले जब जीवन में सब कुछ पा जाते हैं तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर या एकदम आइसोलेशन में अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन करें, जितना ध्यान करें, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपकी सहायता कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। जितना ध्यान करें, मंत्र जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उतना ही आप जीवन में ठीक रहेंगे। प्रातः काल पूजा करना, प्रातः काल ध्यान करना आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो कुंभ लग्न वालों को सिर्फ एक ही पूजा करनी है, वो है ध्यान। मीन लग्न, बृहस्पति स्वामी हैं, जल तत्व का लग्न है, द्वि स्वभाव का लग्न है। मीन लग्न वाले जो होते हैं ना, वो होते तो बुद्धिमान है, बात किसी की नहीं सुनेंगे चाहे कोई कितना भी समझाए। आपके मुंह पे भले ही कह देंगे कि ठीक है मैं मानूंगा, मानेंगे बिल्कुल नहीं। इनको अपनी बुराई और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता और इनके मन में बहुत जल्दी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। मौका पाए तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है और अगर गलत संगति पकड़ ली तो चरित्र भी बहुत जल्दी कमजोर होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शिव जी की जितनी पूजा करें उतना अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का अगर आप जप रोज करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: सास बहू और बिटिया में आज देखिए रिश्तों में खुशियों के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: 12 साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे कैलाश। 30 सितंबर को होगा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बापा के स्वागत की तैयारी। 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली बापा की शोभा यात्रा। तमिलनाडु के धनुषकोडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद लेने जा रहे हैं पर्यटक। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दोपहर के बाद तेज बारिश के आसार, सुहाने मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: उत्तराखंड में कल से शुरू हुई नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, करुड़ के से विधि विधान से कैलाश के लिए रवाना हुई यात्रा। 12 साल में एक बार होती है प्रसिद्ध मां नंदा देवी बड़ी जात यात्रा, 30 सितंबर को होगा दिव्य और भव्य समापन। जय मां नंदा की जयकारों से गूंज उठा चमोली का पूरा करुड़ इलाका, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। मां नंदा राजेश्वरी की 5 दिवसीय पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद किया गया रवाना, विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई। करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है मां नंदा देवी की पैदल यात्रा, पूजा अर्चना के बाद बड़ी जात यात्रा का समापन होगा। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, कारीगर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव में 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। गणपति बापा के आगमन से गूंज उठा कोला अमरावती, फायर शो से लेकर ढोल ताशों तक दिखा भक्तों का जबरदस्त उत्साह। अमरावती में भव्य फायर शो और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बापा की शोभा यात्रा, भक्तों ने जमकर डांस किया। गणपति बापा की भक्ति में आम भक्तों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, विधायक रवि राणा ने शोभा यात्रा में ढोल बजाकर बढ़ाया भक्तों का उत्साह। गणेशोत्सव से पहले सूरत में निकाली गई अनोखी यात्रा, हॉरर थीम पर मेकअप के साथ कलाकारों ने हिस्सा लिया। यात्रा में लगाए गए भूत पिशाच, नरमुन और डरावने पुतले शक्ति फाइटर ग्रुप ने तैयार किया। गणपति के साथ महादेव और माता पार्वती की सजाई गई झांकी, तो वहीं शिवगण भी यात्रा में शामिल हुए। सूरत के अडाजन में पिछले 35 सालों से अलग अलग थीमों पर गणेशोत्सव का आयोजन हो रहा है, हॉरर थीम से अच्छे और बुरे विचारों का संदेश दिया गया। सूरत की इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, मुंबई दिल्ली अलीगढ़ समेत देश के कई जगहों पर पहुंचे कलाकार। सूरत में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिट इंडिया संडे साइकिल थॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया प्रेरित, नशा मुक्त युवा विकसित भारत रखी गई कार्यक्रम की थीम। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का आयोजन किया गया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, स्मृति चिन्ह के साथ दिया गया सर्टिफिकेट। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम से पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बड़ी संख्या में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में विशाल मैराथन रेस का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रेवाड़ी मैराथन के लिए भव्य तरीके से सजाया गया रूट, 91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को दिलाई शपथ, नशा मुक्ति के साथ दूसरे अपराधों को लेकर भी सावधान रहने की अपील। मैराथन रेस शुरू होने से पहले प्रतिभागियों पर बरसाए गए फूल, वंदे मातरम के जयकारों के साथ शुरू हुई दौड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 81 किलोमीटर की प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कल मेट्रो से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे थे वहीं पीएम मोदी सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़ा वीडियो जारी किया। मेट्रो में बच्चों और सहयात्रियों से बातचीत करते हुए दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के विकास को लेकर जानी सभी की राय। देश के 8 राज्यों के हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर हुई नियुक्ति, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वल्लूरी कामेश्वर राव को नियुक्त किया गया पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जज जस्टिस रविंद्र वी घुगे कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वृंदावन में अनोखा लठ मेला आयोजित, पहलवानों ने दिखाया दमखम, 50 फीट ऊंचे चिकने लठे पर चढ़ने का रोमांचक मुकाबला। लठे पर चढ़े पहलवान, तेल की बौछार से बड़ी चुनौती, पहलवानों ने जौहर दिखाने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लठे पर चढ़े पहलवान, तेल मिश्रित पानी की बौछार से पहलवानों को रोकते रहे सेवक। करीब 40 मिनट तक चला लठे पर चढ़ने का रोमांच, कड़ी मशक्कत के बाद मचान तक पहुंचे पहलवान। ठाकुर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर, नंदोत्सव में दिखी करीब 2.5 साल पुरानी परंपरा। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश ने वीकेंड को सुहावना किया, रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस से मिली राहत। मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने का दिल्ली के मौसम पर दिख रहा है असर, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई जगहों पर जमा हुआ पानी। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से जारी बारिश से 200 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई, एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की। उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश का दौर जारी, हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून मेहरबान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बना रह सकता है बारिश का दौर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना, कई स्थानों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई संभावना। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंची नदी। अलकनंदा नदी के किनारे के इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया। वाराणसी के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर, तो वहीं घटा गंगा का जलस्तर। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बने, ड्रोन से नजर आई बाढ़ की तस्वीरें। राजस्थान के सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया, रणथंभौर के नाले और झरने उफान पर। यूपी के बांदा जिले में बारिश के कारण यमुना और केन नदी उफान पर, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। तमिलनाडु के थंजावुर में कलानई डैम से छोड़ा जाएगा पानी, सिंचाई के लिए होगा इस्तेमाल। कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत। गुरेज घाटी में बर्फबारी के चलते रास्तों पर जमा हुई बर्फ, मशीनों से रास्ते को साफ करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ, पर्यटकों ने डल झील में उठाया प्राकृतिक नजारों का लुत्फ। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच कई स्थानों पर हाईवे तक पहुंची गंगा, रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों में खुशियों के सतरंगी रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: श्री गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली बापा की शोभा यात्रा। तमिलनाडु के धनुषकोडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद लेने जा रहे हैं पर्यटक। कश्मीर के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत। दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दोपहर के बाद तेज बारिश के आसार। सुहाने मौसम का लोग आनंद ले रहे हैं।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

0: नमस्कार, मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, मेहंदी की रस्म में झूमकर नाचे रक्षित और अपराजिता।

जगधात्री होगी गिरफ्तार। जुड़ रहा है संजोग और वृंदा का नया रिश्ता, आएगा कहानी में नया मोड़। बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर से पहले देखेंगे इसके खास नज़ारे।

0: साथी करेंगी ढेर सारी बातें, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: मंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी जहां एक तरफ एकता और राध्या के बीच लड़ाई करवाने में जुटी है, तो वहीं घर में होने वाले सारे अपशगुन कामों को लेकर वो राध्या का नाम लगा रही है। ऐसे में राध्या कैसे करेगी अपना बचाव, चलिए देखते हैं।

0: दादी के राध्या पर इल्जाम पर इल्जाम।
1: सॉरी बोलना आता है इस महारानी को। मैं पूछती हूँ तेल में पानी तुमने डाला कैसे?
0: एकता संघ हुए हाथ से। घर में शुरू हुआ नया तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में त्योहार की धूम तो चली गई, लेकिन राध्या पर इल्जाम लगने का सिलसिला अब भी जारी है। जी हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। असल में राध्या किचन में खाना बना रही होती है कि वहाँ पर पहुँच जाती है बुलबुल अपनी बोतल लेकर। और देखिए कैसे, जहाँ राध्या खाना बना रही है गरम गरम तेल है, लेकिन बुलबुल अपनी बोतल उछाल उछाल कर खेल रही है। हालांकि राध्या बुलबुल को ऐसा करने से मना

0: कर दी है, लेकिन बुलबुल कहाँ सुनने वाली है।
1: बेटा क्या कर रहे हो, किचन में से शैतानी नहीं करते हैं।
0: और ऐसे में हो जाता है हादसा, क्योंकि बॉटल इस गर्म तेल में गिर जाती है और बस फिर क्या, बुलबुल का हाथ तो जलता ही है, लेकिन राध्या पूरी कोशिश करती है बुलबुल को बचाने की।

0: इतने में वहाँ सभी घर वाले आ जाते हैं और देखिए कैसे एकता तो बुलबुल को देख रही है, लेकिन दादी लगा रही है राध्या पर इल्जाम और उस पर चिल्ला रही है।
1: देखिए, इसका हाथ जल गया है। अब मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप लोग ये कहेंगे कि मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ, लेकिन आज इसकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान पे खतरा हो गया था। अगर ये गरम तेल इस पे गिर जाता तो राधे तुम कैसे करके खाना बना रही हो?
2: सॉरी बोलना आता है इस महारानी को। मैं पूछती हूँ तेल में पानी तुमने डाला कैसे?
0: लेकिन जब बुलबुल बताती है कि गलती राध्या की नहीं बल्कि बुलबुल की ही है, तब एकता गुस्से में निकल जाती है और दादी भी शांत हो जाती है, क्योंकि इस बार भी दादी के सारे इल्जाम झूठे पड़ गए और राध्या बच गई।
3: इसमें बुलबुल की बोतल गीली पड़ी है।
4: बुलबुल, आपकी बोतल कढ़ाई में कैसे है? सुनिए दादी, हर बात पे राध्या को ब्लेम करने का बहाना चाहिए आप लोगों को। राध्या की कोई गलती नहीं थी, बुलबुल की लापरवाही की वजह से ये बोतल इधर गिरी, राध्या की नहीं।
2: राध्या बुलबुल को रोक तो सकती थी ना?
5: चाची ने रोका था पर मैंने नहीं।
1: बस बुलबुल, बहुत शैतान हो गई तो तुमको तो मैं बताऊंगी। चलो कमरे
6: चल। बुलबुल को मैं संभाल लूंगा, इसे समझा दूंगा, तुम इसके स्ट्रेस मत लो। तुम अगर कुछ बोलोगे तो
7: अब ये है कि शकुंतला मित्तल है तो बड़ी तेज औरत और राधे के नहा धोकर पीछे पड़ गई है। भाई कैसे भी करके राधे को घर से निकालना है, कुछ भी हो जाए। वहाँ कोई छीकेगा तो नाम राध्या का, यहाँ कुछ गिर गया तो नाम राध्या का। ऐसे ही हुआ है कि किचन में राध्या कुछ ब्रेड रोल बना रही होती है और साथ में बुलबुल जाती है उसके साथ खेलने के लिए कि चलो दादी दादी जैसे भूख लगी है ये वो। अब मस्ती है उस बच्चे में, बच्चे की मस्ती में उसकी पानी की बोतल गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाती है, जिससे छींटे उड़ते हैं और कॉफ काफ़ी ज़्यादा तेल में अगर पानी गिर जाए तो क्या हाल होता है। पूरा परिवार दौड़ा भागा आता है चीखे सुनकर, चलो जी मौका मिल गया दादी को राध्या की क्लास लेने का। तो दादी ने तो सीधा के सीधा राध्या को पकड़ के सबके सामने चिल्ला कर भन्ना कर सुना डाला कि राध्या तुम्हारे को इतनी तमीज़ नहीं, खाना नहीं बनाना आता, तेल में पानी तुमने डाला कैसे। फिर वहाँ से सब लोग बोलते हैं कि नहीं देखो बुलबुल ने बोला कि मैंने मेरे से गिरी बॉटल, मैं तो दादी ने मना भी किया था मेरे को चाची ने, लेकिन मेरे से गिर गई।
0: लेकिन भाई सब कुछ ठीक तो हो गया है लेकिन राध्या भी घायल हो गई है बुलबुल को बचाते हुए। ऐसे में देखिए कैसे वो अपनी माँ के नुस्खे के साथ इस चोट पर मरहम लगा रही है और ऐसे में उसका साथ दे रहे हैं प्रथम, और यहाँ शुरू हो गया है इनका हल्दी वाला रोमांस। देखिए कैसे मरहम लगाते लगाते दोनों एक दूसरे के चेहरे पर भी ये दही हल्दी का मरहम लगा रहे हैं।
4: तुम और तुम्हारी मम्मी के घरेलू नुस्खे जो मैं करता हूँ।

0: चाहिए। तुम दोनों तो अभी खुद बच्चे, कल को खुद के बच्चे होंगे तो।
1: माँ, जब खुद के बच्चे होंगे ना तो उनके साथ और ज्यादा बच्चे बन जाएंगे। पर देख, वो दिन जल्दी ही है।
2: खैर, प्रथम और राध्या के रोमांस पर तो ब्रेक लग गया और नया ड्रामा शुरू हो गया। असल में चलते चलते एकता को चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि अहम उसे संभालते हैं, लेकिन इसका इल्जाम भी दादी राध्या पर ही लगाती है। भाई, दादी तो राध्या के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे रुकिए, अभी और ड्रामा होना बाकी है जो कि शुरू हो चुका है। असल में गार्डन में राध्या है और उसे दिखता है कि वायर नीचे गिरने वाली होती है कि वो पहुंच जाती है वायर ठीक करने। तभी वहां एकता पहुंचती है जो फोन पर बातें कर रही होती है और एकता का पैर वायर में अटकता है और वो गिरने ही वाली होती है कि फिर आ जाती है राध्या ये डंडा लेकर उसे बचाने। खैर, राध्या ने तो एकता को बचाया है, लेकिन फिर एक बार घर वाले आते हैं और दादी फिर एक बार राध्या पर बरस पड़ती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि राध्या डंडे से एकता पर वार कर रही है। भाई, एकता भी राध्या के ही खिलाफ है, लेकिन अहम को समझ आ गया है कि राध्या ने तो एकता की जान बचाई है।

0: 그럼 내가 왜 족도라고 해?
1: 여보세요? 아, 그럼 이틀 하겠어요?
0: तुमने इतना वो गिरने से बचा लिया, थैंक यू सो मच।
2: जी आप उसको थैंक यू क्यों कह रहे हैं? और राधिका ऐसा क्यों होता है कि जब भी तुम मेरे आसपास होती हो हर चीज गड़बड़ी होती है, क्यों होता है ऐसा?
3: एक तो ये भी तो हो सकता है ना कि राधिका हमेशा आसपास इसीलिए होती है ताकि तुम्हें और बुलबुल को बचा सके।
2: मैं बहुत थक गई हूँ एंजी, प्लीज मुझे कमरे में लेके चलिए, मुझे राधिका से दूर रहना है।

0: अपना वहाँ कुछ काम कर रही होती है और वहाँ देखती है कि केबल की वायर नीचे लटके गिर रही है, तो ये सोचती है कि केबल की वायर में करंट तो होता नहीं है, फिर भी मैं डंडा लेके वायर को थोड़ा सा अलग से टांग देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ। राध्या अच्छा करने के लिए जाती है और डंडा वहाँ नीचे रख कर जब वो ऊपर जाती है, इतने में आ जाती है एकता। एकता का पाँव उसके ऊपर पड़ता है और एकता गिरते गिरते बच जाती है। तो एकता की चीखें सुन के दादी दौड़ी आती है, परिवार दौड़ा आता है। बस तो फिर क्या है, शुरू हो जाओ। देख लिया कि डंडा देखा और देखा एकता गिरने लगी है, आ गई राध्या। लो जी, राध्या के ऊपर सीधा बरसाओ शब्दों के वाण, ये काम है दादी का।
1: तो भाई दादी ने तो ठान लिया है कि वो राध्या को घर से निकलवा कर ही रहेगी। अब देखना होगा कि अब तक बचती आई राध्या आगे भी बच पाएगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़। मुंबई से कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल तू ही रे दिल में चल रही है जन्माष्टमी की तैयारियां और इसी बीच लग जाती है वृंदा को चोट। जहां देखने को मिला वृंदा के लिए संजोग का अपनापन, क्योंकि वृंदा की चोट पर संजोग ने लगाया मरहम। क्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती है वृंदा संजोग की नजदीकियां, देखना होगा मजेदार।
1: वृंदा को लगी चोट। संजोग बना सहारा। नए रिश्ते की शुरुआत।
3: रूह ने छू लिए जिस्म की खुशबू।
1: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा पर हमला हुआ था, लेकिन ऐन समय पर संजोग ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन वृंदा अभी भी काफी घबराई हुई है, ऐसे में उसका साथ दे रहा है संजोग। देखिए कैसे दोनों चाय की इस टपरी पर चाय पी रहे हैं और ऐसे में संजोग वृंदा की चोट पर मरहम पट्टी भी कर रहा है। भाई दोनों में दोस्ती तो हो गई है, लेकिन वृंदा अभी भी घबराई हुई है।

0: ऐसे में संजो वृंदा से जानना चाहता है कि उसका पति कौन है, कहाँ है। ऐसे में वृंदा देखिए कैसे अपने पति की तारीफों की पुल बांध रही है और उसने खुद को ही गलत बता दिया कि उसी ने अपने पति को छोड़ा है। हालांकि संजो को इन बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वृंदा ने सच छुपाया है सबकी भलाई के लिए।
1: देखिए मुझे 2 दिन से आपको देख रहा हूँ और आपके माथे पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखे नहीं।
2: आप यहाँ
1: स्वाति स्वाति यारों की यार
2: आपको कैसे नापसंद
1: आपका मुझे अगर आज आपका साथ दिया होता ना तो आज आपके साथ खड़ा होता। आप अकेली नहीं होती, गलत है ये, गलत इंसान है
3: वो गलत नहीं है। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उन्हें छोड़ा।

0: जी, तो वापस से एक बार फिर से मुझे नरेंद्र और विपुल पकड़ लेते हैं वापस से। मतलब अब इस बार उनको शादी नहीं करवानी है या फिर करवानी है, पता नहीं उनका क्या प्लान है। वो बस ये चाहते हैं कि मैं जाऊं और अपनी FIR वापस ले लूं कि ये नरेंद्र ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा, अब जो भी मेरे साथ हुए से मुझे सबक मिला होता है, तो मैं उनको कन्फ्रंट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने आज ये FIR वापस भी ले ली, तो इस दुनिया की जो हर लड़की है जिसके साथ गलत हो रहा है, इस दुनिया की हर लड़की जिसके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ तो ना इंसाफ होगा ना कि मैंने कंप्लेंट ली है और मैं वापस ले लूँ। तो ऐसे तो कभी नहीं हो सकता और मैं कभी नहीं लूँगी। तो वो वही मुझे वापस से खींचने की, वापस से फोर्सफुली मुझे ले जाने की, सुंदरपुर ले जाने की कोशिश करता है। और फिर बीच में एकदम हीरोइक एंट्री लेकर आता है संजोग, जिन्हें मैं संजू समझ बैठी हूँ। तो वो मुझे बचाते हैं और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, काफ़ी थैंकफुल हूँ। मुझे यहाँ पे लेकर आते हैं कॉर्नर में, जहाँ पे एक चाय की टपरी है, और मुझे हाथ में चोट लगी होती है। वो बहुत खींचतानी हुई, बहुत ज़्यादा, कल हमने बहुत ही एक एग्जॉस्टिंग सीन करा, इतना ज़्यादा, बहुत ड्रामेटिक सीन था वो। तो हाथापाई में मेरे हाथ में नील पड़ गया होता है, तो वो मेरे को बर्फ़ देते हैं बर्फ़ लगाने के लिए, जस्ट टू यू नो मेक मी काम डाउन, और मेरे से बातें करने की कोशिश करता है ताकि मैं फ्री फील करूँ, थोड़ा सा खुलूँ। तो ये होता है, फिर लास्ट में मेरा मूड ठीक करने के लिए मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये प्लीज़ किसी को मत बताना। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, आप ये खा लो, एक चिप्स देते हैं मुझे। तो मैं एक चिप्स खाती हूँ, फिर बोलते हैं एक और खा लो, फिर नहीं बताऊँगा। फिर बोलते एक और खाओ, मैंने बोला कि ठीक है, अब मेरे पेट भर गया, आपको बताना है बता दो। तो बहुत अच्छा सा स्वीट सा सीन था।
1: वहीं दूसरी तरफ वृंदा और संजोग सही सलामत घर पहुँचते हैं और देखिए कैसे संजू की माँ इन्हें देखकर काफी खुश हो गई है। इसी के साथ घर में जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां चल रही हैं, जहां हो रही है साज सजावट जो कर रही है संजू की माँ। साथ ही साथ इस जन्माष्टमी संजू भी आने वाला है।
0: जी, हम बहुत ही, जैसे एक पर्टिकुलर गुजराती फैमिली में जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा, पूजा करेंगे हम, और दही हांडी भी होने वाली है। फिर उसके बीच में क्या ड्रामा होता है वो तो आपको एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा।
1: तो क्या इस जन्माष्टमी हो जाएगा वृंदा और संजू का आमना सामना? भाई यही तो है कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट, जो देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल्स की दुनिया में जो ट्विस्ट आते हैं उससे कहानियां हो जाती हैं और भी ज्यादा मजेदार। तो चलिए देखते हैं कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।
1: अनुपमा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा और पूरा परिवार काफी खुश है और देखिए कैसे खुशी से ये झूम रहे हैं और नाच गा रहे हैं। ऐसे में अनुपमा भी आज अपने डांस का रोशन दिखा रही है, लेकिन इन सब खुशियों में भी उसे कहीं न कहीं अनुज की याद आती ही है।
3: हम यहाँ रोने धोने नहीं आए हैं, अरे इट्स सेलिब्रेशन टाइम गाइस, लेट्स पार्टी। आज ब्रो म्यूजिक ऑन इट ब्रो।

0: आप साथ थे तो ये सुप्तिन आया, आप साथ होंगे तो वो सुप्तिन भी आएगा जब मैं गृह प्रवेश करूंगी। कपड़िया जी साथ रहिएगा।
1: जल्द ही इन खुशियों पर ब्रेक भी लग गया क्योंकि अनुपमा के सामने फिर एक बार तोशु की सच्चाई आ गई है और शुरू हो गया है नया तमाशा।
2: मैं मंटू, वो मेरा दोस्त है ना मंटू, उसने ये न्यू होममेड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए हैं।
3: तेरे स्नैक्स जब मैंने चखे उसके बाद मुझे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आया।
4: माती लगता है कुछ गलत फहमी हो गई आपको, मेरे को तो चाय बनानी भी नहीं आती, मैं क्या ये स्नैक्स बनाऊंगा।
3: तोशु के स्कूल का फ्रेंड मंटू आया था।
5: मंटू?
6: अरे मुझे नहीं खाना है बात, कौन है इनसे कब से पीछे पड़ी हुई है।
3: मैं तो मंटू लाया है, मंटू ने बनाया है और मंटू ने तेरे लिए भेजा है।
6: ये तो उस कंपनी ने गौतम ने भेजे।
3: गौतम को तो देख लूंगी लेकिन तू यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा।
7: सैराब।
1: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में अपने माँ बाप से नाराज है ईशान, ऐसे में वो कमरे में चला गया है लेकिन यहाँ पर नयनिका है जो कमान संभाले हुए है और सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। भाई इन सभी में काफी बहसबाजी होती है, ढेर सारी बातें होती हैं और आखिरकार ईशान बाहर आ जाता है और त्योहार के मौके पर देखने को मिलती है ये हैप्पी फैमिली।
8: सच में मेरे लिए बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तुम मेरा पूरा परिवार मेरे पास वापस ले आई। सच में लक्ष्मी का रूप हो तुम, सच में।
9: हटा भी लक्ष्मी बनी नहीं है, अच्छे से शादी करके उनको घर लेके आएंगे।
10: अब जल्दी से शादी की डेट और टाइम फिक्स कर लो और जल्दी से शादी कर लो।
8: अच्छा ये भी अब मैं ही करूं, पूरी जिंदगी मैंने सारी चीजें अपनी खुद से ही करी हैं, अब तो आप लोग यहाँ आ गए, अब आपकी जिम्मेदारी है ना मेरी शादी, तो अब आप सोचिए मेरी शादी के बारे में दोनों।
10: ठीक है अब देरी नहीं करेंगे, सबको शादी की न्यूज भी तो देनी है।
9: अरे मेरे ईशान बाबा की शादी हो रही है, ये सबको बताना तो पड़ेगा ना, आज से हमें तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। अनका बेटा तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। हेरा बेटा तो नवाब है पर इसके बाबा तो एक मामूली इंसान है। अब ये छोटी मोटी चीजों के लिए समय थोड़ी ना देगा जी,
10: इसने सबसे जरूरी काम तो पहले ही कर दिया, लक्ष्मी को ढूंढकर घर लिया है और अब इस लक्ष्मी का बहू के रूप में स्वागत कर गृह प्रवेश की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी नहीं।
11: सीरियल तेनाली रामा में तेनाली की बीवी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रियंवदा कांत ने करवाया अपना दुल्हन वाला फोटोशूट। इसके अलावा सास बहू और बेटियां की टीम ने की प्रियंवदा संग खास बातचीत, जहां हमने की प्रियंवदा की जिंदगी में तांका झांकी,

मिलिए प्रियंवदा कान से, जो कभी तेनालीरामा की शारदा थी तो कभी स्प्लिट्सविला 12 की विनर। ये रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर कुल्फी कुमार बाजे वाला था, ढेर सारी टीवी शो दिल्ली के इस बंगाली बाला ने किए, लेकिन आज वो बनने जा रही हैं दुल्हनिया और दिखाएंगे उनका दो दो रूप। एक है शादी के लाल जोड़े में, जहाँ पर कभी दुपट्टे के साथ कभी बिना दुपट्टे के अलग अलग रूप दिखाएगी प्रियंवदा, तो वहीं पर व्हाइट ड्रेस में रिसेप्शन लुक या यूं कहें शादी वाला लुक भी प्रियंवदा लेने वाली है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। यानी प्रियंवदा कान बनने जा रही हैं दुल्हनिया इस खास फोटोशूट के लिए। मेकअप आर्टिस्ट उसामा खान और उनकी टीम आज दे रही है प्रियंवदा को खास लुक, इसलिए उनका मेकअप थोड़ा सा खास है। उनका हेयर स्टाइल बहुत ही अलग है, जहां पर उन्होंने बड़ी सी चुटिया बनाई है, फूल लगाए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं प्रियंवदा का ये खास फोटोशूट। प्रियंवदा का लुक नंबर वन है दुल्हन वाला, और दुल्हन बनने के लिए उसामा खान आज उनका खास मेकअप कर रहे हैं। उनका बेस थोड़ा सा हैवी है, आईज पर काफी मेहनत की गई है, कंटूरिंग की गई है, ताकि वो दुल्हन की तरह चमक सके। लेकिन सबसे खास है उनका ये हेयर स्टाइल, जहां पर आज देखिए गुलाब के फूलों से उनकी खास चुटिया बनाई जा रही है, बालों को थोड़ा कर्ल दिया गया है।

फाइनली कॉस्ट्यूम पहनकर प्रियम वदा रेडी हैं अपने पहले लुक के शूट के लिए। भाई सबसे पहले उन्होंने बिना दुपट्टे के शूट किया। भाई आजकल की लड़कियां बिना दुपट्टे के दुल्हन बनना चाहती हैं ताकि उनका चेहरा, मेकअप और उनकी ज्वेलरी दिख सके।

लुक नंबर टू है व्हाइट ड्रेस में। भाई इसके लिए मेकअप थोड़ा सा चेंज हुआ और इस व्हाइट ड्रेस में उन्होंने एक रिसेप्शन कब व्हाइट वेडिंग वाला लुक भी पेश किया। कहने को ये इंडो वेस्टर्न फ्यूजन है, थोड़ा मॉडर्न है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न दुल्हन वाली वाइब्स पेश की।

0: करे। मैंने इनसे कहा ही था कि मुझे कुछ ट्रेडिशनल करना है पर कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टच होना चाहिए, एंड आई थिंक आजकल की सारी मॉडर्न ब्राइड्स व्हाइट और पेस्टल्स पहनती है, तो हमने ट्रेडिशनल भी किया है और
1: और
0: मॉडर्न भी।
1: मॉडर्न भी क्या है, हमारा जो आउटफिट है वो इंडियन है बट हमने थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया है लुक में। एंड जो हमारा फर्स्ट लुक था वो प्रॉपर ब्राइडल लुक था। तो प्रियमता बताएंगे आपको कि उनको कैसा लगा सारी चीजें।
0: आई थिंक बहुत ही सुंदर था जो हेयर स्टाइल और ज्वेलरी, हमने एकदम एक ट्रेडिशनल डिजाइन को एकदम मॉडर्न आजकल की जो जेंजी ब्राइड्स हैं जैसे ड्रेस करती हैं वैसा लुक रखा। एंड आई थिंक दिस कैन बी अ वेडिंग लुक, ये रिसेप्शन लुक भी हो सकता है, ये ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड का लुक भी हो सकता
1: जी
0: है, ब्राइड की बहन भाभी सबका लुक हो
1: सबका
0: सकता है। सो इट्स वेरी वर्सेटाइल, मुझे तो बहुत अच्छा।

चाहे ट्रेडिशनल दुल्हन बनना हो या फिर व्हाइट ड्रेस की दुल्हन बनना हो, प्रिया मदान ने अपने दोनों लुक्स को एंजॉय किया। लेकिन उनके दिल को भाता है वो रेड ड्रेस वाला ट्रेडिशनल दुल्हन लुक।

0: आई थिंक रेड मेरा फेवरेट कलर है एंड आई थिंक वो मतलब ब्राइड्स इन रेड इज समथिंग एल्स. हम लोग हमेशा वैसे ही इमेजिन करते हैं और उस डे पे स्पेशल आपको रेड ही और एनहांस करता है आपके फीचर्स एंड स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए आई थिंक रेड बहुत अच्छा कलर है. तो हाँ आई थिंक रेड इज मोर माई फेवरेट.
1: वैसे प्रियामदा को रील्स बनाने का शौक है और अपने दोनों लुक्स में ही उन्होंने तरह तरह के रील्स बनाई, अपने डांस मूव्स भी दिखाए।

0: जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में दिखने वाली प्रियंवदा का ये टीजर था, क्योंकि अब ओटीटी और वर्टिकल ड्रामास की फील्ड में भी एंट्री कर चुकी हैं प्रियंवदा, और ये फोटोशूट उनके एक नए प्रोजेक्ट का एक ट्रेलर था। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट। और आज मेरे शो में आई है एक ऐसी अभिनेत्री जो मैं कहूंगा उनके एक अनोखा सा मुझे रिकॉर्ड जैसा लगा, क्योंकि क्या होता है कि रियलिटी शो जो होते हैं वहां पे लोग अपना करियर बनाने आते हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ आज खास मेहमान है ये ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में काम किया, उसके बाद उन्होंने रियलिटी शो किया, उसको जीता था, तो ये बहुत ही अलग है। तो मेरे साथ प्रियंवदा कांत, तेनाली रामा की शारदा के रूप में आप इन्हें जानते हैं, लेकिन एक और पहचान है इसके बारे में, आज हम प्रियंवदा से बात कर रहे हैं। बहुत ही ये स्प्लिट्सविला सीजन 12 स्प्लिट्सविला सीजन 12 की विनर है प्रियंवदा। और ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, यंग क्राउड जानता है, बट जनरली टीवी सीरियल की दुनिया में लोग ये नहीं पता। तो प्रियंवदा, जनरली लोग क्या होता है कि रियलिटी शो इज टिकट टू स्टारडम, पर आप ऑलरेडी टीवी स्टार थी, आपने बहुत सारे शोज किए हुए थे, उसके बाद आपने स्प्लिट्सविला 12 किया और जीता भी, तो ये बहुत ही अलग था, बिकॉज जनरली ऐसा होता नहीं है। आई थिंक इस स्प्लिट्सविला के इतिहास में यू आर द ओनली वन हु हैज एवर डन दैट। तो क्या सोच के आपने स्प्लिट्सविला साइन किया, जो जनरली बहुत ही, और आपके साथ जितने भी लोग थे सब दे वर न्यूकमर्स।
2: एंड आई वाज स्क्रीमिंग और मैं हवा में कूदी एंड आई वाज सो हैप्पी। Yeah, absolutely. Actually, everybody was very, very shocked. I remember, मुझे जब कॉल आया था, मैं कोई शो करके बस खत्म ही हुआ था, and 5 days, आपको पता ही है, मतलब टीवी शो एक खत्म होता है तो उसके बाद एक्टर्स सो जाते हैं, मतलब एक हफ्ते के लिए ना घर से बाहर निकलना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। तो आई वॉज इन दैट फेज एंड आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग, स्लीपिंग एंड जस्ट रेस्टिंग माई बॉडी, एंड आई गॉट अ कॉल सेइंग ऐसे ऐसे स्प्लिट्सविला का है और जयपुर में हम लोग शूट कर रहे हैं, आज रात को 2 बजे निकलना है।
3: Hi, this is Priyamada Kant. I'm a Bengali girl, born and brought up in Delhi.
2: Sir, हाँ क्या? He said, no, we have 2 contestants short, so we are desperate to look for somebody. तो आप करोगे? So I said, यार मतलब क्या? As a host? आप किस लिए पूछ रहे थे? He said, no, as a contestant. So I was like, तो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में बहुत क्रेज है रोडीज स्प्लिट्सविला का, मतलब देखा था कि ये बहुत कूल शो है, लाइक यूथ के लिए बहुत कूल शो था,
3: लोगों को लगता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर एक्चुअली आई एम क्वाइट एन इंट्रोवर्ट।
2: सो आई ऑलवेज वंडर्ड कि वहां पे लोग क्या होता क्या है, जैसे मेरे से कोई भी मिलता है ना तो मुझसे स्क्रिप्टेड होता है ना, तो मेरा भी ये क्वेश्चन था कि क्या वो स्क्रिप्टेड है, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चल के देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा तो आ जाएंगे वापस, किसको पता चलेगा, किसी को नहीं बताऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी। सो आई टुक दैट डिसीजन, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वर अगेंस्ट इट, दे वर लाइक यू आर एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, वहां जाके लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुम तो नहीं देती हो, तो यू विल फील सो वियर्ड गोइंग देयर, डोंट डू इट। एंड आई वेंट, और वहां पर पहला सवाल सनी और रणविजय का मुझसे यही था कि Usually people come here अपना करियर बनाने के लिए, तुम करियर बनाने के बाद यहाँ क्यों आई हो?
1: तो मतलब इतिहास में दर्ज होगी
2: और मैं जो डरी, मुझे लगा कहीं मेरा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा यहाँ के करियर, बट आई थिंक इट वॉज अ रैंडम कॉल आई टुक, क्योंकि एज टीवी एक्टर्स क्या होता है ना कि आपको लोग सिर्फ आपके किरदार कैरेक्टर के नामों से जानते हैं, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है ना कि यार मैं कौन हूँ, ये भी लोग जाने तो मजा आएगा। सो इट वॉज हाफ ऑफ दैट कि प्रियंवदा कौन है ये मैं ऑडियंस तक पहुंचा पाऊं, और मेरी जो ऑडियंस इतने टाइम से जुड़ी हुई है वो भी देखेगी और वो सोचेगी अच्छा शी इज लाइक दिस इन रियल लाइफ, तो एक वो था, एक जानना कि स्प्लिट्सविला में हो क्या रहा है वो था, तो ये सब डिसीजन ने मुझे मोटिवेट किया जाने के लिए, बट आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई थिंक बिकॉज मुझे इतना मजा आया ना, एंड आई डिडंट थिंक अबाउट द कंपटीशन, आई थिंक इसी वजह से मैं जीती।
3: आई वाज लाइक अ मैड किड एंड आई गॉट सो सो एक्साइटेड बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर।
1: पर जो क्या रिश्ते इतने सच्चे होते हैं, बिकॉज़ आपका और श्रेय का रिश्ता जुड़ा, लेकिन उसके बाद आप अलग रास्ते हैं, श्रेय अलग है, तो बट क्या इसमें रिश्ते जो होते हैं केवल उसी शो तक के होते हैं, आगे तक जाते भी है?
2: बिल्कुल आगे तक भी जाते हैं कई बार, पर आई थिंक बिकॉज ये पब्लिक आई में है ना, लोग इसको बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं और बहुत ज्यादा इसको देखते हैं कि इनका क्या हुआ, वो किसी भी कोई भी रिश्ता आप देखेंगे, बिग बॉस हो गया या ऐसे भी एक्टर्स जो एक शो में काम करते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, पर शो जब खत्म होता है तो आप देखते हैं कि अपने अलग अलग रास्ते. तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि प्यार सच्चा नहीं था या दे जेन्युइनली डिडंट लाइक ईच अदर या शो के लिए कर रहे थे. जब आप एक एनवायरनमेंट में होते हो, 24 घंटे एक साथ बिताते हो, बाहर के किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, तो ना एवरीथिंग इज ऑन स्टेरॉइड्स. लाइक सब कुछ 10 टाइम ज्यादा स्पीड से होता है. और जब आप नॉर्मल जिंदगी में बाहर आते हो ना, तो आप अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने माँ बाप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, इतना तो सब डाइल्यूट हो जाता है. और ये चीज ना ऑडियंस रियलाइज नहीं करती, उनको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहे थे, तो जानबूझ के. इट्स एक्चुअली नॉट दैट. आप जैसे शोज में भी होता है ना, लोग डेट करने लगते हैं अक्सर को एक्टर्स एक दूसरे को, और जब शो खत्म होता है तो अलग हो जाते हैं. तो इट्स प्रिटी मच लाइक दैट. तो फीलिंग्स, आई मीन मेरी तो, आपने तो श्रेया मेरे साथ शूट भी किया था उस वक्त.
1: हमने किया था, मैं बहुत शॉक था बिकॉज प्रियंवदा वॉज अ विनर. तो मेरे मम्मी सवाल ये है कि मतलब प्रियंवदा वॉज ऑलरेडी बिकॉज आई न्यू हर फ्रॉम हर कैरेक्टर्स फ्रॉम हर शो स्पेशली तेनालीरामा.
4: हमारा मतलब है आपको हाथ नहीं धोने तो उठा लो.
1: तो मैं थोड़ा सा शॉक था लेकिन बट आप जीत के आई थी तो एक फेदर इन द कैप होता है कि
2: बिल्कुल.
1: जी.
2: तो काफी लोग शॉक तो थे, बट द सिल्वर लाइनिंग वाज आई वन, तो वो बहुत अच्छा रहा.
1: जी आपकी करियर की बात करूं तो दिल्ली से मुंबई आए और आपको एकता कपूर ने बेताब भी की तमन्ना है मैं लॉन्च किया विच वॉज योर मेडन शो.
5: बेताब दिल की तमन्ना है.
1: तो हाउ वाज एक्सपीरियंस लॉन्च बाय द एकता कपूर?
2: आई थिंक सब एक्टर का ड्रीम था उस वक्त टू गेट स्पॉटेड बाय बालाजी एंड गेट देयर फर्स्ट ब्रेक फ्रॉम देम.
4: एक सही और एक गलत. सही है.
2: एंड इट वॉज रियली लाइक अ ड्रीम, यू नो. ऑनेस्टली मैं जब दिल्ली में थी, मैं ये स्टोरी सुनती थी कि फेसबुक से किसी को सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. ऐसे थोड़ी होता है. बट व्हेन थिंग्स रियली वर्कड आउट फॉर मी, आई वाज लाइक हाँ ऐसा होता है. तो आई रियली बिलीव मैनिफेस्टेशंस कम ट्रू. यू नो, यू यू थिंक अबाउट समथिंग, यू वर्क टुवर्ड्स इट. और जब मैं पहली बार एकता मैम के ऑफिस में बैठी थी और मैं देख रही थी, वो मुझे कुछ समझा रही थी और मैं बस ऑफिस और उन्हें घूर रही थी कि ये सच में हो रहा है ये. हाँ, आई वाज लाइक ये तो मैंने सुनी है ये कहानियां कि मैम बुला के ऑफिस में डांटती हैं और ये सब होता है, तो सब मैंने सुना है और ऐसा मेरे साथ हो रहा है. तो it was really a lot of fun.
6: इस शहर में पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है जिसने हमें इतनी इज्जत दी, हमसे इतनी अच्छे से बात की.
1: तो प्रिया, मतलब एक और शो में आपके के बारे में बात करना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होगा, पर पता नहीं, इट्स द मोस्ट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर मेड, दैट वाज स्विम टीम.
4: स्विम टीम रोड टू ओलंपिक्स.
1: आई थिंक एक बहुत अलग शो था एवर ऑन इंडियन टेलीविजन. और चैनल भी, आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं, चैनल भी एक शो लेके आया था विच वॉज अबाउट स्विमर्स एंड यू एक्चुअली लर्न स्विमिंग.
2: सो
3: हाथी जंगल में जंगल के साथ जंगल में मंगल भी हो गया.
1: So tell me something about Swim Team and how different
2: it was. It was such a different show, you know. At that time, ऐसे तब तो YouTube का जमाना भी नहीं था, ऐसे youth oriented shows बनते ही नहीं थे. It was one of those shows. I think it was very iconic because swimmers और swimmers की कहानी, मतलब सिर्फ एक regular love story नहीं थी. और उसके लिए उसमें मैं best swimmer play कर रही थी और जो सारे actors थे वो सब नेशनल लेवल स्विमर्स.
1: पूजा बनर्जी तो स्विमर ही थी.
2: वो तो स्विमर ही थी.
1: आपने तो सीखी होगी फिर.
2: हाँ, वो तो. और वो, और मुझे हर सीन में उसको हराना था. और मैं ऐसी कि पानी में जाऊं तो सीधा डूब जाऊं, मेरी तो इतनी खराब हालत, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी. तो पहले कोई और कर रहा था आई थिंक. एंड बिकॉज उस कैरेक्टर में ना बहुत शेड्स थे एक्टिंग के, बहुत, मतलब शी वाज वल्नरेबल, शी वाज क्यूट, शी वाज बॉसी, शी वाज एंग्री, शी वाज नेगेटिव, शी वाज पॉजिटिव.
3: तो वही जय है जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ, जिसे मैं इतने टाइम से ट्रस्ट करती आ रही हूँ.
1: हाँ, ओटीटी कैरेक्टर.
2: हाँ हाँ हाँ हाँ तो बहुत ही, मतलब वेरी पू बट यू नो मैनिपुलेटिव पू काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो वो स्विमिंग तो कर पा रही थी पर वो कैरेक्टर थोड़ा करना ट्रिकी था.
3: मैंने तुझसे कहा था ना दैट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, लेकिन फिर भी तूने मुझे फोर्स किया.
2: तो वो बहुत लास्ट मोमेंट तक ढूंढ रहे थे किसी को एंड शो वाज अबाउट टू गो ऑन एयर. तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा देखो वी रियली लाइक योर ऑडिशन.
4: या लस्ट और दोस्ती में से एक की सुननी पड़े
2: तो आप करोगे? ऐसे हाँ मैं तो करूंगी, पर स्विमिंग तो नहीं करनी ना. ऐसे तो नहीं, स्विमिंग टीम है. ऐसे तो मतलब मैं करूंगी स्विमिंग, बॉडी डबल नहीं करेगा? ऐसे नहीं, ये रियल शो है.
1: सर की स्विमिंग
2: उन्होंने ट्रेनर रखा, मैंने स्विमिंग सीखी, बट फाइनली जब रेसिंग शॉर्ट्स और वो सब होता था ना, तो ऑब्वियसली वो नेशनल लेवल के ही स्विमर्स करते थे, तो बचाए बाकी एक्टर्स को करना पड़ता था क्योंकि सबके लिए बॉडी डबल्स नहीं थे, तो सबको बहुत गुस्सा आता था जब भी कंपटीशन शूट होता था ना, तो वो लोग सब कर रहे हैं और मैं साइड में बैठ के आराम कर रही हूँ और सिर्फ अपने क्लोजेस देती थी. बट दैट वॉज रियली एन आइकॉनिक शो. मतलब जिन भी लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए. आई थिंक इट विल प्रोबब्ली बी ऑन,
1: या एपिसोड्स अवेलेबल,
2: हाँ, जियो हॉटस्टार और कहीं तो होंगे. जैसे लोग हिप हिप हुर्रे वगैरह की बात करते हैं कि हमारे बचपन से पहले की है, वैसे आपके बचपन की ये स्टोरीज होंगी, तो इट्स अ रियली फन शो एक्चुअली. आई एम ग्लैड यू रिमेम्बर्ड.
1: यस ऑफ कोर्स आई कीप वॉच ऑन टेलीविजन. बट प्रियंवदा कांत को जिसने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई वो था एक ऐसा शो जो बच्चे बूढ़े जवान सबने देखा, एंड दैट वाज तेनाली रामा. एंड योर क्यूट कैरेक्टर उठा लो बिकेम सो पॉपुलर.
4: आपको हाथ नहीं धोने तो उठा लो, स्वयं को उठा लो और आ जा.
1: तो शारदा ऑफ तेनाली रामा वाज द वन विच गेव यू द नेम फेम. Somewhere that show was magical. दो सीजन्स में
2: Absolutely.
1: आपकी रिप्लेस भी हुई लेकिन फिर ओरिजिनली भी आप आई, मतलब
2: हाँ,
1: शारदा ने आपको छोड़ा नहीं और आपने शारदा को हमेशा एक
2: बिल्कुल
1: वेरी
2: बिल्कुल.
1: क्यूट कैरेक्टर
2: हाँ, वो बहुत ही, मतलब वो भी द वे इट वर्कड आउट. शारदा वाज एक्चुअली इनिशियली नॉट सपोज टू बी दैट इम्पोर्टेंट. वो शो था कृष्णदेव राय और तेनाली के बीच में और तथाचार्य, पर वो कैरेक्टर इतना मजेदार था और उस पे मैंने इतनी मेहनत की कि अम्मा का इंटरप्रिटेशन करो, ये करो, वो करो, एंड इट जस्ट क्लिक्ड विद द ऑडियंस. जब उन्होंने फैमिली सीन्स देखे ना, उनको इतना मजा आया दैट दे डिसाइडेड टू इंक्रीज दैट कैरेक्टर. के बाद दैट कैरेक्टर वर्क्ड और वो इतना बड़ा हिट हुआ. फिर ऑब्वियसली द शो टुक अ लीप, तो मुझे लीप उस वक्त नहीं करना था. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट, क्योंकि बच्चा आ रहा था और उस वक्त मुझे बच्चे के साथ एक्टिंग करने का मन नहीं था. मुझे लगा, और मैं ऑलरेडी 1.5 ईयर्स कर चुकी थी, तो
1: जी.
2: मुझे लगा कि मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, कुछ और चीज. दैट्स व्हेन आई वेंट टू स्प्लिट्सविला एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज लाइक, यू नो, आई एम यंग, लेट मी एंजॉय दिस टाइम, क्योंकि टीवी करने का तो वक्त है, वो तो करती ही रहूंगी. आई एम एन एक्टर, मैं मरते दम तक टीवी करना चाहती हूँ. बट आई थॉट लेट्स डू समथिंग एल्स, सो आई क्विट. उसके बाद समबडी एल्स केम, देन उसके बाद एक और लीप हुआ, फिर कोई और आया, फिर बीच में लॉकडाउन के बाद वो लोग फिर से सोच रहे थे कि शुरू से शुरू करेंगे, तब मुझे बुलाया, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट देन. फिर जब 4 साल बाद सीजन 2 आया, सो देन दे कॉल्ड मी. सो आई सर आप शुरू से शुरू कर रहे हो? दे सर हाँ. सर अभी घूम के फिर से मेरे पास आया तो मैं तो करूंगी ही. तो तब
1: डेस्टिन टू बी,
2: हाँ, इट वाज डेस्टिन टू बी. एंड आई थिंक, आई मीन, एवरीवन डिड अ वेरी गुड जॉब आफ्टर मी आल्सो, बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ कैरेक्टर. बट आई थिंक शारदा में ना बहुत सारी प्रियंवदा भर दी थी मैंने. वो 50% जो लिखा हुआ था वो था, और 50% मैंने अपनी पर्सनैलिटी डाली थी. तो किसी और के लिए वो करना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं जैसी हूँ वो मैंने पूरा उसको कैरेक्टर को बनाने में लगा दिया था.
4: हमारे रामा को पहले जैसा रामा बना दो माँ.
2: तो इसलिए आज भी लोग इतना प्यार दे रहे हैं
1: बच्चे, क्योंकि बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. आपने बच्चों का दिल जीत लिया दीवार का,
2: बिल्कुल.
1: एंड आई एम श्योर जब आपको आपके फैंस मिलते होंगे, उठा लो बिकॉज़ एक सिग्नेचर हुक लाइन बहुत कम कैरेक्टर्स के कर पाते हैं.
2: हाँ,
1: हाउ डिड दैट उठा लो एंड व्हेन द फैंस मीट यू स्पेशली किड्स, क्या पूछते हैं आपसे?
2: यही उठा लो, पीपल मीट मी. एंड यू नो व्हाट सरप्राइजिंग इज दैट टीवी इज नॉट अ मीडियम, लाइक वी डोंट हैव मेल सेंट्रिक ऑडियंस. टेलीविजन ना बहुत कम लोग, जेंट्स बहुत कम देखते हैं, तो इतने सारे
1: बच्चे बूढ़े और जवान,
2: बच्चे बूढ़े और जवान, इतने सारे ऑडियंसों के मैं तो सोच ही नहीं सकती. अभी मैं बिल्डिंग में भी मिलती हूँ तो जितने भी लोग हैं, देयर यू नो अंकल्स एंड एवरीबडी, देयर लाइक. एक दिन एक आंटी आई मेरे घर पे, बेल बजाई, कहा अरे आप ही हो ना, आप यही रहते हो ना, हमने सुना है आप यहाँ रहते हो. मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है. मैंने तो देखा नहीं है इतना, लेकिन मेरे यहाँ से
1: बहुत अलग है. सीरियल जलील लेडीज देखती है, लेकिन ये शो जो सीरियल ऐसा अनोखा है, लेडीज के अलावा सबने देखा.
2: करेक्ट करेक्ट. तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड तेनाली रामा के फैन है और मेरा बेटा आपको स्प्लिट्सविला की वजह से फॉलो करता है.
4: ऐसी परिस्थिति में हमारे हाथ में थाल नहीं, आपके हाथ में ढाल होनी चाहिए.
2: ओके. ये भी इंटरेस्टिंग है.
1: जी, बट कमिंग बैक टू लेडीज, तो हमें ये रिश्ता, टू कुल्फी कुमार बाजे वाला, बैरी पिया, यू हैव डन द वैरायटी ऑफ दिस सास बहू फैमिली ड्रामास. तो ये जो सो कॉल्ड फैमिली ड्रामा जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और औरतें सबसे ज्यादा देखती हैं, वहां पर रोना धोना ड्रामा, ओवर द टॉप थोड़ी एक्टिंग होती है. हाउ वेल वर्स्ट यू आर विद दैट एंड हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दोज रेगुलर सास बहू शोज?
2: I think every show has its set of challenges. I think जहां मैंने पॉजिटिव किया, जैसे रिसेंटली अभी मैं भूत बनी थी जो घर वाली पेड़ वाली में, उसमें तो कभी पेड़ पे लटका रहे हैं, कभी कुछ करे. कॉमेडी शो था पर इतना इमोशनल था कि रोना है, स्टंट्स भी करने हैं और उस जमाने की बातें भी करनी है, तो वो एक अलग चैलेंज है. तेनालीराम ऑब्वियसली कॉमेडी है, फिजिकल है, डायलॉग्स वगैरह है, तो वो टफ टफ बहुत टफ लाइंस है, तो वो था. कॉस्ट्यूम ड्रामा वो एक अलग. अब जब आप रेगुलर टीवी शो में नॉर्मल कपड़े पहनकर वो, तो उसमें डायलॉग्स इतने कभी कभी बिची और मैन्युपुलेटिव होते हैं. जब भी मैंने नेगेटिव किया है, द अमाउंट ऑफ ट्रोलिंग दैट यू गो थ्रू बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स अ चैलेंज. उसके बाद सेट पे भी ना क्या होता है, जब आप पॉजिटिव प्ले करते हैं ना तो सब आपको बड़ा प्यार से देखते हैं, जब आप नेगेटिव करते हैं तो सेट का भी माहौल अलग हो जाता है,
1: बट कहते हैं ना कि जो पर्दे पर दिखता है लोग उसे सच मान लेते हैं,
2: मान लेते
1: उनको लगता
2: हैं.
1: है कि वैम्प जो है रियल लाइफ में कैसे.
7: हमें भी खुशबू आ रही है बड़ी जोर की.
1: ऐसा हुआ है क्या?
2: और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, ये सेट पे भी होता है.
1: अच्छा.
2: सेट के भी जो, क्योंकि आपको कोई रोज 12 घंटे खराब चीजें किसी को बोलते हुए सुनेगा, आपको पता है वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार देख रहे हो ना कुछ बुराई बोलते हुए, कि अरे ये जब भी सेट पे आती है कुछ बुराई बोल रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो ट्रेन हो ही जाता है. तो या तो सब लोग बहुत डरने लगते हैं आपसे, कि अरे ये तो कुछ सुना देगी, जबकि मैं ऐसी हुई नहीं, और या तो सबको लगता है अरे ये तो यू नो शी इज अ बैड पर्सन, बट इट्स नॉट ट्रू. तो वो एक है, तो उसका बहुत डाउन साइड है कि वो सहना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट नाउ. अभी थोड़ा काफी कर लिया, उसमें मजा भी आया बहुत, पर अब मैंने थोड़ा वो सब नेगेटिव करने से ब्रेक लिया. बट एज एन एक्टर आपको तो नई नई चीजें करते रहना पड़ेगा, और उसी में मजा है.
1: वेब मीडियम की बात करूं तो आपका एक बहुत लास्ट शो नाम बड़ा नाम करेंगे,
8: बड़ा नाम करेंगे.
1: बहुत ही क्यूट कैरेक्टर था, तो भाभी का कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा एक बहुत सटल इमोशन से. राशि प्रोडक्शंस कहते हैं, राशि प्रोडक्शन में काम करना भी एक ड्रीम होता है, तो आई
2: बिल्कुल
1: वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इस रोल पर जाते हैं फॉर बड़ा नाम करेंगे.
2: बिल्कुल वैसा ही जैसा लोग कहते हैं, जैसा सुना है कि इट्स लाइक अ टेम्पल, यू नो यू गो देयर, इतना प्यार, इतना अच्छा माहौल, इतनी कम आवाज में बात, इतना रिस्पेक्टफुल एटमोसफेयर. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और कहानी भी बहुत प्यारी थी. एंड आई थिंक मैंने पहली फिल्म में अक्सर कहती हूँ, मैंने हम आपके हैं कौन देखी थी, तो मेरे लिए सिनेमा इज सूरज भर जाते थे. तो उनसे मिलना, उनकी डायरेक्शन में बैठना, उनका सुनना, आई थिंक दैट्स दैट्स अ ड्रीम, बिकॉज यू नो वी ग्रोन अप, आई वाज अ बेबी लिटरली जब मैंने देखी है पहली फिल्म, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक राजश्री का तो वो है ही ना, उनके सबका ही फैमिली एटमोसफेयर होता है. तो हम जब शूट भी कर रहे थे, और राजश्री की भाभियां तो होती ही हैं इम्पोर्टेंट, उनका तो अलग ही दिल होता है. या एब्सोल्युटली, इन बड़ा नाम करेंगे, तो आई वाज सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ लव आई गॉट, क्योंकि मेरा इतना बड़ा रोल नहीं था, पर मैं जो भी जितने भी सीन्स थे, पीपल रिमेम्बर देम, एंड आई गॉट कॉल्स. मैं 15 साल हो गया मुझे काम करते हुए, पर मुझे इस शो के लिए सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आए, अपार्ट फ्रॉम तेनाली ऑब्वियसली, कि पीपल लाइक यार यू वर सो गुड, यू वर सो नेचुरल. एंड मैंने कोई मेहनत नहीं की ये करने के लिए, आई वॉज जस्ट बींग, आई वॉज जस्ट देयर, आई वॉज जस्ट इन माई कैरेक्टर, एंड इट ऑल जस्ट वर्क आउट. तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया कर.
1: तो अभिनेत्री होने के अलावा प्रियंवदा का एक और पैशन है, वो है डांसिंग, और इनका कोरियोग्राफी, आप इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर लव फॉर डांस, हाउ डिड इट स्टार्टेड, एंड आपने सुना है कि आपने काफी कुछ ट्रेनिंग भी ली है, तो ये स्कूल कैसे शुरू हुआ?
2: जी, तो एक्चुअली इट गोज बैक अगेन टू हम आपके हैं कौन. जब पहली बार मैंने देखी और मुझे लगा हीरोइन मतलब डांस, हीरोइन मतलब माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित मतलब डांस. तो मुझे तब से था कि मुझे डांस करना है और डांस सीखना है. तो आई लर्न ओडिसी, आई एम अ ट्रेन ओडिसी डांसर. तो उसमें मैंने प्रोफेशनल लेवल पे मैं करती थी, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो आज मैं डांसर ही होती. बट अलॉन्ग विद दैट मैंने बैले सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा. फिर जब मैं बॉम्बे आई तो भी जब भी शोज के बीच में वक्त मिलता था तो मैं वो कर लेती थी कि कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, कुछ वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया. तो मैं और मेरी कॉलेज टाइम की दोस्त, हम लोग बॉम्बे में थे और हमने सोचा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू वर्कशॉप्स लेट्स स्टार्ट आवर ओन, तो वो अच्छा रहेगा. तो

0: ठाकुर, मौनी रॉय, ये सब लोग टीवी से, इनफैक्ट शाहरुख खान और विद्या बालन भी टीवी से है, तो
1: यामी भी
0: हमारे,
1: कर रही है कितना
0: यस,
1: अच्छा।
0: यामी गौतम, यस। तो ये क्यों है बॉलीवुड ऐसा, क्यों टीवी को ऐसे थोड़ा सा क्यों इतना अंडर प्ले करता है?
1: अब काफी कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था, पर अब तो बहुत सारे एक्टर्स इधर उधर, अभी आप देखेंगे रामायण में कास्ट हुए
0: जी,
1: कितने टीवी के लोग, आई थिंक वो डिवाइड धीरे धीरे कम हो रहा है
0: इवन
1: क्योंकि
0: हरिद्वार फॉर दैट मैटर,
1: कितने
0: ऑल ऑफ इंडिया
1: सारे,
0: एक्टर्स।
1: करेक्ट करेक्ट, सो दैट डिमार्केशन, दैट होल थिंग इज चेंजिंग नाउ। तो अभी क्या है ना कि पहले बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीविजन होता था, एक ही टाइप का टीवी होता था और एक ही टाइप की एक्टिंग होती थी, तो इसलिए बहुत टाइपकास्ट हो जाते थे लोग कि वो डडन डडन और वो ओवर एक्टिंग और वो है। पर अब जब टीवी भी सटल हो गया है, काफी रियल हो गया है, काफी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक इसलिए वो डिवाइड धीरे धीरे कम हो रहा
0: So what next now? What keeps you busy? Is something in the pipeline?
1: है। एक्चुअली आई वर्कड ऑन अ फिल्म, एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, बहुत स्वीट सब्जेक्ट है, तो उसका अभी कुछ दिन का शूट बाकी है, तो वो अभी तो खत्म हुआ 2 महीने पहले पिछला शो, फिर अभी ये बस ये फिल्म मैंने शूट की, एंड अभी तो माइक्रो ड्रामास का जमाना है, तो इतने सारे चल रहे हैं, तो लेट्स सी, मे बी आई डू वन और टू ऑफ दोस, क्योंकि उस पे भी अब अच्छा-अच्छा कंटेंट बन रहा
0: जी
1: है,
0: जी
1: यू नो यशराज इज गेटिंग
0: यस
1: इन्वॉल्वड
0: यस
1: एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, तो या सो आई एम इन टॉक्स विद सम स्टफ देयर, एंड या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग।
0: थैंक यू सो मच प्रिया बदा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड मुझे लगता है कि आपको अभी जो प्यार अब तक जो मिला है टीवी सीरियल से, आई थिंक इट्स अ टाइम टू वेंचर नाउ, वेब हुआ, माइक्रो ड्रामाज हुए, फिल्में हुई, आई थिंक दिस मोर टू प्रिया बदा खान दैट वी नो, एंड आई थिंक समथिंग इट्स येट टू एक्सप्लोर ऑन स्क्रीन।
1: Yeah. As an actor, I want to keep exploring myself and keep doing new things. And I have a lot of gratitude in my heart कि लोग मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं और आप लोग भी मुझसे इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इतना प्यार मिलता है सबसे, तो बस यही है कि नई नई चीजें करती रहूं और बस मजा आता रहे। थैंक
0: हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट ऑलवेज।
1: यू सो मच, थैंक यू।
2: सीरियल तुम देना साथ मेरा में चल रही है अपराजिता और रक्षित के मेहंदी की रस्म, जहां होने वाले दूल्हा दुल्हन ने किया रोमांटिक डांस और अपराजिता रक्षित की खुशी में घर वाले भी शामिल हैं। चलिए देखते हैं।

0: के रखना।
1: स्टॉप इस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज है आराध्या और विवान के मेहंदी की रस्म, और इनके मेहंदी की रस्म में दीवाने हो गए हैं अपराजिता और रक्षित, क्योंकि इनकी जोड़ी भी बन गई है। ऐसे में देखिए कैसे इन्होंने आराध्या और विवान की मेहंदी की रस्म में डांस से चार चांद लगा दिए।

0: तो आज मेहंदी के लिए हमारी अल्पना दीदी ने मेरे लिए ये लुक डिसाइड किया है, मेहंदी कलर का लहंगा चुन्नी, इसमें ये मेहंदी लगाई है अच्छी सी ओरिजिनल।
1: अब आराध्या और विवान की जोड़ी तो घर वालों की रजामंदी से बन रही है, लेकिन अपराजिता और रक्षित भी चोरी छिप कर अपनी जोड़ी बनाने वाले हैं, जल्द ही शादी करने वाले हैं। तभी तो वो भी इशारों ही इशारों में अपना प्यार जता रहे हैं। खैर, इस मेहंदी की रस्म में अचानक अपराजिता का दिल टूट जाता है और देखिए कैसे सबकी नजरों से बचते बचाते वो चली जाती है और इमोशनल होती है। लेकिन वहाँ पर रक्षित उसका सहारा बनकर आ जाता है, क्योंकि रक्षित को पता है कि इनकी शादी की रस्में नहीं होंगी। ऐसे में वो अकेले में ही सारी रस्में अदा कर रहे हैं और रक्षित अपराजिता की हथेली में अपना नाम ढूंढ रहा है।
2: हाथ क्यों छुपा?
3: कौन छुपा रहा है?
2: आप हाथ नहीं गया? आप क्यों छुपा रहे? दिखा, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी, प्लीज।
3: अच्छा, ओके।

तो आज विवान और आराध्या की मेहंदी है और उसके लिए रक्षित सर और अपराजिता दीदी एक परफॉर्मेंस देते हैं. उस परफॉर्मेंस के बीच में उन लोग के बीच में कोड वर्ड्स में कुछ कुछ बातें भी हो रही है हिंट हिंट में, और फिर वो हमें डांस फ्लोर में लेके आते हैं तो हम भी उनके साथ डांस करते हैं क्योंकि सभी खुश हैं. अपराजिता दीदी और रक्षित सर इसलिए खुश है क्योंकि वो शादी करने जा रहे हैं, हम इसलिए खुश हैं कि आराध्या को मिल गया विवान, विवान को भी आराध्या मिल गई, तो सब खुशी हैं, तो खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही है.

0: किस्मत ने फाइनली स्पेलिंग ठीक कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने प्यार से अपने हाथों में मेरा नाम लिखवाएगा।
1: प्यार से तुम्हारा नाम सिर्फ अपने हाथ पे नहीं, तुझे दिल पे, रूह पे, तेरी सांसों में लिखा है मैंने। ये लिखाई तो मैंने अपने स्कूल में भी नहीं की थी जितनी अब कर रहा हूँ।
0: बहुत फिल्मियाँ। सुधा आंटी तो कह रही थी आपको स्मेल नहीं पसंद मेहंदी की।
1: शादी की इस रस्म में मेहंदी ने जो खुद तुम्हारा नाम लिखा है ना, कि नाम के सामने कुछ याद ही नहीं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपनी रस्म जो है वो पूरी कर ली। हमारा जो चैलेंज है वो दिखाओ, मुद्दे पर आते हैं। सयानी बन रही हो तुम। क्या चाहती हो कि इस फूल फलिया में मैं अपना नाम ढूंढू? टाइम ही टाइम है सर, ऊपर तो लो।
0: नहीं, नाम
1: नाम क्या है?
0: नहीं है नाम अब, सॉरी। वो सुधा आंटी मुझे खुद मेहंदी लगा रही थी, अब मुझसे आपका नाम कैसे लिखवा?
1: मुझे नहीं पता कैसे लिखवाती, जैसे लिखवाना चाहिए था वैसे लिखवाती ना। मैंने कैसे लिखा? मुझे बस इतना पता है कि ये मेहंदी की रस्म खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारे हाथ पर अपना नाम चाहिए तो चाहिए।
0: पर कैसे करूंगी मैं?
2: रक्षित,
0: देखिए मैं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ।
1: क्या करने आई थी?
0: अरे वहाँ आपको शगुन की मेहंदी के लिए सब बुला रहे हैं और आपने हाथों में ऑलरेडी मेरा नाम लिख लिया है, क्या करेंगे आप?
1: हम लिख दिया मैंने,
3: क्योंकि ये लोग थोड़ा भी छुप छुपा के सीक्रेटली शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए इनके ओपनली आके एक दूसरे के नाम की मेहंदी नहीं लगा सकते अपने हाथों में। तो इसलिए वो थोड़ी सैड है कि जो रीति रिवाज से आराध्या की शादी हो रही है वही रीति रिवाज में मुझे उस रीति रिवाज से शादी करने को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अपराजिता दीदी सैड है। बहुत ड्रामा बढ़ने वाला है कि कैसे वो लोग ये शादी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। आराध्या का भी चल रहा है साइबर वाला, तो कैसे वो खुलासा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स है ऑडियंस के लिए।
4: अब ये घर वालों से छिपकर शादी तो करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से ये सभी के सामने चोरी छिपकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है जल्द ही इनके रिश्ते का खुलासा सभी घर वालों के सामने हो जाएगा और फिर वो कहानी में लाएगा नया

0: रेडी दूल्हे राजन।
1: दुल्हन दूल्हे को पगा के लिए जा रही है।
0: 2026 कोई माइंड नहीं करेगा।
2: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: टीवी के सीरियल जगधात्री में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां रुद्र की शोक सभा में जगधात्री को किया पुलिस ने गिरफ्तार और उन्हें हथकड़ी लग गई। ऐसे में क्या शिवाय जगधात्री की मदद के लिए आगे आता है, देखना होगा दिलचस्प।
2: जगधात्री को लगी हथकड़ी।

शिवाय के दर्दे आंसू, क्या मनीष के कहने पर शिवाय करेगा जगह

0: सीसीटीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं ये साबित करने में कि रुद्र जिंदा है। ऐसे में घर वालों ने जगधात्री पर ही इल्जाम लगा दिया है रुद्र की मौत का। इतना ही नहीं, मनीष ने तो पुलिस भी बुला ली जो आई है जगधात्री को गिरफ्तार करने के लिए।
1: इंस्पेक्टर, टेक दिस गर्ल अवे, ले जाइए इस लड़की को यहाँ से, हमारे घर से, गिरफ्तार करके ले जाइए इसे, ब्लडी मर्डरर।
0: भाई जिस घर के लिए जगधात्री ने इतना कुछ किया है आज वही घर वाले उसे मर्डरर बता रहे हैं। ये सुनकर जगधात्री का दिल भी टूट रहा है। और तो और, माया जो जगधात्री को अपनी बहन समान समझती थी, उसे बहुत मानती थी, आज उस माया ने भी जगधात्री से अपना रिश्ता तोड़ दिया। और दूर खड़ी तपस्या और संपदा दोनों ये देख कर झूठे आंसू तो बहा रही है, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा भी रही है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब जो हो गई है जगधात्री को इस घर से रफा दफा करने में। और तो और, संपदा वो तो इस सब नजारे का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही है।
2: माया जी प्लीज प्लीज समझिए, बस एक बार मेरा विश्वास कीजिए, एक बार। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे,
1: खड़े क्या है, ले जाइए इसे।
0: बेचारी जगधात्री जिसने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, आज उसी के हाथों में हथकड़ी पहनाई जा रही है। और चाहकर भी जगधात्री कुछ कर नहीं पा रही और दूर खड़ा शिवाय भी ये सब देख रहा है क्योंकि वो भी मजबूर हो गया है। ऐसे में संपदा मौका नहीं छोड़ रही सभी के सामने जगधात्री को और नीचा गिराने में।
3: क्या आत्या, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। देवा देवा, मेरे दादा का नाम खराब कर दिया इस लड़की ने।
2: सोच सकता था कि घर की बड़ी बहू मर्डरर होगी। गलती
4: सारी गलती है,
2: नाजायज बेटे की बहू है, क्या हुआ, बैकग्राउंड तो चेक करना चाहिए था।
0: भाई यहाँ जगधात्री गिरफ्तार हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार पहुँच गया है घाट किनारे रुद्र को आखिरी विदाई देने के लिए। ऐसे में रुद्र की माँ आरती जब रुद्र की अर्थी के करीब आती है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इतना ही नहीं, पूरे परिवार वाले एक एक कराकर रुद्र को अंतिम विदाई दे रहे हैं।

मनीष का भी रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। और जैसे ही बारी आती है तपस्या की, उसका ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि रुद्र जिंदा है। अब संपदा तो तपस्या को संभाल रही है, या यूं कह लो ड्रामे में दो कदम आगे है। खैर, बारी है अंतिम क्रिया की। ऐसे में मनीष सामने आते हैं और अपने बेटे की अर्थी को मुखादि देते हैं।

0: भाई अपने बेटे को इस तरह से जाता देख मनीष अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मनीष का भाई मनीष को संभालने की कोशिश कर रहा है और तपस्या वो तो अपने नंबर बनाने में लगी है। वहीं एक तरफ जहां पूरा परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है तो वहीं शिवाय अपने आंसू छुपाए हुए था, लेकिन जैसे ही पूरी अर्थी जलकर राख हो गई, शिवाय उस राख के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रहा है ताकि वो अपने आंसू सभी से छिपा सके।
1: और सूखे पत्ते की तरह,
0: लेकिन अपने पापा से वो आंसू छिपा नहीं पाया क्योंकि तभी वहाँ पर आ गया मनीष, जो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी संभाल रहा है। इतना ही नहीं, मनीष के अंदर तो जगधात्री के लिए बेहद गुस्सा भर गया है और आज अपने बेटे की राख के सामने वो अपने बेटे को अपना फैसला भी सुनाता है।
2: मैं नहीं भूल सकता शिवाय, पर कभी नहीं भूल सकता आज का दिन, मैं ये भी नहीं भूल सकता कि कैसे हमारे प्यार का राजा इस फायदा उठाकर इस प्यार को ढाल बनाकर उसने हमारी जिंदगी हमारा भाई छोटा जल के राख हो गया, खत्म हो गया। अगर ये फैसला हमने पहले ले लिया होता तो आज मेरा रुद्र तुम्हारा भाई हमारे साथ होता, हमारे बीच होता।
0: अब देखना होगा क्या शिवाय अपने पापा की बात मानकर जगधात्री के साथ अपना रिश्ता तोड़ देगा या फिर जगधात्री को बेगुनाह साबित करने के लिए वो सच्चाई की तह तक जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: बिग बॉस 20 जल्द ही शुरू होने वाला है, ऐसे में सलमान खान के इस रियलिटी शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे और कौन होंगे वो घर वाले जो होंगे इस रियलिटी शो में कैद, चलिए देखते हैं।
4: ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने
5: जल्द होगा बिग बॉस का आगाज,
4: सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना।
5: देखा सलमान के डांस का जलवा,

0: प्लीज वेलकम आवा निरहुआ।
1: खास मेहमान बनकर आए निरहुआ। और मनोज तिवारी।
0: पाप पे मत जाना,
2: पाप पे जाना नहीं।
1: भाई 6 सितंबर को होने वाला है बिग बॉस सीजन 20 का ग्रैंड प्रीमियर, जिसमें सलमान खान अपने डांस का जलवा तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ होगा इंट्रोडक्शन सभी कंटेस्टेंट्स का। लेकिन इसकी एडवांस झलक सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है, जहां पर देखिए मनोज तिवारी लेकर आए हैं बतौर कंटेस्टेंट अपनी बिटिया रानी को। तो वहीं निरहुआ भी आ गई है, क्योंकि आने वाली है इस बार कंटेस्टेंट बनकर आम्रपाली दुबे। इसी के साथ सलमान खान के डांस का जलवा भी देखने को मिला। तो आइए नजर डालते हैं इन एडवांस झलकियों पर।
0: जैसा तो नहीं कि हमने तटस्थ बोला और आपने सोचा बिग बॉस में दो दो बार आ सकते हैं।
3: अपनी बेटी को आज बिग बॉस के दरवाजे छोड़ने आया।
4: कैसे मेरा मन भर जाए, कुछ ना समझ आए, ताकि जाके मुझे कोई हाय हाय हाय।
0: घर के अंदर अंडे को लेकर कभी फाइट नहीं करना। पाप पे मत जाना,
2: पाप पे जाना नहीं।
0: प्लीज वेलकम आवा आवा निरहुआ। आपने सिर्फ दो फेरे लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप साथ लेके जाओगे यहाँ से।
5: सर पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मौका दिया मुझे बिग बॉस के घर में।
0: शुक्रिया सर, लेकिन वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि आप सिर्फ यहीं तक हैं।
5: सर ये लोग तो बोले थे कि तथास्तु है।
0: अरे बाप रे।

0: तो वहीं तेलुगु में भी बिग बॉस शुरू होने वाला है नया सीजन, जिसके होस्ट है अक्किनेनी नागार्जुन।
1: एन्नो युद्धालु गेलुचुकुन्न राज्यं मात्रमे कादु, ఎంతో మంది హృదయాల్ని గెలుచుకున్న మహాసామ్రాజ్యం. ఆ మహాసామ్రాజ్యం గురించి రూల్ చేసే నేను కాదు, లవ్ చేసే ఫ్యాన్స్ చెప్తారు.
2: బిగ్ బాస్ కోరిక మేరకు
0: సాథీ ఆయేగా తమిళ్ బిగ్ బాస్, జిస్కే హోస్ట్ హై విజయ్ సేతుపతి.
3: இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா சீசன்லயும் இந்த வீட்டை விட்டு யார் வெளியே போகணுங்கிற முடிவை நீங்க தான் எடுப்பீங்க. இந்த சீசன் உங்களோட சொல்லியிருக்கோம், இந்த வீட்டுக்குள்ள யார் போகணுங்கிற முடிவை நீங்களே எடுப்போம்.
0: तो वही मलयालम बिग बॉस भी आने वाला है, जो कि 6 सितंबर को ही प्रीमियर होने वाला है, जिसके होस्ट है मोहनलाल.
4: സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല, പ്രജകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് രാജാവ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ കിങ്, ഐ എം ദ കിങ് മേക്കർ. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 8.
0: വെസേ ബംഗാളി ബിഗ് ബോസ് ഭീ ആയാ ഹൈ, ലേക്കിൻ വോ ഏക ഹഫ്തെ പെഹ്ലേ ഹി ആ ചുക്കാ ഹൈ. യാനി ധേർ സാരി ലാംഗ്വേജസ് ഓർ നയ നയ സീസൺസ്, ഹർ തരഫ് ഹൈ ബിഗ് ബോസ് കാ ഹി ബോൽബാലാ. तो हो जाइए तैयार बिग बॉस के ये सभी सीजन देखने के लिए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
5: हम आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग, थोड़ी मसालेदार. तो चलिए देखते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें.
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. करिश्मा तन्ना और उनके हस्बैंड वरुण मम्मी पापा बन गए हैं, ऐसे में हुई उनके बेटे की नामकरण की रस्म. आपको बता दें कि करिश्मा और वरुण ने अपने बेटे का नाम वेद रखा है, और इस खुशी के मौके पर सामने आई हैं ये तस्वीरें जहां नामकरण की रस्म निभाई गयी. देख लीजिए ये तस्वीरें.

अंकित गुप्ता जल्द नजर आएंगे उनके नए प्रोजेक्ट में। ऐसे में जबलपुर में शुरू हो चुकी है उनके शो की शूटिंग। ऐसे में वो हमारे कैमरे में हुए कैद।

जी टीवी लेकर आ रहा है गणेश चतुर्थी का स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है जी रिश्तों का मेला, जहां पर जी टीवी के सभी कलाकार साथ साथ नजर आएंगे। ऐसे में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे कैमरे में कैद हुए तुम से तुम तक की फैमिली यानी कि निहारिका चौकसी और अनु के मम्मी पापा जो रंगे हैं आसमानी रंग में। इसी के साथ कई और सितारे हैं जो हो रहे हैं इस खास इवेंट में शामिल।

0: तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर पोपटलाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब वो कैसे करेंगे अपनी बेगुनाही साबित?
1: अरे मैंने चोरी नहीं की है, मैं बेगुनाह हूँ।
2: फिर चोर कौन है?
3: इस चोरी में पक्का उस पुतले का ही हाथ है।
2: हा?
3: उसके सर से अपने आप घुंघरू सरक जाता है।
0: सोनी सब लेकर आ रहा है नया शो, जिसका नाम है क्योंकि पापा कहते हैं, और इस शो में नजर आ रहे हैं राज अनाथकर। देख लीजिए इस नए सीरियल की खास झलक।
4: फैमिली तो केयर होती है।
5: फ्रिज में आयरन कौन रखता है?
4: गैस में बर्फ।
5: दिल की धड़कन होती है फैमिली।
4: इसने अपने बर्थ सर्टिफिकेट का प्लेन बना के मुझे दिया और मैंने उसे उड़ा दिया।
6: अरे वाह, कौवे को भी स्कूल जाना है क्या?
4: क्या पापा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये पोस्ट इतनी डिफिकल्ट है।
7: इस फैमिली का अलग है सियापा।
8: The curtains of my ear are paining.
6: ये तो सच में आम से एवोकाडो ही बन गया।
9: आज बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: तीन दिवसीय अल अलामीन एयर शो में प्रदर्शन के लिए मिस्र पहुंची IAF की सारंग हेलीकॉप्टर टीम। टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जाप यात्रा, 296 किलोमीटर दूरी पैदल तय करके पहुंचेगी कैलाश धाम। 30 सितंबर को होगा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां। 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली बप्पा की शोभा यात्रा। तमिलनाडु की धनुषकोडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। कश्मीर की उरेस घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास। दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश के आसार, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: आईएफ की सारंग हेलीकॉप्टर टीम मिस्र पहुंची, टीम 8 से 10 सितंबर तक अल आलामीन एयर शो प्रदर्शनी में होगी शामिल। सारंग टीम स्वदेशी ALH प्रूफ हेलीकॉप्टर से दिखाएगी करतब। अल आलामीन एयर शो में दिखेगा सारंग का मशहूर डॉल्फिन लीप, खतरनाक और शानदार अंदाज पर दुनिया की होगी नजर। सारंग टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी पेश करेगी, भारतीय वायुसेना की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन। सारंग की भागीदारी भारत और मिस्र के बढ़ते रक्षा संबंधों को करेगी मजबूत, एयर शो में दुनिया की कई प्रमुख वायुसेना भी शामिल होंगी। उत्तराखंड में कल से शुरू हुई नंदा देवी की बड़ी जात क्रूट से विधि विधान से कैलाश को रवाना हुई यात्रा। 12 साल में एक बार होती है प्रसिद्ध मानंदा बड़ी जात यात्रा, 30 सितंबर को होगा दिव्य भव्य समापन। जय मानंदा के जयकारों से गुंजावान होठा चमोली का पूरा करुण क्षेत्र। मानंदा राज राजेश्वरी की 5 दिवसीय पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद किया गया रवाना, विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें हुई नम। करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है मानंदा देवी की पैदल यात्रा, पूजा अर्चना के बाद बड़ी जात यात्रा का होगा समापन। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, कारीगर गणेश प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमा हो रही है तैयार। पति पप्पा का आगमन से गूंज उठा खोला अमरावती, फायर शो से लेकर ढोलताशों तक दिखा भक्तों का जबरदस्त उत्साह। अमरावती में भव्य फायर शो और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, भक्तों ने जमकर डांस किया। पति बप्पा की भक्ति में आम भक्तों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल, विधायक रवि राणा ने शोभा यात्रा में ढोल बजाकर बढ़ाया हौसला। गणेशोत्सव से पहले सूरत में निकाली गई अनोखी यात्रा, हॉरर थीम पर मेकअप के साथ कलाकारों ने हिस्सा लिया। यात्रा में लगाए गए भूत पिशाच नरमुंड और डरावने पुतले शक्ति फाइटर ग्रुप ने तैयार किया। गणपति के साथ महादेव और माता पार्वती की सजाई गई झांकी, या शिवगण भी यात्रा में शामिल हुए। सूरत के अडाजन में पिछले 35 सालों से अलग अलग थीमों पर गणेशोत्सव का हो रहा है आयोजन, हॉरर थीम से अच्छे और बुरे विचारों का संदेश। सूरत की इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, मुंबई दिल्ली अलीगढ़ समेत देश के कई जगहों पर पहुंचे कलाकार। सूरत में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम में शिरकत की शुभारंभ किया। फिट इंडिया संडे साइक्लोथॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित किया गया। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का भी आयोजन किया गया, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभागियों को किया गया सम्मान, स्मृति चिन्ह के साथ सर्टिफिकेट। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम से पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में विशाल मैराथन रेस का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रेवाड़ी मैराथन के लिए भव्य तरीके से सजाया गया रूट, 91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों को दिखाई शपथ भी दिलाई, नशा मुक्ति के साथ दूसरे अपराधों को लेकर सावधान रहने की अपील। मैराथन रेस शुरू होने से पहले प्रतिभागियों पर बरसाए गए फूल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 81 किलोमीटर की प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने शामिल हुए। कल मेट्रो से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़ा वीडियो शेयर किया। मेट्रो में बच्चों और सह यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के 8 राज्यों के हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार ने जारी की लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई नियुक्ति। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वल्लूरी कामेश्वर राव को नियुक्त किया गया पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रविंद्र वी घुगे कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। वृंदावन में अनोखा लठ मेला। पहलवानों ने दिखाया दमखम। 50 फीट ऊंचे चिकने लट्ठे पर चढ़ने का रोमांचक मुकाबला। लट्ठे पर चढ़े पहलवान, तेल की बौछार से बड़ी चुनौती। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लट्ठे पर चढ़े पहलवान, तेल मिश्रित पानी की बौछार से पहलवानों को रोकते रहे सेवक। करीब 40 मिनट तक चला लट्ठे पर चढ़ने का रोमांच। कड़ी मशक्कत के बाद मचान तक पहुंचे पहलवान। ठाकुर रंगनाथ भगवान के जयकारों की गुंजायमान। नंदोत्सव में दिखी करीब 250 साल पुरानी परंपरा। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश ने वीकेंड को कर दिया कूल। कूल रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने का दिल्ली के मौसम पर दिख रहा असर। बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना। दिल्ली के बंडी हाउस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर कई जगह जल जमाव। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से जारी बारिश से 200 से ज्यादा उड़ानें लेट। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है।

0: सिर्फ नुस्खों से करें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: 3 दिवसीय एल अलामीन एयर शो में प्रदर्शन के लिए मिस्र पहुंची IAF की सारंग हेलीकॉप्टर टीम। टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। 12 साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर दूरी पैदल तय कर पहुंचेगी कैलाश धाम। 30 सितंबर को होगा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां। 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ निकाली बप्पा की शोभा यात्रा।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का होता है। आज हम आपको सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के प्रिय व्रत अजय एकादशी की महिमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में ये भी जानेंगे कि भाद्रपद में आने वाली इस एकादशी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। देखिए मान्यता है कि इस दिन व्रत और उपवास ही नहीं बल्कि दान और स्नान से भी पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं। तो आइए देखते हैं कितनी मंगलकारी और कल्याणकारी है अजय एकादशी।

0: घर में आएगी सुख और समृद्धि।
1: जय जय नारायण।
0: परम फलकारी और पुण्यकारी है अज

पौराणिक मान्यता है कि भाद्रपद की अजा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने किए पाप कर्मों से मुक्ति का विधान है।

0: माना जाता है कि जो भी इस शुभ तिथि पर श्री हरि की उपासना करता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है।
1: इसको ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको युधिष्ठिर को इस अजा एकादशी की कथा और इसके महत्व के विषय में बतलाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अजा एकादशी का व्रत रहते हैं उसमें उनको कई अश्वमेध यज्ञ एवं तमाम कठोर तपस्या का फल मात्र एक एकादशी के व्रत से उनको प्राप्त होता है।
0: कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिसने भी विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि ये व्रत साधक को 1000 गोदान का फल दिला सकता है।

तो देखा आपने, नारायण से कृपा पाने का बहुत शुभ और अद्भुत दिन है एकादशी। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के लाभ

0: एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे आसान और अचूक मंत्र है, क्योंकि लक्ष्मीपति विष्णु को बहुत प्रिय है एकादशी व्रत। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है।
1: ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पहले जो दशमी का दिन रहता है उसमें सूर्योदय के बाद से अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र इसमें धारण करते हैं और भगवान विष्णु को जो प्रिय फल फूल मिष्ठान पुष्प इत्यादि रहता है इसका इससे उनकी आराधना पूजन किया जाता है।
0: माना जाता है कि इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना कल्याणकारी है। मान्यता है कि तुलसी जी की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाद्रपद महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हर माह एकादशी व्रत उपवास मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशिष्ट समझा जाता है। इस तिथि को स्नान दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि को उपवास और स्नान करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। विशेष दान से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
1: एक विशेष कथा ये भी आती है कि अयोध्या के नरेश जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, राज्य नष्ट हुआ, पत्नी उनसे दूर हुई, पुत्र का उनको वियोग हुआ और हर तरह से अर्थ से वो विहीन हो गए। तब गौतम ऋषि ने उनको जो है इस अजा एकादशी के विषय में पूरा विस्तृत जानकारी दी और उन्हीं के कथनानुसार भगवान राजा हरिश्चंद्र जी ने इस अजा एकादशी का व्रत रहा तो उनका खोया हुआ वैभव, धन, अर्थ संकट, पारिवारिक सुख ये सब कुछ इस अजा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हुआ।
0: सृष्टि के पालन करता है श्री हरि विष्णु और उनकी उपासना का सबसे उत्तम पर्व है एकादशी। इसलिए इस मंगलकारी दिन को व्यर्थ ना जाने दीजिए। पवित्र नदियों में स्नान करके अपनी मनोकामना के हिसाब से दान कीजिए और मांग लीजिए भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान। तो देखिए अजा एकादशी पर आपको दान किस प्रकार से करना है। विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। दान या तो प्रातः काल करें या अगले दिन व्रत की समाप्ति की बात करें। दान किसी निर्धन व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को ही करें।
1: सुबह स्नान ध्यान के संग पहला काम तो दान किया जाता है। किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न दान, यथासंभव वस्त्र इत्यादि का दान करते हुए आप फिर पंचामृत या भगवान का चरणामृत और तुलसी दल अपने मुंह में डालने के बाद ही व्रत का पारण होता है।
0: नमः। अजय एकादशी पर श्री हरि की विधिवत उपासना और दान से जीवन में शुभता आती है और हर प्रकार से कल्याण होता है। तो आप भी अजय एकादशी के परम लाभकारी व्रत का लाभ उठाइए, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपायों से आपकी जिंदगी की तमाम उलझने सुलझ सकती हैं। तो इस सुनहरे मौके को खाली ना जाने दीजिए, श्री हरि का ध्यान कीजिए। आगे हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए दान के बारे में भी बताएंगे, अजय एकादशी पर संतान की समस्या को दूर करने का उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण की उपासना का विधान है और इसी काल में आती है अजय एकादशी। मान्यता है कि हर एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत पूजन और स्नान दान से जीवन की सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक खास महा उपाय जिससे आपकी संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं।

0: श्री हरि और माँ लक्ष्मी के वरदान से संतान की हर मुश्किल होगी दूर। माना जाता है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो इस शुभ तिथि पर आप सिर्फ निर्मल मन से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, आपकी संतान से संबंधित सभी बाधाएं दूर होंगी।
1: व्रत के पीछे, व्रत एक संकल्प होता है, संकल्प में आप किस उद्देश्य से क्या करते हैं, अगर ये जोड़ेंगे तो इसमें भगवान कृष्ण के स्वरूप में जो संतान प्राप्ति के लिए विधि विधान बताए गए हैं, संतान गोपाल स्तोत्र, संतान गोपाल मंत्र, इनका जाप करना इसके लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: सागर में विश्राम करते श्री हरि की छवि देखने मात्र से ही मन शांत और पवित्र होने लगता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि का ध्यान करने से जीवन का हर अधूरापन दूर किया जा सकता है, और इस शुभ तिथि पर संतान के जीवन से सभी बाधाओं का अंत किया जा सकता है। को कुछ दान करने से जो पुण्य फल मिलता है उसको धन से तोला नहीं जा सकता। जब आप एक हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो आपके दूसरे हाथ में भगवान आपको कुछ लौटाते भी हैं। भगवान की दी हुई वो चीज आपके दान से कई बड़ी और अनमोल होती है, इसलिए आज हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग प्रकार के दान के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखिए क्योंकि अजा एकादशी पर एक दान से हो सकता है आपका कल्याण।
1: दान की तो व्यवस्था दुख दरिद्रता को दूर करती है, मन के शोक को हरती है, तो दान तो हर पर्व, हर व्रत, हर उत्सव में आवश्यक है। उसमें भूमि का दान, अन्न का दान, जिसको बोलते हैं कि लक्ष्मी के स्वरूप जो भी चीजें हैं उनका दान करने से लाभ होता है।
0: स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अन्न का दान करें, आर्थिक समस्याओं के लिए वस्त्र, जूते या छाते का दान करें, शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें, वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीजों का, विशेषकर गुड़ का दान करें, संतान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष लगवाएं। ज्योतिषी कहते हैं एकादशी पर दान और स्नान से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, विशेषकर अगर आप संतान से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो अजा एकादशी पर करें ये उपाय। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करके उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें, श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें और समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। अजा एकादशी के दिन ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। बड़ा ही शुभ और पूर्ण फलदायी है अजा एकादशी का ये व्रत। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे, और अगर साथ में इस पवित्र एकादशी पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो अजा एकादशी व्रत का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा। कौन से है ये वो मंत्र, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।
2: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि आज के दिन कुछ महा उपाय किए जाएं तो इससे निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अजय एकादशी के दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करने का भी विधान है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि इन मंत्रों से होगा आपका कल्याण।

0: श्री हरि के मंत्र हैं सबसे असरदार।
1: ओम भूतपते नमः, ओम भावाय नमः।
0: भाद्रपद की एकादशी पर होगा आपका बेड़ा पार।
1: भावनाय नमः, ओम भूतात्मने नमः।
0: जानिए श्री हरि के सबसे मंगलकारी मंत्र।
1: ओम मुक्तानां परमागतये नमः।
0: सारे दुख हर लेगा श्री हरि का चमत्कारी मंत्र।
1: मन वांछित फल मिल जाएगा।
0: श्री हरि को समर्पित है साल में आने वाली 24 एकादशियां और हर एकादशी पर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है।
2: शास्त्रोक्त इसमें पंचोपकार पूजन के भी विधान हैं और षोडशो प्रकार पूजन के विधान हैं, लेकिन जो संभव हो आज के काल में तो कम से कम मानसिक संकल्प लेके कि हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपना वैभव वृद्धि के लिए, समाज के अंदर नाम यश प्रतिष्ठा प्राप्ति के निमित्त हम इस व्रत को कर रहे हैं।
0: अजय एकादशी का व्रत रखने से साधक का कल्याण तो होता ही है, तन मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा।
2: इसमें अगर करना चाहें तो भगवान विष्णु का जो छोटा से छोटा मंत्र हो उसका भी आप जप कर सकते हैं। इनके विष्णु गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी आराधना छोटे मंत्रों से, या आजकल बहुत प्रचलित है श्री सूक्त का पाठ करने से, कनक धारा का पाठ करने से, और इनको खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा करने वाले पे बनी रहती है और इससे भगवान विष्णु भी अति प्रसन्न होते हैं।
0: उपेंद्राय नमः, ओम नमो नारायणा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम कुंडली काक्षा, मंगलाय तनोहरी।

0: संकट में वरदान है श्री हरि का ध्यान, हर बाधा का निदान है श्री हरि के महामंत्र। मान्यता है कि अजय एकादशी के दिन इस विशेष मंत्रों का जाप करके आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पा सकते हैं। मंत्रों के जाप के लिए मध्य रात्रि का समय सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन अजय एकादशी के दिन श्री हरि के मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं और साथ ही आपको मिल सकता है संतान की सफलता का वरदान। तो आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की मंगल कामना कर सकते हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: तीर्थस्थल गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर इस बार पिंडदान के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल के साथ साथ कला की झलक भी देखने को मिलेगी। गया जी के विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पिंडदान के प्रमुख स्थलों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग और पिंडदान से जुड़ी आकर्षक तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से पेंट द सिटी अभियान के तहत कलाकार दीवारों को धार्मिक और ऐतिहासिक रंगों में पिरो रहे हैं।
9: श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया जी में देवघाट की इन दीवारों पर अब शानदार तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। इन तस्वीरों में पिंडदान की परंपरा से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित तस्वीरें बनाई जा रही हैं। मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत शैली में बनाई जा रही ये तस्वीरें पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इन चित्रों के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं का एहसास कराने की कोशिश है।
10: डीएम सर के द्वारा यह पेंट द सिटी कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत फेज वन में 5 लोगों का चयन किया गया था जिन्होंने अपने चित्रों और कलाकृतियों से इन दीवारों को सजाया है। आगे और भी कई स्थानों में यह चित्र, सुंदर सुंदर चित्र उकेरे जाएंगे।
9: इन तस्वीरों में धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं को रंगों के जरिए जीवंत किया जा रहा है। कलाकारों के मुताबिक तस्वीरों का हर हिस्सा खास धार्मिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास देवघाट और सीता कुंड सहित पिंडदान की प्रमुख वेदियों और दूसरे स्थानों पर दीवारों की धार्मिक थीम की पेंटिंग से सजाया जा रहा है।
10: इस पेंटिंग को बनाने में हमें 5 से 7 दिन लग गए। थोड़ा ये मौसम की भी स्थिति थोड़ी खराब रही, इसलिए थोड़े से अड़चन आए, पर यह धार्मिक कार्य और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था तो फिर भी हमने किया है और ये बनाया है।
9: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर गया जी के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यहां पर पेंट द सिटी अभियान चलाया जा रहा है।
7: अभी तो इसी तरह सीजन चल रहा है, देश विदेश से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पिंड दान तंत्र लिए अपने मस्ती प्राप्ति के लिए आते हैं, तो इसके लिए तो अच्छा अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी आगे और होना बाकी है। लाइटिंग होगा, पंडाल बनेगा, ये चीज अभी बहुत चीज डीएम विधायक जो दिया था, जो दिए हैं नेता बन है, डीएम है, अफसर है, उन सारा योगदान अपने यहाँ देते हैं।
9: गया जी में हर साल पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के घाट और दूसरी जगहों पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इस बार पितृपक्ष मेले से पहले शहर में दीवारों पर बनाई जा रही ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिंडदान की परंपरा और यहाँ की धार्मिक विरासत को भी रंगों के जरिए सामने ला रही हैं। उम्मीद है कि जब देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए उन्हें गया की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़कर एक नया अनुभव मिलेगा। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: 3 दिवसीय अल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम, इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर पहुंचेगी कैलाश धाम, 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी। धनुषकोड़ी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद लेने जा रहे हैं पर्यटक। कश्मीर की हुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत, दिसंबर वाली सर्दी का हो रहा है एहसास।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है, उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के उमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिश्यू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर की इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए रामचौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडाछड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में, गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद, ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की है, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यह बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50 to 60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियाँ यहाँ दिख रही है। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियाँ यहाँ तैयार की जा रही है। विशेष बात यह है कि यहाँ से भक्त गणपति की मूर्तियाँ विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है, डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 15-16 मूर्ति तो डेपरे वाला ही।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: सॉइल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार ऐसा महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है, डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है। कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश किया।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थामकर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेशोत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे। इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए हांगकांग में अब शॉपिंग का अंदाज भी बदल रहा है। यहाँ पर शॉपिंग के लिए पहली बार ऐसे स्टोर शुरू हो चुके हैं जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोट चला रहे हैं। जी हाँ, ग्राहकों से बातचीत से लेकर सामान पहुंचाने तक ये ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं और ग्राहकों का मनोरंजन भी करते हैं। आप भी देखिए।
2: Hello there. I am Xiao Gai, also known as Galvin. I am a 3-year-old G1 robot from Beijing Galvin AI Co.
3: बिलिये Xiao Gai से।
2: I serve as a welcoming host in this space capsule.
3: ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये तो हांगकांग में पहले ही रोबोट ऑपरेटेड दुकान का खास सेल्स पर्सन है। करीब 6 फीट लंबा ये ह्यूमनॉइड रोबोट दुकान में ग्राहकों का स्वागत करता है, उनके सवालों का जवाब देता है और सामान खरीदने में मदद करता है। ग्राहक अपने लिए सामान का ऑर्डर करते हैं और रोबोट सामान उठाकर उन्हें काउंटर तक पहुँचाता है।
4: It was a really fun experience, and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service. And the fact that AI can communicate with the customers and its other users in multiple

0: years' time. It'll be interesting. So, yeah, it's a cool experience.
1: फिलहाल इस तरह के स्टोर में रोबोट की मदद से खरीदारी से ज्यादा आकर्षक है इसके साथ मिलने वाला अनुभव। लेकिन असली सवाल ये है कि रोबोट आखिर इस तरह के कामों में कितना सफल हो पाएगा? क्या वो दुकानों में रोजमर्रा की चुनौतियों और अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों को भी संभाल पाने में सक्षम होंगे या केवल ग्राहकों के लिए मनोरंजन का सामान बनकर रह जाएंगे? बहरहाल कुछ ट्रायल एंड एरर के सहारे इनका इस्तेमाल अभी तो शुरू किया जा चुका है। देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि? चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं? चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को हराया। तीन दिवसीय एल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम, इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी यात्रा 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके पहुंचेगी कैलाश धाम, 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट, लोगों के पुनर्विकास का भरोसा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आईएफ की सारंग हेलीकॉप्टर टीम मिस्र पहुंची, टीम 8 से 10 सितंबर तक एल अलामीन एयर शो में प्रदर्शनी में होगी शामिल। सारंग टीम स्वदेशी LH ध्रुव हेलीकॉप्टर से दिखाएगी करतब, टीम की सटीक उड़ान और फॉर्मेशन दर्शकों को करेगा रोमांचक। अल अलामीन एयर शो में दिखेगा सारंग का मशहूर डॉल्फिन लीप।

0: सारंग टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल और टर्न भी पेश करेगी भारतीय वायुसेना की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन। सारंग की भागीदारी भारत और मिस्र के बढ़ते रक्षा संबंधों को करेगी मजबूत। एयर शो में दुनिया की कई प्रमुख वायुसेनाएं शामिल होंगी। उत्तराखंड में कल से शुरू हुई नंदा देवी की बड़ी जात, कुरोड़ से विधि विधान से कैलाश करवाना। बारह साल में एक बार होती है प्रसिद्ध मां नंदा बड़ी जात यात्रा, 30 सितंबर को होगा भव्य दिव्य समापन। जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा चमोली का पूरा कुरोड़ इलाका, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिवसीय पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद किया गया रवाना। करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है मां नंदा देवी की पैदल यात्रा, पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में जात यात्रा का होगा समापन। गणेश चतुर्थी को लेकर देशभर में तैयारियां तेज, कारीगर गणेश प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव में 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक की प्रतिमाएं। गणपति बप्पा के आगमन से गूंज उठा कोला अमरावती, फायर शो से लेकर धौलताश्रम का दिखा जबरदस्त नजारा। अमरावती में भव्य फायर शो और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, निकली भक्तों में जमकर उत्साह। गणपति बापा की भक्ति में आम भक्तों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विधायक रवि राणा ने शोभा यात्रा में ढोल बजाकर बढ़ाया हौसला। गणेशोत्सव से पहले सूरत में निकाली गई अनोखी यात्रा, हॉरर थीम पर मेकअप के साथ कलाकारों ने सरिया। यात्रा में लगाए गए भूत पिशाच, नरमुंड और डरावने पुतले शक्ति फाइटर ग्रुप ने तैयार किया। गणपति के साथ महादेव और माता पार्वती की सजाई गई झांकी, शिवगण भी यात्रा में शामिल हुए। सूरत के अडाजन में पिछले 35 सालों से अलग अलग थीमों पर गणेशोत्सव का हो रहा है आयोजन। सूरत की इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश भर के कई जगहों पर पहुंचे कलाकार। सूरत में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया शामिल हुए। फिट इंडिया संडे साइक्लोथॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित किया गया। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का भी आयोजन किया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी शामिल हुए। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, स्मृति चिन्ह से सर्टिफिकेट दिया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम से पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में विशाल मैराथन रेस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। रेवाड़ी मैराथन के लिए भव्य तरीके से सजाया गया रूट, 91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों को दिलाई शपथ, नशा मुक्ति के साथ दूसरे अपराधों को लेकर सावधान रहने की अपील। मैराथन रेस शुरू होने से पहले प्रतिभागियों पर बरसाए गए फूल, वंदे मातरम के जयकारों के साथ शुरू हुई दौड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 81 किलोमीटर की प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कल मेट्रो से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। मेट्रोमय बच्चों और सहयात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के विकास को लेकर सभी की राय जानी। देश के 8 राज्यों के हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार ने जारी की लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई नियुक्ति। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस बल्लूरी कामेश्वर राव को नियुक्त किया गया पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रविंद्र वी घुगे। कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया उनको। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वृंदावन में अनोखा लठ मेला। पहलवानों ने दिखाया दमखम। 50 फीट ऊंचे चिकने लट्ठे पर चढ़ने का रोमांचक मुकाबला। लट्ठे पर चढ़े पहलवान ना तेल की बौछार से बड़ी चुनौती। पहलवानों के जौहर को देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जोश। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लट्ठे पर चढ़ते हुए नजर आए पहलवान ना तेल मिश्रित पानी की बौछार से हो गया रोमांचक। करीब 40 मिनट तक चला लठ पर चढ़ने का रोमांच। ठाकुर रंगनाथ भगवान की जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। नंदोत्सव में देखिए करीब 125 साल पुरानी परंपरा। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश ने वीकेंड को कर दिया कूल। कूल रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मजबरी गर्मी से राहत मिली। मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने का दिल्ली के मौसम पर दिख रहा है असर। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हुई मूसलाधार बारिश। सड़कों पर कई जगह हुआ पानी का जलजमाव। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से जारी बारिश से 200 से ज्यादा उड़ानें लेट। उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश जारी। हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून मेहरबान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बना रह सकता है बारिश का दौर। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना। कई स्थानों पर मौसम विभाग ने जारी की संभावना। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते बढ़ा अलकनंदी नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंची नदी। अलकनंदा नदी के किनारे के इलाके में गहराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी के लोगों के थोड़ी राहत भरी खबर। घटा गंगा का जलस्तर। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। ड्रोन से नजर आई बाढ़ की तस्वीर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट। रणथंभौर के नाले और झरने उफान पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बारिश के कारण यमुना और के नदी उफान पर दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। तमिलनाडु के थंजावुर में कलानई डैम से छोड़ा जाएगा पानी। कश्मीर के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत। गुरेज घाटी में बर्फबारी के चलते रास्तों पर जमा हो गई बर्फ। मशीनों से रास्ते को साफ करने में जुटे प्रशासन। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों ने डल झील में उठाया प्रकृति का नजारा। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच कई स्थानों पर हाईवे तक पहुंची गंगा। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क की शानदार तस्वीरों को साझा किया। बैरबी सेरांग रेल लाइन का देखा जबरदस्त नजारा। कुतुब मीनार से ऊंचा बना है रेल पुल। करीब 114 मीटर ऊंचाई। पुंछ के मेंढर सेक्टर में आर्मी स्कूल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने नृत्य का भव्य प्रस्तुति करके दिखाया, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेना की ओर से छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में ऋषि बिल्डिंग की रखी आधारशिला। भुवनेश्वर में नंदोत्सव की धूम, मंदिर में लड्डू गोपाल को पालने में बिठाकर झुलाया गया। गौरांग सेवा फाउंडेशन की ओर से नंदोत्सव की भव्य रौनक भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ नंदोत्सव। श्रील प्रभुपाद का मनाया गया 130वां प्राकट्य दिवस। महाभिषेक से निखरी श्रील प्रभुपाद की प्रतिमा, गूंजा हरे कृष्ण महामंत्र का जय घोष। कलाकारों ने भजन कीर्तन की शानदार प्रस्तुति पेश की, भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए गुड न्यूज, महिला एशिया कप में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 55 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। महिला एशिया कप में भारत की जीत की हैट्रिक का, टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत, 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर। भारतीय स्पिनर्स की फिरकी में फंसी पाकिस्तानी टीम, श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके, दीप्ति शर्मा को मिली 2 सफलता। हरमनप्रीत कौर T20 में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बन गई। अबेड़ा में फिर दहाड़ेंगे बाघ, अन्य बायोलॉजिकल पाकों से लाए जाएंगे जीव। वन्य जीवों की तादाद बढ़ाने में जुटा वन विभाग, का एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए जाएंगे अन्य वन्य जीव। दिल्ली में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुहिम में जुटी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फाउंडर्स से बातचीत की। शक्तिसैट मिशन के निदेशक डॉक्टर सैम रिचर्ड ने सैटेलाइट से जुड़ी जानकारी दी। इस मिशन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का किया जाएगा अध्ययन। पुणे में गणेशोत्सव को लेकर शानदार पहल, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजे मुक्त उत्सव मनाने का फैसला। बाबा नीम करौली पर बनी फिल्म हनुमानंश ने रच दिया इतिहास, 30 दिन में फिल्म का क्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी है हनुमान अंश फिल्म, ने अपने बजट से 50 गुना कमाई की, थिएटर्स में उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने हनुमान अंश की टीम को बधाई दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, फिल्मी 2 ही दिन में 50 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, क्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई मिर्जापुर द मूवी। धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 हैं टॉप 3। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड का टीजर हुआ आउट, रावण कुमार नजर आएंगे। आनंद देवरकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर हुआ आउट, 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से तैयार की गई द्वारका प्रोजेक्ट। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल हुआ पूरा, डॉक्टर के किरदार में देखेंगे रजनीकांत स्टाइलिश डॉक्टर, लुक ने बढ़ाया फिल्म का बस। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओने कदिन पूर की एंट्री, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। चीन में भव्य मिड ऑटम गाला फेस्टिवल की तैयारियां तेज, हुआई नान में गाला फेस्टिवल की शूटिंग हुई शुरू। झील किनारे सजा शानदार मंच, पानी पर तैरेगा 80 मीटर का स्टेज, दिखेगा पूरे चांद का खूबसूरत नजारा। मीटर का विशाल चांद तैयार, रामंच पर घूमता हुआ नजर आएगा, चीनी संस्कृति की दिखेगी झलक। फ्लोटिंग स्टेज बनेगा मुख्य आकर्षण, झील पर होंगी खास प्रस्तुतियां, ओपेरा और मॉडर्न पॉप का दिखेगा संगम। क्लासिक धुनों का भी दिखेगा नया अंदाज, मिलन और खुशी का संदेश देगा गाला, 25 सितंबर को दुनिया देखेगी भव्य उत्सव। स्पेन में वोल्टा ए स्पाना में जर्मनी के मार्को ब्रेनर ने जीता स्टेज 14, ब्रेनर ने बुइत्रागो को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया। मार्को ब्रेनर ने आखिरी 500 मीटर में जबरदस्त वापसी की, ब्रेनर की ये पहली ग्रैंड टूर जीत ट्यूडर टीम के लिए भी बड़ी उपलब्धि। सैंटियागो बुइत्रागो दूसरे स्थान पर रहे, क्रिस्टियन रोड्रिगेज भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए स्टेज में, तीसरे पायदान पर रहे, दिखा रोमांचक मुकाबला। महिला अंडर 20 वर्ल्ड कप में पोलैंड की धमाकेदार शुरुआत, पहले मैच में पोलैंड ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। ओलिविया ज्विक्योंक ने 26वें मिनट में किया गोल, अर्जेंटीना की अन्निका पास से 30वें मिनट में हुआ आत्मघाती गोल, माजा जिलेंस्का ने इंजरी टाइम में तीसरा गोल डाला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: कल गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर इस बार पिंडदान के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल के साथ साथ कला की झलक भी देखने को मिलेगी। गया जी के विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पिंडदान के प्रमुख स्थलों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग और पिंडदान से जुड़ी आकर्षक तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से पेंट द सिटी अभियान के तहत कलाकार दीवारों को धार्मिक और ऐतिहासिक रंगों में पिरो रहे हैं।
4: पितरों के श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया जी में देवघाट की इन दीवारों पर अब शानदार तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। इन तस्वीरों में पिंडदान की परंपरा से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित तस्वीरें बनाई जा रही हैं। मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत शैली में बनाई जा रही ये तस्वीरें पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इन चित्रों के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं का एहसास कराने की कोशिश है।
5: डीएम सर के द्वारा यह पेंट द सिटी कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत फेज वन में 5 लोगों का चयन किया गया था जिन्होंने अपने चित्रों और कलाकृतियों से इन दीवारों को सजाया है। आगे और भी कई स्थानों में यह चित्र, सुंदर सुंदर चित्र उकेरे जाएंगे।
4: इन तस्वीरों में धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं को रंगों के जरिए जीवंत किया जा रहा है। कलाकारों के मुताबिक तस्वीरों का हर हिस्सा खास धार्मिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास देवघाट और सीता कुंड सहित पिंडदान की प्रमुख वेदियों और दूसरे स्थानों पर दीवारों की धार्मिक थीम की पेंटिंग से सजाया जा रहा है।
5: इस पेंटिंग को बनाने में हमें 5 से 7 दिन लगे। थोड़ा ये मौसम की भी स्थिति थोड़ी खराब रही, इसलिए थोड़े से अड़चन आए, पर यह धार्मिक कार्य और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था तो फिर भी हमने किया है और ये बनाया है।
4: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर गया जी के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यहां पर पेंट द सिटी अभियान चलाया जा रहा है।
6: अभी तो इसी तरह सीजन चल रहा है, देश विदेश से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पिंडदान करने के लिए अपने मस्ती प्राप्ति के लिए आते हैं, तो इसके लिए तो अच्छा अभी तो शुरुआती हुआ है, अभी आगे और होना बाकी है। लाइटिंग होगा, पंडाल देने वाला, ये चीज अभी बहुत चीज डीएम विधायक जो दिया था, जो भी हैं नेता बन है, डीएम है, अफसर है, उन सारा योगदान अपने यहाँ देते हैं।
4: गया जी में हर साल पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के घाट और दूसरी जगहों पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इस बार पितृपक्ष मेले से पहले शहर में दीवारों पर बनाई जा रही ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिंडदान की परंपरा और यहाँ की धार्मिक विरासत को भी रंगों के जरिए सामने ला रही हैं। उम्मीद है कि जब देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए उन्हें गया की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़कर एक नया अनुभव मिलेगा। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि, चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं, चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को मात दी। दिवसीय एल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम, इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर पहुंचेंगी कैलाश धाम, 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ निकाली बप्पा की शोभा यात्रा, ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट, लोगों के पुनर्वास का दिया भरोसा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। इंसान एक अदद कुर्सी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, इसे पाने की हसरत में कई बार वो उस जमीन को भी भूल जाता है जिस पर उस कुर्सी के पांव टिके होते हैं। आप ही सोचिए, जमीन और जमीन के ऊपर रखी कुर्सी के बीच कितना फासला होता है। लेकिन कभी कभी ये फासला पाटने में पूरी उम्र निकल जाती है। जमीन और कुर्सी के इसी फासले की अहमियत और दर्द दोनों को एक साथ एक महिला अफसर ने महसूस किया। कोई छोटी मोटी अफसर नहीं, आईएएस अफसर। उनकी एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत पहल ने 42,000 स्कूली बच्चों को फर्श से उठाकर बेंच पर बिठा दिया। मिलना चाहेंगे इन बच्चों और उस अफसर से, चलिए मेरे साथ।

0: ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक स्कूल की है। तस्वीर, रंग रूप और सुविधाएं देखकर आप क्या समझे? कुछ तो समझ ही रहे होंगे। चलिए इसी सिक्के का एक पहलू समझ लीजिए। अब आइए दूसरे पहलू को समझते हैं। ये तस्वीर एक बड़े बदलाव की है। तस्वीर बच्चों के सुनहरे भविष्य के खूबसूरत आज की है। एक क्लासरूम की ही दो तस्वीरों ने किसी के बेहिसाब कोशिश को दिखा दिया। अब सिक्के के दो पहलुओं को तो आपने देख लिया, लेकिन इन सिक्के के कई और भी पहलू हैं। आइए अब आपको सबसे खूबसूरत पहलू यानी एक और तस्वीर दिखाती हूँ। कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 2025 को। रीवा से एक अफसर की विदाई होती है और इन अफसर का नया पता था रतलाम। जी हाँ, वही रतलाम जिसकी दो तस्वीर अभी अभी आपने देखी। ये आईएएस अफसर वैशाली जैन है। 6 अक्टूबर 2005 को वैशाली जैन रतलाम आई और अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। एक दिन वैशाली जैन ने देखा कि स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बस तभी उन्होंने ठान लिया कि रतलाम की इस तस्वीर और इन बच्चों की तकदीर दोनों को बदलना है। और बस फिर क्या था, उन्होंने काम शुरू कर दिया।
1: पहले हम नीचे बैठते थे तो हमारे को मजा नहीं आता था, हमारे को हमारी गर्दन दुखती थी।
2: पहला पानी मतलब पानी टपकता था तो हम ना वो टपकता था तो नीचे ठंडा लगता था।
3: ऊपर बैठने की।
4: अच्छा, कहाँ बैठते थे?
3: जमीन पर।
4: क्या परेशानी होती जमीन पर बैठने से?
3: गर्दन दुखती थी।
4: पहले स्कूल में क्या परेशानी थी आपको
2: बैठने में?
4: किस तरह से, कहाँ बैठते थे?
2: जमीन पे।
5: नीचे बैठकर लिख नहीं पाते, गर्दन दुखने लगती है।
6: हमें बहुत नीचे बैठने में हमें दिक्कत होती थी सर, हमारा कमर दुख जाता सर, हमारी गर्दन दुखती थी।
7: स्कूल में पहले बेंचे नहीं थी और लिखने में आपद आती थी और दिखता नहीं था और लिखने में परेशानी होती थी और पेंटिंग वेंटिंग नहीं था, मन नहीं लगता था पढ़ने में।
8: बच्चे फर्श पर बैठते थे, उन्हें ठंडा लगता था, झुककर बैठना पड़ता था, लिखने में प्रॉब्लम आती थी और स्कूल इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता था। बैठने के लिए बेंचेस और जैसे कभी लीक वगैरह होता था छत, तो उसके भी रिपेयरमेंट वगैरह हुई है तो अब इतनी समस्या नहीं होती है।
9: सबसे बड़ी जरूरत थी बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर बैठने की व्यवस्था हुई। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने में भी काफी दिक्कत आती थी, बच्चे पढ़ते पढ़ते लेट जाया करते थे, सर कमर में दर्द हो रहा है, कोई बोलता था गर्दन में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बच्चों को बीच में खेल भी खिलाते थे, फिर बिठाते थे, बच्चों को बहुत सारी बार सुलाना भी पड़ते थे।
10: मेन चीज तो यही है, फर्नीचर नहीं था तो बड़े उसमें हमको थोड़ी परेशानी होती थी, बच्चे नीचे लिखने में। पेंटिंग नहीं थी और मतलब आकर्षक इतना रुचि वो नहीं था। और मैडम के आए जब यहाँ, उसके बाद से उन्होंने स्कूल को गोद लिया, उसके बाद बच्चे अच्छी रुचि लेने लगे।
0: रतलाम के सरकारी स्कूल में घूम घूम कर बच्चों से बात की, उनकी परेशानी को समझा, उनके साथ बैठी, उनको भरोसा दिया और फिर उनका भरोसा जीता। स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक न होने से बच्चे परेशान थे, देर तक बैठ नहीं पाते थे, जमीन पर बैठने में बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। इसी बात को समझकर सबसे पहले इसी पर काम शुरू कर दिया।
11: अभी रतलाम डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 से थोड़े से ज्यादा स्कूल है। अभी इसमें लगभग 200 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। 135 स्कूलों को अभी कंप्लीट किया जा चुका है और लगभग अभी 60-65 स्कूल ऐसे हैं जो हम बहुत ही अल्प समय में, पॉसिबली एक मंथ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और धीरे धीरे हमारा टारगेट है कि हम सभी स्कूलों को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे।
9: उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे उस समय लेटे हुए भी मिले उनको, तो उन्होंने देखा कि यहाँ वास्तव में काफी बड़ी समस्या, बच्चों को कमर दर्द और गर्दन दर्द को लेके बच्चे की उपस्थिति भी कम थी उस समय, तो उन्होंने फर्नीचर की व्यवस्था जो करी हमारे लिए, एक बेहतरीन सोच रही उनकी, जिससे कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, बच्चे भी अच्छे से स्कूल आने लग गए और बच्चे भी एक खुशी के माहौल में स्कूल में बढ़िया पढ़ रहे हैं।
8: उन्हें स्कूल में उन्होंने बोला कि जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे बच्चों के लिए सिटिंग के लिए टेबल और जो पानी टपकता है तो उसके लिए काम करवाया उन्होंने, और बच्चों को आकर्षित करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग वगैरह करवाई, तो बहुत अच्छा प्रयास रहा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
12: उन्होंने निर्देश दिए थे कि इस स्कूल में सबसे पहले बच्चों, मेरे को यहाँ का परिसर बहुत अच्छा लगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बेंचेस प्रोवाइड करवाई जाए और सारी पेंटिंग वगैरह सब करवाई जाए यहाँ पर।
10: मैडम जी जब यहाँ आए सबसे पहली बार तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्यों बच्चों कहीं पानी वानी तो नहीं टपकता है, तो बच्चों ने बोला कि हाँ टपकता तो है पानी। फिर मैडम ने पंचायत वालों को ये काम सौंपा और बढ़िया ये सब स्कूल की पूरी रौनक आ गई, रंगई पुते का काम भी उन्होंने सब करवा दिया और स्कूल को एक अच्छा बना दिया कि बच्चे बड़े रुचि से स्कूल आने लगे।
13: बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए कि एक पढ़ा लिखा इंसान पूरे समाज को बदल सकता है और एक अच्छे समाज की पहचान समाज में रहने वाली नई नस्ल से होती है। सोचिए अगर जरा सी सहूलियत से पूरा बचपन एक खूबसूरत ताकतवर और जवान समाज की नींव रख दे तो इससे अच्छा क्या होगा। इस आईएएस अफसर के जिम्मे बहुत सारे सरकारी काम है, लेकिन उन्हें लगा कि अगर देश का भविष्य बेहतर बनाना है तो क्यों ना बचपन का सफर आसान कर दे। आईएएस अधिकारी वैशाली जैन ने एक खूबसूरत पहल की और इस पहल का नाम था शाला उन्नयन अभियान। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए ये एक अभियान चमत्कार साबित हुआ। इस अभियान का मकसद सिर्फ स्कूलों की हालत सुधारना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर माहौल, आधुनिक शिक्षा और पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और इस अभियान का लक्ष्य रखा गया था रतलाम के 1000 से ज्यादा स्कूल। जिले के 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया और इस काम में प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, समाज के लोगों, खुद ये बच्चे और इन बच्चों के माता पिता को शामिल किया गया। वैशाली जैन ने ये लक्ष्य रखा कि 1011 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 21,000 से ज्यादा बेंच या डेस्क पहुँचाना है ताकि 42,000 से ज्यादा बच्चों को इसका सीधा सीधा फायदा मिल सके। आईएएस वैशाली जैन के इस प्रयास से शुरुआती कुछ दिनों में ही बच्चे जमीन से उठकर सीधे टेबल कुर्सी तक पहुंच गए। जिन स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे वहां अब टेबल और कुर्सियां और बेंच पहुंच रहे थे। अब बच्चे अपनी किताबें टेबल पर रखकर आराम से बैठते हैं। उनकी सारी परेशानी उनकी फेवरेट मैम ने दूर कर दी।
14: अब हमारे स्कूल में बेंच आ गई तो हमारे को अच्छा लगता है और हमारी राइटिंग भी अच्छी हो गई और हमारा स्कूल में पेंटिंग भी हो गई तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है।
15: अच्छा। अब हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, पेंटिंग वेटिंग सब हो गई है, टेबल आ गई है।
4: अब बेंच पर बैठकर पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको?
15: अच्छा।
4: क्या फायदा हो रहा है इससे?
15: हमारी राइटिंग अच्छी हो रही है
4: और
15: हमारी गर्दन भी नहीं दुख रही है।
16: अब बहुत अच्छा लग रहा है, कमर भी नहीं दुखती थी, गर्दन भी नहीं दुखता।
4: अच्छा। आपको पहली बार जब ये क्लासरूम में आए बेंच लगी तो कैसा लगा मन में?
16: बहुत अच्छा लगा।
4: अब बेंच पर बैठकर पढ़ने में आपको कैसा लगता है?
16: हमें अच्छा लगता है।
4: आपको याद है पहली बार बेंच देखकर आपके मन में क्या सोचा है?
16: हमने ये सोचा था कि वाह हमारे स्कूल में बेंच आ गई, अब हमें लिखने में आफत नहीं आएगी,
17: अब पढ़ने में मन भी लगता है और अब स्कूल अच्छा हो गया।
9: बेंच मिलने के बाद बच्चे काफी चेंज हो गए हैं। पहले विद्यालय समय से नहीं आते थे बच्चे, बीच में दिफोर में बस बैग ही छोड़ के घर चले जाते थे। उसके बाद अब ऐसी स्थिति है कि बच्चे अच्छी उपस्थिति रहती है हमारी संस्था में, बच्चे दिन में जाते हैं तो समय से पहले ही विद्यालय वापस आ जाते हैं और एक बच्चा खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से रह रहे हैं बच्चे। पहले बच्चे के माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत आती थी, वो दिन में बच्चों को ले जाया करते थे, अब वो एक बार स्कूल भेज देते थे उसके बाद बच्चों को लेने नहीं आते हैं।
8: अब जब पेंटिंग वगैरह हुई है तो स्कूल में बच्चों को भी अट्रैक्शन होता है, स्कूल आने का मन करता है, प्रेजेंट भी पहले से ज्यादा रहे बच्चे।
10: बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो तो खुशी मिल रही है उनको कि इतनी अच्छी चीज मिल गई हमें। माता पिताओं को बड़ा अच्छा लगता है, कह रहा स्कूल कितना बदल गया, पहले कैसा था अब कैसा हो गया।
13: बच्चों के लिए ये बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि स्कूल के लिए उनके नजरिए को भी बदल रहा है। स्कूल की दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें बच्चों का स्कूल आने का और ज्यादा मन हो इसीलिए दीवारों को उनके पढ़ाई और इंटरेस्ट दोनों के हिसाब से पेंट करवाया गया। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनवाई गई ताकि बच्चे पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें और आसपास मौजूद तस्वीरों से जानकारियां हासिल कर सके।
16: वो मैम की वजह से पेंटिंग हो गई है और अब है ना हमारे को पढ़ने में मन भी लगता है और बेंच मिली है तो बेंच पे अच्छी राइटिंग भी हो गई,
15: पेंटिंग कराई और टेबल आई और ये स्कूल बहुत सुंदर हो गया।
16: वो रतलाम से मैडम आए थे, उनने हमारे स्कूल को
7: पेंटिंग करवाई और बेंचे मंगवाई और कारपेंटर बिछाया, उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं।
13: लेकिन रतलाम में बदलाव सिर्फ बेंच और दीवारों तक सीमित नहीं है। आज शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आधुनिक तरीके से पढ़ाई का मौका मिले, इसके लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास तैयार की गई है। ई ज्ञान सेतु जैसी पहल के जरिए डिजिटल लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को मुश्किल विषयों को बेहतर तरीके से समझने और अपनी पढ़ाई को मजबूत करने में मदद मिल सके।
11: बच्चों में कुछ नया चीज कभी भी होता है, जैसे हम ही लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमको कभी नई किताबें मिलती थी जब, तो हमको बड़ा उत्साह रहता था। तो इस तरह से उनको जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो निश्चित तौर पर उत्साह बनता है। स्कूल में अगर बच्चा आता है घर से, तो उसको कुछ वैल्यू एडिशन हो, उसको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिले, तो अच्छे जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है या फिर अच्छा भोजन मिलता है, या कोई भी, जब मिड डे मील भी शुरू किया गया था तो इसी अवधारणा से भी शुरू किया गया था, तो एक एडिशन, एक अच्छा, मतलब घर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको मिल सके स्कूल में, तो निश्चित तौर पर उसकी रुचि बढ़ती है।
4: इधर कक्षाएं और खाली पड़े थे सरकारी स्कूल, लेकिन एक सोच और ठोस प्रशासनिक फैसलों ने मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी। सन 2020 में IAS अधिकारी वैशाली जैन ने रतलाम जिले में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कमान संभाली और उन्होंने खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की कायाकल्प करने की ठानी। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए ज्ञानोदय अभियान चलाया और इस अभियान के तहत 1000 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत कराई और स्मार्ट क्लासेस शुरू की। जब कोई बड़ा अधिकारी अपने काबिलियत और सही ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो बिना किसी बड़े बजट के भी ऐतिहासिक बदलाव लाया जा सकता है। ज्ञानोदय अभियान इसका एक प्रमाण है।
13: और जब बच्चे खुद बताते हैं कि अब उन्हें स्कूल में क्या अच्छा लगता है, तो इस बदलाव की तस्वीर और ज्यादा साफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल सिर्फ स्कूल के समय तक की पढ़ाई का नहीं है। बहुत से ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पास घर पर पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह, किताबें या शांत माहौल नहीं होता। ऐसे में रतलाम में ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां किताबों के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। आज पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो रतलाम में बदलाव के तीन बड़े हिस्से नजर आते हैं। पहला, स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना। दूसरा, बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। और तीसरा, स्कूल के बाहर भी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
11: ज्ञानोदय अभियान के तीन प्रमुख बिंदु है। पहला ज्ञानोदय, जिसमें हम लोग शाला उन्नयन कर रहे हैं और शाला में जो बच्चों के लिए नवीन तकनीकी डेस्क और बेंच उपलब्ध करा रहे हैं, ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमारे माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय विधायक श्री राजेंद्र पांडे जी और पब्लिक के सपोर्ट से हो रहा है। पूरी तरह पब्लिक ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। दूसरा इसका कॉम्पोनेंट है ज्ञान सेतु, जिसमें हम क्लास 9 और 10 के बच्चों को, जिनको आगे चल के बोर्ड देना है, उनको AI जनरेटेड लर्निंग करवा रहे हैं। और तीसरा, रूरल लाइब्रेरीज कि हम व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि उनको पढ़ने के लिए और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक बेहतर हो सके। हमारी जो सीओ जिला पंचायत है वैशाली जैन, वो इसमें काफी ज्यादा उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किया है और एक एक स्कूल को वो स्वयं मॉनिटर कर रही है, काफी पैशन से काम कर रही है।
13: वैशाली जैन इससे पहले जहां भी रही हमेशा अपने कामों से लोगों को प्रभावित ही किया। इससे पहले उनकी पोस्टिंग रीवा में थी और वहां से उनकी विदाई की तस्वीर ने ये बता दिया कि एक अफसर का ईमानदारी से किया गया काम हमेशा साफ साफ दिखाई देता है। वैशाली जैन ने रीवा में अपने कार्यकाल के दौरान RTO की अवैध वसूली पर दबिश डाला, खाद्य विभाग की कालाबाजारी पर रोक लगाई और कई बड़े घोटाले भी उजागर किए। इसीलिए उनकी विदाई पर लोगों ने उनके वापस लौटने की दुआ मांगी। अब जिन बच्चों को इस एक IAS अफसर ने जमीन से उठाया, जिन्हें उनका हक दिलाया, बचपन में जिनका बचपन जिंदा रखा, अब आने वाले वक्त में हो सकता है इन्हीं में से कोई बच्चा आपको एक नया IAS अफसर बनकर दिखाए और वो भी फिर वही करेगा जो उसने देखा और जो उसने सीखा। रतलाम के बच्चे, उनके माता पिता और पूरा देश ऐसे अफसर, इन बच्चों की प्यारी मैम को थैंक यू कह रहा है।
6: उन्होंने हमको नीचे बैठा देखा था, उन्होंने सोचा कि हम बेच गया है और वो उन्होंने बेच लाया था हमको, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं।
4: वैशाली मैडम आई थी यहाँ, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे?
6: उनका धन्यवाद करना चाहेंगे।
7: उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं।
17: उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा किया।
13: रतलाम से विजय मीणा के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: ना स्टीयरिंग व्हील, ना पैडल और ना ड्राइवर, फिर भी सड़क पर दौड़ती कार। दरअसल टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला ने अपने उस साइबर कैब की राइड शुरू कर दी है, जिसे कंपनी ड्राइवरलेस भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बता रही है। 2 लोगों के बैठने की जगह वाली ये कार सिर्फ दिखने में ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ती।
7: कार नहीं, टेस्ला के मुताबिक ये ड्राइवरलेस भविष्य की झलक है। गोल्डन रंग की ये 2 सीटर साइबर कैब ऑस्टिन की सड़कों पर उतर चुकी है, और सबसे खास बात, इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, पैडल नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, यात्री बैठता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर कार बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है। कैमरा कार के अंदर जाता है, जहां सामने ड्राइवर की जगह नहीं बल्कि सिर्फ 2 यात्रियों के लिए जगह है। यानी टेस्ला की सोच साफ है, कार को चलाने के लिए इंसान नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, और इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग यात्रियों ने किया। दिव्यांग यात्री भी साइबर कैब में बैठा, यानी टेस्ला जिस भविष्य की तस्वीर दिखा रही है उसमें सफर सिर्फ ड्राइविंग से आजादी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी का नया रास्ता हो सकता है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्टिन की सड़कों पर जैसे जैसे साइबर कैब दौड़ी, लोगों की निगाहें भी इस पर टिक गईं। कोई सड़क किनारे खड़ा होकर इसे देख रहा है तो कोई इसकी राइड का इंतजार कर रहा है। भविष्य की कार अब सिर्फ शोकेस में नहीं सड़क पर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने ऑस्टिन में ड्राइवरलेस राइड का प्रयोग किया है। कंपनी पहले से ऑटोनॉमस मॉडल वाई के साथ सीमित रोबो टैक्सी सर्विस चला रही है। कुछ गाड़ियों में इंसानी सेफ्टी मॉनिटर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर कैब टेस्ला की उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। कंपनी चाहती है कि आने वाले वक्त में यही बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली साइबर कैब एक बड़े ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी नेटवर्क की पहचान बने। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार है, सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन साइबर कैब को लेकर जाँच कर रही है, क्योंकि सड़क पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कार सिर्फ इनोवेशन नहीं सेफ्टी की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। टेस्ला के लिए ये सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं, ये उसके भविष्य की परीक्षा है, क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस चाइना समेत दुनिया भर की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, और ऐसे में ड्राइवरलेस कारों का सपना टेस्ला की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। कल तक कार चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी था, आज टेस्ला कह रही है कल कार को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। ऑस्टिन की सड़क पर दौड़ती ये साइबर कैब दरअसल सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक ऐसे भविष्य का ट्रायल है जहां इंसान कार नहीं चलाएगा, कार इंसान को चलाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये भविष्य सुरक्षित भी है? क्योंकि ऑस्टिन की सड़कें अब इस सवाल का जवाब देने वाली टेस्ट लैब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे, नीचे सदियों पुराना शहर और सूर्योदय के साथ शुरू हुआ एक ऐसा नजारा जिसने पूरे राडेक क्रालोवो को आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। चेक रिपब्लिक के इस मिडवल शहर में एक साथ दर्जनों हॉट एयर बैलून्स ने उड़ान भरी तो आसमान का रंग बदल गया। मौका था बैलून स्काई फिएस्टा का, जहां पर इस बार चार देशों के 51 गुब्बारे पहुंचे हैं। देखिए कैसे आग की छोटी सी लपट ने इस विशाल गुब्बारों को आसमान छूने की ताकत दी।
7: एक छोटी सी आग और देखते ही देखते कपड़े का ये विशाल गुब्बारा हवा से भरकर आसमान छूने के लिए तैयार। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण और जमीन से ऊपर उठते रंगों का एक पूरा कारवां। नीचे खड़ी भीड़ की निगाहें आसमान पर और फिर एक एक कर बलून ने जमीन छोड़नी शुरू की। हार्डिक क्रालोवे के ऐतिहासिक शहर के ऊपर दर्जनों रंगीन गुब्बारे ऐसे तैरने लगे मानो आसमान ने खुद रंगों का त्योहार मना लिया हो। ऊपर से नजारा और भी शानदार। एक हॉट एयर बलून से दूसरे हॉट एयर बलून तक हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग। लेकिन इस खूबसूरत उड़ान के पीछे सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि सालों पुरानी बलूनिंग की परंपरा भी है।
4: Tady na této akci jsem už podruhý, on je to taky druhý ročník a mám to rád tady v Hradci, protože naše společnost tady požádala před 20 lety balonový nebe první a já jsem rád, že přišli pokračovatelé, kteří v tom pokračují a vlastně to název balonové nebe je stejné, jako jsme měli my tenkrát před těma 20 lety. A mně se tady v Hradci líbí, Hradec je nádherné město a je tady spoustu úžasných pilotů a balonářů, s kterýma se rád potkávám.
7: कुछ देर पहले तक यही बलून जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग इन्हें फैलाते हैं, हवा भरते हैं, बर्नर आग उगलता है और फिर ये विशाल गुब्बारे धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगते हैं। इस साल चारों देशों से आए 51 बलून इस इंटरनेशनल फिएस्टा का हिस्सा हैं। फेस्टिवल का ये 8वां साल है और इस बार इसकी वापसी हुई है पुराने नाम के साथ बलून स्काई, जिसकी इस इलाके में बलूनिंग की कहानी करीब 2 दशक पुरानी है।
8: Letu balonové fiesty 8. ročníku ve východních Čechách. Podruhé startujeme z Hradce Králové pod novým názvem Balonové nebe. Dneska startuje 51 balónů ze 4 zemí. Jedná se o mezinárodní fiestu, největší v České republice v tomto roce. A startujeme z Hradce Králové, čekáme, že poletíme čistě na východ, budeme přistávat se západem slunce někde v oblasti Třebechovic pod Hronem.
7: Hava ke sath udte ye balloon shahar se dur nikalte jate hain. Niche medieval Hardik Kralovo aur upar khula aasman. Har balloon apni alag disha mein lekin manzil ek aasman. और जब बलून जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचता है तो सूर्योदय का नजारा कुछ ऐसा होता है जो जमीन पर खड़े होकर शायद कभी महसूस नहीं किया जा सकता। नीचे पूरा शहर, ऊपर सूरज और बीच में खामोशी में तैरता एक बलून। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, उस एहसास का नाम है जब इंसान कुछ देर के लिए जमीन की दुनिया पीछे छोड़ देता है। न कोई ट्रैफिक, न कोई शोर, बस हवा, आसमान और रंगों से भरे ये विशाल हॉट एयर बलून। हार्डिक क्रालोवे में आज आसमान सिर्फ नीला नहीं था, वो रंगीन था, रोमांचक था और पूरी तरह ऊपर और ऊपर आसमान की ओर था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि? चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं? चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते,

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को हराया। तीन दिवसीय एल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम, इस बार नया स्पॉट स्टॉप टर्न भी करेगी पेश। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी यात्रा 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके पहुंचेगी कैलाश धाम, 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट, लोगों के पुनर्विकास का भरोसा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: आईएफ की सारंग हेलीकॉप्टर टीम मिस्र पहुंची, टीम 8 से 10 सितंबर तक एल अलामीन एयर शो में प्रदर्शनी में होंगी शामिल। सारंग टीम स्वदेशी एलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से दिखाएगी करतब, टीम की सटीक उड़ान और फॉर्मेशन दर्शकों को करेगा रोमांचन। एल अलामीन एयर शो में दिखेगा सारंग का मशहूर डॉल्फिन लीप। सारंग टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश, भारतीय वायुसेना की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन। सारंग की भागीदारी और भारत को मिस्र के बढ़ते रक्षा संबंधों की करेगी मजबूती, एयर शो में दुनिया की कई प्रमुख वायुसेनाएं होंगी शामिल। उत्तराखंड में कल से शुरू हुई नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, कुरूड़ से विधि विधान से कैलाश को रवाना हुई यात्रा। 12 साल में एक बार होती है प्रसिद्ध मां नंदा बड़ी जात यात्रा। जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा चमोली का पूरा कुरोड़ इलाका, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिवसीय पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद किया गया रवाना।

0: करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है मां नंदा देवी की पैदल यात्रा। पूजा अर्चना करने के बाद बड़ी संख्या में जात यात्रा का होगा समापन। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में तैयारियां तेज। कारीगर गणेश प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव में 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक, 2 इंच से लेकर 12 फीट तक। गणपति बप्पा के आगमन से गूंज उठा गोला। अमरावती फायर शो से लेकर ढोल ताशों तक जबरदस्त उत्साह। अमरावती में भव्य फायर शो और आतिशबाजी के बीच निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा। गणपति बप्पा की भक्ति में आम भक्तों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विधायक रवि राणा की शोभा यात्रा में शामिल हुए। गणेशोत्सव से पहले सूरत में निकाली गई अनोखी यात्रा। हॉरर थीम पर मेकअप के साथ कलाकारों ने हिस्सा लिया। यात्रा में लगाए गए भूत पिशाच, नरमुंड और डरावने पुतले। गणपति के साथ महादेव और माता पार्वती की सजाई गई झांकी। सूरत के अडाजन में पिछले 35 सालों से अलग अलग थीमों पर गणेशोत्सव का हो रहा है आयोजन। सूरत की इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश भर के कई हिस्सों में पहुंचे। बैडमिंटन कोर्ट से आई भारतीय फैंस के लिए शानदार खबर। सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। सात्विक चिराग चाइना मास्टर्स का टूर्नामेंट जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 10 दिन में 17 शहरों में 4000 टन प्याज 35 रुपए के रूप बेचा गया। सरकार के पास 1.21 लाख टन प्याज का स्टॉक मौजूद। इसे ट्रकों और कांदा एक्सप्रेस से देश के अलग अलग शहरों में बेचा जा रहा है। सरकार की सस्ती प्याज योजना से कीमतें 2 से 3 रुपए तक कमी आई है। भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की कर रही है तैयारी। 120 की स्पीड इसका पूरा हो चुका है ट्रायल। रेलवे तय करेगा किन रूटों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। इसके लिए देखे जा रहे हैं ईंधन और तकनीकी इंतजाम। देश में 4 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें हैं तैयार। इन्हें जल्द ही किया जा सकता है शुरू। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ मेले के लिए रेलवे ने किसी कर कमर कसी। 100 से ज्यादा 125 स्पेशल ट्रेन चलाने की रही है तैयारी। ट्रेनों की सुरक्षा में AI का होगा इस्तेमाल। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। हरिद्वार के ज्वालापुर में 5 फीट कूड़े के ढेर को हरे भरे पार्क में किया गया तब्दील। पार्षद आकर्षिका वर्मा ने इसकी अगुवाई की। 1.25 लाख का खर्च उठाया और अकेले दम पर कायाकल्प किया। 30 से 35 साल से यूं ही पड़ा हुआ था मलबा। JCB से कूड़ा हटवाया गया, फिर गाजियाबाद से घास मंगवा कर लगाई गई। रात के 2-2 बजे तक जगकर देना पड़ता था पानी। नगर निगम की मदद कर दिखाया सफल। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाने का मकसद, बीमारियों से लोगों को बचाना भी प्रेरणा का स्रोत। सूरत में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया शामिल हुए। फिट इंडिया संडे साइक्लोथॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित कर रहे हैं लोग। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का आयोजन किया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिट इंडिया संडेज और साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, उनको सम्मानित भी किया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम से पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में विशाल मैराथन रेस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रेवाड़ी मैराथन के लिए भव्य तरीके से सजाया गया रूट। 91,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों को दिलाई शपथ। नशा मुक्ति के साथ दूसरे अपराधों को लेकर भी सावधान रहने की अपील। मैराथन रेस शुरू होने से पहले प्रतिभागियों पर बरसाए गए फूल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 81 किलोमीटर की प्रतियोगिता में 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कल मेट्रो से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़ा वीडियो शेयर किया। मेट्रो में बच्चों और सह यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के विकास को लेकर चर्चा की। देश के 8 राज्यों के हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। केंद्र सरकार ने जारी की लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई नियुक्ति। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वल्लूरी कामेश्वर राव को नियुक्त किया गया पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रविंद्र वी घुगे, कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वृंदावन में अनोखा लठ मेला। पहलवानों ने दिखाया दमखम। 50 फीट ऊंचे चिकने लट्ठे पर चढ़ने का रोमांचक मुकाबला। लट्ठे पर चढ़े पहलवान, तेल की बौछार से बढ़ी चुनौती। एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर लट्ठे पर चढ़े पहलवान। तेल मिश्रित पानी की बौछार से पहलवानों को रोकते नजर आए सेवक। करीब 40 मिनट तक चला लट्ठे पर चढ़ने का रोमांच। कड़ी मशक्कत के बाद मचान तक पहुंचे पहलवान। ठाकुर रंगनाथ भगवान की जयकारों से गुंजा बानु का मंदिर परिसर। नंदोत्सव में देखिए करीब 250 साल पुरानी परंपरा। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश ने वीकेंड को बना दिया कूल। कूल रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने से दिल्ली के मौसम पर दिख रहा असर। बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हुई मूसलाधार बारिश। सड़कों पर कई जगह जल जमाव। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से जारी बारिश से 200 से ज्यादा उड़ानें लीट। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की। उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश जारी। हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून मेहरबान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बन सकता है बारिश का दौर। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना। कई स्थानों पर मौसम विभाग ने जारी किया बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते बढ़ा अलकनंदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंची नदी। अलकनंदा नदी के किनारे इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी के लोग के लिए थोड़ी राहत भरी खबर। घटा गंगा का जलस्तर। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर पड़ने से बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से नजर आई बाढ़ की तस्वीरें। राजस्थान के सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट। रणथंभौर के नाले और झरने उफान पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बारिश के कारण यमुना और राकी नदी उफान पर। तमिलनाडु के थंजावुर में कलानई डैम से छोड़ा गया पानी। कश्मीर की खुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। खुरेज घाटी में बर्फबारी के चलते रास्तों पर जमा हुआ है देखने को मिल रही है बर्फ ही बर्फ। मशीनों से रास्तों को साफ करने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों ने डल झील में उठाया प्राकृतिक सौंदर्यता का नजारा। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच कई स्थानों पर हाईवे तक पहुंची गंगा। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। अभेड़ा में फिर दहाड़ेंगे बाघ। अन्य बायोलॉजिकल पार्कों से लाए जाएंगे जीव। वन्य जीवों की तादाद बढ़ाने में जुटा वन विभाग। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत की जाएंगे वन्य जीव। दिल्ली में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुहिम में जुटी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फाउंडर्स से बातचीत की। शक्तिसेट मिशन के निदेशक डॉक्टर सैम रिचर्ड ने दी सैटेलाइट से जुड़ी तमाम जानकारी। पुणे में गणेशोत्सव को लेकर शानदार पहल, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजे मुक्त उत्सव मनाने की तैयारी। बाबा नीब करौरी पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने रच दिया इतिहास, 30 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश फिल्म ने अपने बजट से 50 गुना कमाई की। उत्तराखंड में हनुमान अंश टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने हनुमान अंश की टीम को बधाई दी। मिर्जापुर द मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, फिल्म ने 2 ही दिन में कमा डाले 50 करोड़। मिर्जापुर द मूवी ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई मिर्जापुर द मूवी, धुरंधर 2, टॉक्सिक और बॉर्डर 2 टॉप 3। तेलुगु रोमांटिक ड्रामा चकोरा लूनर लव बर्ड का टीजर हुआ आउट, 8 अक्टूबर को होगी रिलीज। आनंद देवरकोंडा वैष्णवी चैतन्य की एपिक का धमाकेदार ट्रेलर हुआ आउट, 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। एआई के दौर में भारतीय सिनेमा की नई छलांग, त्रिनेत्रा एआई प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से तैयार की गई द्वारका प्रोजेक्ट। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की धर्मन की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल हुआ पूरा। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बांग्ला फिल्म ओने कदिन पूर की एंट्री भी, 17 सितंबर को दिखाई जाएगी फिल्म। हरिकेन मैरी के असर से कैलिफोर्निया में समुद्र की लहरें हो गई बेकाबू। खतरनाक लहरों के बावजूद कई सर्फर और तैराक समुद्र में उतरते हुए नजर आए, हरिकेन ने समुद्र में जबरदस्त ऊंची लहरों ने बढ़ाया रोमांच। अमेरिकी अधिकारियों ने लोगों को समुद्र किनारे जाने से बचने की सलाह दी। हरिकेन मैरी सीधे जमीन से ही नहीं टकराएगा लेकिन इसका असर रहा देखेगा। मैरी अब धीरे धीरे कैलिफोर्निया से दूर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक बन सकता है इसका असर। स्पेन में वोल्टा एस्पाना में जर्मनी के मार्को ने जीता स्टेज 14, ब्रेनर ने वोइत्रागो को पछाड़कर खिताब अपने नाम किया। मार्को ब्रेनर ने आखिरी 500 मीटर में जबरदस्त वापसी की, ब्रेनर की यह पहली ग्रैंड टूर जीत ट्यूडर टीम के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। सैंटियागो बुइत्रागो दूसरे पायदान पर रहे जबकि क्रिस्टियन का भी शानदार प्रदर्शन स्टेज में तीसरे पायदान पर दिखे, 2 रोमांच का जलवा। महिला अंडर 20 वर्ल्ड कप में पोलैंड की धमाकेदार शुरुआत, पहले मैच में पोलैंड ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। ओलिविया ज्विकयोंक ने 26वें मिनट में किया गोल, अर्जेंटीना की अनिका पास से 30वें मिनट में हुआ आत्मघाती गोल, माजा ने इंजरी टाइम में तीसरा गोल दागा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है. जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम
0: देखिए, हांगकांग में अब शॉपिंग का अंदाज भी बदल रहा है. यहां पर शॉपिंग के लिए पहली बार ऐसे स्टोर शुरू हो चुके हैं जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोट चला रहे हैं. जी हां, ग्राहकों से बातचीत से लेकर सामान पहुंचाने तक ये ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम कर रहे हैं. और ये सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं और ग्राहकों का मनोरंजन भी करते हैं. आप भी देखिए.
6: हेलो देयर, आई एम शाओ गाई, आल्सो नोन एज गैलवेट. I am a 3-year-old G1 robot from Beijing Galvin AI Co.
7: Billie, Chia Ogai se.
6: I serve as a welcoming host in this space capsule.
7: ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये तो हांगकांग में पहले ही रोबोट ऑपरेटेड दुकान का खास सेल्स पर्सन है. करीब 6 फीट लंबा ये ह्यूमनॉइड रोबोट दुकान में ग्राहकों का स्वागत करता है, उनके सवालों का जवाब देता है और सामान खरीदने में मदद करता है. ग्राहक अपने लिए सामान का ऑर्डर करते हैं और रोबोट सामान उठाकर उन्हें काउंटर तक पहुंचाता है.
8: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives such as customer service. And the fact that AI can communicate with the customers and its other users in multiple languages, that's great, right? So it has a really wide range of inclusivity.
7: 我不买东西哦. ये रोबोट मंदारिन, कैंटोनीज और अंग्रेजी में बात कर सकता है.
8: How can I order in here?
7: हालांकि हर बार बातचीत करना आसान नहीं होता, कभी कभी इससे जवाब देने में देरी भी होती है. और लगता है कि अभी इस रोबोट सेल्समैन के साथ तकनीक की कुछ सीमा है जो इंसान के साथ नहीं होती है. फिर भी दुकान में इस तरह रोबोट सेल्समैन को तैनात करना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है.
8: And also some minor adjustments and tweaks can be made to maybe shorten the delays in processing the requests and data. Yeah, but yeah, that is a very bright future for development in artificial intelligence and other robot technology.
7: इस रोबोट के पास ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक और खास हुनर है. ये दुकान में ग्राहकों को शॉपिंग कराने के साथ साथ इनका मनोरंजन करने में भी माहिर है. जब एक बच्चे ने पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, तो देखिए इसका अंदाज. और फिर शुरू हुआ रोबोट का डांस. तमाम लोग अपने मोबाइल फोन में ये अनोखा दृश्य कैद करने लगे.
9: कैसा हो ये 识得唱好多歌，原来又有版权嘅问题，所以唱唔到。咁同埋，其实我觉得佢有啲蠢咯。不过都系一个好嘅开始嘅，系咯，即系佢，我谂如果有啲突发情况咧，都系未识得处理咯。
7: Hong Kong में इस humanoid salesman robot को Beijing की robotics company Galbot ने launch किया है। 1 सितंबर से शहर में ऐसे 3 स्टोर शुरू किए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। यहां पर स्नैक्स और ड्रिंक्स की बिक्री होती है। बताया जाता है कि चीन के करीब 50 शहरों में ऐसे लगभग 200 रिटेल स्टोर पहले ही रोबोट की मदद से चलाए जा रहे हैं। लोगों को ये पहल काफी पसंद आ रही है।
10: The coffee, you know, the robot coffee makers and stuff. That's pretty cool. So I think this is a really unique concept. Good idea.
11: 怎么没啥人呢
10: ？Hong Kong, you know.
11: 右边的朋友过来瞧一瞧哎。春晚明星也来打工喽。
10: Yeah, it's just good. You know,
11: 走过的朋友来看一看。
10: Daughter, so,
11: yeah, 零售小店有好多好东西呢。
10: Quite surprising how far technology's come.
11: And we're
10: going to be in like 5 years time. It'll be interesting. So yeah, it's a cool experience.
7: फिलहाल इस तरह के स्टोर में रोबोट की मदद से खरीदारी से ज्यादा आकर्षक है इसके साथ मिलने वाला अनुभव। लेकिन असली सवाल ये है कि रोबोट आखिर इस तरह के कामों में कितना सफल हो पाएगा? क्या वो दुकानों में रोजमर्रा की चुनौतियों और अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों को भी संभाल पाने में सक्षम होंगे या केवल ग्राहकों के लिए मनोरंजन का सामान बनकर रह जाएंगे? बहरहाल कुछ ट्रायल एंड एरर के सहारे इनका इस्तेमाल अभी तो शुरू किया जा चुका है। देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि, चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं, चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को मात दी। दिवसीय एल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम, इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर पहुंचेंगी कैलाश धाम, 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। अकोला और अमरावती में गणपति स्थापना से पहले बप्पा के स्वागत की तैयारियां, 25 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ निकाली बप्पा की शोभा यात्रा, ढोल ताशों के साथ जमकर आतिशबाजी। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट, लोगों के पुनर्वास का दिया भरोसा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: जेब में खतरा, आपकी जेब में है मोबाइल और वो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है आपके लिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मौजूदा दौर में हर किसी के लिए मोबाइल बहुत अहम है, एक तरीके से कहा जाए तो जरूरत है। ये हर समय इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी मोबाइल की वजह से आजकल साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड का कैसा नया जंजाल है ये? गृह मंत्रालय की विंग 14C का अलर्ट आया है। ये अलर्ट क्या है, इसको लेकर आगे बात करेंगे। मोबाइल आपका, हाथ किसी और का, साइबर ठगी से कैसे आप बच सकते हैं, इस विषय पर आगे बात होगी। हमारे साथ देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले साइबर ठगी को लेकर जो नया अलर्ट आया है वो आपको जानना चाहिए। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की साइबर विंग 14C ने एक एडवाइजरी जारी की है और इसके मुताबिक कई फर्जी ऐप से फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों से भी धोखाधड़ी हो रही है। एडल्ट कंटेंट वाली खतरनाक एंड्रॉयड ऐप से फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। आरोप यह भी है कि विज्ञापनों के जरिए यूजर्स को भद्दे कंटेंट वाली वेबसाइट और ऐप्स भेजे जा रहे हैं। ये फर्जी ऐप और वेबसाइट कई तरह की गैर जरूरी परमिशन मांगती हैं और इसमें साइबर ठग यूजर के डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और फर्जी ऐप को अनइंस्टॉल करने से रुक सकते हैं ये क्राइम। वैसे अगर ये फर्जी ऐप का कंटेंट किसी ठग के हाथ लग जाए तो यकीन मानिए कि कुछ अनजाने मैसेजेस भी आपको आएंगे, जिस पर जाने अनजाने आप अगर क्लिक कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा टूल्स हमेशा यूज करने चाहिए। कभी भी अगर आप ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं तो उसमें हमेशा अलर्ट रहे। पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लॉग इन डिटेल शेयर ना करें और पुलिस किसी भी व्हाट्सएप कॉल, कोई किसी भी तरह की व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। तो आपको डरना नहीं है अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो आपको आगे क्या करना है। अपनों से तो बात करनी ही करनी है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे अहम टिप्स। सबसे पहले पहचाने कैसे, इससे बचे कैसे, कानून क्या कहता है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर आज हम आगे अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त व्रतेश भाटिया जी जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं वी फॉर वेब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। और हमारे साथ मयंक राज जायसवाल भी हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। चलिए आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। व्रतेश जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी। जो फिलहाल आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट आया है, किस तरीके से इसको देखा जाए?
1: ये अलर्ट पहले ये 26 अगस्त को आया था और ये एडवाइजरी दी गई थी कि काफी सारे उन्होंने पॉन ऐप्स के नाम भी दिए हैं, 9 ऐसे ऐप्स है, 9 ऐसे ऐप्स है कि जो मतलब फर्जी ऐप्स है, वो आपको पॉन कंटेंट तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन साथ ही में आपके मतलब मोबाइल पे जब इंस्टॉल हो जाता है तो आपका पूरा मोबाइल मतलब जैसे एक हिसाब से क्लोन हो गया है और कोई भी मतलब रिमोटली एक्सेस कर पा रहा है। अभी वो मेरे को ना 9 ऐप्स की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जितना है जो मेटा के यहाँ पर हुआ है। मेटा के अगर आप हिसाब से देखोगे तो ये सारे एड्स के थ्रू आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सर्च किया और जाके इसको इंस्टॉल किया है। आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये एड्स आ रहे थे, तो पहले ये सवाल ये उठता है कि मेटा ने ऐसे एड्स अलाउ कैसे किए, क्योंकि वो एड्स बहुत क्लियरली बता रहे थे कि ये एक मतलब आपको एक पॉन वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि आपको एक फिशिंग वेबसाइट पे लेके जाता है। वो साइट पे जाते हो तो फिर वो बोलता है डाउनलोड कीजिए, तब आप जाके वो ऐप डाउनलोड करते हैं। तो ये ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट्स वो मेटा के खुद के पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो उन्होंने वैसे भी अपनी, उनकी अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली कहा जाता है कि एनीथिंग टू डू विद न्यूडिटी और एनीथिंग टू डू विथ स्कैम, तो इसमें तो न्यूडिटी भी आ गया है और स्कैम भी आ गया है। ये दोनों चीजों से अगर हम देखेंगे तो वो लोग ने इसको अलाउ कैसे किया, क्योंकि ये उल्लंघन कर रहे हैं उनकी दोनों पॉलिसीज का।
0: तेजी से जो डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, जो आंकड़ा हमारे पास है, 2024 में 22,000 करोड़ से ज्यादा ठगी के मामले थे और 21 से 25 तक का अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 55,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
2: बिल्कुल, 55,000 करोड़, आप ये बहुत बड़ा नंबर है सिर्फ 4 साल में, और ये 25 तक का ही डेटा है हमारे पास। और जैसा मेरी जानकारी है 25 से 26 में यह बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, बिकॉज हमारी डिजिटल प्रेजेंस इंडिया की बढ़ चुकी है, डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, हम पहले से ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस पे टाइम बिता रहे हैं। तो इनका इसी चीज का फायदा उठाया। पहले क्या होता था, अटैकर्स हैकर्स आपको कॉल करते थे, कोशिश करते थे आप उनको ओटीपी शेयर कर दो, अपना कार्ड नंबर शेयर कर दो, जिसका सतर्कता धीरे धीरे धीरे धीरे समाज में आ गई और ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी कम हो गई इस तरह से क्राइम होना। बट अब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपना लिया कि जहां पे यूजर ज्यादा है, जो यूजर पसंद कर रहा है, यूजर पसंद क्या कर रहा है, कंटेंट पसंद कर रहा है, तो कंटेंट के थ्रू हम मोबिलाइज करते हैं, हम ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जिससे जो उसको पसंद है, जो चीजें उसको पसंद है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी हो सकता है।
0: एक चीज हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस एडवाइजरी को लेकर चर्चा हो रही, लेकिन मैं चाहूंगी कि पॉइंट बाय पॉइंट आप जरा सा समझा दीजिए कि किस तरीके से लोग इसका शिकार बन रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जिनको नहीं पता कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ नहीं करना। आपसे केवाईसी भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, लोग वो भी बताने को तैयार होते हैं, लोग फोन कॉल्स भी उठा लेते हैं। एक बार जरा दर्शकों को अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए बता दीजिए किस तरीके से कौन से कंटेंट को खोलना है, नहीं खोलना।
2: नवनीत जी, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे बच सकते हैं। इसको इसको मैं बिल्कुल 20 सेकंड में समझाता हूँ। अब YouTube देखते हो, YouTube आपका डेटा लगभग लगभग 25 से 30 पैरामीटर्स पे कलेक्ट करता है कि आपने कौन सा कंटेंट, कौन वीडियो में कौन सा सेक्शन बार बार देखा, किस सेक्शन को गौर से देखा, किस सेक्शन को स्किप किया, कहाँ क्लिक किया, कहाँ नहीं क्लिक किया, ये सब डेटा कलेक्ट होता है। इसी तरीके से डेटा कलेक्ट होता है बाय दूसरे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ही, जिससे आपकी वो ये जान जाते हैं कि आपको कॉन्टेंट क्या पसंद है। तो आपके पास एक कंटेंट आता है। अब मैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी बता रहा हूँ, कैसे शिकार होता है एक यूजर, कैसे चपेट में आता है, कैसे उसका पैसा नुकसान होता है। एक एडवर्टीजमेंट उसको दिखाया जाता है और वो एडवर्टीजमेंट कभी पोर्नोग्राफिक कंटेंट के उसमें होता है, यंग एज के लिए जो कि लेट नाइट ब्राउजिंग कर रहे हैं, या फिर अगर हाउस होल्ड महिलाओं के लिए दिखाया गया, कोई ऐसी कंटेंट दिखाया गया जो शॉपिंग के लिए काफी ल्यूक्रेटिव है उनके लिए, जिसको वो कई बार से सर्च कर रही थी, गूगल एड्स के माध्यम से दिखाया गया। अब एड उनके पसंद का उनकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो लाजमी है कि कोई चीज मेरी पसंद की है। हमारे खाने की पसंद की चीज होती है हम टेस्ट करते हैं, हमारे देखने की पसंद की चीज होती है हम उसको क्लिक करके अंदर जाने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो यूजर जनरली उस पर क्लिक करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही प्रवेश करता है तो उस वेबसाइट को पता है हाँ अभी यूजर आ चुका है, अपनी पसंद की चीज देखने आया है, जो कि उसको दिखाते हैं और उससे कहते हैं ये आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको आपके पसंद का कंटेंट, आपके पसंद की चीजें जो आप करने आए हो एग्जैक्टली इस ऐप में मिलेगी, और वो ऐप एपीके जिसको कहते हैं एंड्रॉइड के फॉर्म में एप्लीकेशन पैकेज, वो इंस्टॉल कराई जाती है और आपसे परमिशन ली जाती है। अब यूजर एक इस माइंड स्टेट में है कि उसको जो चीज चाहिए वो मिलने वाली है, एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, कोई पैसा नहीं खर्च करना और उसको तुरंत मिलने वाली। तो जल्दीबाजी में वो परमिशंस भी अलाउ करता है, एसएमएस भी ओके करता है, कॉल्स भी ओके करता है। अब वो कंटेंट देखना स्टार्ट करता है, स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है, जो कि उसका परसेप्शन धीरे धीरे बनता है और उसको रिटेन किया जाता है। इन बिटवीन अचानक से वो कंटेंट स्टॉप हो गया। स्टॉप होते ही आपको अंदर से बेचैनी होती है कि अब मैं क्या करूं, तो वो ऐप आपसे क्या पूछती है, सबसे पहले अपना आधार डाल के वेरिफिकेशन करिए, या ये कंटेंट अलाउड नहीं है आपको वेरीफाई होना है, तो सबसे पहले आपने आधार दे दिया। अब मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझिए, उसने कह दिया कि हम किसी वजह से आधार से आपका वेरिफिकेशन नहीं कर सके, कृपया अपना पैन डालिए, जबकि उसने आपका आधार स्टोर कर लिया, आपका ओटीपी स्टोर कर लिया, आपने पैन डाला, हम किसी वजह से आपका पैन वेरीफाई नहीं कर पाए, कंटेंट देखने के लिए कृपया कार्ड की डिटेल डालें। आप इतने उत्साहित थे, आपने कार्ड की लास्ट 4 डिजिट भी डाल दी और यूपीआई पिन भी डाल दिया, नाउ इट इज डन, द डैमेज हैज बीन डन। उनके पास सारी डिटेल है। अब उसने आपका कंटेंट अनलॉक कर दिया, आप कंटेंट में व्यस्त हो, बैकएंड पे उसके पास आपके एसएमएस की परमिशन है, आपके यूपीआई पिन है, सब कुछ है। जब तक आप कंटेंट में लीन हो तब तक वो पीछे से आपका अकाउंट पूरा साफ कर चुका है। ये
0: जी
2: बहुत ही प्योर एग्जाम्पल है, बिल्कुल
0: ठीक है,
2: बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है।
0: चलिए, ये तो ये वो बात हुई जहां पर आपके पास एप्स की डिटेल आती हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, चर्चा हम गृह मंत्रालय की जो साइबर विंग 14C है, जिसकी एडवाइजरी, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में फ्रॉड्स के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रितेश जी से चर्चा हुई, मयंक जी ने बताया कि आप कैसे इसका शिकार होते हैं। एक चीज अमित जी एड ऑन करते हुए जरा और डिटेल्स दीजिए। आज की तारीख में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हम लोग ऑनलाइन करते हैं, कोई कैश नहीं रखता है। नॉर्मली लोग पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह की जो तमाम चीजें अवेलेबल हैं, हम वो सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। इसमें किस तरीके से कोई शख्स शिकार हो सकता है वो भी बताइए, और कैसे उससे बचा जाए।
3: मैम देखिए, जो भी हम लोग ऑनलाइन करते हैं आजकल, क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे चालान के नाम पे, या फिर अब इधर एलपीजी का गैस की जो पाइपलाइन का बिल होता है उसके नाम पे काफी सारे आपको मैसेजेस आते हैं। उनके साथ साथ मैसेजेस में एक एपीके अटैच करके भेजा जाता है आपको। तो मैम जो एपीके अटैच करके भेजा जाता है वो एक मालवेयर है, मालवेयर को बाइंड करके भेजा जाता है वो उसके एप्लीकेशन में। तो उस एप्लीकेशन को जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, जब कुछ करते हैं, हमारे पूरे फोन का एक्सेस एक सामने वाले हैकर या अटैकर के पास पहुंच जाता है। तो हम तो अपनी तरफ से एक चालान भरना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक एपीके भेजी, हमने सोचा कि हमें भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में जाना पड़ेगा, जब कहीं पे भी जाना पड़ेगा, हम ऑनलाइन ही बिल भर देते हैं। तो एपीके इंस्टॉल होने के बाद वो हमारे फोन की पूरी परमिशंस को अलाउ करता है, अलाउ करने के बाद पूरे फोन का एक्सेस जो है सामने वाले के पास से चला जाता है। वो हमारे फोन का फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, हमारी लाइव कन्वर्सेशन, हमारी नॉर्मल कॉल्स, हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारा टोटल डेटा ले लेता है। तो टोटल डेटा लाइव उसके पास जाता है, मतलब लाइव हमारा फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके देख सकता है वो। तो जब हमारी पूरी प्राइवेसी उसके पास पहुंच गई तो उसके बाद स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग, जब कोई और चीज, जब एक्सटॉर्शन, जब कोई और चीजें, क्योंकि जब हमारा फोन ही प्राइवेट नहीं रहा तब हमने अपना पूरा डेटा ही हम लोग शिकार हो गए। आजकल व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा काफी सारा ट्रेंड चल गया कि व्हाट्सएप पे आपको एक एपीके भेजते हैं, कोई भी आपने डाउनलोड कर ली, आपके फोन का व्हाट्सएप का एक्सेस ही उसके पास पहुंच जाता है, और वहां पे जाने के बाद वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेंज कर लेते हैं, बाकी अपना कोई पासवर्ड लगा देते हैं, और बंदा अपने फोन का व्हाट्सएप भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो काफी सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो इसमें ये है कि हमें सावधानी यही बरतनी चाहिए कि हमें ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी अननोन सोर्स से, या कोई भी लालच देके, या कुछ भी चीज देके, ऐसे कोई भी एपीके डाउनलोड करने के लिए आती है तो हमें एपीके कभी भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो एपीके हम डाउनलोड कर रहे हैं उसके पीछे एक मालवेयर बाइंड है। वो मालवेयर क्या करेगा, पूरी परमिशन अलाउ करके हमारे पूरे फोन का एक्सेस सामने वाले को दे देता है, और हमारे पूरे फोन का जब सामने एक्सेस चला गया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन वो हमारे फोन को स्विच ऑफ भी कर सकता है, इधर से बैठ के ऑन भी कर सकता है, इतना कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है।
0: ठीक है रितेश जी, क्या जो हमारे पास इंस्टॉल्ड एप्स होती है, जो नॉर्मल एप्स जो हम लोग नॉर्मली डेली इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके जरिए भी ठगी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो बार बार कई बार आपसे केवाईसी मांगती हैं।
1: नहीं देखिए, अभी आप जब इंस्टॉल्ड एप्स की बात कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि वो एप्स की रेपुटेशन क्या है। अभी अगर वो जानी मानी एप्स है तो ये जो कंपनीज है, जैसे आपने नाम ले लिया, मान लीजिए पेटीएम, जीपे, या हम जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ये सब ऐप से इतना वो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये वेल नोन ब्रांड्स भी है, वेल नोन।
0: सर इसका भी मेटा से लिंक है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था।
1: नहीं, मेटा मेटा का तो लिंक है ही है, उल्टा आपने जब अपनी गैलरी का एक्सेस दे दिया तो आप कोई भी ऐप चलाइए मेटा को तो पता ही चल जाता है। तो वो वैसी बात नहीं है। इसका भी आई अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका भी मेटा से लिंक है, और ये भी जो हम एप्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो हम पॉन एप्स की बात कर रहे हैं उनका मेटा से कैसा लिंक है, पहले वो एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। वो एप्स जो थे वो एक, मतलब एप्स जैसे वो मेटा पे नहीं दिखा रहे थे, वो एड्स में ये दिखा रहे थे कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ये पॉर्न पसंद है या तो आप ये वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम वो वेबसाइट विजिट करते थे, वो फिशिंग वेबसाइट्स होती थी, तब जाके वहां पे कहा जाता था कि अगर आपको ये कंटेंट देखना है तो आपको ये एपीके फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये एक मेटा का लिंक है, जो मेरे को क्लैरिफाई करना है आपके साथ। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप जैसे बोल रहे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्स है, जैसे कि अगर ये वेल नोन ब्रांड्स के एप्स है, वेल नोन यूटिलिटी एप्स है, तो फिर ये लोग के हाथ में, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ पे उनको ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे डेटा ब्रीचेस होते हैं। अभी अगर ये एप्स ने, जो भी है, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए आपके पास कोई एक पिज्जा रेस्टोरेंट का ऐप है, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उसका डेटा ब्रीच हो गया, तो ये उनकी जवाबदारी होती है। बाकी जहां तक हमारा सवाल रहता है, जब भी हम जैसे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे डिजी यात्रा आपने डाउनलोड किया, उसमें आपको आधार ऑथेंटिकेशन देना है। कई बार तो ऐसा भी रहता है कि आपको वो जो कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको कैमरा के आगे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना कोई इसका स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तब रहेगा जब आपने कोई भी एक आलतू फालतू ऐप डाउनलोड किया हुआ है, एपीके फाइल स्पेशली है, और तब जाके वो भी ये सारी चीजें देख पा रहा है। अभी एपी के अलावा भी कैसा है, गूगल के प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एकदम ही रद्दी ऐप्स हैं, उनमें भी वो मैलवेयर है, और वो काफी टाइम वो जब आते हैं उन गूगल के प्ले स्टोर पे, तब क्या हो जाता है नवजोत, मतलब तब वो क्लीन रहते हैं, बाद में वो लोग अपना कोडिंग चेंज करके उसके अंदर ये फालतू चीजें डाल देते हैं। तो अभी हम जब वो उसको डाउनलोड करते हैं, भले ये एपीके नहीं है, अलग से डॉट एपीके फाइल नहीं है, लेकिन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, तब जाके ये जो बेकार एप्स है, ये फिर आपका सारा डेटा स्टील करते हैं। इसके लिए कभी भी आप एक ऐप डाउनलोड करें ना, तो पहले है, जैसे बाकी सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, कि कोई डॉट एपीके फाइल जो अलग से आया है, जैसे हमने देखा एलपीजी के टाइम पे आया है, अभी जो एसआईआर के टाइम पर आया है, फिर वेडिंग स्कैम्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, तो हमेशा ये जो फाइल आपके जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में भी आप जाके प्लीज उनके रिव्यूज पढ़िए, आप उनके रेटिंग्स देखिए और नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखिए। अगर वो लाखों में है तो आपको मालूम है कि ठीक है, ये सारे काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसे 30, 40, 200, 300, यानी कि कुछ तो ये शेडी एप्स है नवजोत।
0: बिल्कुल मैं एक चीज और जो इस एडवाइजरी में आई, फर्जी ऐप वेबसाइट्स मांगते हैं कई तरह की गैर जरूरी परमिशन। जब परमिशन की बात आती है, रितेश जी ने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी चाहिए या जो एप्स मांगती हैं, और कहां हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए, या हमें इस पर डाउट होना चाहिए कि ये फर्जी ऐप भी हो सकती है।
2: या बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। फर्स्ट लेवल ऑफ सेफगार्ड है किसी यूजर के लिए, ये बिल्कुल ही सतर्क होने वाली बात है। अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है तो आपको पता है कि आपने किस लिए इंस्टॉल करी है इसको। लेट सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एक स्कैनिंग की, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, नॉर्मल वेल नोन एप्लीकेशन नहीं, आपने कोई भी इंस्टॉल कर ली, तो अगर जैसे ही पहली परमिशन वो आपसे कैमरा की मांगती है, तो इट इज ओके कि वे कैमरा की परमिशन देनी पड़ेगी, तभी ये फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएगी, वो बुक बना पाएगी मेरे लिए पीडीएफ। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट परमिशन आपसे आपकी माइक्रोफोन की मांगती है, तो आपको पता होना चाहिए आप ओके करने से पहले, अलाउ करने से पहले, कि भाई तुमको माइक्रोफोन क्यों चाहिए, तुम्हारा काम तो सिर्फ पीडीएफ को स्कैन कर पेजेस का कैम फोटो खींच के और पीडीएफ बनाना है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ सेंस आपको होना चाहिए कि तुम्हें माइक की परमिशन क्यों चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट लेजिटिमेट ऐप, आप सीक्रेटली मेरा आवाज और मेरी बातें सुनना चाहते हो, आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल ये है, कल को धीरे धीरे वो ऐप इवॉल्व होती है और आपको लगता है हाँ इसमें ऐसा फीचर आ चुका है कि बोल के भी इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तब वो आपसे दोबारा परमिशन पूछेगी, तब आप दे सकते हो, जब आपको लगता है हाँ ये लेजिटिमेट है, अदरवाइज देर इज नो रिक्वायरमेंट, आपको गैलरी की परमिशन देने की जरूरत नहीं है उसको, और आपको उसी टाइम पे ही। और एक मैं हर हर हर अपने इवेंट में यही कहता हूं कि आपको मिनिमम सेट ऑफ परमिशन, लीस्ट प्रिविलेज फॉलो करना चाहिए, और हर एंड्रॉइड डिवाइस में एक सेटिंग होती है कि कोई परमिशन अगर कुछ दिन तक इस्तेमाल नहीं हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल हो जाए एप्लीकेशन से। जैसे कि लेट सपोज बहुत बड़ी एप्लीकेशन ही ले लेते हैं, फेसबुक ने मान लेते हैं कि किसी एक परमिशन को, गैलरी की परमिशन को, ऑल्दो होता नहीं बट गैलरी की परमिशन को उसने बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया फीचर को, तो अपने आप बैकएंड से वो परमिशन रिमूव हो जाए, ये आजकल फीचर आ चुका है, आप अगर वो इनेबल कर रहे हो तो काफी हद तक आप सेफ हो।
0: अमित जी, एक बेसिक कॉल्स भी आती हैं और मैसेजेस भी आते हैं केवाईसी अपडेट करने को लेकर, ये कौन कौन सी ऐप्स हमसे पूछ सकती है और कहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर केवाईसी मांगा जा रहा है तो ये फर्जी हो सकता है।
3: मैम देखिए, कभी भी, पहली बात है, कोई बैंक या कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे ऑनलाइन कभी भी इस चीज की डिमांड नहीं करेगा। कोई भी बैंक आपको नहीं कहता कि आप केवाईसी अपनी अपडेट कीजिए, या कोई भी पुलिस
0: नहीं।
3: अधिकारी
0: लेकिन सर
3: आपको
0: एक सेकंड, आपने कहा कोई नहीं कहता, लेकिन जो जितनी तमाम जो बैंकिंग एप्स है जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई बार आ जाता है कि अपडेट योर केवाईसी, और आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो आप कई बार ऐसा होता है कि आगे नहीं चलती।
3: आप वैसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉल आता है कि केवाईसी अपडेट के लिए, तो वो मैम बिल्कुल ही फेक है। कोई अगर अगर आपको मैसेज आता है कहीं से भी, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि ये बैंक के थ्रू मैसेज है, या फिर कोई भी मतलब पेटीएम का नंबर लगा के, बैंक का लोगो लगा के कोई भी अगर मैसेज भेज के कहता है ये आपकी केवाईसी के लिए मैसेज है, तो वो फेक हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करा के आपका स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, स्क्रीन शेयरिंग के बाद आपके फोन में जो जो चीजें चलती है इधर ओटीपी के नाम पे और चीजों के नाम पे आपसे फिर फ्रॉड किया जाता है, सब चीजें करी जाती है। तो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कोई बैंक का कोई नियम नहीं है कि आप ऑनलाइन केवाईसी कीजिए, आप बैंक में जाके भी केवाईसी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाइड सोर्स से ही केवाईसी कीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर पे आजकल काफी सारी ऐसी एप्स आ गई हैं कि प्ले स्टोर उनको बस डाल रहा है। जैसे अगर मैं लोन ऐप की बात करता हूँ, तो लोन ऐप इतनी ज्यादा खतरनाक ऐप्स आ गई हैं, आप अगर किसी भी मतलब प्ले स्टोर से किसी भी लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं और लोन के लिए जस्ट इंक्वायरी करते हैं, तो इंक्वायरी में क्या ना होता है, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब चीजें मांग ली जाती है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ मांग लिया जाता है। तो आप जस्ट लोन के लिए इंक्वायरी करोगे तो उसी टाइम इमीडिएटली आपके अकाउंट में 2,000 रुपए वो लोग भेज देते हैं। अब 2,000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए, आपने तो लोन अभी लिया ही नहीं, जब मांगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने आपके इधर अकाउंट में पैसे भेज दिए। अब जब जो उनकी एप्लीकेशन आपने डाली लोन ऐप की, उस एप्लीकेशन ने क्या किया, सबसे पहले आपका कैमरा एक्सेस, आपके कॉन्टेक्ट एक्सेस, आपकी फोटो गैलरी एक्सेस, सारे एक्सेस आपके ले लिए। अब लेने से क्या ना होता है, यूजर का पूरा डेटा, जैसे उसका कॉन्टेक्ट और फोटोज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूरे के पूरे उनके पास पहुंच गए। अब वो 2,000 रुपए जो उन्होंने आपको दिए हैं, उसके ब्याज पे वो उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उसके ऊपर ब्याज लगाते जाएंगे, मांगते जाएंगे आपसे। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो वो क्या करते हैं, आपकी फोटोज को लेके मॉर्फ करते हैं, मॉर्फ करके आपके कॉन्टेक्ट में भेजना चालू कर देते हैं, और जितनी कॉल्स आती हैं सारी वॉइप नंबर से आती हैं, उनको ट्रैक करना भी बहुत टफ हो जाता है। सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं इससे मार्केट में, तो देखा जाए तो हम लोग क्या कि जैसे कि लोन की इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने लोन मांगा भी नहीं अभी, और उन्होंने पैसे भेज दिए, और पैसे भेजने के बाद वो इस चीज पर चालू रहते हैं, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर कोई डर के उनको पैसे भेज देता है। जब फिर कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट में भी वॉइप नंबर कहीं पर ट्रैकेबल ही नहीं है, ट्रैक ही नहीं हो सकते, कोई उनका नोडल ऑफिसर नहीं है, तो वो जो वॉइप नंबर से अलग अलग नंबर से आपको कॉल आएंगे, आपको धमकियां देंगे, आपकी फोटो मॉर्फ करके भेजते हैं, उल्टी सीधी न्यूड बना देते हैं आपकी फोटो। तो ये जो क्राइम है इस टाइम टॉप मोस्ट क्राइम चल रहा है मार्केट में, मेरे पास कम से कम 15 से 20 केस रोज के आ रहे हैं ऐसे।
0: बिल्कुल, तमाम तरह की धोखाधड़ियां, और इसी को लेकर अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल रितेश जी, जिसका जवाब मैं चाहूंगी जरा आप दीजिए, कहां से ये नंबर्स लीक होते हैं? क्योंकि देखिए, साइबर फ्रॉड, अब मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से एक्सेस बढ़ रहा है, सारी ट्रांजेक्शन, हर चीज तो आपके फोन पर है, तो फोन पर है तो हम इसको सेव कैसे रखें?
1: आपने पहला ये पूछा कि कहाँ से ये नंबर्स लीक हो रहे हैं, तो ये नंबर्स बहुत सारी जगहों से लीक हो रहे हैं, काफी सारी जगहों पे तो हम भी दे देते हैं, जैसे कि आप जब दुकानों में भी जाते हो तो वो बोलते हैं हम बिल आपको जो बिल है आपको व्हाट्सएप कर देंगे या SMS कर देंगे वगैरह, अब हम लोग दे देते हैं वगैरह। और फिर कई बार हम लोग ने भी ये देखा हुआ है कि अभी जैसे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या वो रेस्टोरेंट का, उनका अगर कुछ पर्टिकुलर डेटा ब्रीच हो गया है, ब्रीच आप छोड़िए, बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि वो डेटा बेचा भी जाता है, काफी सारे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी सोसाइटीज में कैसे होता है कि जो गेस्ट रजिस्टर होता है, जहां पे आप अपना हाथ से नाम लिखते हैं, मतलब नवजोत कौर, और फिर बाद में अपना नंबर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स है वो आते हैं, गार्ड को 50 रुपए देते और रोज का फोटो लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में डेटा ब्रीचेस हो गया, डार्क वेब हो गया है, इसके ये मतलब काफी सारे ये ऑनलाइन आप ये खरीद सकते हैं, तो ऐसे में तो नंबर्स की तो कमी नहीं है। अभी खाली नंबर्स नहीं, नंबर, नाम, प्रोफेशन, एज, बहुत कुछ, पूरा ये प्रोफाइलिंग हर जगह से मिला जाता है। अभी आप कितना भी कर ले, क्योंकि अब क्या हो गया, अभी आप अपना नंबर तो बदलेंगे नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि ठीक है अभी आप मना करेंगे, जैसे मैं दुकानों में मना कर देता हूँ कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए, आपको बिल जैसे भेजना है भेजिए, ईमेल पे भेजिए, लेकिन मैं नंबर नहीं देने वाला हूँ। अब ये एक पर्टिकुलर तरीका हो गया कि आप बहुत सारी जगहों पे ना बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जवाबदारी आती है इन लोगों की, ये ऑर्गेनाइजेशंस की, इन संस्थाओं की, कि वो लोग साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप देखिए, कभी भी मीडिया हो या गवर्नमेंट हो या हम लोग, हमेशा यूजर्स को, मैं मानता हूँ यूजर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन जब तक हम ये ऑर्गेनाइजेशंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे ना, तो हम कितनी सारी चीजें, मतलब हमारे पर आ जाएगा करने के लिए। आज आप एक एपीके फाइल की बात कर रहे हैं, इसके पहले देखिए ओटीपी की हम क्या बात कर रहे थे कि ओटीपी मत शेयर कीजिए। लेकिन आप बताइए, आप अभी जैसे दुकान, अब यू नो आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई इंसान अपने दुकान पे जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, या आप अपने स्टूडियो आ रही है, पीछे से आपका पार्सल आता है, आपकी मम्मी बोलती है कि अरे उसको वो ओटीपी मांग रहा है, और आपने मम्मी को तो ये बताया हुआ है कि नहीं ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन अगर आप ये नहीं दोगे तो ये आपको पार्सल नहीं मिलेगा। तो ये रोज रोज ये टेक्नोलॉजी भी
0: जी
1: बदलती जाती है, कभी आप
0: बिल्कुल
1: ओटीपी दे रहे हो, कभी आप नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी। अभी आप जैसे हम ये पॉन एप्स की बात कर रहे हैं, ये एड्स आए कैसे, वापस से वही बात हो रही है कि मेटा पे
0: रितेश जी,
1: जब
0: रितेश
1: एड्स।
0: जी बिल्कुल यहीं से अपनी बात को रखिएगा और सॉल्यूशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं, खास मेहमान जुड़े हुए हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि, चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं, चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है, और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं उनको पेनल्टी लग रही है? क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अभी जो यूजर, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मैं हमेशा कहता हूँ एक सिंपल फॉर्मूला अपनाइए, और POV का, जिसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, लेकिन ये POV अलग है। पी है आप, है ना, पॉज कीजिए। आपको कभी भी साइबर रिलेटेड कुछ भी आ रही है, अगर कुछ पढ़ने को आ रहा है, सुनने को आ रहा है, या देखने के लिए है, वॉट एवर, आप उस पर्टिकुलर चीज को पॉज कीजिए कि नहीं, क्या मुझे ये डाउनलोड करना चाहिए, क्या मेरे को इस चीज पे विश्वास करना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली ओ पे आओगे, जो मेरा POV का है, जीरो ट्रस्ट। आप हर चीज को, जो भी साइबर डिजिटल दुनिया में है, उसको शक की नजर से देखिए। आप जब उसको शक की नजर से देखोगे, तो ऑब्वियसली अभी आप उसको वेरीफाई करोगे। तो आपके पास जैसे ये एक APK फाइल आ गया है, एक आध किसी से पूछ लीजिए इंस्टॉल करने के पहले कि भाई मैं ये करूं कि नहीं, क्या ये सही चीज है कि नहीं, क्योंकि आप उस पर शक कर रहे हैं। तो और कोई एक इंसान, कोई घर का यंगस्टर हो गया, कोई भी होगा, वो आपको बता देगा कि भाई मत कर, इसमें ये तकलीफ है। तो हर चीज, मतलब व्हाट एवर यू सी, हियर, रीड, प्लीज आप उसको एक शक की
1: ठीक
0: नजर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: मयंक जी, देखिए अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम फंसे ही हुए हैं साइबर के इस जंजाल में। कहां पर किस कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कितनी परमिशंस देनी है, कितनी नहीं देनी, दे भी या नहीं दे, सब कामकाज, पूरी दिनचर्या इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। रितेश जी यहां पर कह रहे हैं कि सरकार को सख्ती करनी चाहिए, क्या जो कानून है आपको लग रहा है कि वो काफी है या इसमें और सख्ती की जरूरत है, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि सरकार खुद
0: मैं
1: परेशान है,
0: बिल्कुल
1: इसीलिए गाइडलाइन सरकार भी बार बार जारी करती है।
0: बिल्कुल मैं रितेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100% कि कंप्लाइंसेस एंड अकाउंटेबिलिटी आर मस्ट। कंप्लाइंस होना चाहिए कि जो कंपनीज हमारे यूजर्स को, हमारी जनता को एज अ प्रोडक्ट मान के रेवेन्यू कमा रही हैं, दे शुड फॉलो द कंप्लाइंसेस। और हमारे इंडिया का कंप्लाइंस फॉलो करना चाहिए, ग्रीवियंस होना चाहिए कि अगर कोई चीज रिपोर्ट हुई है तो उसको तुरंत टेक डाउन करना चाहिए, एंड दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, कि उनको जिम्मेदार मानना पड़ेगा। उनको भी खुद मानना पड़ेगा, हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है, इसमें यूजर भी इन्वॉल्व है, बट दे आर द मीडियम, बिकॉज इनिशिएट वहीं से ही हुआ था। तो हमारे पास कंप्लाइंसेस की कमी है और अकाउंटेबिलिटी हम प्रूफ नहीं कर पाते, तो ये थोड़ी सी हमारी व्यवस्था में वो है। इस वजह से हमें ये छोटी छोटी गाइडलाइन जारी करनी पड़ती हैं कि आप इस तरह से सतर्क रहो। अगर रूल्स स्ट्रांग होंगे, अकाउंटेबल होगा, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा बड़े फाइन्स लगा के और उन कटघरे में खड़ा करके, तो मेरा मानना है यह बहुत ही कम हो जाएगा। आने वाले समय में यह घटनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी,
1: ठीक
0: बिकॉज
1: है, एक सेकंड, एक
0: बिकॉज
1: सेकंड, मैं इसी में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं, आप ही लोग हमेशा रहते हैं पैनल में। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किसी के साथ हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी आएगी? टेलीकॉम डिपार्टमेंट लेगा, बैंक लेगा जहां से पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी? ये घूम फिर के एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर वाली बात आ जाती है।
0: चिकन चिकन प्रॉब्लम है ये कि पहले कौन आया और किसकी किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पूरा इकोसिस्टम है जो जी, कि इसमें यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, बट आई आई आई टोटली जहां पे बहुत ही सख्त कानून है वहां गवर्नमेंट इनको प्रिवेंट कर लेती है। वहां का अगर आप नंबर्स देखेंगे बहुत ही कम है, बिकॉज वहां प्रिवेंशन है। प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है, अलग अलग एंटिटीज हैं, बैंक्स की है, जो गेटवेज हैं उनकी है, किसी दूसरे मीटिंग के थ्रू के, अब अलग अलग एंटिटीज हैं। अगर आप किसी केस को ओपन करेंगे और अलग अलग एंटिटीज को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो एवरीबडी विल डिफेंड और सब कोई बचने की कोशिश करेगा, यू विल एंड अप नोवेयर। तो ये पिरामिड सिस्टम है, ऊपर से जब तक इन्फोर्स नहीं होगा कि यू हैव टू फॉलो। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, आइदर आप इंडिया की एंटिटी हो, बाहर की एंटिटी हो, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स। सिंपल। तो
1: नहीं, लेकिन वही
0: मेरा
1: बात है ना
0: मानना
1: कि
0: ये
1: इसकी अकाउंटेबिलिटी तय कौन करेगा?
0: सरकार
1: क्या जो नियम बनाए
0: को,
1: गए हैं वो काफी हैं?
0: मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे पास नियम काफी हैं और बच के निकलने के काफी रास्ते
1: ज्यादा
0: हैं
1: चांसेस
0: इन
1: हैं।
0: प्लेटफॉर्म्स के
1: वो
0: पास
1: बच के निकलने वाले
0: इस
1: जो रूल्स है ना वो ज्यादा
0: जी
1: है।
0: इस वजह से यह धड़ल्ले से और बिना इस बात को सीरियस लिए अपना बिजनेस चालू रखते हैं। रितेश जी कुछ कह रहे थे।
1: हाँ रितेश जी, आप बात रखिए, फिर अमित जी के पास जाऊंगी मैं।
0: हाँ जी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ नवजोत जी, आप खुद ही मेरे को बताइए, अगर हमारा जो आईटी

0: एक्ट है वो सन 2000 का है, जो कि अमेंडेड था 2008 में, और अब अगर हम 2026 में हैं, तो आप ही बताइए क्या हम टेक्नोलॉजी, हमारा क्या जो लीगल सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा है
1: ठीक
0: क्या?
1: है. अमित जी, गाइडलाइंस जारी हो जाती है. एक तो रितेश जी की, माइंड की, दोनों की बात पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं. गाइडलाइंस जारी होती है, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़ा है, जो जिसका जिक्र शुरुआत में माइंड जी ने भी किया था और हमने भी बताया, लगातार हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं.
2: हाँ जी मैम, देखिए अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे कि सर ने बताया कि 2000 में हमारा आईटी एक्ट पास हुआ था, तो उस टाइम साइबर क्राइम अगर देखेंगे तो बहुत लो लेवल पे था, और उसकी अमेंडमेंट हुई 2008 में, क्योंकि जब लोगों के सामने बहुत सारी चीजें आने लग गई तो उसको बढ़ाया गया। आज हम 2026 में खड़े हैं और आज एआई का भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इधर असर पड़ रहा है, तो उसको लेके भी हमारे नए कानून नहीं बनाए गए, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे कानून जैसे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि बैंकों ने अपने कुछ इधर अकाउंटेबिलिटी ली हुई है, जैसे कि अगर आप खुद पेमेंट ट्रांसफर कर देते हो, आप अगर खुद ओटीपी बता देते हो सामने वाले को, तो बैंक उसके अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता, वो सारा क्लेम आपके ऊपर डालता है। अगर आपकी जेब में आपका कार्ड पड़ा है और आपके पैसे ट्रांसफर हो गए, तो बैंक उसके ऊपर 24 आवर्स के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हो, तो बैंक अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेता है उस चीज की। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स फॉलो हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में बैंक ने बनाए हुए हैं, लेकिन क्या है कि आईटी सेक्टर में आईटी को ना लेके कोई ऐसा हमारा कोई कानून नहीं बना, जो कि मतलब आने वाले जो नए नए मतलब क्राइम के ट्रेंड्स हैं उनको लेके बनाया जाए, क्योंकि क्राइम जो है 2008 में देखो और 2026 में देखो तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, तो उसके बीच का जो गैप है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास वही कानून है। आज हम 66 सेक्शन के अंदर ही सारे कानून को डाल देते हैं, ठीक है, हमारा आईटी एक्ट में 66 जो धारा है उसके अंदर ही हमारा सारा टोटल आईटी एक्ट जाता है। तो हम अगर एआई से भी कोई क्राइम करते हैं, जो अगर हम फोटो को मॉर्फ करके भी ना करते, तो सब कुछ 66 के अंदर ही जा रहा है। तो हर चीज के लिए एक सेपरेट कानून बनना चाहिए, और सेपरेट कानून बनेगा तो थोड़ी सख्ताई भी होगी, सख्ताई होगी तो थोड़ा क्राइम का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन जाएगा। तो इसलिए हमें नए कानून को लाना चाहिए, नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि नए नए मतलब क्राइम के साथ नए नए कानून भी अगर आएंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ताई होगी।
1: ठीक है. अब इसी को एआई एआई पर ही मैं आ रही हूँ. मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी कि अभी तक तो पुराने मामले सॉर्ट आउट नहीं हुए और अब हम सीधा एआई की दुनिया में कदम रख चुके हैं.
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट डायमेंशन है, और किस तरीके से एआई को हम लोग एक टेक्निकल और टेक पर्सन है जो कि एआई को यूज करते हैं, मैं देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ जब देखे कि किस तरह से एआई का यूज करके हैकर्स ने या किसी एंटिटी ने किसी को डुप किया, किसी का पैसा लूट दिया या किसी के साथ फ्रॉड किया। ये जो साइड लोडिंग हुई है, ये हुई है, ये वो हमसे 10 कदम आगे है, इस वजह से ही वो कर पाया। 95% लगभग, रितेश जी ने जो बताया कि साइड लोडिंग मतलब एपीके इंस्टॉल होना, 95% मामलों में ये एपीके डाउनलोड करके ही होता है फ्रॉड, 95%। इसका मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्रॉड्स ये डाउनलोड अलग से करवाया जा रहा है, और इसका मतलब आपके माइंड से मैनिपुलेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई। ये आपको, आपके दिमाग को पढ़ चुके हैं कि आपको क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वो आपको दिखाएंगे, आपको खिलाएंगे, एक तरह से जो आपका, हम अगर देखें आज के समय में हमारा जो पर्सनल साथी है, सबसे ज्यादा साथी जिसको सबसे ज्यादा हमारे बारे में पता है, वो है हमारा फोन, घर वाले भी नहीं है, हमारा फोन है, और वो ही फोन का एक्सेस किसी और के पास है, तो ये सीधी सी बात है कि घर का भेदी लंका ढहाए, सारी जानकारी जो मेरे पर्सनल आदमी के पास है वो किसी और के पास भी है, बिल्कुल। तो बिल्कुल एआई का यूज करने के बाद, जब से एआई आया है, आप देखें पिछले 1-1.5 साल में मामले एक्सपोनेंशियली आगे हो गए। आप घर बैठे किसी की भी इमेज मॉर्फ कर दीजिए, उसको भेज दीजिए, आधे से ज्यादा उसको एग्जाइटी, रात शाम तक एग्जाइटी हो जाएगी और उसको दवा खानी पड़ जाएगी, ये क्या हो गया।
1: खुद को सेफ हम कैसे रख सकते हैं?
0: हाँ, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी चीज इंटरनेट से आपको आ रही है, इस डिजिटल दुनिया में आप जो भी देखते हैं, जरा एकदम तुरंत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड मत कीजिए, भले फिर वो लिंक क्यों नहीं हो, कोई फाइल क्यों नहीं हो, कुछ भी, कोई वीडियो क्यों नहीं हो, कोई कुछ भी क्यों नहीं हो, क्योंकि वो डीप फेक भी हो सकता है वगैरह, और हर चीज को शक की नजर से देखें, वेरीफाई करें और फिर आगे बढ़े।
1: अमित जी,
2: मैम, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, अगर आपको कुछ फ्री मिल रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ है, और कभी भी अननोन वेबसाइट से या किसी भी सोर्स से कोई भी एपीके डाउनलोड ना कीजिए, एप्स को ट्रस्टेड सोर्स ही हमेशा डाउनलोड कीजिए, और इंस्टॉल करते वक्त अपने फोन के अंदर हमेशा अननोन एप्स वाली ऑप्शन ऑन रखें, ताकि कोई भी अगर ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको जब तक ऑन नहीं करते, आपसे नहीं पूछता तब तक इंस्टॉल ना हो।
1: ठीक है मायंक जी, आप क्या सलाह देंगे लोगों को?
3: बस ये ध्यान रखने की सलाह दूंगा कि हैकर्स को आज के समय में हमेशा आपका पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड बहुत पुरानी चीज हो गई आज के समय में, उनको सिर्फ एक परमिशन चाहिए, जिसकी बारे में हमने पूरे अपने इस इकट्ठे में चर्चा करी। आज के समय में पासवर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनको सिर्फ एक परमिशन चाहिए। एक आदमी आपके घर के बाहर खड़ा है, उसको सिर्फ एक परमिशन चाहिए, क्या सर मैं आपके घर में थोड़ी देर बैठ जाऊं, पानी पी लूं, इतना काफी है उसके लिए आपका पूरा घर लूट लेने के लिए। तो आपको बहुत ही ध्यान सतर्कता बरतनी है किसी भी ऐप को परमिशन देते टाइम पे, डाउनलोड करते टाइम पे, और किसी पे भी विश्वास करते टाइम पे, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे एक यूजर हो, किसी ने आपको फोन किया हो, या कोई भी हो।
1: ठीक है, एक सवाल रह गया। रितेश जी ने ओटीपी का जिक्र किया था, ओटीपी के जंजाल से फिर कैसे बचेंगे? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, और बहुत सारी डिलीवरीज हैं जिसमें ओटीपी मांगा जाता है।
0: देखिए बात वही हो रही है,
1: डेली डिलीवरीज में भी आजकल ओटीपी मांगा जा रहा है सर।
0: इसके लिए जितने भी मतलब अगर आप मेरे को पूछेंगे, मैं आप सब यूजर्स को एक ही सलाह दूंगा, जो वेल नोन ब्रांड्स है, जो वेल नोन कंपनीज है, वेल नोन एप्स है, आप उनके साथ ही डील कीजिए वगैरह। फिर वो अगर आप ओटीपी मांग रहे हैं तो समझ में आता है, जैसे अभी जैसे हमारे यहाँ अमेजोन वाला अगर आया है डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि मेरे को ओटीपी ऑलरेडी आ जाता है और वो भी अमेजोन से ही आता है, तो मुझे मालूम है मेरे को ये देना पड़ेगा। तो जा क्योंकि इधर लाखों और हजारों ऐसे ब्रांड्स और एप्स हैं, तो इसके लिए सिलेक्टेड ये जो वेल नोन वाले हैं, क्योंकि वो लोग काफी रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं और काफी उनकी साइबर सिक्योरिटी भी रहती है, और उनके कंप्लेन सेंटर्स भी रहते हैं जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है। बाकी ये आलतू फालतू की जो छोटी छोटी शॉपिंग साइट्स बनी है वगैरह, सब जो नवे नवे आए हैं, उनपे ये सब विश्वास न रहे।
1: ठीक है, तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले, कोई भी फोन कॉल उठाने से पहले, ओटीपी देने से पहले आप सोच लीजिए, और जब भी ऐप डाउनलोड करें तो कुछ खास टिप्स, यानी कि परमिशन देनी है नहीं देनी, उन सब का खास ख्याल रखें, तभी आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। रुकिए एक ब्रेक के लिए, आप विक्ट्री गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 4 दिवसीय दुबई दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो 9 सितंबर तक इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा मध्य प्रदेश में नए निवेश, व्यवसायिक साझेदारियों और दीर्घकालिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुबई रवाना होने से पहले हमारी उनसे बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। आप दुबई दौरे पर रवाना हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से अगर हम देखें तो आपका ये दौरा जो है किस तरह से महत्वपूर्ण होने जा रहा है?
2: देखो, हमारे राज्य में GIS का जनवरी में आयोजन होने वाला है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, हम हर सेक्टर में हर एक जगह जाकर के हमारे निवेश की सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से दुबई के साथ हमारा भारत और UAE का CEPA केवल एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि निवेश, विनिर्माण और निर्यात का नया अध्याय है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी बड़ी संभावना लेकर दुबई के दौरे पे जा रहे हैं।
1: देखिए मुख्यमंत्री जी, कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसको लेकर आपकी वहां मुलाकातें होने जा रही हैं?
2: देखिए, हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, कृषि निर्यात है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, लॉजिस्टिक है, नवकरणीय ऊर्जा है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे स्वाभाविक रूप से काफी बड़े सेक्टर में हर एक जगह UAE के साथ हमारी स्वाभाविक साझेदारी की संभावना है। ऐसे में जब हम अपने राज्य की तरफ से देखते हैं तो मध्यप्रदेश भारत का फूड बास्केट है और खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। UAE भी अब इस दिशा में काफी ठोस कदम उठाता है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने लक्ष्य में केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, मध्यप्रदेश को UAE और खाड़ी देशों के लिए विश्व स्तरीय सप्लाई चेन के रूप में और वैल्यू एडिशन हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रहा है, क्या दुबई के लोग भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्साइटेड आपको नजर आते हैं?
2: देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरलीकृत व्यापार व्यवसाय की पद्धति है, 25 से ज्यादा व्यापार की पॉलिसियां हैं हर सेक्टर में और पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली, पानी, क्राइम लेस हमारा व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल है। इसके कारण से बड़े पैमाने पे हमारे साथ कई सारे देशों ने जुड़ना पसंद किया है। बीते समय हमारी सरकार के बनने के बाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में हुआ है। आज की स्थिति में 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हम अपने मध्यप्रदेश से करते हैं
1: जी।
2: तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर इसमें संभावना है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारा दौरा इसी रूप में रहेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वास्तव में दुबई आज विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडल में माना जाता है और स्वाभाविक रूप से मध्यप्रदेश में वो संभावना और मध्यप्रदेश से सीखेंगे भी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल में आपके कई विदेशी दौरे हुए, हमने देखा किस तरह से आप विदेशी इन्वेस्टमेंट को मध्यप्रदेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं और इसका प्रभाव जनता पर कैसे पड़ गया, ये हमको समझाने की कोशिश कीजिए युवा पीढ़ी के लिहाज से अगर हम देखें तो।
2: देखो, जब निवेश विदेश से आता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य में समृद्धि आती है, रोजगार आते हैं, काम मिलता है और हम परस्पर एक दूसरे के साथ पूरक भी हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बीते समय जब हमने जहां भी दौरा किया था, हमारे लिए दावोस से लेकर के जर्मनी, जापान और कनाडा, जहां हमारा दौरा हुआ हर जगह हम सक्सेस स्टोरी के नाते से जाने गए और इसी कारण से UAE का दौरा भी हमारा है। बीती GIS जब 2025 हमने फरवरी में की थी माननीय PM की मौजूदगी में, तो जो निवेश उस समय MOU में हुए थे वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के आज धरातल पे उतर चुके हैं। तो हमारा अगला GIS 2027 जनवरी का जो हम सोच रहे हैं वो उसी को लेकर के है, उसी सिलसिले में हम आगे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्ववर्ती में बताया कि दुबई ने दूरदर्शी नेतृत्व, विश्व स्तरीय संरचना, निवेश अनुकूल नीतियों का अपना एक दुबई का अपनी पहचान भी है और हम मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, अब ये वो शहर है जहां आधुनिक और एकीकृत डेवलपमेंट की बड़ी संभावना है। ऐसे में अर्बन प्लानिंग, पर्यटन आधारित विकास, सार्वजनिक अधोसंरचना के काम, स्मार्ट सिटी मॉडल, ऐसे कई प्रेरणादायी स्कोप है जहां दुबई और दुबई से जुड़े हुए लोग यहां पे काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: ना स्टीयरिंग व्हील ना पैडल और ना ड्राइवर, फिर भी सड़क पर दौड़ती कार। दरअसल टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला ने अपने उस साइबर कैब की राइड शुरू कर दी है, जिसे कंपनी ड्राइवरलेस भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बता रही है। 2 लोगों के बैठने की जगह वाली ये कार सिर्फ दिखने में ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ती।
9: कार नहीं, टेस्ला के मुताबिक ये ड्राइवरलेस भविष्य की झलक है। गोल्डन रंग की ये 2 सीटर साइबर कैब ऑस्टिन की सड़कों पर उतर चुकी है, और सबसे खास बात, इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, पैडल नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, यात्री बैठता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर कार बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है। कैमरा कार के अंदर जाता है, जहां सामने ड्राइवर की जगह नहीं बल्कि सिर्फ 2 यात्रियों के लिए जगह है। यानी टेस्ला की सोच साफ है, कार को चलाने के लिए इंसान नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, और इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग यात्रियों ने किया। दिव्यांग यात्री भी साइबर कैब में बैठा, यानी टेस्ला जिस भविष्य की तस्वीर दिखा रही है उसमें सफर सिर्फ ड्राइविंग से आजादी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी का नया रास्ता हो सकता है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्टिन की सड़कों पर जैसे जैसे साइबर कैब दौड़ी, लोगों की निगाहें भी इस पर टिक गईं। कोई सड़क किनारे खड़ा होकर इसे देख रहा है तो कोई इसकी राइड का इंतजार कर रहा है। भविष्य की कार अब सिर्फ शोकेस में नहीं सड़क पर है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने ऑस्टिन में ड्राइवरलेस राइड का प्रयोग किया है। कंपनी पहले से ऑटोनॉमस मॉडल Y के साथ सीमित रोबो टैक्सी सर्विस चला रही है। कुछ गाड़ियों में इंसानी सेफ्टी मॉनिटर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर कैब टेस्ला की उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। कंपनी चाहती है कि आने वाले वक्त में यही बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली साइबर कैब एक बड़े ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी नेटवर्क की पहचान बने। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार है, सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन साइबर कैब को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सड़क पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कार सिर्फ इनोवेशन नहीं सेफ्टी की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। टेस्ला के लिए ये सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं, ये उसके भविष्य की परीक्षा है, क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस चाइना समेत दुनिया भर की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, और ऐसे में ड्राइवरलेस कारों का सपना टेस्ला की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। कल तक कार चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी था, आज टेस्ला कह रही है कल कार को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। ऑस्टिन की सड़क पर दौड़ती ये साइबर कैब दरअसल सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक ऐसे भविष्य का ट्रायल है जहां इंसान कार नहीं चलाएगा, कार इंसान को चलाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये भविष्य सुरक्षित भी है? क्योंकि ऑस्टिन की सड़कें अब इस सवाल का जवाब देने वाली टेस्ट लैब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि? चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या हैं? चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: महाराष्ट्र के कुला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। अमांत पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 1100 शिव भक्तों ने संभाल रखी है 100 फीट लंबी कांवड़। साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा, 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके पहुंचेगी कैलाश धाम। 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित किए राहत किट, लोगों के पुनर्वास का दिया भरोसा। दिवसीय अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को हराया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। सच्ची अच्छी खबरों में हम बात करेंगे सबसे पहले गणेश चतुर्थी की तैयारियों की। देखिए शहर शहर बप्पा के आगमन को लेकर जोर शोर से इंतजाम किए जा रहे हैं, शानदार पूजा पंडाल आकार ले रहे हैं और कई पंडालों में बप्पा का आगमन भी होना शुरू हो चुका है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह लोगों में अभी से देखने को मिल रहा है। मुंबई के अलावा देश के कई शहरों में भी बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं।

0: देश में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 14 सितंबर को गणेशोत्सव का शुभारंभ होना है। ऐसे में लोग पूरी आस्था और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़े बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। गणेश उत्सव समिति के सदस्य अभी से भगवान गणेश के स्वागत के प्रबंधन में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के जालना में भी गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हैं। विघ्नहर्ता के आगमन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मूर्तिकार लंबोदर की मूर्तियां बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। जालना के अंबर तालुका के मठ पीपल गांव में गणेश जी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिनिशिंग और रंग रोगन का काम चल रहा है। गणेश उत्सव से करीब 6 महीने पहले ही मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो जाता है। अलग अलग आकार और डिजाइन बनाए जाते हैं। इस साल यहां पर मूर्तिकार श्रीनिवास डेवलमपुरे ने गणेश भक्तों के लिए राधा कृष्ण, भोलेनाथ, मयूरासन, कस्तुमबड़ी, मुंबई चाराजा और सरकार जैसे अलग अलग पैटर्न की गणेश मूर्तियां तैयार की हैं। अलग अलग मुद्राओं और आकर्षक डिजाइन वाली ये मूर्तियां भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इनमें भोलेनाथ पैटर्न की गणेश मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। वहीं इस साल बड़े आकार की गणेश मूर्तियों का क्रेज भी बढ़ा है।
1: सभी राधा कृष्ण है, मयूर है, भोलेनाथ है, कस्तुमणि है, मुंबई का राजा है, सरकार है, ऐसे बहुत से मेरे पास अलग अलग पैटर्न है।
2: फिलहाल किस गणेश मूर्ति पैटर्न को ज्यादा डिमांड है?
1: अभी सद्य भोलेनाथ को
2: कर रहे हैं। क्या कर
1: रहे हैं? क्या भी लोगों की भावना है।
0: जालना में इस साल 10 इंच से लेकर 13.5 फीट तक की गणेश मूर्तियां तैयार की गई हैं। करीब 4,000 रूपए से शुरू होकर मूर्तियों के आकार और डिजाइन के हिसाब से करीब 50,000 रूपए तक की गणेश मूर्तियां तैयार की गई हैं। दाम बढ़ने के बावजूद गणेश जी की प्रतिमाओं की डिमांड में कोई कमी नहीं देखी जा रही। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी गणेश चतुर्थी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। घर घर में भगवान गणेश विराजमान तो होंगे ही, पंडालों में भी गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की तैयारी चल रही है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कारीगर भगवान की प्रतिमाओं के रंग रोगन में लगे हुए हैं। अलग अलग रंगों से सजाया जा रहा है। अलग अलग तरह की प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। यहाँ पर भगवान शिव के साथ गणेश, शेषनाग गणेश, डमरू गणेश प्रतिमा की काफी डिमांड है। आगर मालवा में 2 इंच से लेकर 10-12 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ये प्रतिमाएं न सिर्फ जिले में बल्कि आसपास के जिले समेत राजस्थान तक जाती हैं।
3: हमारे यहाँ गणेश जी 4 इंच से लेकर के 8-9 फीट तक, 10 फीट तक के अवेलेबल हैं। और पैटर्न में मतलब चूहे वाला है 4 फीट में, 5 फीट में सिंहासन वाले हैं, पगड़ी वाला है, डमरू वाले हैं, चांद पे बैठे हुए गणेश जी है, और ये हाथी वाले हैं, सबसे बड़े वाले हाथी लगे उसमें, चांद, महाराणा प्रताप है, शेर है, सभी तरह के पैटर्न बनाए हुए हैं।
4: अलग अलग वेरायटी में है, 4 फीट वाली है, 5 फीट वाली है, 3 फीट वाली है, और अलग अलग डिजाइन में भी है। जैसे कि भोलेनाथ वाली है 6 फीट वाली, जिसमें भोलेनाथ दिए गए उसमें, और एक 4 फीट वाली जो सरकार मूर्ति जो सूरत के हैं उसका भी पैटर्न हम इस बार लाए हैं, और एक बंगाली पैटर्न वाली मूर्ति भी है जो कि 4 फीट में है। माल हमारा राजस्थान, डग, बड़ौदा, बहुत दूर दूर तक जाता है हमारा माल, एमपी से बाहर तक भी जाता है।
0: गुजरात के सूरत में भी गणेश उत्सव को भव्य और यादगार बनाने की कोशिश हो रही है। बेसू इलाके में भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। विशाल पंडाल का निर्माण करीब 40,000 वर्ग क्षेत्रफल में किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और करीब 1,00,000 लोगों के दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। पंडाल को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसानी से भगवान गणेश के दर्शन कर सके और भीड़ के बावजूद व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत भगवान गणेश की विशाल और आकर्षक प्रतिमा होगी। इस बार यहां पर करीब 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रतिमा को तैयार करने में करीब 700 किलोग्राम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टिश्यू पेपर से प्रतिमा को तैयार करने का उद्देश्य इसे अपेक्षाकृत हल्का और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पंडाल का महलनुमा डिजाइन अभी से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजक और कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पर गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। अलग अलग गायकों को आमंत्रित किया गया है। जालना से गौरव विजयशाली, आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुलनेश्वर।
5: गणेश उत्सव के आगमन को लेकर देश भर में उत्साह और आस्था का माहौल है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश उत्सव को लेकर अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच गुजरात के सूरत शहर में भगवान गणेश के आगमन की एक ऐसी अनोखी यात्रा निकाली गई जिसने श्रद्धालुओं के साथ साथ राहगीरों को भी हैरान कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको।
6: सूरत की सड़क, रात का वक्त, अलग अलग तरह के भूत, पिशाच, अलग अलग तरह की डरावनी आकृतियां, मानो सूरत की सड़कों पर भूतों ने डेरा जमा लिया हो। रात के समय रोशनी, डरावना दृश्य देख सूरत के लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सड़क का रोमांच सबको आकर्षित कर रहा था। इसके बाद जब ये भूत पिशाच स्टेज पर पहुंचे तो मानो डर का समंदर उमड़ पड़ा हो। भूत पिशाचों के दल के बाद दिखी भगवान गणेश की प्रतिमा तो लोगों के जान में जान आए। दरअसल शिवजी के गण के साथ विघ्नहर्ता पंडाल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सूरत की शक्ति फाइटर ग्रुप ने पंडाल में गणेश जी को लाने के लिए अनोखा थीम अपनाया था। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र का आगमन हो रहा था तो महादेव के गणों को भी यात्रा का हिस्सा बनाया गया था।
7: थीम भी हमने यूनिक बनाई थी और ये कॉन्सेप्ट पूरे गुजरात में आज तक नहीं हुआ और पूरे इंडिया में बोले तो वो भी नहीं हुआ है। तो इस बार भूतों में मजा आया पब्लिक को।
6: धार्मिक पात्रों के साथ भूत पिशाच, नरमुंड और डरावने पुतलों को शामिल कर यात्रा को ऐसा स्वरूप दिया गया था जिसको देखकर हर श्रद्धालु हैरान हो गया। आयोजकों ने अनोखा संदेश देने की कोशिश की। देवाधिदेव महादेव एक ही हैं जबकि देव अनेक हैं। ऐसे में जब उनके पुत्र भगवान गणेश का आगमन हो रहा है तो महादेव, माता पार्वती और उनके गणों का साथ होना स्वाभाविक है। भगवान गणेश की इस अनोखी आगमन यात्रा में बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए थे और पूरा माहौल गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा था।
8: हम लोग 35 साल से गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो हर साल हम लोग अलग अलग थीम पे गणपति की स्थापना करते हैं और हमने आगमन में एक भूत प्रेत वाली एक थीम रखी थी। डेकोरेशन भी ऐसे ही किया था और हम महादेव के साथ और पार्वती माता के साथ गणपति जो उनके पुत्र हैं उनका हमने आगमन किया था और देव सभी है पर महादेव सिर्फ एक ही है और महादेव का पुत्र का जब आगमन होता तो उनके साथ जो बोलते हैं कि शैतानी जो होती है हमारी, शैतान हमारे जो होते हैं उनके भी देव है महादेव। तो पूरी हमने उनकी टोली लाके हमने गणपति का एक आगमन किया और एक अलग टाइप से हमने आगमन किया कि भूत प्रेत वाला आगमन आज तक नहीं हुआ है। सबको लग रहा है कि भूत प्रेत वाला आगमन क्यों किया पर बोलते हैं कि इंसान के अंदर भी एक अच्छा इंसान भी है और एक शैतानी इंसान भी है तो इसीलिए हमने इस बार ये आगमन किया है।
6: सूरत में ये गणेश आगमन चर्चा का विषय बना हुआ है। गणेश उत्सव में आमतौर पर फूलों, रोशनी, धार्मिक झांकियां और पारंपरिक सजावट देखने को मिलती है लेकिन सूरत में शक्ति फाइटर ग्रुप की ओर से तैयार की गई अनोखी थीम को देख लोगों ने तारीफ के पुल बांध दिए। किसी को ये धार्मिक आस्था से जुड़ा अनूठा प्रयोग लगा तो किसी को इसका डरावना और हॉरर फिल्म जैसा स्वरूप आकर्षित करता नजर आया।
9: देश भर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कई जगह गणेश पांडाल के काम किए जा रहे हैं तो कई जगह गणेश पांडालों में भगवान गणेश का भी आगमन हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के अडाजन इलाके में और यहाँ आप देखेंगे गणेश पांडाल में भगवान गणेश की जो मूर्ति है यहाँ पर स्थापित की गई है और अभी ये पूर्व तैयारियों के रूप में इनका आगमन हो चुका है। गणेश उत्सव को शुरू होने में अभी समय है इसलिए इनका चेहरा को भी ढका गया है। जब विधिवत रूप से गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा उसके बाद मूर्ति को यहाँ से खोला जाएगा और इनका जो आगमन हुआ है वो भी भव्यता तरीके से हुआ क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं तो कुछ न कुछ थीम नजर आ रही है। सूरत की अगर हम बात करें तो अलग अलग थीम पर लोग भगवान गणेश की स्थापना कर रहे हैं तो इस ग्रुप के द्वारा भी अलग अलग थीम के द्वारा यहाँ पर भगवान गणेश की स्थापना की गई जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
6: कुल मिलाकर सूरत की गणेश आगमन यात्रा भक्ति, आस्था, रोमांच और अनोखी थीम का ऐसा संगम बनी जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज़ टुडे।
5: तीर्थस्थल गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर इस बार पिंडदान के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल के साथ साथ कला की झलक भी देखने को मिलेगी। गया जी के विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पिंडदान के प्रमुख स्थलों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग और पिंडदान से जुड़ी आकर्षक तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से पेंट द सिटी अभियान के तहत कलाकार दीवारों को धार्मिक और ऐतिहासिक रंगों में पिरो रहे हैं।
6: श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया जी में देवघाट की इन दीवारों पर अब शानदार तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। इन तस्वीरों में पिंडदान की परंपरा से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित तस्वीरें बनाई जा रही हैं। मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत शैली में बनाई जा रही ये तस्वीरें पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इन चित्रों के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं का एहसास कराने की कोशिश है।
10: डीएम सर के द्वारा यह पेंट द सिटी कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत फेज वन में 5 लोगों का चयन किया गया था, जिन्होंने अपने चित्रों और कलाकृतियों से इन दीवारों को सजाया है। आगे और भी कई स्थानों में यह चित्र, सुंदर सुंदर चित्र उकेरे जाएंगे।
6: इन तस्वीरों में धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं को रंगों के जरिए जीवंत किया जा रहा है। कलाकारों के मुताबिक तस्वीरों का हर हिस्सा खास धार्मिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास देवघाट और सीता कुंड सहित पिंडदान की प्रमुख वेदियों और दूसरे स्थानों पर दीवारों की धार्मिक थीम की पेंटिंग से सजाया जा रहा है।
10: इस पेंटिंग को बनाने में हमें 5 से 7 दिन लग गए। थोड़ा ये मौसम की भी स्थिति थोड़ी खराब रही, इसलिए थोड़े से अड़चन आए, पर यह धार्मिक कार्य और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था तो फिर भी हमने किया है और ये बनाया है।
6: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर गया जी के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यहां पर पेंट द सिटी अभियान चलाया जा रहा है।
11: अभी तो इसी तरह सीजन चल रहा है, देश विदेश से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पिंडदान करने के लिए अपने मस्ती प्राप्ति के लिए आते हैं, तो इसके लिए तो अच्छा अभी तो शुरुआती हुआ है, अभी आगे और होना बाकी है। लाइटिंग होगा, पंडाल बनेगा, ये चीज अभी बहुत चीज डीएम विधायक जो दिया था, जो दिए हैं नेता बन है, डीएम है, अफसर है, उन सारा योगदान को यहाँ देते हैं।
6: गया जी में हर साल पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के घाट और दूसरी जगहों पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इस बार पितृपक्ष मेले से पहले शहर में दीवारों पर बनाई जा रही ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिंडदान की परंपरा और यहाँ की धार्मिक विरासत को भी रंगों के जरिए सामने ला रही हैं। उम्मीद है कि जब देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए उन्हें गया की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़कर एक नया अनुभव मिलेगा। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: प्रसिद्ध माँ नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड से कैलाश के लिए रवाना हो गई। माँ नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड क्षेत्र जय माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ये यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में माँ नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भक्तों ने माँ की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जाग का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूड़ में माँ नंदा की डोलियाँ विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूड़ और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: और माँ जो बेटी है आज एक उसको विदा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी इससे आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना की सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं आज, माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमारे से तन मन धन से बनता है अपनी बेटी को विदा करने के लिए, हम दूर दूरस्थ से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूड़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है, इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम में तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मानसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको एक ऐसी पाठशाला में लिए चलते हैं जहां पर पढ़ाई भी होती है और हुनर को निखारा भी जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल देने की कोशिश की जा रही है। इसे नमिता चौधरी चलाती हैं। इनका यह सफर करीब 12 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब बदस्तूर जारी है। चलिए चलते हैं नमिता मैम की पाठशाला में।
2: कमरों में चलती हुई क्लास, क्लास के अंदर पढ़ाते हुए टीचर्स, मास्टर्स आपने खूब देखे होंगे। आज हम आपको एक बिल्कुल अनोखी क्लासरूम में लेकर आए हैं। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ क्लास है, यहाँ कोई रूम नहीं है। ये दिल्ली में DDA का एक पार्क है और यहाँ कोने कोने पर आपको अलग अलग क्लासेस चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर किसी को ड्राइंग सिखाई जा रही है, कहीं पर किसी को अंग्रेजी में रोजमर्रा की जो भाषा है अंग्रेजी में उसे कैसे बात करें अंग्रेजी सिखाई जा रही है, तो कहीं पर बच्चों को दिन महीने तारीख रात दिन चांद तारे याद करवाए जा रहे हैं। किसकी क्लास है ये और ये अनोखी क्लास आखिर किस लिए शुरू की गई थी, मिलवाते हैं आपको नमिता चौधरी से। DDA के इस पार्क में नमिता मैम की क्लास चल रही है। नमिता चौधरी जी मेरे साथ में हैं और आज लगभग 12 साल हो गए इस काम को करते हुए।
3: जी सर, इसको करते हुए 11 साल यानी ऑन पेपर 11 साल है, पर ग्राउंड पर हम 12 सालों से काम कर रहे हैं।
2: तो अभी इस पार्क में हम अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को बैठा हुआ देख रहे हैं। क्या अलग अलग क्लासेस चल रही हैं एज ग्रुप के हिसाब से या फिर एक्टिविटीज के हिसाब से?
3: मिक्स है सर, कुछ बच्चे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं तो उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चलती है जो वीक में 2 से 3 दिन होती है। इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चलती है और बेसिक एजुकेशन तो ऑलवेज है बिकॉज वो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है।
2: कौन से बच्चे हैं ये? ये वो बच्चे हैं जो यहाँ स्लम्स में रहते हैं या ये वो बच्चे हैं जो प्रवासी मजदूरों के हैं जो कुछ समय के लिए शायद यहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आए हुए हैं? कौन से बच्चे हैं ये?
3: स्टार्ट जब NGO हुई थी तब हमारे पास प्रवासी मजदूरों के बच्चे थे। दीनदयाल कॉलेज बन रहा था तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए, बट वही है कि प्रवासी हैं तो कुछ समय के बाद वो चले गए। यहाँ जो बच्चे अब आप देख रहे हैं 11 सालों की जर्नी में, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर क्लस्टर में रहते हैं। इनके फादर मदर जो हैं वो मेड का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप बोल सकते हैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं ये।
2: जब आपने शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुई, वो क्या चीज़ थी जो आपको क्लिक की और आपको लगा कि नहीं ये वाला काम करना है?
3: शुरुआत एक पैशन से बोलूँगी हुई तो ये गलत होगा, मैं अपने समय को यूटिलाइज करना चाहती थी कि कि मेरा जो समय है पूरा दिन बच्चों के जाने के बाद मैं पूरा दिन बैठी होती हूँ और मोबाइल को स्क्रॉल कर रही हूँ, तो क्या मेरे जीवन का मकसद यही है, लाइफ का मकसद ये है? ये बार बार क्वेश्चन मुझे रिपीटली आता था। बॉम्बे में थी तो इससे पहले तो वहाँ ऑर्फनेज जाती थी, तो वहाँ पर जब ऑर्फनेज जाके बच्चों के चैलेंज सुनती थी या कैसे पेरेंट्स ने छोड़ा, वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको पता था कि उनके पेरेंट्स कौन है और क्यों नहीं अपने साथ रख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे हमेशा दिल्ली आने के बाद भी परेशान करती आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में कि आप कुछ नहीं दो, जस्ट आपके जाने से भी किसी के चेहरे पर एक स्माइल आ रही है तो शायद आपका वो दिन बन जाएगा। तो उसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, मुझे करना है कि यदि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मन में ये संतोष हो कि मैंने एक चेहरे को भी हंसाया, एक बच्चे को भी एजुकेशन दी और एक महिला को भी अपने पैरों पर खड़ा किया।
1: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: कौन सी है चंद्रमा की चंचल राशि, चंद्रमा की राशि की विशेषताएं क्या है, चंद्रमा की राशि होने पे समस्या क्या आती है और चंद्रमा की राशि के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत

0: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा की राशियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इनके पास केवल एक ही एक राशि है, बाकी हर ग्रह के पास दो दो राशियां हैं। लेकिन सूर्य के पास भी एक राशि है और चंद्र के पास भी एक ही राशि है। आज हम चंद्रमा की राशि की बात करेंगे, जिस राशि का नाम है कर्क राशि। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका महत्व है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा की राशि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है। चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का ग्रह है, और चंद्रमा का एक राशि के साथ पूर्ण संबंध है, एक ही राशि का स्वामी है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि 100% जल की राशि है, और कर्क राशि बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति कर्क राशि में बड़े शक्तिशाली होते हैं, और कर्क राशि में मंगल

बेहद कमजोर होता है, कर्क राशि में मंगल का प्रभाव कम होता है। अगर कर्क राशि कुंडली में मजबूत है तो चंद्र और बृहस्पति दोनों को इसकी ताकत मिलेगी। और आपकी कुंडली में जहां भी चार नंबर लिखा होगा, जहां भी कर्क राशि होगी, वो आपके मन और भावनाओं का क्षेत्र होगा, ऐसा समझना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, करियर की रुकावट दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर के मामलों में तेजी आएगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, और इसके अंदर चंद्रमा के सारे गुण पाए जाते हैं। तो चंद्रमा की कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं? कर्क राशि बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल राशि है। इस राशि में या कर्क राशि वालों के पास कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान पाया जाता है। कर्क राशि हृदय की और भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। आपके इमोशंस को अगर हमें देखना होगा तो हम आपकी कुंडली में कर्क राशि की पोजीशन को देखेंगे। इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है भावुक होना, यानी अत्यधिक इमोशनल होना। इस राशि में वैवाहिक जीवन का मामला और प्रेम का मामला अक्सर अच्छा नहीं होता। चाहे कर्क लग्न हो, चाहे कर्क राशि हो, प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि कर्क है और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है तो जीवन में अकेलापन और वैराग्य पैदा होगा। अगर आपकी राशि कर्क है और आपका नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है तो ये मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा।
कर्क राशि के साथ अगर पुनर्वसु नक्षत्र है आपका, तो ये आपको संपूर्ण मानसिक नियंत्रण देगा। ये आपके मेंटल लेवल के लिए अच्छा है। कर्क राशि के साथ पुनर्वसु नक्षत्र का होना अच्छा माना जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे। अपने परिवार और अपने घर के साथ रहने का प्रयास करिए। आप अपने घर परिवार के जितना नजदीक रहेंगे, मेंटली उतना ही ठीक रहेंगे। बहुत जल्दी रिश्तों में बंधने से बचिए, बहुत जल्दी रिश्ते मत बनाइए। विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में हमेशा सावधान रहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो मन की समस्याओं से, मन की मुश्किलों से बचेंगे। मंत्र जप करिए, सात्विक आहार लीजिए और सही संगति, सही दोस्ती यारी और मित्रता में रहिएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो सलाह लेकर एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और कर्क राशि वाले अगर अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से सही तरीके से ध्यान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है,
खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, ऑफिस में विवादों से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है, पारिवारिक समस्या भी हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कर्क राशि जो है वो दो तरीके से इफेक्टिव होती है। एक तो ये कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ हो तो चंद्रमा के सारे गुण कर्क राशि के माध्यम से आपकी भावनाओं में दिखाई देंगे, आपके मन और इमोशंस पर असर डालेंगे। और एक ये है कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ हो। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो चंद्रमा आपके शरीर पर, आपके करियर पर और आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीजों पर असर डालेगा। ज्यादातर कर्क लग्न होने पर सामाजिक रूप से दुनिया में सफलता ज्यादा मिलती है, अपने परिवार में मुश्किलें ज्यादा परेशान करती हैं। और जैसा पहले बताया कि अगर कर्क लग्न हो तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन कर्क लग्न राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए, न्यायिक सेवा के लिए बड़ा ताकतवर माना जाता है। और इन क्षेत्रों में अगर ये लोग जाएं तो बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आपको जीवन में चंद्र की वजह से मुश्किल आ रही है तो आप सलाह लेकर एक अच्छी सी मोती या एक मून स्टोन पहन सकते हैं। और अगर आपकी कर्क राशि है और चंद्र की वजह से मुश्किल आ रही है तो आप सोमवार का उपवास रख सकते हैं और शिव जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। तो आज हमने बात की चंद्रमा की महत्वपूर्ण राशि कर्क राशि के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर जीवन में प्रेम या रिश्तों के टूटने का भय हो, अगर प्रेम या रिश्ते टूट सकते हो तो सलाह लेकर एक एमिथिस्ट, ये रत्न आपको लॉकेट में या अंगूठी में धारण करना चाहिए। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: हांगकांग में अब शॉपिंग का अंदाज भी बदल रहा है, यहां पर शॉपिंग के लिए पहली बार ऐसे स्टोर शुरू हुए हैं जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोट चला रहा है। जी हां, ग्राहकों से बातचीत से लेकर सामान पहुंचाने तक ये ह्यूमनॉइड रोबोट कई काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं और ग्राहकों का मनोरंजन भी करते हैं। आप भी देखिए।
7: I am a 3-year-old G1 robot from Beijing Galvin AI Co.
8: Billie Xiao Gai Se.
7: I serve as a welcoming host in the space capsule.
8: ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये तो हांगकांग में पहले ही रोबोट ऑपरेटेड दुकान का खास सेल्स पर्सन है। करीब 6 फीट लंबा ये ह्यूमनॉइड रोबोट दुकान में ग्राहकों का स्वागत करता है, उनके सवालों का जवाब देता है और सामान खरीदने में मदद करता है। ग्राहक अपने लिए सामान का ऑर्डर करते हैं और रोबोट सामान उठाकर उन्हें काउंटर तक पहुंचाता है।
9: It was a really fun experience and I love that it's being introduced to the public about how AI can be implemented into some different parts of our lives, such as customer service. And the fact that AI can communicate with the customers and its other users in multiple languages, that's great, right? So it has a really wide range of inclusivity.
8: 我不买东西哦. ये रोबोट मंदारिन, कैंटोनीज और अंग्रेजी में बात कर सकता है।
9: How can I order in here?
8: हालांकि हर बार बातचीत करना आसान नहीं होता, कभी कभी इससे जवाब देने में देरी भी होती है और लगता है कि अभी इस रोबोट सेल्समैन के साथ तकनीक की कुछ सीमाएं हैं, जो इंसान के साथ नहीं होती है। फिर भी दुकान में इस तरह रोबोट सेल्समैन को तैनात करना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है।
9: And also some minor adjustments and tweaks can be made to maybe shorten the delays in processing the requests and data. Yeah, but yeah, that is a very bright future for development in artificial intelligence and other robot technology.
8: इस रोबोट के पास ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक और खास हुनर है। ये दुकान में ग्राहकों को शॉपिंग कराने के साथ साथ इनका मनोरंजन करने में भी माहिर है। जब एक बच्चे ने पूछा, क्या तुम डांस कर सकते हो, तो देखिए इसका अंदाज। और फिर शुरू हुआ रोबोट का डांस। तमाम लोग अपने मोबाइल फोन में ये अनोखा दृश्य कैद करने लगे।不过都是一个好的开始的，
10: 系
8: 咯，即系佢，我谂如果有啲突发情况咧，都系未识得处理咯。Hong Kong में इस humanoid salesman robot को Beijing की robotics company Galbot ने launch किया है। 1 सितंबर से शहर में ऐसे 3 स्टोर शुरू किए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ पर स्नैक्स और ड्रिंक्स की बिक्री होती है। बताया जाता है कि चीन के करीब 50 शहरों में ऐसे लगभग 200 रिटेल स्टोर पहले ही रोबोट की मदद से चलाए जा रहे हैं। लोगों को ये पहल काफी पसंद आ रही है।
11: The coffee, you know, the robot for coffee makers and stuff. That's pretty cool. So I think this is a really unique concept. Good idea.
12: 怎么没啥人呢?
11: Hong Kong,
12: hey,
11: you know.
12: 右边的朋友过来瞧一瞧哎。春晚明星也来打工喽。
11: Yeah, it's just good in, you know, fun entertaining kind of thing with my daughter. So, yeah, pretty fun.
12: 有好多好东西呢。
11: Quite surprising how far technology has come.
12: And where we're going to
11: be in like 5 years time, it'll be interesting. So, yeah, it's a cool experience.
8: फिलहाल इस तरह के स्टोर में रोबोट की मदद से खरीदारी से ज्यादा आकर्षक है इसके साथ मिलने वाला अनुभव। लेकिन असली सवाल ये है कि रोबोट आखिर इस तरह के कामों में कितना सफल हो पाएगा? क्या वो दुकानों में रोजमर्रा की चुनौतियों और अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों को भी संभाल पाने में सक्षम होंगे, या केवल ग्राहकों के लिए मनोरंजन का सामान बनकर रह जाएंगे? बहरहाल कुछ ट्रायल एंड एरर के सहारे इनका इस्तेमाल अभी तो शुरू किया जा चुका है। देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
6: महाराष्ट्र का कोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। अमांत पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 1100 शिव भक्तों ने संभाल रखी है 100 फीट लंबी कांवड़। बारह साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई मां नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा। 296 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके पहुंचेगी कैलाश धाम। 30 सितंबर को होगा यात्रा समापन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट। लोगों की पुनर्वास का दिया भरोसा। तीन दिवसीय एल अलामीन एयर शो के लिए मिस्र पहुंची भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम। इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी करेगी पेश। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास। पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को मात दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा लेकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के ओमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिश्यू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं। ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के, इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये, इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमा बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में, गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद, ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेश उत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की हैं, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में, ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यह बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50 to 60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया है, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके, और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहां पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहां पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहां अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 15-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
0: बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: चॉइस ही नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार ऐसा महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा की गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसी ने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए, बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है, डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है। कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है, और जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश की है।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थाम कर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेश उत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे।

इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। अमांत पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2,500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1,100 कलश। उत्तराखंड के टेहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बोलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के किए दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का दिया भरोसा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हीं युगातीत दिव्य आत्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूज

0: अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले। और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
1: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीव करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीव करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई, जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई, उसे नीव करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीव करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीव करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने, इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी, उसे सुनकर नीव करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में, तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
1: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीव करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहां तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं।
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा, एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब
1: में।
2: तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते
2: ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीव करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है।

0: शूटिंग शुरू होने के दो दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब कौर और बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम्य होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गांव पहुंचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करौली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे। पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था, साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करौली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करौली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौली बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: वंदे मेहदम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
6: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय दुबई दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो 9 सितंबर तक इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा मध्य प्रदेश में नए निवेश, व्यवसायिक साझेदारियों और दीर्घकालिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुबई रवाना होने से पहले हमारी उनसे बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। आप दुबई दौरे पर रवाना हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से अगर हम देखें तो आपका ये दौरा जो है किस तरह से महत्वपूर्ण होने जा रहा है?
7: देखो, हमारे राज्य में जीआईएस का जनवरी में आयोजन होने वाला है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, हम हर सेक्टर में हर एक जगह जाकर के हमारे निवेश की सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से दुबई के साथ हमारा भारत और यूएई का सीईपीए केवल एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि निवेश, विनिर्माण और निर्यात का नया अध्याय है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी बड़ी संभावना लेकर दुबई के दौरे पे जा रहे हैं।
6: देखिए मुख्यमंत्री जी, कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसको लेकर आपकी वहां मुलाकातें होने जा रही हैं?
7: देखिए, हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, कृषि निर्यात है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, लॉजिस्टिक है, नवकरणीय ऊर्जा है।
6: बिल्कुल,
7: ऐसे स्वाभाविक रूप से काफी बड़े सेक्टर में हर एक जगह यूएई के साथ हमारी स्वाभाविक साझेदारी की संभावना है। ऐसे में जब हम अपने राज्य की तरफ से देखते हैं तो मध्यप्रदेश भारत का फूड बास्केट है और खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूएई भी अब इस दिशा में काफी ठोस कदम उठाता है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने लक्ष्य में केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, मध्यप्रदेश को यूएई और खाड़ी देशों के लिए विश्व स्तरीय सप्लाई चेन के रूप में और वैल्यू एडिशन हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
6: जी जी बिल्कुल। देखिये मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रहा है, क्या दुबई के लोग भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्साइटेड आपको नजर आते हैं?
7: देखिए मध्य प्रदेश में हमारी सरलीकृत व्यापार व्यवसाय की पद्धति है, 25 से ज्यादा व्यापार की पॉलिसियां हैं हर सेक्टर में, और पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली पानी क्राइम लेस हमारा व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल है। इसके कारण से बड़े पैमाने पे हमारे साथ कई सारे देशों ने जुड़ना पसंद किया है। बीते समय हमारी सरकार के बनने के बाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में हुआ है। आज की स्थिति में 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हम अपने मध्यप्रदेश से करते हैं
6: जी।
7: तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर इसमें संभावना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारा दौरा इसी रूप में रहेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वास्तव में दुबई आज विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडल में माना जाता है, और स्वाभाविक रूप से मध्यप्रदेश में वो संभावना और मध्यप्रदेश इससे सीखेंगे भी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
6: बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल में आपके कई विदेशी दौरे हुए, हमने देखा किस तरह से आप विदेशी इन्वेस्टमेंट को मध्यप्रदेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं, और इसका प्रभाव जनता पर कैसे पड़ गया ये हमको समझ लाने की कोशिश कीजिए युवा पीढ़ी के लिहाज से अगर हम देखें तो।
7: देखो जब निवेश विदेश से आता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य में समृद्धि आती है, रोजगार आते हैं, काम मिलता है, और हम परस्पर एक दूसरे के साथ पूरक भी हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बीते समय जब हमने जहां भी दौरा किया था, हमारे लिए दावोस से लेकर के जर्मनी, जापान और कनाडा, जहां हमारा दौरा हुआ हर जगह हम सक्सेस स्टोरी के नाते से जाने गए, और इसी कारण से यूएई का दौरा भी हमारा है। बीती जीआईएस जब 2025 हमने फरवरी में की थी माननीय पीएम की मौजूदगी में, तो जो निवेश उस समय एमओयू में हुए थे वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के आज धरातल पे उतर चुके हैं। तो हमारा अगला जीआईएस 2027 जनवरी का जो हम सोच रहे हैं वो उसी को लेकर के है, उसी सिलसिले में हम आगे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्ववर्ती में बताया कि दुबई ने दूरदर्शी नेतृत्व, विश्व स्तरीय अधोसंरचना, निवेश अनुकूल नीतियों का अपना एक दुबई का अपनी पहचान भी है, और हम मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, अब ये वो शहर है जहां आधुनिक और एकीकृत डेवलपमेंट की बड़ी संभावना है। ऐसे में अर्बन प्लानिंग, पर्यटन आधारित विकास, सार्वजनिक अधोसंरचना के काम, स्मार्ट सिटी मॉडल, ऐसे कई प्रेरणादायी स्कोप है जहां दुबई और दुबई से जुड़े हुए लोग यहां पे काम कर सकते।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: महाराष्ट्र का कुला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कावड़ का महारिकॉर्ड। अमांत पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोलेनाथ को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2,500 शिव भक्तों ने संभाल रखे 1100 कलश। उत्तराखंड के टेहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के किए दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया जायजा। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत किट, लोगों के पुनर्वास का दिया भरोसा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इसराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
0: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण हैं। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
0: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
0: MPATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब यह है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया, उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
0: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है, ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
0: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
0: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हामिद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
3: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट।
0: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
1: स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का

बजरंगा गणेश मंडल के जालना का राजा के दर्शन को उमड़ी भीड़। शहर के रास्तों पर हर तरफ भक्तिमय माहौल। जालना का राजा गणपति की स्थापना का ये 77वां साल, बापा के आगमन के साथ शहर में गणेशोत्सव का उत्साह बढ़ा। इस बार जालना का राजा के सुनहरी चरण भक्तों के लिए खास आकर्षण होंगे। महाआगमन के साथ ही जालना में गणेशोत्सव की धूम शुरू। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में तैयारियां तेज। कारीगर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव में 95% गणेश मूर्तियां पहले ही बुक। 2 इंच से लेकर 12 फीट तक प्रतिमाएं हो रही हैं तैयार। गणपति बप्पा के आगमन से गूंज उठा कोला अमरावती। फायर शो से लेकर ढोल ताशों की धूम।

अमरावती में भव्य फायर शो और आतिशबाजी के बीच निकली बप्पा की शोभा यात्रा निकली, भक्तों ने जमकर डांस किया। गणपति बप्पा की भक्ति में आम भक्तों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विधायक का रवि राणा ने शोभा यात्रा में ढोल बजाकर बढ़ाया हौसला।

गणेश उत्सव से पहले सूरत में निकाली गई अनोखी यात्रा, हॉरर थीम पर मेकअप के साथ कलाकारों ने शिरकत की। यात्रा में लगाए गए भूत पिशाच, नरमुंड और डरावने पुतले। गणपति के साथ महादेव और माता पार्वती की सजाई गई झांकी, शिवगण भी यात्रा में शामिल हुए। सूरत के अडाजन में पिछले 35 सालों से अलग अलग थीमों पर गणेश उत्सव की हो रही है तैयारी। सूरत की इस भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के कई जगहों से पहुंचे कलाकार। टिहरी के निवाल गांव में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ मेला लगा। भेड़ परिक्रमा और देव टोलियों के दर्शन करने के साथ लोक आस्था का दिखा रंग। बौलिया, चांदनी, नागराजा मंदिर परिसर में हजारों लोगों ने देव डोलियों के दर्शन किए। ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी और विधायक शक्तिलाल शाह ने मेले का उद्घाटन किया। 18 साल से बंद भेड़ मेले को ग्रामीण ने फिर से शुरू करके अपनी पौराणिक संस्कृति को जिंदा कर दिया। इससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ सकेगी। दूर दराज के गांवों से लोग भेड़ बकरियों के साथ मेले में पहुंचे और पारंपरिक आयोजन में शिरकत की।

0: महाराष्ट्र के अकोला में देश की सबसे बड़ी कांवड़ निकली, 1100 कलशियों वाली। ऐसा कांवड़ को मिलाकर उठा रहे हैं 2500 कांवड़िए। कांवड़ करीब 2.5 से 3 टन वजनी है। ढोलताशों और हर हर महादेव के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालु कंधों पर लेकर चले। कांवड़िए अकोला से 20 किलोमीटर दूर गांधीग्राम की पूर्णा नदी पर पहुंचेंगे। अकोला की कांवड़ यात्रा करीब 80 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। श्रावण के आखिरी सोमवार को राजराजेश्वरी महाराज के शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा में अच्छी बारिश की खास प्रार्थना भी होगी। किसानों की चिंता दूर और खुशहाली आए, इसके लिए प्रार्थना की जाएगी। उत्तराखंड में कल से शुरू हुई नंदा देवी की बड़ी जात कुरुण से विधि विधान से कैलाश को रवाना हुई यात्रा। 12 साल में एक बार होती है प्रसिद्ध मां नंदा बड़ी जात यात्रा। 30 सितंबर को होगा दिव्य भव्य समापन। जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा चमोली का पूरा कुरुण इलाका। नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिवसीय पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद किया गया रवाना। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई। करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है मां नंदा देवी की पैदल यात्रा। पूजा अर्चना करने के बाद बड़ी जात यात्रा का होगा समापन। आईएफ की सारंग हेलीकॉप्टर टीम मिस्र पहुंची। टीम 8 से 10 सितंबर तक का एल अलामीन एयर शो में प्रदर्शनी में होगी शामिल। सारंग टीम स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से दिखाएगी करतब। टीम की सटीक उड़ान और फॉर्मेशन देखेंगे सर। एल अलामीन एयर शो में दिखेगा सारंग का मशहूर डॉल्फिन डीप। सारंग टीम इस बार नया स्पॉट स्टॉल टर्मिक पेश करेगी। सारंगी भागीदारी भारत और मिस्र के बढ़ते रक्षा संबंधों को करेगी मजबूत। एयर शो में दुनिया की कई प्रमुख वायुसेनाएं शामिल होंगी। बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए शानदार खुशखबरी है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में चीनी जोड़ी को हराया। सात्विक चिराग चाइना मास्टर्स का टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। इससे पहले सात्विक चिराग को 2023-2025 के फिनाले में करना पड़ा था हार का सामना। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 10 दिन में 17 शहरों में 4000 टन प्याज 35 रुपए किलो बेचा गया। सरकार के पास 1.21 लाख टन प्याज का स्टॉक मौजूद है। इसे ट्रकों और कांदा एक्सप्रेस देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। सरकार की सस्ती प्याज योजना की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की कमी आई है। तमिलनाडु में डूबी हुई प्राचीन नगरी पुम्पुहार की खोज लगातार जारी। समुद्र के नीचे तलाशे जा रहे हैं संगम काल के अवशेष। स्कूल शिक्षा और पुरातत्व मंत्री राजा मोहन ने खुद समुद्र में उतरकर जांच की। पुम्पुहार कभी एक बड़ा प्राचीन बंदरगाह शहर माना जाता था। पुरातत्व विभाग अब समुद्र में इसके पुराने निशान खोज रहा है। समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम भी इस खोज में जुटी हुई है। टीम समुद्र के नीचे मिले अवशेषों और ऐतिहासिक निशानों की जांच कर रही है। पुरातत्व निदेशक डॉक्टर पीवी जयसीलन ने मंत्री को जांच की जानकारी दी। भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की कर रही है तैयारी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसका पूरा हो चुका है ट्रायल। रेलवे तय करेगा किन रूट्स पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। इसके लिए देखे जा रहे हैं ईंधन और तकनीकी इंतजाम। देश में 4 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार हैं, जल्द ही शुरू किया जाएगा। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ मेले के लिए रेलवे ने कसी कमर, 100 से 125 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ट्रेनों की सुरक्षा में AI का होगा इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन और ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। हरिद्वार के ज्वालापुर में 5 फुट कूड़े के ढेर को हरे भरे पार्क में तब्दील किया गया। पार्षद आकर्षिका वर्मा ने इसकी अगुवाई की, 1.25 लाख का खर्च उठाया और अकेले दम पर कायाकल्प किया। 35 साल से यूं ही पड़ा हुआ था मलबा, JCP से कूड़ा पहले हटाया गया और उसके बाद में मेकओवर किया गया। रात के 2-2 बजे तक जगना पड़ता था, नगर निगम की मदद से हुआ ये कमाल। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाने का था मकसद, बीमारियों से लोगों को बचाना भी प्रेरणा। सूरत में आज फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का आयोजन किया गया, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया कार्यक्रम में उन्होंने शुभारंभ किया। फिट इंडिया संडे साइक्लोथॉन में युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित किया गया। साइक्लोथॉन से पहले जुम्बा डांस का भी आयोजन किया गया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम में शामिल हुए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इवेंट में युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया स्मृति चिन्ह के साथ सर्टिफिकेट्स। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कार्यक्रम में पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश ने वीकेंड को किया सुहाना, रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, दिल्ली NCR में लोगों को उमस से राहत मिली। मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने के चलते दिल्ली का मौसम पर दिख रहा असर, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में जबरदस्त बारिश हुई, सड़कों पर जलजमाव। दिल्ली NCR में 2 दिन से जारी बारिश से 200 से ज्यादा उड़ानें लेट, एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की। उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश जारी, हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून मेहरबान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बना रह सकता है बारिश का दौर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश लगातार जारी रहने की संभावना है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते बड़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंची। अलकनंदा नदी के किनारे के इलाके में गहराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी के लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, गंगा का जलस्तर घटा। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में येलो अलर्ट, रणथंभौर के नाले और झरने उफान पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बारिश के कारण यमुना और राकी नदी उफान पर, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। तमिलनाडु के थंजावुर में कलानई डैम से छोड़ा जाएगा पानी। कश्मीर की खुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परत। खुरेज घाटी में बर्फबारी के चलते रास्तों पर जमा हुई है बर्फ, मशीनों से रास्ते को साफ करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों ने डल झील में उठाया प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच कई स्थानों पर हाईवे तक पहुंची गंगा। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। अभेड़ा में फिर दहाड़ेंगे बाघ, अन्य बायोलॉजिकल पार्कों से लाए जाएंगे जीव। वन्य जीवों की तादाद बढ़ाने में जुटा वन विभाग का एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होगा फैसला। दिल्ली में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फाउंडर्स से बातचीत की। शक्ति सेट मिशन के निदेशक डॉक्टर सैम रिचर्ड ने दी सैटेलाइट से जुड़ी अहम जानकारी। पुणे में गणेशोत्सव को लेकर शानदार पहल, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजे मुक्त उत्सव मनाने का फैसला। चीन में फसल का जश्न, चोंगचिंग में किसानों का खास स्पोर्ट्स मीट हुआ। खेत बने खेल का मैदान, 34 हेक्टेयर से ज्यादा सीढ़ी नुमा खेतों में अनोखी प्रतियोगिताएं हुई। मक्का ढोने की रेस, किसानों के कंधे पर डंडा रखकर मक्का ढोने की चुनौती। हाथ से मक्का छीलने की प्रतियोगिता, किसानों ने तेजी से मक्का छील कर दिखाया। 26 सितंबर तक चलेगा फेस्टिवल, यहां पर खेती का अनुभव लेने और सीढ़ीनुमा खेत देखने का मौका मिलेगा। चीन में एसएमई फेयर खत्म, जहां पर एआई और नई तकनीक का जमकर प्रदर्शन हुआ। 43 देशों की 2000 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। कनाडा की कंपनी ने एआई सीट दिखाई जो इंसान की बैटरी और मुद्रा सुधार सकती है। रूस की कंपनी ऐसे आग पकड़ने की तैयारी में, खतरा मिलते ही फोन पर आएगा अलर्ट। चीन में रोबोटिक्स का दिखा दम, एक कंपनी ने एक घंटे में 100 से ज्यादा वायरिंग हॉर्नेस जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। हरिकेन मैरी के असर से कैलिफोर्निया के समुद्र में दिख रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। खतरनाक लहरों के बावजूद कई सर्फर और तैराक समुद्र में उतरे। अमेरिकी अधिकारियों ने लोगों को समुद्र के किनारे ना जाने की अपील की। हरिकेन मैरी सीधे जमीन से नहीं टकराएगा, लेकिन इसका असर देखेगा। मैरी अब धीरे धीरे कैलिफोर्निया से दूर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: इस साल शिक्षक दिवस के मौके पर हापुड़ जिले के अमित कुमार शर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित कुमार शर्मा को शॉल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान करके सम्मानित किया। बाकायदा शिक्षण में नवाचार विषय को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाने के अलावा छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अमित कुमार शर्मा को पुरस्कार से नवाजा गया। हापुड़ जिला के राजकीय इंटर कॉलेज अनूपुर डिबाई में सहायक अध्यापक पद पर तैनात अमित कुमार शिक्षण में अपने शानदार प्रयासों के लिए पहले भी सम्मानित हो चुके हैं। शिक्षक अमित कुमार शर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलने पर DIOS श्वेता पुठिया ने भी शुभकामनाएं दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है, क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं,
6: क्योंकि मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।
8: तमाम पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़, 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोते का आयोजन, बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश

के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज के इस शो का विषय है अलग अलग प्रकार के दान। अलग अलग प्रकार के दान करने से आपके जीवन में किस तरह से आपको फायदा होता है, उसके बारे में पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अब अलग अलग दान कौन कौन से दान होते हैं? कपड़ों का दान होता है, अनाज का दान होता है, मेटल का दान होता है। तो ये दान करने से आपके जीवन में आपको किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं और कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी जानकारी पंडित जी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, सामान्यतः नीले रंग के गणपति के चित्र की या नीले रंग के गणपति की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इनको उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्य दशाओं में उच्छिष्ट गणपति की पूजा नहीं होती है।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से, जैसा कि हमने जानकारी आपको दी है कि हम करेंगे बातचीत दान के बारे में, तो दान का सबसे पहले तो महत्व क्या होता है वो समझते हैं और किस किस प्रकार के दान होते हैं वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, दान करने का इम्पोर्टेंस और इसका महत्व क्या है उससे शुरुआत करते हैं।
1: जी देखिए, आज हम ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो दान हैं उनको कैसे किया जाए और उनका महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य रूप से दान का क्या महत्व है। देखिए, सनातन परंपरा में जीवन के चार अंग माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है, समस्याओं का समाधान भी होता है। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है और ग्रहों की बाधा से, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। हम अनाज का, कपड़ों का, मेटल का, दवाइयों का, सेवा का दान करते हैं और हर तरह का दान करने से जीवन में अलग तरीके का फायदा मिल जाता है।
0: चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। राशिफल पर आते हैं और पहली तीन राशियों का वक्त आप सबको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70। 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, दान के विषय के बारे में पंडित जी से हम बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न पंडित जी आपसे ये है कि अनाज का दान करने से किस प्रकार का हमें फायदा होता है, कितना अनाज का दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए? अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको जरूरत है उन्हीं को दान कीजिए, तभी आपको फायदा मिलता है, ऐसा है क्या पंडित जी?
1: देखिए, सबसे ज्यादा जो दान किया जाता है नॉर्मली वो अनाज का ही दान है। इस दान को अगर आप करते हैं तो जीवन में भोजन का, अन्न का अभाव कभी नहीं होता। अनाज का दान अगर आप बिना पकाए हुए करें, यानी कच्चे अनाज का दान करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। व्यक्ति उस अनाज को अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। अगर आपको जीवन में नाम और यश चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार के दिन गेहूं का या आटे का दान करिएगा। अगर मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो सोमवार के दिन चावल का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। अगर रक्त की समस्या से या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। विद्या और बुद्धि की अगर समस्या है और इसको दूर करना चाहते हैं तो हरी मूंग का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप गंभीर रोगों से परेशान हैं, गंभीर बीमारियां परेशान कर रही हैं, तो चने की दाल का दान करना अच्छा होगा। दुर्घटनाओं से अगर रक्षा चाहते हैं और रोजगार में अगर सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से काले तिल का दान करना आपके लिए बेहतर हो।

0: होगा।
1: चलिए और भी बहुत सारे दान के बारे में पंडित जी आपको आगे जाकर जानकारी देंगे। वापस आते हैं राशिफल पर, अगली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, करियर के मामलों में आपके तेजी आती दिख रही है, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए बढ़ते हैं आप सबके सवालों की तरफ, जिसका जवाब आप पंडित जी से जानना चाहते हैं। इससे पहले पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, कोई भी परेशानी है, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं, ईमेल के जरिए अपने तमाम सवालों को इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसका है पहला सवाल?
0: जी, आज का पहला प्रश्न दिलीप कुमार जी ने हमें लिखा है और दिलीप कुमार जी हमें मेल लिखते हैं जयपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 25 मई 1975। जन्म का समय दोपहर के 11:35। जन्म स्थान है मकराना, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करता हूँ और व्यापार में मेरे बहुत सारे पैसे फंस गए हैं, तो मेरा पैसा कब तक निकल पाएगा और आगे के समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा? दिलीप कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार का हाल बेहतर दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि जो आपका फंसा हुआ पैसा है वो इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ तक निकल सकेगा। व्यापार के हालात आपके अभी भी बेहतर हैं और आगे पैसा निकलने से और भी बेहतर होंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला है दूसरा प्रश्न लेने का, यानी दूसरा सवाल कौन से दर्शक का

0: पंडित जी तक आया है वो आपको जानकारी देते हैं। पंडित जी
1: जी अगला प्रश्न सुमति जी ने हमें लिखा है और सुमति जी हमें प्रयागराज से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1981। जन्म का समय रात में 8 बजे। जन्म स्थान है जौनपुर। सुमति कह रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम सबकी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और भविष्य कैसा रहेगा? सुमति जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले वक्त में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है आप प्रयागराज से निकल के किसी और स्थान पर जाएं और अगले साल अप्रैल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
0: चलिए, चूंकि दान का जिक्र हम इस शो में कर रहे हैं, आपको पंडित जी ने जानकारी दी है कौन कौन सा दान करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। धातुओं का दान करना हमारे लिए कितना फलदायी साबित होता है, किस तरह से धातु का दान करने से आपके जीवन में भी उन्नति हो सकती है, पंडित जी से जानकारी लेते हैं।
1: देखिए, बहुत बार हम लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन, तांबे के, सोने का दान भी कर देते हैं, चांदी का दान भी कर देते हैं। ये जो धातुओं का दान है, इसका प्रभाव क्या है? धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही आम आदमी को करना चाहिए। जब विशेष मौका हो तब आप धातुओं का दान करिएगा। ये दान उसी व्यक्ति को करिएगा जो दान की गई चीज का अपने जीवन में प्रयोग करे। अगर आप गोल्ड का दान करते हैं, सोने का दान करते हैं, तो राज्य पद की, गवर्नमेंट पोजीशन की प्राप्ति होती है। चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है, और तांबे का दान करने से मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे का या लोहे की वस्तुओं का दान करते हैं तो नौकरी और रोजगार की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप पीतल का या पीतल की वस्तु का दान करें तो पेट के रोग आपके दूर होते हैं। एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन का दान करने से जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है।
0: चलिए, अनाज के दान के बारे में आपने पंडित जी से जाना, धातुओं के दान के बारे में आपने पंडित जी से जाना, अब बात करते हैं कपड़ों के दान के बारे में। वस्त्रों का दान कब करना चाहिए, किन हालात में करना चाहिए, उससे किस प्रकार का फायदा हम सबको मिल सकता है, पंडित जी?
1: देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा बेहतर बनी रहती है, हमेशा उत्तम रहती है। अगर आप पैतृक धन या पैतृक संपत्ति पाना चाहते हैं तो मोटे वस्त्र का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर बीमारियों में आपके घर का ज्यादातर पैसा जा रहा है तो नए और चमकदार वस्त्र आपको दान करना चाहिए। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का दान करना चाहिए। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से वस्त्रों का दान करना आपके लिए बेहतर होगा।
0: चलिए और भी सवाल पंडित जी से आगे जाकर लेंगे इस शो में। अब वापस आते हैं राशिफल पर। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से जानते हैं।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि दान करना तो इम्पोर्टेंट है, दान किन किन चीजों का करना चाहिए वो तो हमने समझा, लेकिन दान करने के वक्त भी का किसी प्रकार के नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, कोई सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे।
1: दान करने की कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से लाभ होता है। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए कि घर वालों का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, पंडित जी ने दबाव बना दिया है, तो किसी भी दबाव में दान मत करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो, जो दान के पैसों से शराब पी जाए, दान के पैसों का गलत इस्तेमाल करे, ऐसे कुपात्र व्यक्ति को दान ना करें। जो वस्तुएं आप दान में दें वो वस्तुएं उत्तम कोटि की होनी चाहिए, खराब क्वालिटी

0: का दान ना करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है, जो ग्रह आपके लिए फायदेमंद है, उनका दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। और दान देते समय मन में ये भावना लेनी चाहिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को कर रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं, इस भावना से सेवा या दान करना चाहिए।
1: चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं शो के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, मानसिक तनाव से बचें, ऑफिस में विवादों से बचिए, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है अगले दर्शक का सवाल। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न नंदिता जी ने हमें लिखा है और नंदिता जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1978। जन्म का समय रात में 10:35। जन्म स्थान है महाराष्ट्र मुंबई। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। ये कह रही हैं कि काफी समय से मैं नौकरी बदल करके अपने घर के निकट जाना चाहती हूं, तो क्या मेरी नौकरी बदल सकेगी और क्या मैं मुंबई वापस जा पाऊंगी? नंदिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जन्म स्थान पर या जन्म स्थान के आसपास जाने की आपकी संभावना कमजोर है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि आप नौकरी के लिए मुंबई से दूर रहेंगी। आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय दिख रहा है इस साल के अंत में, लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना नहीं बन रही है। आपका

0: करियर आने वाले समय में अच्छा होगा, उसमें आपको बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक मूंगा बनवा लें, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिएगा और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला है आप दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में शामिल करने का, तो पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि कौन सा सवाल उन्होंने चुना है। पंडित जी
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विवेक जी ने हमें लिखा है और विवेक जी हमें जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1988। जन्म का समय शाम के 7:15, जन्म स्थान है जबलपुर। विवेक जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, क्या मेरे भाग्य में विवाह के योग हैं और क्या मेरा विवाह आगे हो सकेगा? विवेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं और आपकी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में होने की संभावना दिख रही है। विवाह आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा, उसमें आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका गुड डे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी और व्यापार में लाभ की स्थितियां बनेंगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि दान करना कब नुकसानदायक होता है, कब अशुभ होता है? देखिए, जो दान आप दिखावे के लिए करते हैं, दान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ऐसा दान नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अपनी कुंडली के अनुकूल ग्रहों का, शुभ ग्रहों का दान करना भी नुकसानदायक होता है।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं केशव पहर के बारे में।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, करियर और धन की समस्या दूर होगी।
1: और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जी इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आपको जानकारी देते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में, तो आज की राशि कौन सी है पंडित जी से ही जानते हैं।

0: जाते हैं।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस मंत्र का जप करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि यानी वृष राशि। आप नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। ऐसा करने से स्वास्थ्य और मन की समस्या आपकी हल होगी।
0: चलिए, इस शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और उपाय के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
1: जी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ, गर्भ धारण करने के साथ अपने कमर में एक काला धागा बांध लें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लें। सुगंधित वस्तुओं का, परफ्यूम आदि का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें और नियमित रूप से रोज थोड़ा थोड़ा हरिवंश पुराण पढ़ें या हरिवंश पुराण सुनें। अगर आप ऐसा करें तो गर्भावस्था के दौरान आप बिल्कुल ठीक रहेंगी और आपके संतान को जन्म के बाद अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे।
0: तो पंडित जी, ये महा उपाय बताने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गणेश उत्सव के आगमन को लेकर देश भर में उत्साह और आस्था का माहौल है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश उत्सव को लेकर अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच गुजरात के सूरत शहर में भगवान गणेश के आगमन की एक ऐसी अनोखी यात्रा निकाली गई जिसने श्रद्धालुओं के साथ साथ राहगीरों को भी हैरान कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको।
7: सूरत की सड़क, रात का वक्त, अलग अलग तरह के भूत, पिशाच, अलग अलग तरह की डरावनी आकृतियां, मानो सूरत की सड़कों पर भूतों ने डेरा जमा लिया हो। रात के समय रोशनी, डरावना दृश्य देख सूरत के लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सड़क का रोमांच सबको आकर्षित कर रहा था। इसके बाद जब ये भूत पिशाच स्टेज पर पहुंचे तो मानो डर का समंदर उमड़ पड़ा हो। भूत पिशाचों के दल के बाद दिखी भगवान गणेश की प्रतिमा तो लोगों के जान में जान आई। दरअसल

0: शिवजी के गण के साथ विघ्नहर्ता पंडाल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सूरत की शक्ति फाइटर ग्रुप ने पंडाल में गणेश जी को लाने के लिए अनोखा थीम अपनाया था। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र का आगमन हो रहा था, तो महादेव के गणों को भी यात्रा का हिस्सा बनाया गया था।
1: थीम भी हमने यूनिक बनाई थी और ये कॉन्सेप्ट पूरे गुजरात में आज तक नहीं हुआ और पूरे इंडिया में बोले तो वो भी नहीं हुआ है, तो इस बार भूतों में मजा आया पब्लिक को।
0: धार्मिक पात्रों के साथ भूत पिशाच, नरमुंड और डरावने पुतलों को शामिल कर यात्रा को ऐसा स्वरूप दिया गया था जिसको देखकर हर श्रद्धालु हैरान हो गया। आयोजकों ने अनोखा संदेश देने की कोशिश की, देवाधिदेव महादेव एक ही हैं जबकि देव अनेक हैं। ऐसे में जब उनके पुत्र भगवान गणेश का आगमन हो रहा है तो महादेव, माता पार्वती और उनके गणों का साथ होना स्वाभाविक है। भगवान गणेश की इस अनोखी आगमन यात्रा में बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए थे और पूरा माहौल गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा था।
2: हम लोग 35 साल से गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं, तो हर साल हम लोग अलग अलग थीम पे गणपति की स्थापना करते हैं और हमने आगमन में एक भूत प्रेत वाली एक थीम रखी थी, डेकोरेशन भी ऐसे ही किया था और हम महादेव के साथ और पार्वती माता के साथ गणपति जो उनके पुत्र हैं उनका हमने आगमन किया था और देव सभी है पर महादेव सिर्फ एक ही है और महादेव का पुत्र का जब आगमन होता है तो उनके साथ जो बोलते हैं कि शैतानी जो होती है हमारी, शैतान हमारे जो होते हैं उनके भी देव है महादेव, तो पूरी हमने उनकी टोली लाके हमने गणपति का एक आगमन किया और एक अलग टाइप से हमने आगमन किया कि भूत प्रेत वाला आगमन आज तक नहीं हुआ है। सबको लग रहा है कि भूत प्रेत वाला आगमन क्यों किया, पर बोलते हैं कि इंसान के अंदर भी एक अच्छा इंसान भी है और एक शैतानी इंसान भी है, तो इसीलिए हमने इस बार ये आगमन किया है।
0: सूरत में ये गणेश आगमन चर्चा का विषय बना हुआ है। गणेश उत्सव में आमतौर पर फूलों, रोशनी, धार्मिक झांकियां और पारंपरिक सजावट देखने को मिलती है, लेकिन सूरत में शक्ति फाइटर ग्रुप की ओर से तैयार की गई अनोखी थीम को देख लोगों ने तारीफ के पुल बांध दिए। किसी को ये धार्मिक आस्था से जुड़ा अनूठा प्रयोग लगा तो किसी को इसका डरावना और हॉरर फिल्म जैसा स्वरूप आकर्षित करता नजर आया।
3: देश भर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, कई जगह गणेश पंडाल के काम किए जा रहे हैं, तो कई जगह गणेश पंडालों में भगवान गणेश का भी आगमन हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के अडाजन इलाके में और यहाँ आप देखेंगे गणेश पंडाल में भगवान गणेश की जो मूर्ति है यहाँ पर स्थापित की गई है और अभी ये पूर्व तैयारियों के रूप में इनका आगमन हो चुका है। गणेश उत्सव को शुरू होने में अभी समय है इसलिए इनका चेहरा को भी ढका गया है। जब विधिवत रूप से गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा उसके बाद मूर्ति को यहाँ से खोला जाएगा और इनका जो आगमन हुआ है वो भी भव्यता तरीके से हुआ, क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं तो कुछ न कुछ थीम नजर आ रही है। सूरत की अगर हम बात करें तो अलग अलग थीम पर लोग भगवान गणेश की स्थापना कर रहे हैं, तो इस ग्रुप के द्वारा भी अलग अलग थीम के द्वारा यहाँ पर भगवान गणेश की स्थापना की गई जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
0: कुल मिलाकर सूरत की गणेश आगमन यात्रा भक्ति, आस्था, रोमांच और अनोखी थीम का ऐसा संगम बनी जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे।
4: तीर्थस्थल गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर इस बार पिंडदान के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल के साथ साथ कला की झलक भी देखने को मिलेगी। गया जी के विष्णुपद मंदिर और देवघाट समेत पिंडदान के प्रमुख स्थलों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग और पिंडदान से जुड़ी आकर्षक तस्वीरें बनाई जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से पेंट द सिटी अभियान के तहत कलाकार दीवारों को धार्मिक और ऐतिहासिक रंगों में पिरो रहे हैं।
5: श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया जी में देवघाट की इन दीवारों पर अब शानदार तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। इन तस्वीरों में पिंडदान की परंपरा से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित तस्वीरें बनाई जा रही हैं। मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत शैली में बनाई जा रही ये तस्वीरें पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इन इन चित्रों के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं का एहसास कराने की कोशिश है।
6: डीएम सर के द्वारा यह पेंट द सिटी कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत फेज वन में 5 लोगों का चयन किया गया था जिन्होंने अपने चित्रों और कलाकृतियों से इन दीवारों को सजाया है। आगे और भी कई स्थानों में यह चित्र, सुंदर सुंदर चित्र उकेरे जाएंगे।
5: इन तस्वीरों में धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं को रंगों के जरिए जीवंत किया जा रहा है। कलाकारों के मुताबिक तस्वीरों का हर हिस्सा खास धार्मिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास देवघाट और सीता कुंड सहित पिंडदान की प्रमुख वेदियों और दूसरे स्थानों पर दीवारों की धार्मिक थीम की पेंटिंग से सजाया जा रहा है।
6: इस पेंटिंग को बनाने में हमें 5 से 7 दिन लग गए। थोड़ा ये मौसम की भी स्थिति थोड़ी खराब रही, इसलिए थोड़े से अड़चन आए, पर यह धार्मिक कार्य और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था तो फिर भी हमने किया है और ये बनाया है।
5: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर गया जी के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यहां पर पेंट द सिटी अभियान चलाया जा रहा है।
7: अभी तो इसी तरह सीजन चल रहा है, देश विदेश से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पिंडदान करने के लिए मस्जिद प्राप्ति के लिए आते हैं, तो इसके लिए तो अच्छा अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी आगे और होना बाकी है। लाइटिंग होगा, पंडाल बनेगा, ये चीज अभी बहुत चीज डीएम विधायक जो दिया था, जो भी हैं नेता बन है, डीएम है, अफसर है, उन सारा योगदान को यहाँ देते हैं।
5: गया जी में हर साल पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के घाट और दूसरी जगहों पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इस बार पितृपक्ष मेले से पहले शहर में दीवारों पर बनाई जा रही ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं बढ़ा रही, बल्कि पिंडदान की परंपरा और यहाँ की धार्मिक विरासत को भी रंगों के जरिए सामने ला रही हैं। उम्मीद है कि जब देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए उन्हें गया की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़कर एक नया अनुभव मिलेगा। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रसिद्ध माँ नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड़ से कैलाश के लिए रवाना हो गई। माँ नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड़ क्षेत्र जय माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ये यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में माँ नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।
0: के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जात का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूर में माँ नंदा की डोलियां विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान करूर और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
8: उसको विदा कर रहे हैं तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं, बेटी को ससुराल भेजना, और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी से आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
9: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं, आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमान से तन मन धन से बनता है, अपनी बेटी को विदा करने के लिए हम दूर दराज से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
10: करुण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही मां नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और मां नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि मां नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्याणी माना जाता है और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। मां नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी और जगह जगह श्रद्धालु मां नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंगिया खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंगिया खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है, इसे मां नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे।
4: करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब आपको एक ऐसी पाठशाला में लिए चलते हैं जहां पर पढ़ाई भी होती है और हुनर को निखारा भी जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल देने की कोशिश की जा रही है। इसे नमिता चौधरी चलाती हैं। इनका यह सफर करीब 12 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब बदस्तूर जारी है। चलिए चलते हैं नमिता मैम की पाठशाला में।
2: कमरों में चलती हुई क्लास के अंदर पढ़ाते हुए टीचर्स मास्टर्स आपने खूब देखे होंगे। आज हम आपको एक बिल्कुल अनोखी क्लासरूम में लेकर आए हैं। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ क्लास है, यहाँ कोई रूम नहीं है। ये दिल्ली में डीडीए का एक पार्क है और यहाँ कोने कोने पर आपको अलग अलग क्लासेस चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर किसी को ड्राइंग सिखाई जा रही है, कहीं पर किसी को अंग्रेज़ी में रोजमर्रा की जो भाषा है अंग्रेज़ी में उसे कैसे बात करें अंग्रेज़ी सिखाई जा रही है, तो कहीं पर बच्चों को दिन महीने तारीख रात दिन चांद तारे याद करवाए जा रहे हैं। किसकी क्लास है ये और ये अनोखी क्लास आखिर किस लिए शुरू की गई थी, मिलवाते हैं आपको नमिता चौधरी से। डीडीए के इस पार्क में नमिता मैम की क्लास चल रही है। नमिता चौधरी जी मेरे साथ में हैं और आज लगभग 12 साल हो गए इस काम को करते हुए।
3: जी सर, इसको करते हुए 11 साल यानी ऑन पेपर 11 साल हैं, पर ग्राउंड पर हम 12 सालों से काम कर रहे हैं।
2: तो अभी इस पार्क में हम अलग अलग कॉर्नर्स में अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को बैठा हुआ देख रहे हैं। क्या अलग अलग क्लासेस चल रही हैं एज ग्रुप के हिसाब से या फिर एक्टिविटीज के हिसाब से?
3: मिक्स है सर, कुछ बच्चे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं तो उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चलती है जो वीक में 2 से 3 दिन होती है। इसके अलावा इंग्लिश स्पोकिंग क्लास चल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चलती है और बेसिक एजुकेशन तो ऑलवेज है बिकॉज वो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है।
2: कौन से बच्चे हैं ये? ये वो बच्चे हैं जो यहाँ स्लम्स में रहते हैं या ये वो बच्चे हैं जो प्रवासी मजदूरों के हैं जो कुछ समय के लिए शायद यहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आए हुए हैं? कौन से बच्चे हैं ये?
3: स्टार्ट जब एनजीओ हुई थी तब हमारे पास प्रवासी मजदूरों के बच्चे थे। दीनदयाल कॉलेज बन रहा था तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए, बट वही है कि प्रवासी हैं तो कुछ समय के बाद वो चले गए। यहाँ जो बच्चे अब आप देख रहे हैं 11 सालों की जर्नी में, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर क्लस्टर में रहते हैं। इनके फादर मदर जो हैं वो मेड का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप बोल सकते हैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं ये।
2: जब आपने शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुई, वो क्या चीज थी जो आपको क्लिक की और आपको लगा कि नहीं ये वाला काम करना है?
3: शुरुआत एक पैशन से बोलूंगी हुई तो ये गलत होगा, मैं अपने समय को यूटिलाइज करना चाहती थी कि मेरा जो समय है पूरा दिन बच्चों के जाने के बाद मैं पूरा दिन बैठी होती हूँ और मोबाइल को स्क्रॉल कर रही हूँ, तो क्या मेरे जीवन का मकसद यही है, लाइफ का मकसद ये है? ये बार बार क्वेश्चन मुझे रिपीटली आता था। बॉम्बे में थी तो इससे पहले तो वहाँ ऑर्फनेज जाती थी, तो वहाँ पर जब ऑर्फनेज जाके बच्चों के चैलेंज सुनती थी या कैसे पेरेंट्स ने छोड़ा, वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको पता था कि उनके पेरेंट्स कौन है और क्यों नहीं अपने साथ रख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे हमेशा दिल्ली आने के बाद भी परेशान करती आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ में कि आप कुछ नहीं दो, जस्ट आपके जाने से भी किसी के चेहरे पर एक स्माइल आ रही है तो शायद आपका वो दिन बन जाएगा। तो उसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, मुझे करना है कि यदि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मन में ये संतोष हो कि मैंने एक चेहरे को भी हंसाया, एक बच्चे को भी एजुकेशन दी और एक महिला को भी अपने पैरों पर खड़ा किया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महा रिकॉर्ड, तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़, 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोते का आयोजन, बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है, उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा के जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के उमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीवी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिशू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिशू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडाछड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नाड़ाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद ये लोग नहीं करने वाले हैं, और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की है, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यह बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50 to 60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है, डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 15-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: चॉइस ही नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार ऐसा महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में है और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है, डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है। कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश किया।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थामकर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेशोत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे। इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: प्रसिद्ध मां नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड से कैलाश के लिए रवाना हो गई। मां नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड क्षेत्र जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ था बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जाग का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूड़ में माँ नंदा की डोलियां विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूड़ और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: और माँ जो बेटी है एक, उसको विदा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना, और इस बार बड़ी जात है तो वैद्य ही इससे आगे जाएगी। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना कि सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमारे से तन मन धन से बनता है, अपनी बेटी को विदा करने के लिए हम दूर दराज से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूड़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है, और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी, और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है, क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभायात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल।

0: दीप करौली बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई, जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई, उसे नीप करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीप करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीप करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने, इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी, उसे सुनकर नीप करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी, और है तो और बढ़ जाएगी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में, तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीप करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहां तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते हैं,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो

0: भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
1: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी। ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
0: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना। वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
1: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है। परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नई मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गांव पहुंचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीप करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीप करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीप करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीप करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीप करोली बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीप करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: बात करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। अमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोतिक का आयोजन। बौलिया, चांदनी, नागराजा, मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के ओमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिशू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिशू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के, इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में, गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद, ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेश उत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की है जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीददारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीददारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यहाँ बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से और हमारे यहाँ पे टोटल 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया है, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दगड़ू शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 15-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: सॉइल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसी ने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए, बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है। डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है, कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश की है।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थाम कर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेशोत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे। इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सिद्धमानंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड से कैलाश के लिए रवाना हो गई। मां नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुण क्षेत्र जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ था बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुण में मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जात का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूर में माँ नंदा की डोलियाँ विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूर और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: और माँ जो बेटी है आज एक उसको विदा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी से आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमारे से तन मन धन से बनता है अपनी बेटी को विदा करने के लिए, हम दूर दूरस्थ से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवन स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू रानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमलनैन सिलोड़ी, कुर्नी सुरे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत। शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोतिक का आयोजन। बौलिया, चांदनी, नागराजा मध्य परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचित इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

0: हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हीं युगातीत दिव्य आत्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहा

0: कर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने, इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी, और है तो और बढ़ जाएगी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहाँ से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या कर सकते,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और

0: एक दृश्य ट्रेन वाला है। शोविनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया। कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना। वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है। परम सत्य अनुभूति गम्य होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नई मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है,
2: टिकट
1: नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: वंदे मेहदम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। अमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2,500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बौलिया, चांदनी, नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचित इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के उमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीर है, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिशू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिशू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारा आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर की इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में, गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद, ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
0: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की है जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा कर रखी हुई है पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीददारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीददारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यहाँ बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से और हमारे यहाँ पे टोटल 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया है, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 1500-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: सॉल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सून में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसी ने डेयरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है। डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है, कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश की है।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थामकर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेश उत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गईं। इस जुलूस में मां काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे। इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है, क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सिद्धमा नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड़ से कैलाश के लिए रवाना हो गई। मां नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड़ क्षेत्र जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जाग का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूड़ में माँ नंदा की डोलियाँ विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूड़ और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: विदा कर रहे हैं तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी से आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना कि सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमसे तन मन धन से बनता है अपनी बेटी को विदा करने के लिए, हम दूर दराज से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूड़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोड़ी, कुर्नी सुरे।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत। शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोते का आयोजन। बौलिया, चांदनी, नागराजा, मध्य परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। नीब करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साई बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस

0: कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
1: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और न ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती थी।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या कर सकते,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है।

0: है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
1: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है। परम सत्य अनुभूति गम्य होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी, कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए, स्टेशन पर थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करौली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करौली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करौली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मौसम के मिजाज की कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: इसीलिए खबर के
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महा रिकॉर्ड, तमांग पंचांग में लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महा रिकॉर्ड तमांग पंचांग में 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखी। टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोतिक का आयोजन, बौलिया चांदनी नागराजा मध्य परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेपाल प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचित इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के उमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए।

0: बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिशू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिशू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर की इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने रिसाइकल किया है।
0: बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया है। विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा जब तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के साथ खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
4: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
5: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
6: आज मैं कारली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नाड़ाचरी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये

0: मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
1: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेश उत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की हैं, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में, ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यहाँ बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50 to 60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके, और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चा राजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही है। विशेष बात यह है कि यहाँ से भक्त गणपति की मूर्तियाँ विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है, डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद करते हैं, और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 1500-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही।
0: बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: स्टॉल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार ऐसा महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए वैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में है और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज की खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है, तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है, डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है। कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश की है।
0: इस बार साकिना का महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचियां यानी पेंटिंग ब्रश थाम कर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेशोत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे।

इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सिद्धमा नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड़ से कैलाश के लिए रवाना हो गई। मां नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड़ क्षेत्र जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जाग का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूड़ में माँ नंदा की डोलियां विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूड़ और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: और माँ जो बेटी है एक उसको विदा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना, और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी से आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना कि सबको सद्बुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमसे तन मन धन से बनता है अपनी बेटी को विदा करने के लिए, हम दूर दराज से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूड़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है, और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी, और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोड़ी, कुर्नी सुरे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
4: के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महा रिकॉर्ड। अमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोते का आयोजन। बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस

फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी हनुमान आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या कर सकते हैं,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सॉल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस

0: महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
1: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी, कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: मौसम के मिजाज के कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं? वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है? क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: और आपको समझाएंगे, देखिए
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2,500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1,100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचित इतिहास, पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को दी मात।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, क्योंकि आ रहे हैं बप्पा, गणपति का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में तो भक्तों में इनको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति प्रतिमा देकर जा रहे भक्त पूरे उत्साह के रंग में सराबोर नजर आए, तो गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा तक आकर्षक इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं।

0: अब से कुछ ही दिन बाद जगह जगह बप्पा विराजमान होंगे। 14 सितंबर से 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसको लेकर महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी तैयारी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कहीं बप्पा की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, तो कहीं मूर्तियों को तेजी से अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। गणेशोत्सव के लिए भव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बप्पा की मूर्तियों को ले जाने आए भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे वातावरण को बप्पा की जय घोष से गुंजायमान करते नजर आए। प्रतिमा को ले जाने के दौरान पूरा शहर डीजे की गूंज के बीच आतिशबाजी से रोशन नजर आया। 30 फीट के उमरी के राजा से लेकर 20 फीट ऊंचे सिंधी कैंप के सरकार को ले जाते गणेश भक्त उमंग में डूबे नजर आए। बप्पा की 20 फीट ऊंची सिंधी कैंप के सरकार की प्रतिमा के सिंधी कैंप चौक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई, आतिशबाजी के बीच ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। इसी तरह का उत्साह 30 फीट के उमरी के राजा को लेकर भी सामने आया।
1: फायर शो है, जीबी बैंड है, मतलब जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया, बाकी तो बापा है ही हमारे साथ।
0: महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सूरत में मूर्तिकार बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। यहां पश्चिम बंगाल के कारीगर छोटी बड़ी सभी तरह की डिजाइनर गणेश मूर्तियां बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं में पारंपरिक कलाकारी और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। सूरत में ही एक ऐसी गणपति प्रतिमा भी है जो विशेष रूप से बनाई गई है। सिटी लाइट इलाके में सरकार ग्रुप की ओर से इस वर्ष ये 17 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई गई है।
2: कहते हैं कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा गणेश की स्थापना गुजरात के सूरत शहर में होती है। सूरत शहर में करीबन 1 लाख से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का स्थापना किया जाता है और गणेश उत्सव के दौरान जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गणेश मूर्तियों के जो भगवान के दर्शन करने आते हैं। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा टिशू से बनाई गई है। इसमें 350 किलो टिशू पेपर का इस्तेमाल हुआ है।
3: नया तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीने, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश मैकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर की इनकी एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके। हम इसमें जो जो एंगल पे मूर्ति खड़ी है वो भी हमने लास्ट ईयर जो मूर्ति बनाई थी उससे उसका ही यूज किया है, मतलब वो भी हमने

0: रिसाइकल किया।
1: बापा की इस प्रतिमा को बनाने के लिए विशेष रूप से मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इस इको फ्रेंडली प्रतिमा को आकार दिया, खुशी मनाई। उनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
2: पिछली बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था, इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए। बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
1: गुजरात के वडोदरा में भी गणेशोत्सव की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ श्री गणेश युवक मंडल की टीम नाडा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का उपयोग कर अनोखी इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। 20 से 25 युवाओं का ये गणेश मंडल दल यहाँ ऐसी प्रतिमा तैयार करता है जो पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हो।
3: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
1: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का ये गणेश मंडल इस वर्ष अपना 11वां साल मना रहा है और पिछले 10 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया।
4: आज मैं कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी में आ पहुंचा हूं, जहां पे इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव पिछले 10 सालों से खूब धामधूम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में एक अनूठा महत्व है गणेश महोत्सव का, और वहीं पे भक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही सुंदर मिसाइल देखने को मिल रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री गणेश मंडल युवक मंडल ने बनाई हुई है, जो लगभग 82 किलो नालाचड़ी, जिसे हम पवित्र धागे बोलते हैं, उससे बनाई गई है। 20 से 25 युवाओं ने करीब पिछले कई समय से भारी मेहनत करने के बाद इस मूर्ति को भगवान श्री जी का स्वरूप दिया है। वहीं पे इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से ये मंडल के युवा पर्यावरण के हित में ही ऐसी मूर्ति बनाते हैं और ऐसी प्रतिमाएं बना के जल संरक्षण और पर्यावरण बचाओ की जो अपील है उसको कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। हालांकि ये मूर्ति का विसर्जन आने वाले दिनों में, गणेश महोत्सव खत्म होने के बाद, ये लोग नहीं करने वाले हैं और यही मूर्ति को आने वाले साल में फिर से प्रस्थापित करके कुछ नया वडोदरा वासियों के लिए बनाने वाले हैं।
1: महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कर्नाटक में भी गणेशोत्सव की तैयारी है। बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर जामनगर में भी मूर्तिकार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं तो कईयों पर तेजी से काम चल रहा है। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर जगह इको फ्रेंडली मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। अकोला से धनंजय सांबले, सूरत से संजय सिंह राठौर, वडोदरा से तुषार पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नागपुर से लेकर पुणे तक बप्पा की मूर्तियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं, तो दिव्य पंडालों का निर्माण भी हो रहा है। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानें सजावट से लेकर गणपति के श्रृंगार तक के सामान से सजी हुई हैं।

0: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, सामाजिक एकता और लोक परंपरा का एक भव्य उत्सव है। ये तस्वीरें नागपुर के एक ऐतिहासिक कला केंद्र और बाजार की हैं, जो विशेष रूप से गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक पंडाल के लिए बड़े और घर में विराजमान होने वाले छोटे गणपति बनाए जाते हैं और इस साल गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं।
1: हम लोगों ने इस बार ऐसे सजा के रखी हुई है, पर इस साल लोगों को सिंपल मूर्तियां होना, जैसे आपको दिख रही है ऐसे सिंपल में, ऐसे ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। लोग इको फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मार्केट में काफी पीओपी बिक रहा है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग ना खरीदे। ये सबसे लोगों को ज्यादा इको फ्रेंडली होना, तो वो ना डेकोरेट ना लेते हुए वो सिंपल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के लिए सजावट से लेकर बप्पा के श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए भी बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
2: इस बार स्टोन के आइटम, स्टोन के हार ये ज्यादा चल रहा है, और जिस हिसाब से गणपति के लिए बड़े बड़े हार गोल्डन के जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये गोल्डन हार की डिमांड अच्छी है, और महालक्ष्मी के हिसाब से भी ये गोल्डन हार अच्छे चल रहे हैं, इनकी भी डिमांड है, गोल्डन हार की डिमांड ज्यादा है। डेकोरेशन के हिसाब से आजकल वेलवेट कपड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वर्क वाला, और गणपति में बॉर्डर वाला कपड़ा आजकल ज्यादा डिमांड है जो मेरे यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर वाला कपड़ा।
0: नागपुर में गणेश उत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंडाल निर्माण से लेकर लाइटिंग और सजावट का काम रफ्तार पकड़ चुका है। ये तस्वीर यहाँ के मशहूर संती सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की है, जहाँ गणेश उत्सव के लिए हर वर्ष देश के अलग अलग मंदिर और धाम को थीम के तौर पर चुना जाता है। इस वर्ष यहाँ बद्रीनाथ धाम जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है।
3: ये इस साल हम संती गणपति मंडल उत्सव में बद्रीनाथ का थीम बना रहे हैं, बद्रीनाथ टेम्पल का। वहाँ पे हमने साइट विजिट करके सब लेआउट वगैरह सब देख के जगह के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा 3 महीने से काम चल रहा है गोडाउन पर, और यहाँ पे साइट पे हमारा 1 महीने से काम चालू हो गया, और ये सब हमारे प्रोडक्ट फाइबर प्रोडक्ट होते हैं, आयरन होता है, बॉटम्स होता है, सब मिक्स मटेरियल में काम होता है, और इसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे 1 महीने से, और हमारे यहाँ पे टोटल 50-60 वर्कर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में जाके हमने विजिट किया, वहाँ का सब फील लेके, मेजरमेंट लेके और थोड़ा एडिटिंग करके फिर हम जगह के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं।
4: हमारा मंडल बहुत पुराना है, जैसा ये 69वां साल है हमारा, और इस समय हमारा यही यानी प्रोविजन है कि जैसा लोगों को जो उत्तराखंड में नहीं जा सकते चार धाम में, वो यहाँ पे उसी टाइप का एक फील यहाँ पे ले सके, इस टाइप का हमारा विजन है इस बार का।
0: शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं।
5: नागपुर में इस समय हम हैं, गणपति बाप्पा के उत्सव की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। सार्वजनिक पंडाल और घरों में 14 सितंबर को गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो हम देख सकते हैं। नागपुर में सार्वजनिक जो पंडाल है जहाँ पे गणपति बाप्पा विराजमान होंगे, वहाँ अलग अलग प्रतिकृतियां बनाने का काम इस समय चल रहा है, अंतिम चरण में काम है।
0: महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। पुणे के कारखानों में दिन रात काम चल रहा है, कहीं बप्पा की आंखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं आकर्षक नक्काशी और रंग रोगन में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, पेशवाई, बाल गणेश और लालबाग चराजा जैसे अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां यहां दिख रही हैं। 1 फीट से लेकर करीब 12 फीट तक की गणपति मूर्तियां यहां तैयार की जा रही हैं। विशेष बात यह है कि यहां से भक्त गणपति की मूर्तियां विदेश तक ले जाते हैं।
6: जो स्पेशल कलर है, डेपरे वाला गणेश मूर्ति को ज्यादा पसंद ही कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दगुड़ शेठ, लालबाग राजा, बाल गणेश, चिंतामणि, ये गणपति को ज्यादा पसंद ही करते हैं, और सबसे ज्यादा डेपरे पूरा 75% मेरा 2000 में से 1500-1600 मूर्ति तो डेपरे वाला ही है।
0: पप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। टिटोडा गणपति से लेकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल गणेश भी बनाए गए हैं। मूर्तियों को पसंद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: स्टॉल से नहीं हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर मूर्ति है तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लेना है वो लेना है, मतलब सभी मूर्तियां बेस्ट है।
8: तो हर बार अलग अलग टाइप का हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, हम इस बार सब महालक्ष्मी देवी या अंबाबाई देवी का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हमें उस उसके लिए जैसे उस डेकोरेशन को अच्छी लगे ऐसी मूर्ति देखने के लिए हम आए।
0: इस बार भी रंगों के दाम बढ़ने के चलते मूर्तियों की कीमत भी थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन मूर्ति की खरीदारी के लिए भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पुणे में भी गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब घर से लेकर पंडालों तक बप्पा के विराजमान होने की भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुणे से योगेश पांडे और नागपुर से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुंबई में, जहां पर बप्पा की भव्य प्रतिमाओं का पंडाल में लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं पर पुणे में बच्चे गणपति प्रतिमाओं में रंग भरने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पर गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर दिव्य जुलूस निकाले गए। देश में हर तरह इस उत्सव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

0: कहीं गणपति प्रतिमा के आने की खुशी, कहीं बच्चे दिखा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी, कहीं बप्पा के स्वागत की दिव्य झांकी। गणेश उत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन पूरे देश में उसकी भव्य छटा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में जगह जगह बप्पा के आगमन का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के परेल इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बप्पा की भव्य मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जगह जगह भगवान गणेश के स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। बप्पा के जयकारे लगाते हुए भक्त पूरे भक्ति भाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रतिमा में बप्पा हाथों में वाद्यंत्र और सूंड में शंख लिए हुए हैं, तो किसी प्रतिमा में हाथ में गदा, शंख और चक्र थामे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच परेल के महाराजा पंडाल की 35 डिग्री पर संतुलित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैलेंसिंग के राजा के नाम से प्रसिद्ध परेल के महाराजा के गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 21 फीट है। विशेष बात इसमें यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो बैलेंसिंग मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, पहली बप्पा और दूसरी नारद मुनि की।
1: बैलेंसिंग राजा के नाम से मशहूर है परेल के महाराजा के गणेश जी, और सीधे पहले आपको उनका दर्शन करवाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी खासियत बताएंगे। देखिए, फिर से एक बार एक बहुत बड़ा चमत्कार मुंबई में देखने को मिला है। हाल ही में गणेश जी को उनके दरबार में ला करके विराजमान किया गया है। पिछले साल की आपको बात करें तो गणपति जी सिर्फ एक लेवल पर बैलेंस में थे, लेकिन इस बार देखिए दो दो बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले गणपति महाराज के खूबसूरती की आपको बात बताएं तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये मंडल मनाने वाला है, यानी कि परेल के महाराजा मनाने वाले हैं। गणपति को देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया वीणा उन्होंने पकड़ रखा है, फूल हैं, और खास बात ये है कि बाकायदा जिन पर वो सवार होकर चल रहे हैं ये नारद मुनि है।
0: इन भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार अरुण दत्ते ने आकार दिया है।
2: आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस किसी ने डेरिंग नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग मूर्ति जो 45 डिग्री बैलेंस हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम हर एक के लिए वो फर्स्ट टाइम था कि ये बैलेंस कैसे हो सकता है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए ये टाइम कुछ अलग, मतलब जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल हो गई थी कि ये टाइम क्या करेंगे, ये टाइम क्या करेंगे। तो जो अपने मूर्तिकार अरुण दत्ते, उनका कंसेप्ट था कि ये टाइम डबल बैलेंस करेंगे, तो वो झलक देखने के लिए साल भर से लोग इसकी राह देख रहे थे।
0: बप्पा के आगमन के समय बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर नाचते झूमते गाते पूरे उत्साह में दिखे और बप्पा को पंडाल लेकर पहुंचे। अब साकिनाका का महाराजा के दरबार की ये तस्वीरें देखिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है, जो सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है।
1: आप तस्वीरों में देखें, इस समय उपनगर मुंबई के सबसे बड़े महाराजा का आप दर्शन कर रहे हैं। साकिनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है गणेश जी की ये प्रतिमा, और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 42 फीट यानी कि 42 फीट ऊंचाई है। जानकारी के हिसाब से खंडोबा का अवतार लेकर के विराजमान हुए हैं गणपति बप्पा। देखिए, बकायदा इनके जो सर पर है अच्छा खासा साफी कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं रखी हुई है, और बकायदा इनके पीछे शिवलिंग भी मौजूद है। डमरू है, त्रिशूल है, तलवार है, कहीं ना कहीं इनका दृश्य देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन है, जो राक्षस है और जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन सभी का नरसंहार करने के उद्देश्य से खंडोबा के अवतार में गणपति बप्पा साकिनाका के महाराजा के रूप में पधार चुके हैं। साकिनाका के महाराजा आ चुके हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं यानी कि 14 सितंबर, जब इस पर्दे को उठा दिया जाएगा। आसपास ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से इस दरबार में लोग बप्पा का दर्शन करने आएंगे।
0: धूमधाम के साथ बप्पा की इस विशाल मूर्ति को लेकर भक्त इस दरबार में आए।
3: महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 70-80% लोग जो है, जैसे गणपति बप्पा हमारे आराध्य भगवान है, शक्ति और भक्ति के दाता है, वैसे 70-80% लोगों के कुल देवता खंडोबा महाराज है। शिव जी का ये ग्रुप है महाराष्ट्र में, पुणे जेजुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्हीं के रूप में हम लोगों ने कुछ नया करने का कोशिश की है।
0: इस बार साकिनाका महाराज मंडल का 42वां साल है और 42 फीट की मूर्ति गणेश उत्सव में यहाँ की शोभा बढ़ाएगी। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पुणे में गणेश उत्सव के लिए 3D गणपति की मूर्तियों को रंग कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक खास वर्कशॉप में बच्चों ने 3D गणपति मूर्तियों में रंग भरे और उन्हें सुंदर रूप दिया। छोटे छोटे बच्चे जब अपने छोटे छोटे हाथों में कूचिया यानी पेंटिंग ब्रश थामकर मूर्तियों में रंग भरने लगे तो वो नजारा देखने वाला था। सभी इनके हुनर को देखकर बहुत खुश हुए। महाराष्ट्र नहीं बल्कि गणेशोत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां गणेश चतुर्थी से पहले भव्य जुलूस के साथ बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, नासिक ढोल, ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शहर के अलग अलग मार्गों पर भव्य यात्राएं निकाली गई। इस जुलूस में माँ काली, हनुमान जी और भगवान शिव समेत कई देवी देवताओं के रूप में कलाकार भव्य छटा बिखेरते दिखे।

इस दौरान भगवान शिव के गण के रूप में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे। इस जुलूस में भक्तों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। भव्य जुलूसों के साथ ही सूरत में गणेश उत्सव की तैयारियों की दिव्य शुरुआत हो गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: प्रसिद्ध मां नंदा की बड़ी जात यात्रा सिद्धपीठा कुरुड़ से कैलाश के लिए रवाना हो गई। मां नंदा की डोली के रवाना होते ही पूरा कुरुड़ क्षेत्र जय मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए। सिद्धपीठ कुरुड़ में मां नंदा राजराजेश्वरी की 5 दिन की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद डोली को कैलाश के लिए विदा किया गया। विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भक्तों ने मां की डोली के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और यात्रा के सफल होने की कामना की।

0: 12 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर माँ नंदा की बड़ी जाग का शुभारंभ हो गया। माँ नंदा के मायके सिद्धपीठ करूड़ में माँ नंदा की डोलियाँ विधि विधान और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कैलाश धाम के लिए रवाना हो गयी। इस दौरान करूड़ और आसपास का पूरा इलाका माँ नंदा के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही माँ नंदा की डोली मायके से आगे बढ़ी, माहौल भावुक होता चला गया। माँ नंदा को अपनी बेटी और ध्यानी मानने वाली महिलाएं डोली को कैलाश विदा करते समय रो पड़ी।
1: विदा कर रहे हैं तो उसमें बहुत भावुक पल होते हैं। बेटी को ससुराल भेजना और इस बार बड़ी जात है तो बैतनी से आगे जाएगी, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना कि सबको सदबुद्धि दे और बहुत अच्छे और दिव्य भव्य रूप से ये कार्यक्रम हो।
2: ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी रियली ससुराल जा रही है, तो हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। आज माँ को नहीं, आज हम अपनी बेटी को विदा करने के लिए कोई दिल्ली से, देहरादून से, गोपेश्वर से, जो जहाँ है वहीं से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि आज हमारी देवी नहीं, हमारी अपनी स्वयं की बेटी कैलाश जा रही है। तो अपनी बेटी के लिए हम जो हमारे से तन मन धन से बनता है अपनी बेटी को विदा करने के लिए, हम दूर दूरस्त से भी हाजिर उपस्थित होते हैं। अगर न होने पर हमारी माँ नंदा देवी जो भी है हमको अपने दर्शन एक हफ्ते पहले दे देती है।
0: करूड़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माँ नंदा के दर्शन किए और सुख समृद्धि खुशहाली की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैसे ही माँ नंदा की डोली अपने मायके से कैलाश के लिए रवाना हुई, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ढोल दमाओं की थाप, जागरों की गूंज और माँ नंदा के जयकारों के बीच डोली को विदाई की गयी। मान्यता है कि माँ नंदा को यहाँ पर बेटी और ध्यानी माना जाता है और इसी भाव के साथ उनकी विदाई भी एक बेटी की तरह होती है। माँ नंदा की बड़ी जात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तराखंड की सदियों पुरानी लोक आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यात्रा के दौरान गांव-गांव में नंदा के जागर, मांगल गीत, झोरा और चाचरी की गूंज सुनाई देगी और जगह जगह श्रद्धालु माँ नंदा का स्वागत करेंगे। करीब 280 किलोमीटर की इस कठिन हिमालय यात्रा में श्रद्धालुओं को कई दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरना है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हेमकुंड माना जाता है, जहां 20 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी दौरान परंपरा के अनुसार चौसंग्या खाड़ू यानी चार सिंह वाली बकरी को भी कैलाश की ओर विदा किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में चौसंग्या खाड़ू का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे माँ नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक माना जाता है। चमेली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: अनाज का दान करने से किस तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, वस्त्रों का दान करना किस तरह से लाभकारी होता है, क्या है दान की महिमा और क्या है दान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: महाराष्ट्र के जालना में ढोल नगाड़ों के साथ था जालना का राजा का भव्य स्वागत शोभा यात्रा में उमड़े हजारों भक्त, गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर। महाराष्ट्र के अकोला में बना सबसे लंबी और सबसे भारी कांवड़ का महारिकॉर्ड। तमांग पंचांग में सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोले को चढ़ाई जाएगी 3 टन वजनी कांवड़। 2,500 शिव भक्तों ने संभाल रखे हैं 1100 कलश। उत्तराखंड के टिहरी जिले में 18 साल बाद ऐतिहासिक भेड़ कोथिक का आयोजन। बौलिया चांदनी नागराजा मंदिर परिसर में जुटे हजारों भक्त, भेड़ परिक्रमा के साथ देव डोलियों के दर्शन। चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। रामायण मेला परिसर में पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री, लोगों के पुनर्वास का भरोसा जताया। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

0: हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हीं युगातीत दिव्य आत्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीव करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते
2: ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी

0: वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहां पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत

0: कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो ऐसा।
1: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
0: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
1: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीव करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीव करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण

0: शर्मा दिया। हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए, स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करौली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करौरी बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे। पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करौरी बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करौरी बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौरी बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौरी बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
2: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: बात करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। जी हाँ, वहीं पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।

0: उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा माहौल ही बदल गया। इलाके में ठंड बढ़ गई तो घाटी की खूबसूरती में निखार आ गया। इसे पहाड़ों पर सर्दी की शुरुआत माना जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी के काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरा इलाका चांदी की तरह चमचमा रहा है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद हो गए हैं और ऊंची ऊंची चोटियों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लद्दाख की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। बर्फबारी के साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला हो गया है। केदारनाथ में पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मौजूदगी से चमकने लगी हैं। दिल्ली में भी पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में शाम को धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़त महसूस की गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार हासिल कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर यानी कल यूपी बिहार समेत 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्री किनारे से दूर हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।